0: सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल से जरूरतमंदों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। बिहार से देश भर में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने बढ़ाया 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई रूट्स पर मिलेगी सुविधा। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसल गया था युवक। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात कांस्टेबल बना देवदूत।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचो समझे ने सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी शुरू होती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम आप तक हर खबर की पड़ताल करके लेकर आते हैं। हर खबर के सच और झूठ को हम पहचानते हैं और आप तक लेकर आते हैं सही और सच्ची खबर, ताकि आप किसी भ्रम का शिकार ना हो और आप तक जो भी खबर पहुंचे वो बिल्कुल सही और सटीक हो। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। क्या है वायरल दावे और इस वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: चलते हुए बस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये बस अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिस पर श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला किया गया। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। सबके बीच धू धू कर जलती हुई एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस बस में अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्री सवार थे और इसका ये हाल एक ग्रेनेड हमले की वजह से हुआ। बस के जलने का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्सयूजर ने लिखा, बीजेपी फिर सुरक्षा देने में नाकाम रही। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे लोगों की बस पर ग्रेनेड से हमले का यह वीडियो है और वीडियो में धू धू कर जलती हुई एक बस नजर भी आती है। कुछ लोग वीडियो को श्रीनगर का बताकर वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमें बैकग्राउंड में आ रही कुछ आवाजें सुनाई थी। जब हमने इसे गौर से सुना तो वो कन्नड़ भाषा लगी। वायरल वीडियो श्रीनगर का है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें कन्नड़ भाषा क्यों सुनाई दे रही है, हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। इसके अलावा अगर किसी बस पर ग्रेनेड से हमला होता तो मौके वारदात पर पुलिस और आर्मी के जवान भी मौजूद रहते, लेकिन पूरे वीडियो में सिर्फ दमकल कर्मचारी नजर आ रहे हैं, कहीं भी सुरक्षाकर्मी नहीं देखे जा सकते। अगर ग्रेनेड के जरिए हमला हुआ होता तो फिर वहां पर सुरक्षाकर्मी जांच करते भी नजर आते। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में बस के कलर पर भी गया। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सामने आया कि केरल राज्य परिवहन की बसें इस कलर की होती हैं। साथ ही साथ हमें सर्च के दौरान हाल फिलहाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमला होने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में खबर छपी होती, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वीडियो को जानने के लिए इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये है कि जलती बस का ये वीडियो कब का है और कहां

0: का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर हादसे के वीडियो को हमले का रंग देकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिली। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। यहाँ बताया गया है कि ये बस केरल की है और इसमें आग लगने की घटना बेंगलुरु में हुई थी। सर्च के दौरान हमें कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसके जरिए ये सामने आया कि ये बस केरल राज्य परिवहन की है। 4 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई की शाम बेंगलुरु में ज्ञान भारती मेट्रो स्टेशन के नीचे केरल राज्य परिवहन की बस में आग लग गई थी। इंजन में आग लगने के बाद बस धू धू कर जलने लगी। जब ये घटना हुई उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिर्फ 2 यात्री थे। वे चारों समय रहते बस से बाहर आ गए और सुरक्षित बच गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। धुआं उठते ही बस में सवार यात्री और स्टाफ बाहर निकल आए थे। हमें अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों से भरी किसी बस पर ग्रेनेड से हमले की कोई हाल फिलहाल की रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि ये बेंगलुरु का वीडियो है जहां एक सरकारी बस में आग लग गई थी। इसका अमरनाथ यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। वीडियो में एक पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते दिख रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इन वीडियो के साथ यूजर्स ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने गजब का यूपीकरण किया है। 49 वर्षीय ये बाबा दिव्य शक्ति से उड़ने का दावा कर रहे थे, फिर पहाड़ से बोझ लेकर सीधे छलांग लगा दी। गंभीर चोटों की वजह से राम नाम सत्य हो गया। गजब ये कि ये तमाशा हजारों लोगों के सामने हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुजारी पहाड़ की ऊंची चोटी पर अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में उड़ने का दावा करने वाले पुजारी की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करता है और फिर वहां से चलकर पहाड़ी के मुहाने पर पहुंचता है। एक खास जगह पर अपने दोनों पैरों को रखता है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी खास पूजा विधि का कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस दौरान देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो खाई में गिर जाते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हाल फिलहाल में भी हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे बात की सच्चाई की तस्दीक हो सके और कि वाकई पुजारी की गिरने से मौत हुई है। वायरल वीडियो कि सच्चाई को और जानने के लिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर भी कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है, सही है, तो फिर वायरल हो रहा वीडियो आंध्र प्रदेश के हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही? सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 21 अगस्त 2021 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंग

0: को मिले। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के सिंगनामला का है, जहां 49 वर्षीय पुजारी पापाया श्रवण मास के शनिवार के अवसर पर गंपा मलैया स्वामी पहाड़ी पर एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। उनके एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी। अनुष्ठान के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ी से फिसलकर 40 फीट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट में कहीं भी उनके उड़ने की बात या दिव्य शक्ति का दावा करने का कोई जिक्र नहीं है। सर्च के दौरान ही हमें इस घटना से जुड़ी एक और रिपोर्ट मिली। 22 अगस्त 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक पुजारी की पहचान अप्पा पापाया के रूप में हुई थी। वो देवता को प्रसन्न करने के लिए एक संकरी और तेल से सनी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो हर साल श्रवण मास में 4 बार इसी तरह प्रार्थना करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कई साल पहले अप्पा पापाया के दादा की मौत भी इसी जगह इसी तरह के अनुष्ठान के दौरान हुई थी। एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2021 को इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में सिंगनामला के तत्कालीन उप निरीक्षक वामश्री कृष्ण का आधिकारिक बयान भी मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब पुजारी पहाड़ी से नीचे लौट रहे थे और उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत पहाड़ी से गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि ये घटना आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में घटित हुई है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि ये घटना अगस्त 2021 की है। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के YS जगन मोहन रेड्डी थे, न कि चंद्रबाबू नायडू। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल हुआ ये वीडियो करीब 5 साल पुराना है। पड़ताल के दौरान मिली मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयान में भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पैचक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे।
0: किया गया है कि मृतक पुजारी ने उड़ने का दावा किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पैचक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में। दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
4: Good news today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: अच्छा, कि आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
5: चेन्नई की व्यस्त सड़कों पर हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रोज की तरह ट्रैफिक से भरी सड़क, चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज और जल्दबाजी में भागते लोग। लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटा सा पल ऐसा भी था जिसने लोगों का दिल छू लिया। एक व्यक्ति अपनी बाइक चला रहा था और उसके पीछे उसकी दो नन्ही संतानें बैठी हुई थी। खास बात यह है कि दोनों बच्चे रास्ते या ट्रैफिक की ओर देखने के बजाय आपस में खेलते और बातें करते नजर आ रहे हैं। इस मासूम पल को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

से उस पानी में कूद रही है। वीडियो में दिखता है कि वो स्कूल वैन के पास ही जमा पानी में मस्ती करती नजर आ रही है और तभी एक लड़का जो शायद उसका भाई होगा वो उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास आ जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो छाता रखते हैं। अगर कभी स्कूल या फिर ऑफिस जाते समय बारिश हो रही हो तो लोग छाते का यूज करते हैं या फिर कुछ लोग रेनकोट इस्तेमाल करते हैं, मगर वायरल वीडियो में कुछ हटके नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है। इस दौरान छाता या फिर रेनकोट तो नहीं, महिला गजब का दिमाग लगाती है। वो गार्बेज बैग का यूज करती है और उस बैग को ही अपनी बेटी को पहना देती है जिससे वो भीगती नहीं है। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व्हीलचेयर पर बैठी है और उसी व्हीलचेयर के सहारे लोगों तक फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिला अपने काम को कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। उसे देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय अपने दम पर मेहनत करके कमाना चाहती हैं और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना चाहती हैं। इस धरती पर रह रहे इंसानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई बार इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं और इस सोच में डूब गए हैं कि भला कारनामा इंसानों ने कैसे कर दिया। ये वायरल वीडियो चीन का बताया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ कलाकार हजारों फीट की ऊंचाई पर बंधी एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि इन कलाकारों ने इस कारनामे से मशहूर चीनी कहानी जर्नी टू द वेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया। यह नजारा देखने में इतना रोमांचक था कि इसे देखने वाले लोग भी सांसें थामकर इसे देखते गए। वीडियो के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अनोखा प्रदर्शन चीन के गुआंगशी इलाके में है जहां दो ऊंचे पहाड़ों के बीच करीब 3,280 फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी बंधी है जिसके बाद कलाकार इस पतली सी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलते हुए स्टोरी को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पार्क में बने ओपन जिम में ऐसी एक्सरसाइज करती नजर आ रही है जिसे देखकर युवा भी दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरे रंग की साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला पार्क में लगे जिम इक्विपमेंट्स के पास आती हैं। ये मशीन देखने में काफी मुश्किल लगती है और आमतौर पर जवान लोग भी इसे इस्तेमाल करने से परहेजी करते हैं, लेकिन आंटी बिना किसी झिझक के मशीन पर चढ़ जाती हैं, पूरी एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस मशीन को चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। उनके एक्सरसाइज करने के अंदाज को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का इम्तिहान कभी कभी धरती पर और वो भी घुटने भर पानी में लेना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक शादी के दौरान देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। जहां भारी बारिश की वजह से पूरा मैरिज गार्डन ताला बन चुका था, वही दूल्हा दुल्हन ने घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। एक तरफ लगातार आफत की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ ये जोड़ा पूरी शिद्दत और खुशी के साथ फेरे ले रहा है।
शादी में आए मेहमान भी इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं और उन्होंने इस यादगार पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आया तो हर कोई इस अनोखी मॉनसून वेडिंग की जमकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि प्यार हो तो ऐसा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यह हैरान कर देने वाला नजारा मुंबई के पास वसई इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी बाइक लेकर पानी से लबालब सड़क पर निकल पड़ा है। कथित तौर पर यह रास्ता वसई का सिंसिटी रोड है जो भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब चुका है। वीडियो में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मटमैला पानी भरा हुआ है। बाइक चलाने वाले शख्स के लिए सिर्फ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे ही एकमात्र सहारा थे, जिससे उसे अंदाजा लग रहा था कि रास्ता किधर है। आसपास पेड़ न होने के कारण ये इलाका बिल्कुल किसी गहरी झील जैसा लग रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक जगह पर थोड़ा सा पानी भर गया है। वहीं एक बच्ची जो स्कूल की ड्रेस में है वो मजे

0: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के अजीबोगरीब और मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भैंस का वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आमतौर पर भैंसों को चारा चरते या फिर आराम करते देखा जाता है, लेकिन ये अनोखी भैंस पक्की टीवी लवर है। आलम यह है कि जब तक इसे टीवी पर इसका पसंदीदा प्रोग्राम न दिखाया जाए, ये दूध देने से मना कर देती है। ग्रामीणों के लिए अब दूध निकालने का समय प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस आराम से कमरे के बाहर खड़ी होकर अंदर चल रहे टीवी को टकाटक देख रही है। हाथ में बाल्टी लिए एक महिला भैंस की पीठ थपथपाकर उसे वहां से ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। वो लगातार स्क्रीन की तरफ देखती जा रही है, जिसके बाद महिला बेबस होकर वहां खड़े ग्राहकों की तरफ देखने लगती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। देखिए यहाँ पर 7 दिनों के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम इन दिनों फल फूल रहा है, तेज रफ्तार से चल रहा है, जिससे उनकी अच्छी खासी आमद भी हो रही है।

0: को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है? लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं? कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं? क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: दिल्ली NCR में लगातार दो दिन से बारिश का दौर, आज भी भारी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा संख्या। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज, हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसिल इंसुलिन इक्विली भारत में लॉन्च, अब साल भर में 365 की जगह केवल 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे। ट्रेनों में भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल का शुभारंभ किया। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ऐतिहासिक टेस्ट मैच का आज होगा शुभारंभ, लॉर्ड्स के मैदान पर 142 साल में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। आज रिलीज हो रही है अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, एडवांस बुकिंग में 1.6 करोड़ की कमाई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
8: हमको एक कथा याद आ गई, वृंदावन की बात है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था रामदास, बड़े सिद्ध महात्मा, झोपड़ी में रहते थे, नाम रामदास। परम वैष्णव, ठाकुर जी की भक्ति करते, सदैव श्री राधा कृष्ण के गीत गाते, एक छोटे से सालग्राम जी उन्होंने रख रखे थे, अकिंचन महात्मा, फक्कड़ महात्मा, झोपड़ी में रहते थे। ध्यान से सुनना गुरु कृपा क्या होती, झोपड़ी में रहते थे भैया, उनका एक चेला था। चेला बड़ा सरल भोला ही था, सीधा साधा, उसे गुरुजी के अलावा कोई काम नहीं, पर गुरुजी नियम के बहुत पक्के थे। सुबह 4 बजे उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ठाकुर जी को भी स्नान करावें, बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करावें, बढ़िया ठाकुर जी को इत्र फुलेल लगावें, बढ़िया ठाकुर जी को बाल भोग लगावें, बढ़िया ठाकुर जी के कीर्तन गावें, बढ़िया ठाकुर जी को मधुर मधुर मधुराष्टकम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम आदि आदि श्लोकों का गायन सुनावें। शिष्य उनका बड़ा सीधा, शिष्य का काम था भोजन बनाना, गुरुजी की सेवा करना, और गुरुजी जब शाम को लेट जाएं तो चरणों की सेवा करना। पर गुरुजी का एक नियम बड़ा कठोर था कि जो रसोई बनेगी वो रसोई कोई बनते हुए ना देख पाए जब तक ठाकुर जी को भोग ना लग जाए। पंडित जी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, साधु का नियम यदि पक्का हो तो साधु है, लंगोट का पक्का नियम का पक्का साधु होना चाहिए। साधु को एक ही भय रहता बदनाम ना हो जाए, साधु को एक भय रहता बदनाम ना हो जाए। और साधु को यदि अपनी साधना करनी है तो एक बात याद रखना चाहिए, भोजन और भजन दोनों पर कंट्रोल रखना चाहिए, दोनों पर कमान हो, भोजन पर भी भजन पर भी कमान हो। भोजन पाओ, अभी हम प्रसाद पा रहे थे तो एक दिन हमसे इन्होंने पूछा कि आप खाली थाली क्यों मंगाते हो, हमने कहा भैया पहले हमारी मूर्खता थी, अब हमारी मूर्खता कम हो गई है, भोजन उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो उन्होंने कहा वाह आपका तो हम प्रसाद पा लेंगे, हमने कहा अभी हम भी चेला है, गुरु नहीं बने, हम भी सन्यासी बाबा के चेला है, हम जब गुरु बन जाए तब तुम्हें हम झूठा प्रसाद देंगे, अभी क्षमा करो। धन्य है श्री रामदास जी महात्मा, उनका नियम था कोई प्रसाद बनते ना देखे, झोपड़ी में प्रसाद बनता। एक दिन की बात है, महात्मा जी साधना में बैठे थे, इनका चेला भोला रोज चौका चूल्हा करके लकड़ी लगाकर भगवान को प्रसाद बना रहा था भैया, और प्रसाद बना करके वो लकड़ी लेने थोड़ा दूर चला गया, उतने में कुछ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, घास फूस की झोपड़ी को ऐसा धुआं देखा, तो झोपड़ी तो घास फूस की थी, बड़े फक्कड़ महात्मा, तो झोपड़ी को ऐसे घास को एक तरफ करके झांक लिया। और जैसे ही झांका भैया, झांक करके जैसे ही वो अंग्रेज गए, चेला तो लकड़ी लेने आया, जब तक अंग्रेज चले गए इधर गुरुजी को पता लग गया, गुरु तो सब जानते ना, गुरुजी को पता लग गया। दौड़े दौड़े गुरुजी बाहर आए, बोला जी गुरुजी एक बात बताओ, तुम आजकल बहुत नालायक हो गए हो, बहुत मूर्ख हो गए हो, क्या बात है? गुरुजी क्या हुआ, एक बात बताओ, आजकल सेवा में तुम बहुत सावधान नहीं हो, बहुत सजग नहीं हो, हमारे ठाकुर जी की सेवा बन रही थी, कोई झांक गया, तुमने ध्यान तक नहीं दिया। बोले गुरुजी हम लकड़ी लेने गए थे, इतना कह पाते तब तक गुरुजी को बड़ा आवेश आ गया, बहुत गुस्सा आई, वहीं पे एक डंडा पड़ा हुआ था वो उठा करके पीटने लगे, इतना पीटा, इतनी मार लगाई कि गुरुजी का हाथ दर्द करने लगा और बेचारा चेला गिर पड़ा। सत्य घटना बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। चेला जमीन पर गिर गया, शरीर में रक्त हो गया, बेहोश हो गया, गुरुजी मारे क्रोध के डंडा को फेंक करके अंदर चले गए। आहा, भोला को बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू, शरीर में चोट, रोता हुआ शरीर को फटकार कर ऊपर उठा। भैया ऊपर उठकर के तुरंत गया, रसोई को साफ किया, फिर से रसोई जितनी बनाई थी वो गौ माता को खिला दी, फिर से नया चौका चूल्हा किया, बर्तन को साफ किया, फिर से रसोई बनाई, रसोई बना करके उसने तैयार की, तैयार करके थाली लगाकर लेकर गया। तब तक शाम हो गई, 4-5 बज गए। गुरुजी ने थाली ली, ठाकुर जी के सामने रखी, ठाकुर जी को भोग लगाए, और भोग लगाकर गुरुजी आज थोड़ा जल्दी लेट गए। जैसे ही जल्दी लेटे ना भैया, वो चेला गया भोला चरण दबाने लगा। पुराना जमाना, रात थी, लाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहा था, दीपक की रोशनी में ठीक से चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो चरण दबाते दबाते ना उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, एक आंसू की बूंद गुरुजी के चरणों पे गिर गई। जैसे ही चरणों पे गिरी तो गुरुजी ने पूछा, भोला क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, तू रो रहा है, क्यों रो रहा बेटा, ये देख तेरे आंसू गिर रहे हैं, क्या बात है, मैंने तुझे आज बहुत पीट दिया इसलिए रो रहा। पता है चेला ने क्या कहा, गुरुजी हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आपने हमें पीट दिया, हम इस बात पे रो रहे हैं कि आज हमारे कारण ठाकुर जी को और आपको बड़ी देरी से भोग मिला, इसलिए रो रहे हैं। और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने गले से लगा लिया, इधर आओ, गले से लगा लिया, कोई बात नहीं, भूल है, हो जाती, आगे ध्यान रखना, हमारा आशीर्वाद है, खूब तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा रहेगी, जाओ चिंता मत करो, तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। इतना कह करके गुरुजी सो गए। सुबह हुई, होनी तो होनी थी, घटना तो घटनी थी। ध्यान से सुनना मेरे पागलो, सच्चे गुरु की कृपा होती है तब क्या होता है, याद रखना मेरे प्रिय जनो। सुबह हुई, गुरुजी का रोज का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करने का। वृंदावन की परिक्रमा के लिए गुरुजी उठे, चेला भी उठा, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला, सब जाने लगे। जैसे ही जाने लगे भैया, बीच में ही चेला रामदास को बुखार आ गया, जमीन पे लेट गया। जमीन पे लेटा तो बाकी शिष्यों ने कहा, गुरु भाई क्या हुआ? बोले भैया गुरुजी आगे निकल गए, जरा उनको बुलाओ, लगता है अब हम आगे जिंदगी भर परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी का अंतिम दिन है। तो मित्रों ने कहा, ऐसा मत कहो, अभी बुलाते, गुरुजी भोला की तबीयत खराब हो गई, आप वापस लौटो। गुरुजी कीर्तन करते हुए वापस आए, चेला से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों पड़े हुए हो? भोला बोला, गुरुजी लगता है आज अंतिम दिन है, श्वास तेज चलने लगी, जोर से ज्वर आ गया, गुरुजी अब हमें क्षमा करो, आज तक का ही हमारा तुम्हारा साथ था, अब यहां से बिछड़ जाएंगे, लेकिन फिर अगले जन्म में मैं जन्म लूं, हमें आशीर्वाद दो, आपके ही चरण मिले। गुरुजी ने कहा, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कहो गुरुजी, हम सच कह रहे हैं। और बुरा ना मानो गुरुजी, एक प्रार्थना करें, दो निवेदन हमारे अंतिम स्वीकार कर लो, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी पहली प्रार्थना तो है, आप हमें चरणों का चरणों तक पिला दो, आपके चरणों का चरणों तक पीना है। अच्छा हाँ। तुरंत गुरुजी गए, उसके मुख तक अपना अंगूठा लाए, बाकी शिष्यों ने जल डाला, भैया उसने चरणामृत पिया। जैसे ही चरणामृत पिया तो बोला गुरुजी अब दूसरी प्रार्थना और सुनो, मैं अपने प्राण आपको देखते हुए निकालना चाहता हूं, बुरा ना मानो तो आप हमारे सामने खड़े हो जाओ। गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी भी सीधे साधे थे, शिष्य के सामने खड़े हो गए। जैसे ही पैरों के पास खड़े हुए भोला के, तुरंत ये उठने की कोशिश करता हुआ हाथ उठा के बोला गुरुजी, गुरुजी हम आपको देखते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं, किसी दूसरे को देखते हुए प्राण नहीं त्यागना चाहते। गुरुजी बोले यहां तो हम ही है, दूसरा कोई है नहीं। ये बोला काय को झूठ बोलते हो, आप बगल में देखो, इस बालक को हटाओ, ये बालक हमें बुला रहा है, इसको हटाओ। गुरुजी ने देखा इधर तो कोई नहीं। गुरुजी आप दाहिनी तरफ देखो, देखो सामरा सामरा बालक खड़ा है, मोर मुकुट पहने हुए हैं, बंसी लिए हुए हैं, हमको बुला रहा है। आह, इतना सुनते ही गुरुजी की आंखों में भी आंसू आ गए और हाथ दोनों उठाकर बोले बेटा वो सामरा सामरा कोई और नहीं, साक्षात मेरा बांके बिहारी ही तुझे लेने आया है, मेरा कन्हैया तुझे लेने आया है, मेरा ठाकुर तुझे लेने आया। इतना कह के उसके प्राण पखेरु उड़ गए और शरीर पूरा हो गया। भैया इस कथा का आशय बताऊं, ये सत्य घटना है। इस कथा का आशय ये है मेरे पागलो, मेरे प्रियजनों, किसी को अच्छा और सच्चा गुरु मिल जाता ना, उसे गोविंद भी मिल जाता है। गोविंद को खोजना नहीं पड़ता, गोविंद खुद चले आते हैं। भैया सच्चा गुरु मिल जाए ना, हनुमान जी मिले किसको, सुग्रीव को, सुग्रीव को हनुमान जी मिले तो सुग्रीव को राम जी के पास जाना पड़ा कि राम जी को लेकर आए। बोलिए हनुमान जी लेकर आए ना, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। ये बात तय है, यदि हम हनुमान जी के शरण को पकड़ लेंगे, हनुमान जी के चरण को पकड़ लेंगे, वो राम जी से भी मिलवा देंगे। भैया जिनके रक्षक हनुमान जी हो गए भला वो कैसे डर सकता। अच्छा बुरा न मानना, भगवान के पास जाकर ये मत कहा करो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कहा करो मेरे हनुमान जी निकट हैं। आहा, एक बात और, कल कथा के विराम में हमने प्रार्थना करी थी, हम प्रार्थना आज फिर करना चाह रहे हाथ जोड़कर। मेरे प्रियजनों एक बात याद रखना, पागलो परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। भाई कोई लापता हो तो मिले, कोई गुम गया हो तो मिले, भगवान लापता है नहीं। बोले पे उनका पता कहां, बोले आपको यदि देखना है तो आप ये संसार आंखों से मत देखो, सांसारिक आंखों से। बोले फिर किससे देखें, बोले मन की आंखों से। भगवान तो हर जगह है, अभी मंच पर सब संत बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे। भैया एक बात कहें, कह दो बोलो, जरा जोर से तो कहो, जब परमात्मा नहीं आ पाते ना वो महात्मा को भेज देते हैं, और जिन्हें महात्मा में परमात्मा नहीं दिखाई देता, मेरे पागलों तुम याद रखना, जो महात्मा में परमात्मा नहीं देख सकता वो परमात्मा में भी परमात्मा को नहीं देख सकता। जिन्हें नर में नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता, उन्हें नारायण में भी नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमसे कोई पूछे महाराज हमारी श्रद्धा महात्माओं में बहुत कम है, तुम अपनी ठटरी भरा, कोई बात नहीं कम है, ठीक है ना, है ना, फिर भी तुम कहो नहीं हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो हम एक बात कहें, परमात्मा जब नहीं आ पाता वो महात्मा को भेज देता, और तुम्हें महात्मा भी ना मिल पाए ना, तो परमात्मा जब नहीं मिलता तो वो मां को देता है, वो भी तो परमात्मा है। उसमें भी तो माँ है। तो किसी ने कहा भगवान दिखेंगे कैसे? गोस्वामी जी को यदि पढ़ोगे तो तुलसीदास जी तो एक लाइन में उत्तर देते हैं, भगवान को देखने का और पाने का एकमात्र उपाय है

भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है जरा जोर से बोलो ना, भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम। पर प्रेम किससे होगा? जिसके बारे में जानोगे तभी प्रेम होगा। दूर से तो लोग हमको भी कुछ भी समझते हैं, पर जब नजदीक आएंगे तभी पता लगेगा। ना हो दूर से तो हमू लगेंगे जादूगर बाबा। हाँ बाबा जादूगर है, भूत भगाता है। असली बात यह है कि हम भूत भर नहीं भगाते हैं, भारत के वो भूत भी भगाते हैं जो भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। पर दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? दूर से यही लगेगा, ए बाबा तो ढोंगी है, ऐसा है वैसा है, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, एक उंगली किसी पर, ऐसे उंगली करो जरा हमारी तरफ, ऐसे करो हमारी तरफ करो, ऐसे करो, हम कुछ ना बोलेंगे, भगवान कसम, ऐसे करो जरा। आहा, एक उंगली जो हम पे उठा रहे हैं ना, तीन उंगलियां अपनी देखो तुम्हारी तरफ मुड़ी हैं। और अंगूठा ऊपर की तरफ है, बुरा।

भैया मुझसे बुरा भला कौन होगा? हाँ तो मेरे पागलो, विषय से भटकना नहीं। भगवान को पाने का उपाय प्रेम है। प्रेम होगा कैसे? प्रेम होगा गुरु कृपा से। किसकी कृपा से? अरे जरा जोर से तो बोलो भाई। जिसके पास प्रेम होगा वही तो प्रेम देगा ना। जिसके पास भक्ति होगी वही तो भक्ति का आशीर्वाद देगा। हमारे गांव में वरना कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दो। देवी खुद आफत में हो। हमारे पास बहुत लोग आते, गुरु महाराज भभूत दे दिया मरो ना। अरे भैया तुम हमसे भभूत मांग रहे कि हम मरे ना? जो भभूत जिससे मांग रहे उसे खुद मरना है। हाँ अब तुम्हें ऐसी भभूति कहां से दे दे कि तुम मरो ना? बोलो भैया, तो प्रेम कहां मिलेगा? कचौड़ी की दुकान पे कहां मिलेगा? बांदा में कालू कुआं पे कहां मिलेगा? छावनी में? अरे बोलिए, प्रेम कहां मिलेगा? भक्ति कहां मिलेगी? जिसके पास होगी, किसके पास है बताइए, हमसे पूछो। गुरुजी तुम बताओ, हमारी नजर में एक है जिनके पास भक्ति है, पूछो कौन?

0: किसके पास भक्ति है? अरे बोलो ना, हनुमान जी के पास। यदि हम हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे पागलो, हम सब हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हनुमान जी के पास में राम रसायन है, एक बूंद भी यदि उनकी कृपा की मिल गई तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे।
1: Good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देश भर में बारिश हो रही है और मानसून की मेहरबानी तो हुई ही है, लेकिन इस दौरान हो रही बारिश में आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मानसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों से कैसे अपना बचाव करें।
2: प्रिवेंशन, मैं कहूंगा कि प्रिवेंशन ही तरीका है। हमें पता है कि ये सारी बीमारियां हैं पानी के थ्रू ही फैलती है, चाहे वो टाइफाइड हो, अगर साफ सुथरा खाना या पानी आप नहीं पी रहे हैं तो उसके थ्रू फैल सकता है। जो जितने तरह के डायरिया होते हैं, अगर आप अपने हाथ का हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ पानी नहीं पीते, साफ खाना नहीं खाते हैं, मक्खियां आपके घर में ज्यादा हैं, खुले आप खाना आप खुले माहौल में रखते हैं जिसमें मक्खियां बैठी, ऐसे सिचुएशन में ये बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो चाहे हेपेटाइटिस ए हो, ई हो, टाइफॉइड हो, कॉलरा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जो डायरिया होते हैं वो हो, ये सब कुछ जो है आपके हाइजीन से लिंक्ड है। जो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब मच्छरों को अगर आप पनपने से रोक सकते हैं तो ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो हर सीजन में हमें पता है कि हम बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, उसमें मच्छर होंगे, हमारा पीने का पानी कॉन्टेमिनेट होगा, हमारा खाना कॉन्टेमिनेट हो सकता है, और इन्हीं चीजों के थ्रू ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारी प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं। तो अगर आप हाइजीन का ध्यान रखें, आपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर न पनपने दें, मक्खियों को आप अपने घर में ना आने दें, खाने को ढक के रखें, साफ सुथरा पानी पिए, तो अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन जो अपने घर में रख सकते हैं वो एक प्रिवेंशन का तरीका, अगर आप ये जो जिसकी भी मैंने बात की कि साफ सुथरा रखें घर को, पानी इकट्ठा ना होने दे, मच्छरों को ना पनप दे, साफ पानी पिए, तो ये अपने आप सुरक्षित रहेंगे, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बीमार पड़ गए ध्यान रखने के बावजूद, तो पहले 72 घंटे तक आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं, पैरासिटामोल जो है बुखार के लिए, अपने हाइड्रेशन ठीक रखें, आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, कोई भी वार्निंग साइन हो जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, नौजिया हो रहा है, पेशेंट का बीपी नीचे जा रहा है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ कोई लोग हो, कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो, कोई छोटा बच्चा हो, ऐसे लोगों में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर 72 घंटे से ज़्यादा अगर बीमारी परसिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से मिले, जो भी रेलिवेंट टेस्ट है डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे एडवाइस करेगा और उसके हिसाब से ट्रीट करेगा। मैं कहूँगा कि 24 घंटे के बुखार में आप सीधा एंटीबायोटिक हम शुरू करने की जो टेंडेंसी है वो अवॉइड करें। यूजुअली ये बीमारियां जो होती है मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां होंगी, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे आपका मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, इन सब में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बाकी डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां जो है सेल्फ लिमिटिंग होती है, जिसमें सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है? लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं? कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं? क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, आज भी भारी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा संख्या। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज, हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसिल इंसुलिन एविक्ली भारत ने लॉन्च किया, अब साल भर में 365 की जगह केवल 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे। ट्रेनों में भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्वेलांस सिस्टम का ट्रायल शुभारंभ किया। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ऐतिहासिक टेस्ट मैच का आज होगा शुभारंभ, लॉर्ड्स के मैदान पर 142 साल में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। आज रिलीज हो रही है अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, एडवांस बुकिंग में 1,06,00,000 की कमाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, आज भी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, राहत और बचाव टीम के साथ प्रशासन अलर्ट, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, चमोली में छुट्टी घोषित। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही जोरदार बारिश के चलते डीएम का फैसला, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में आज स्कूल रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ा, 15 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। पूरे देश में मानसून की बारिश का दौर, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश से कई इलाके जलमग्न। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा, बादलों से घिरे तीर्थ की बड़ी सुंदरता। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आज सौर उत्साह के साथ पहुंच रहे श्रद्धालु, प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर रख रहा है नजर। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमें सतर्क, यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही निगरानी। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निरंतर जारी, तापमान में गिरावट के बाद भी मत्था टेकने पहुंच रहे श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा। श्रीनगर में पंथा चौक से अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतजामों का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान एलजी ने वॉलंटियर्स और देश दुनिया से आए यात्रियों से भी किया संवाद, यात्रा में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। टेंट, घोड़ा सेवा, लंगर और स्थानीय उत्पाद बेचने वालों को रोजगार के मिले अवसर, बालटाल में यात्रा सीजन बना रोजी रोटी का बड़ा जरिया। यात्रियों की सेवा से स्थानीय परिवारों को मिल रहा है आर्थिक बल, बालटाल के दुकानदारों की सालाना कमाई का अहम मौका। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर, मंदिर परिसर में हो रहा है पेंटिंग और मरम्मत का काम। 30 जुलाई से शुरू होने वाला है श्रावणी मेला, लाखों की तादाद में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सावन के पवित्र महीने में एक महीने तक चलता है भव्य मेला, 50 लाख कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के धाम में करते हैं अर्पित। श्रावणी मेले के दौरान स्पर्श पूजा और वीआईपी पूजा पर रहती है रोक, देश विदेश से पूजा के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर श्रावणी मेला के दौरान 10,000 पुलिस बल और अधिकारियों की होगी तैनाती, एसपी ने कांवड़िया पथ का जायजा लिया। रोहतास में भी सावन में शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी, डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर मंथन किया। मुंगेर में भी सावन के महीने के शुभारंभ से पहले तैयारियां तेज, डीएम ने एक अच्छी कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया, जल्द व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक टेक्निक का अद्भुत संगम, 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा लगभग तैयार। करीब एक वर्ष की मेहनत से तैयार किया गया भव्य लोहे का रथ, 19 जुलाई को स्कॉन की ओर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, भव्य समारोह के लिए किए जा रहे इंतजाम। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर, अहमदाबाद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष पोशाक तैयार किए गए, श्रृंगार और आभूषणों पर दिया जा रहा है खास ध्यान। अहमदाबाद में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होते हैं श्रद्धालु। जमालपुर में मौजूद 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा, कुल 18 किलोमीटर का होता है यात्रा का रूट। भव्य रथ यात्रा में विशाल और अलंकृत रथों के साथ होते हैं सजे धजे हाथी, अखाड़े और भजन मंडली, शोभा यात्रा के दौरान 100 झांकियां भी होती हैं शामिल। देश में डायबिटीज से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज, अब रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत होगी खत्म, हफ्ते में केवल एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन इविक्ली भारत में लॉन्च। डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने लॉन्च की नई दवा बेसल इंसुलिन इविक्ली, दुनिया की पहली दवा जिसे हफ्ते में केवल एक बार लेने की जरूरत होती है। अब डायबिटीज के मरीजों के साल भर में नहीं लेने होंगे 365 इंसुलिन इंजेक्शन, केवल 52 इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने की होगी जरूरत। 18 साल से ज्यादा उम्र के टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद, दवा लेने के नियम का पालन करना होगा आसान। भारत में किफायती दामों पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी नई दवा, 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज प्रभावित लोगों को होगा फायदा। ट्रेन में भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्वेलांस सिस्टम का ट्रायल का शुभारंभ किया। ट्रेन हादसे की रोकथाम के लिए इससे मिल सकेगी जरूरी जानकारी, जल्द ही 26 ट्रेनों में किया जाएगा ट्रायल। पहले चरण में एक ट्रेन के इंजन में इंस्टॉल किया गया वीडियो सर्वेलांस सिस्टम, कुल 6 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरेज और एक वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स लगाए गए। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में पॉक्सोज जागरूकता अभियान की पहल, स्कूलों में बाल सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य प्रोटोकॉल लागू करेगी दिल्ली सरकार। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा बहाल करने के लिए बेंगलुरु में सेफ फुटपाथ कैंपेन, शहर के 5 नगर निगमों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज से इकलौते टेस्ट मैच की शुरुआत, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा ये मैच। भारत और इंग्लैंड का ये मैच होगा ऐतिहासिक, 142 साल के इतिहास में लॉर्ड्स में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट में अब तक 15 बार आमने सामने हुई भारत और इंग्लैंड की महिला टीम, जिसमें 3 बार भारत जीता है और इंग्लैंड को सिर्फ 1 जीत मिली है, जबकि 11 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे। भारत के 18 वर्षीय युवा टेनिस खिलाड़ी अर्णव पापकर ने रचा इतिहास, विंबलडन जूनियर 2026 में लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अर्णव ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड, 1990 में दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचा फ्रांस, क्वार्टर फाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। रोमांचक हुआ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, कप्तान किलियन एम्बापे ने पहला गोल किया, उस्मान डेम्बेले ने दूसरा गोल कर फ्रांस की जीत पक्की कर दी। एम्बापे के इस टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल हुए, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी की। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, सेमीफाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा मुकाबला। 2022 में फ्रांस ने रोका था मोरक्को का ऐतिहासिक मिशन वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 के अंतर से हराकर फ्रांस ने फाइनल में जगह बनाई। आज रिलीज हो रही है अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, इंद्र कुमार ने डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छाई धमाल 4, एडवांस बुकिंग ने कमाए 1.6 करोड़। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोभ स्टारर कोर्टरूम ड्रामा इक्का कल से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम, चर्चित हत्या केस के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। थिएटर्स में रिलीज होने के ठीक 8 हफ्ते बाद कल फिल्म पति पत्नी और वो का होगा डिजिटल प्रीमियर, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी से सजी है ये फिल्म। के मेनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक आई सामने, एक बदहाल स्कूल में जानेश्वर त्रिपाठी नाम के एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। साउथ एक्टर अखिल अकिनेनी की फिल्म लेनिन भी आज बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक, इसके जरिए एक्टर अखिल 3 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कर रहे हैं वापसी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: खबरें तो आ रही हैं।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है? लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं? कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं? क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है? लालच की वजह से, स्वाद की वजह से आप ज्यादा खा लेते हैं, कभी कभी डिप्रेशन या तनाव में आकर आप ज्यादा खाने लगते हैं। क्यों आती है ज्यादा खाने की आदत और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसको मनाने के, इसका पालन करने के लाभ क्या हैं और किस प्रकार योगिनी एकादशी पर हर पापों का नाश किया जा सकता है, अब जान लेते हैं। दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। क्या है इसका महत्व? देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए, पाप के नाश के लिए विशेष मानी जाती है। योगिनी एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं, तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी पर उपवास रखा जाए और योगिनी एकादशी पर ईमानदारी से साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। पीपल के वृक्ष को काटने पर भी पाप जीवन में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसा भी पाप आपसे हो गया है तो योगिनी एकादशी पर पूजा उपासना करने से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। यानी जीवन में कितने भी तरह के पाप हों, जीवन में कितने भी तरह के दोष हों, अगर आप योगिनी एकादशी पर उपवास रखें और साधना करें तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आप योगिनी एकादशी का पालन करना चाहते हैं या योगिनी एकादशी पर अगर उपवास रखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान विष्णु के
और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके अगर उपवास रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए एकादशी का उपवास रखिएगा। दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या केवल फल ग्रहण करिएगा। जितना संभव होगा भगवान शिव की उपासना करिएगा और कम से कम बोलिएगा, क्रोध मत करिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एकादशी पर भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको लंबी आयु चाहिए तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा एकादशी पर करके प्रार्थना कर सकते हैं। अब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे। एकादशी का उपवास रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर एकादशी पर सुबह और शाम दोनों समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या अगर आप चाहें तो श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर पीपल का एक पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। योगिनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ या भगवद गीता का पाठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पाप नष्ट होंगे, पापों का प्रायश्चित होगा। तो आज हमने बात की योगिनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। एकादशी के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें।
हर एकादशी पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना अच्छा होगा। ऐसा करने से मन पवित्र होगा और पापों का नाश होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
3: दिल्ली NCR में लगातार दो दिन से बारिश का दौर, आज भी भारी बारिश का अनुमान, गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा संख्या। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज, हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसिल इंसुलिन इक्विली भारत में लॉन्च, अब साल भर में 365 की जगह केवल 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे। ट्रेनों में भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल का शुभारंभ किया। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच ऐतिहासिक टेस्ट मैच का आज होगा शुभारंभ, लॉर्ड्स के मैदान पर 142 साल में पहली बार खेला जाएगा महिला टेस्ट मैच। आज रिलीज हो रही अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, एडवांस बुकिंग में 1.6 करोड़ की कमाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता, साहिल देव मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेन्द्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको भी ज्यादा खाने की आदत है तो ये किन कारणवश आपको होती है, और अगर ज्यादा खाने की आदत से आप परेशान हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपकी इस आदत पे सुधार पैदा कर सकते हैं, और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, सब विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र कौन सा है।
5: देखिए, जब भी आप भोजन करते हैं मन को शांत रखिए और खुश होकर आनंद से भोजन करिए। ऐसा करने से, भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर क्रोध में आकर, तनाव में, चिंता में भोजन करेंगे तो ये भोजन आपके शरीर पर विष की तरह, पॉइजन की तरह काम करेगा। इसलिए प्रसन्न होकर, खुश होकर भोजन करिए, अच्छा रहेगा।
4: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
5: दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:16 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 1:15 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:44 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं ज्यादा खाने की आदत के बारे में, तो पंडित जी से सबसे पहला सवाल जो बनता है वो यही है कि पंडित जी, ज्यादा खाने की आदत आती कैसे है या लगती कैसे है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे?
5: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खा करके अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को बिगाड़ते हैं। तो ज्यादा खाने की आदत कैसे आती है? देखिए, ज्यादा खाने का संबंध दो चीजों से होता है। एक आपके पाचन तंत्र से, आपके पेट से, और दूसरा संबंध होता है आपकी जीभ से, आपके जबान से। पाचन तंत्र का संबंध होता है मुख्यतः बृहस्पति से, और स्वाद के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं बुध और शुक्र। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या बुध शुक्र की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों को ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। ज्यादा खाने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग लालच में ज्यादा खाते हैं, कुछ की डाइट ज्यादा होती है, और कुछ लोग दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो भी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुंडली देख करके आप ये बात जान सकते हैं कि क्या आदमी संतुलित खाता है, ज्यादा खाता है या कम खाता है।
4: चलिए, इसी विषय से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से आगे पूछेंगे, आपके प्रश्न भी शामिल करेंगे। अब बारी आती है राशिफल पर आने की, और पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
5: मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि बृहस्पति के कारण खाने की कैसी आदतें लगती हैं?
5: तो मुख्यतः या तो बृहस्पति की वजह से या शुक्र बुध की वजह से खाने की आदत आती है। बृहस्पति कैसे ज्यादा खाने की आदत देता है? बृहस्पति की वजह से अगर बृहस्पति कुंडली में प्रबल हो और थोड़ा सा निगेटिव पार्ट पर हो तो ज्यादा खाने की आदत आती है। और बृहस्पति वाले जो ज्यादा खाना खाते हैं ये खाने की मात्रा पर निर्भर करती है, ये क्वांटिटी में ज्यादा खाना खाते हैं। 10 रोटी 20 रोटी एक थाली चावल यानी क्वांटिटी ऑफ फूड पर ज्यादा जाते हैं। इनका पेट जल्दी भरता ही नहीं है और इनको हर समय भूख लगती रहती है। और जो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं ऐसे लोग ढेर सारा भोजन कई बार करते हैं और वास्तव में ये लोग ज्यादा खाने की वजह से मोटे होते हैं। ये ज्यादा खाते हैं मोटे होते हैं और कमजोर पाचन डाइजेशन इनका कमजोर हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि भाई दो तरह के मोटापे वाले होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बेचारे कुछ नहीं खाते, कम से कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, और एक होते हैं जो खा खा कर मोटे होते हैं। वो खा खा कर मोटे होने वाले लोग दरअसल जुपिटेरियन होते हैं, दरअसल बृहस्पति प्रधान होते हैं।
4: चलिए और भी प्रश्न हैं जो पंडित जी से पूछने हैं। बारी आती है वापस राशिफल पर आने की और कर्क सिंह और कन्या वालों के राशिफल में आज क्या है वो आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे।
5: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: चले इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बारी आती है आपके सवाल और पंडित जी के जवाब की। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है जानते हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न रेखा जी ने हमें लिखा है, और रेखा जी हमें मेल लिखती हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1980, जन्म का समय शाम के 6:30, जन्म का स्थान है बदायूं। मेल लिखती हैं मुजफ्फरनगर से। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, और एक एक करके बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं ने मुझे पकड़ लिया है। तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए? रेखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर दिक्कतें आपके आंखों की और आपके हड्डियों की है। कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर का परामर्श मानिए, दवाइयां समय पर खाइए, सुधार अवश्य होगा। और कुंडली के हिसाब से नवंबर 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का रुख कर लेते हैं, और पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का पंडित जी तक आया है। पंडित जी, जी।
0: अगला प्रश्न श्रीमती विमला जी ने हमें लिखा है, अमृतसर से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म की तारीख है 7 मार्च 1985, जन्म का समय सुबह के 8:20, जन्म स्थान है अमृतसर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा विवाह करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्या मेरे बेटे का विवाह होगा या वो अविवाहित रहेगा, और अगर विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से विवाह तो इनका जरूर होगा, और इनके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह की संभावनाएं कुंडली में बनती हैं। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे, थोड़ा हो सकता है कि लड़की इनसे उम्र में बड़ी हो, डिवोर्सी हो या पहले शादीशुदा रही हो, ऐसी किसी महिला से विवाह करें, ये संभावना इनके लिए बन रही है। वैवाहिक जीवन आपके बेटे का कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और अपने बेटे के नाम से शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए, काफी बेहतर होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सवाल अब ये है कि शुक्र ग्रह के कारण ये बताइए कि कैसी खाने की आदतें आती हैं और उसका हम सब पर प्रभाव कैसा पड़ता है।
0: देखिए, शुक्र और बुध भी ज्यादा खाने की आदत पैदा करते हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। शुक्र और बुध के कारण स्वाद और रस की आदत लग जाती है। टेस्ट, लालच, स्वादिष्ट भोजन, इसकी आदत लगती है और ये आदत अलग अलग खाने के स्वाद पर निर्भर करती है। यानी खाना कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है, उसके हिसाब से ये ज्यादा या कम खाते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वाद और लालच की वजह से ज्यादा खाता है या खाता चला जाता है। बृहस्पति वाले कैसा भी खा लेंगे, स्वाद 19-20 होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन शुक्र बुध वालों को खाना स्वादिष्ट चाहिए। ऐसे लोग स्वाद के बिना खाना नहीं खा सकते, लेकिन अगर खाना स्वादिष्ट है तो बहुत खाएंगे। और बहुत खाने के चक्कर में शुक्र बुध की वजह से मधुमेह की और आंखों की समस्या इनको हो जाती है। शुक्र बुध वाले अगर इनको मीठा अच्छा लग गया तो फिर ये खाते ही जाएंगे, मीठा रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही डायबिटीज हो। खाना स्वादिष्ट लग गया, पेट खराब है, फिर भी खाते जाएंगे, भले बाद में कष्ट उठाना पड़े। इनका जो फोकस है वो स्वाद है और बृहस्पति का जो फोकस है वो क्वांटिटी है।
1: और चलिए इसी के साथ राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल आज कैसा रहेगा वो आपको बता देते हैं।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न है पंडित जी, सवाल यह है कि अगर किसी शख्स को या किसी भी महिला को खाने की बहुत ज्यादा आदत है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो नियंत्रण आखिर किया कैसे जाए वो बताइए।
0: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम अपने खाने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते। खाने की आदत को कैसे नियंत्रित करेंगे? थोड़े थोड़े अंतराल पर, दो दो तीन तीन घंटे पर थोड़ा थोड़ा भोजन करिए। एक साथ ढेर सारा भोजन मत करिए। खाना खाने के बावजूद, पेट भरने के बावजूद अगर आपको भूख ज्यादा लगे तो दाहिने करवट करके लेटिएगा। बहुत सारे लोग रात में खाना खा के सो जाते हैं, फिर 2 बजे आंख खुल गई, फिर कुछ खाने लगेंगे। तो अगर भूख ज्यादा लगती है तो दाहिने करवट करके सोइएगा। भोजन करने के पहले दाहिने हाथ में जरा सा जल लें और उसको भगवान का नाम लेकर, खास तौर से भगवान विष्णु का नाम लेकर पी लें, लाभ होगा। भोजन करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। और अगर खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि ज्यादा खाने का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ, और अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आप दर्शकों का अगला सवाल। पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि कौन सा है पंडित जी अगला सवाल।
0: जी अगला प्रश्न विक्रमादित्य जी ने हमें लिखा है और विक्रमादित्य जी उत्तराखंड से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1979। जन्म का समय 6:15 शाम को टिहरी उत्तराखंड। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि मेरा अपना व्यापार है लेकिन आजकल व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि व्यापार चेंज करके मैं रेजिडेंस के फील्ड में, प्रॉपर्टी के फील्ड में जाऊं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? विक्रमादित्य जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो व्यापार आप कर रहे हैं वो करते रहिए, वो व्यापार आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। व्यापार बदलने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में जाना चाहें, रिजॉर्ट बनवा लें, होटल बनवा लें, मकान बनवा के उसको रेंट पे उठा दें, रेंटल इनकम की तरफ जाएं, तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। और वैसे आपकी कुंडली का जो बेहतर समय है वो अप्रैल 2027 के बाद दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम बुम बुधाय नमः। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ बारी आ गई है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की। दर्शकों का अंतिम सवाल ले लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं कौन सी समस्या पंडित जी तक आई है।
0: जी। आज का अंतिम प्रश्न रचना जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं, और रचना जी ने अपने हाथों की फोटो भेजी है। उसके हिसाब से अपने बारे में जानना चाहती हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कह दिया है, तो क्या मेरा ऑपरेशन होगा और भविष्य में स्वास्थ्य मेरा कैसा रहेगा? उम्र अपनी 45 साल इन्होंने लिखी है। रचना जी, आपकी कुंडली कहती है कि आपके पहले भी ऑपरेशन हुए होंगे। आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि पहले कम से कम 1-2 ऑपरेशन आपके जरूर हुए होंगे और लगभग उम्र के 45-46 साल के आसपास भी, जो समय अभी चल रहा है, उसमें ऑपरेशन होगा। डॉक्टर की बात मानिए, सर्जरी कराइए, उससे आप मुश्किल से बाहर आ जाएंगी। और आने वाले समय में कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सिर्फ इतना करिए कि सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग का पर्स, ये सब आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: चलिए, खाने की आदतों के बारे में तो पंडित जी लगातार आपको बता ही रहे हैं। एक और प्रश्न है जो पंडित जी से पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना पसंद नहीं होता या कम खाते हैं या खाना ही नहीं चाहते, ये किस कारणवश होता है और ऐसा करना सही है या गलत है?
0: जी देखिए, खाना न खाने के लिए आपको दो स्थितियां समझनी है। पहला, बच्चे 12 साल या 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अक्सर उनके माता पिता शिकायत करेंगे कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, फल नहीं खाता, हाँ फास्ट फूड कभी कभी खा लेता है या फास्ट फूड ही खाता है, लेकिन नॉर्मली भोजन करना, चावल दाल रोटी सब्जी अनाज खाना, दूध पीना, फल खाना उसको पसंद नहीं होता है। जब बात बच्चे के खाना न खाने की हो तो वहां पर जिम्मेदारी होती है चंद्रमा की, क्योंकि बच्चे का जीवन पूरी तरह से कंट्रोल होता है चंद्रमा से। तो अगर आपका बच्चा खाने पीने में बहुत नखरे दिखाता है, ना नुकर करता है, नहीं खाता, परेशान कर देता है, दो उपाय करिए, बच्चे के खाने की आदत में सुधार होगा। जब भी बच्चा घर में पानी पिए, आप कोशिश करिए कि वो चांदी के गिलास से पानी पिए, या अगर वो बोतल से पानी पीता है तो बोतल को साफ करके उसमें चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल दीजिए, पानी उसमें बदलते रहिए, भरते रहिए, और वो पानी पीता रहेगा। चंद्रमा अपग्रेड होगा, और चंद्रमा जब अपलिफ्ट होगा तो उसकी बुद्धि भी शांत होगी और खाने पीने की तरफ धीरे धीरे धीरे धीरे उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। ये तो 12 साल वाला हो गया। अब दूसरी उम्र जो लगभग आती है, जैसा देखा गया है, जो आती है 20 साल के बाद, और उस समय खाना ना खाने के कई कारण होते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को दुबला रखना चाहते हैं कि मैं ज्यादा ना खाऊं, कहीं मोटापा ना हो जाए, कहीं ये बीमारी ना हो जाए। तो खाना चाहते हैं लेकिन मोटापे के डर से, बीमारी के डर से अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं और कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम उनको पकड़ लेती है, जो अपने शरीर पर, अपने फीचर पर, अपने मोटापे पे जरूरत से ज़्यादा ध्यान देने की वजह से नहीं खाते हैं। वहाँ होता है बुध, क्योंकि बुध जो है वो आपके शरीर को शेप में लाने का प्रयास करता है। एक तीसरी कैटेगरी होती है कि जो खाना नहीं खाते क्योंकि खाना अच्छा ही नहीं लगता या टाइम नहीं मिलता, एक एक टाइम का खाना गोल कर जाते हैं या खाना कम खाते हैं। ऐसे लोगों के पीछे सैटर्न है, क्योंकि शनि जो है वो कुपोषण पैदा करता है। तो जो लोग लापरवाही में खाना नहीं खाते या खराब आदतों की वजह से खाना नहीं खाते, वहां पर शनि इसके लिए जिम्मेदार है, और ऐसे लोगों को ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह की बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत खाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप कम खाइए। बैलेंस के हिसाब से जितनी आपकी जरूरत है, जितने आपके शरीर को आवश्यकता है, संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण करिए, अच्छा रहेगा। और फिर मैं कहूंगा कि अपने भूख को, अपने डाइजेशन को, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना या पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर वो पानी पीना अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और सूर्य को जल चढ़ाना या सूर्य की रोशनी में सुबह लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट खड़े रहना भी काफी फायदेमंद रहता है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 10 जुलाई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: जन्मदिन 10 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी अब आपको जानकारी देंगे आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: बहुत सारे लोग आजकल अपने घर में, अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाते हैं, तो क्या अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगा सकते हैं? देखिए, दौड़ते हुए घोड़े निरंतरता का, कंटिन्यूटी का प्रतीक हैं, लेकिन ये अत्यधिक मेहनत और संघर्ष का प्रतीक भी हैं। इनको लगाने से जीवन में दौड़ भाग और आपका संघर्ष बढ़ सकता है।
1: पंडित जी से जान लेते हैं 10 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 10 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का ये समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है धनु। इस समय अपने स्वास्थ्य और अपनी पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखिएगा और करियर के मामले में किसी तरह का रिस्क, किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा।

0: संतान के नाम से रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और संतान की शिक्षा में उन्नति की प्रार्थना करिएगा। और ये लाल फूल सुबह पूजा करने के बाद अपने बेटे या बेटी को उनके हाथ में दीजिएगा, वो अपने पढ़ाई की जगह पे ले जाके रखेंगे, अगले दिन पुराना फूल हटा देंगे और नया फूल ले जा करके रख लेंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और बड़ी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।

0: योगिनी एकादशी पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी

0: जो की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: योगिनी एकादशी पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: देश भर में बारिश हो रही है और मॉनसून की मेहरबानी तो हुई ही है, लेकिन इस दौरान हो रही बारिश में आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मॉनसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों से कैसे अपना बचाव करें।
11: प्रिवेंशन, मैं कहूंगा कि प्रिवेंशन ही तरीका है। हमें पता है कि ये सारी बीमारियां हैं पानी के थ्रू ही फैलती है, चाहे वो टाइफाइड हो, अगर साफ सुथरा खाना या पानी आप नहीं पी रहे हैं तो उसके थ्रू फैल सकता है। जो जितने तरह के डायरिया होते हैं, अगर आप अपने हाथ का हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ पानी नहीं पीते, साफ खाना नहीं खाते हैं, मक्खियां आपके घर में ज्यादा हैं, खुले आप खाना आप खुले माहौल में रखते हैं जिसपे मक्खियां बैठी, ऐसे सिचुएशन में ये बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो चाहे हेपेटाइटिस ए हो, ई हो, टाइफॉइड हो, कॉलरा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जो डायरिया होते हैं वो हो, ये सब कुछ जो है आपके हाइजीन से लिंक्ड है। जो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां होती हैं जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब मच्छरों को अगर आप पनपने से रोक सकते हैं तो ये बीमारियां आपको नहीं होगी। तो हर सीजन में हमें पता है कि हम बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, उसमें मच्छर होंगे, हमारा पीने का पानी कॉन्टेमिनेट होगा, हमारा खाना कॉन्टेमिनेट हो सकता है, और इन्हीं चीजों के थ्रू ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारी प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं। तो अगर आप हाइजीन का ध्यान रखें, आपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर न पनपने दें, मक्खियों को आप अपने घर में ना आने दें, खाने को ढक के रखें, साफ सुथरा पानी पिए, तो अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन जो अपने घर में रख सकते हैं वो एक प्रिवेंशन का तरीका। अगर आप ये जो जिसकी भी मैंने बात की कि साफ सुथरा रखें घर को, पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों को ना पनप दें, साफ पानी पिए, तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बीमार पड़ गए ध्यान रखने के बावजूद, तो पहले 72 घंटे तक आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं। पैरासिटामोल जो है बुखार के लिए, अपने हाइड्रेशन ठीक रखें, आप अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। कोई भी वार्निंग साइन हो, जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, नौजिया हो रहा है, पेशेंट का बीपी नीचे जा रहा है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ कोई लोग हो, कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो, कोई छोटा बच्चा हो, ऐसे लोगों में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर 72 घंटे से ज्यादा अगर बीमारी परसिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से मिले, जो भी रेलिवेंट टेस्ट है डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे एडवाइस करेगा और उसके हिसाब से ट्रीट करेगा। मैं कहूंगा कि 24 घंटे के बुखार में आप सीधा एंटीबायोटिक हम शुरू करने की जो टेंडेंसी है वो अवॉइड करें। यूजुअली ये बीमारियां जो होती है मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां होंगी, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे आपका मलेरिया हो गया, टाइफॉइड होगा, इन सब में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बाकी डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां जो है सेल्फ लिमिटिंग होती है, जिसमें सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है।
10: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
12: बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी की ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल है। बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की कुर्सी से, लेकिन जब कुर्सी हटा ली गई तब भी एक बच्चा गिरा तक नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जाहिर है इस एक्टिविटी के साथ बच्चे साथियों के लिए समर्पण और सहयोग और कर्तव्य की सीख ले रहे हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्ची किसी बात पर पिता से रूठ गई है और शायद जब तक मनाया नहीं जाएगा वो मानेगी नहीं, और पिता जैसे ही मनाने का एक स्टेप लेते हैं बिटिया का गुस्सा उड़न छू हो जाता है। वायरल वीडियो की ये तस्वीरें सबको लुभा रही है और लगभग सभी यूजर्स इस बच्ची को देख यही कह रहे हैं कि उम्र का कोई मतलब नहीं। हर औरत की यही कहानी होती है, रूठती है और मनाने पर तुरंत मान जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी है। बुजुर्ग दादी अमरनाथ यात्रा पर निकली है और उनकी इस दुर्गम रास्ते की चढ़ाई की तस्वीरें चर्चा में है। लोग उनकी आस्था देखकर प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं आस्था उम्र की मोहताज नहीं होती। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां कठिन से कठिन मार्ग भी आसान लगता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति दिखावे, रीलों और तस्वीरों से नहीं होती, बल्कि समर्पण, विश्वास और साधना से पहचानी जाती है, जो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें हौसला बढ़ाती हैं। खुद ही देखिए, बच्चों संग वो शख्स भी दौड़ में शामिल हुआ है जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसकी दौड़ की तस्वीर उसके जुनून, उसकी हिम्मत और उसकी लगन का परिचय दे रही है। ये तस्वीरें बचपन की उस कहानी की याद पुख्ता करती हैं, जिनमें दुनिया में सबसे तेज वो इंसान दौड़ता है जिसके दोनों पैर नहीं थे। आज इन तस्वीरों ने कहानी को हकीकत का जामा पहना दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस शख्स के जज्बे का मुरीद बन गया है। बारिश के मौसम की ये तस्वीरें कुल्लू की है, जहां नदी अपने रौद्र रूप में है, और यहां रहने वाली ये महिला नदी माता को आटा समर्पित कर प्रार्थना कर रही है कि वो शांत हो जाए और इन सब की रक्षा करे। नदियों के तट पर बसे इलाकों में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है, और इसीलिए बाढ़ बारिश में लोग नदियों की पूजा कर उनसे शांत रहने की गुहार लगाते हैं। इन महिलाओं के इस अटूट विश्वास को लोग नमन कर रहे हैं।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बिग बैश लीग के ओपनिंग मैच के भारत में खेले जाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐलान से अब इस बार आधिकारिक मोहर लग गई है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी साथ में मौजूद रहे। स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इसके साथ ही मैस्कॉट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। बिग बैश लीग का पहला मैच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले स्टेडियम का निरीक्षण भी किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर यह पहल काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
13: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
14: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
10: मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, मैस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर, पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का भी ऐलान किया। दिल्ली NCR में लगातार दो दिनों से बारिश का दौर जारी, आज भी भारी बारिश का अनुमान, गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी के आदेश। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा संख्या। पुणे में गूंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां, सुरक्षा और सुविधा का किया गया विशेष इस्तेमाल। मच अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म धमाल 4 सिनेमाघरों में रिलीज, एडवांस बुकिंग में ही की 1,06,00,000 रुपए की कमाई, अजय देवगन रितेश देशमुख निभा रहे हैं मुख्य किरदार। जेनेवा AI समिट में डिजिटल दुनिया की अनोखी झलक, अब इंसानों की तरह रोबोट भी अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए आएंगे नजर, कई और हाईटेक रोबोट सुविधाएं आई नजर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
18: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट,
10: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
19: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: और शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून के साथ करते हैं, देश में मॉनसून अब पूरी तरह से दस्तक दे चुका है, कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं पहाड़ों पर प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर रही है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम सुहाना बना हुआ है और आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। इस बीच हिमालय की वादियों में बादलों ने ऐसा डेरा डाला है कि लगता है मानो आसमान खुद धरती पर उतर आया हो, तो प्रकृति की ये मनमोहक तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे।
19: 3 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा अब पूरे शबाब पर है, यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं की रौनक है, यहां आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का आलम यह है कि खराब मौसम के बावजूद 1 हफ्ते के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, तो इसके बारे में भी विस्तार से होगी बात।
10: तो सावन आने वाला है और उसके साथ ही देवघर समेत देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज होगा। लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम भी सज रहा है, मंदिर निखर रहा है और पूरा शहर बोल बम के जय घोष के लिए तैयार हो चुका है। तो वहां की तस्वीरें भी जल्द होंगी आपके सामने।
19: आज फिल्मी फ्राइडे भी है और आज अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 भी रिलीज होगी। और कौन सी फिल्में आज बड़े पर्दे पर होंगी इसके बारे में भी आगे बात होगी।
10: तो भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान पर 142 बरसों में पहली बार महिला टेस्ट मैच होगा। इसको लेकर भी आगे क्या है तैयारियां आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
19: उत्तर भारत में मॉनसून पूरी तरह मेहरबान है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। लगातार बारिश के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 12 जुलाई तक ऐसे ही बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम खुशनुमा होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो मानसून में बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बादलों की चादर में लिपटा धाम श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता और यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रख रहा है।
19: अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 1,45,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा है। यात्रा से बालटाल में टेंट, घोड़ा, सेवा, लंगर और दुकानों से जुड़े हुए हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। स्थानीय परिवारों के लिए ये सीजन कमाई का सबसे बड़ा सहारा बन गया है।
10: तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर परिसर में रंगाई, पुताई और मरम्मत का काम चल रहा है। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। करीब 50 लाख कांवड़िए सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर पैदल चलकर गंगाजल बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करेंगे। मेले के दौरान स्पर्श और वीआईपी पूजा पर रोक रहेगी।
19: अकोला में भक्ति और आधुनिक तकनीक का शानदार संगम देखने को मिल रहा है। 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा श्री जगन्नाथ का भव्य रथ लगभग तैयार है और इसे बनाने में करीब 1 साल की मेहनत लगी है। 19 जुलाई को इस्कॉन की ओर से इसी रथ पर ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी।
10: देश में डायबिटीज के करोड़ों मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब रोज रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की परेशानी कम हो सकती है। भारत में एवेक्ली नाम का ऐसा बेसल इंसुलिन लॉन्च किया है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा, यानी साल में 365 नहीं सिर्फ 52 इंजेक्शन की जरूरत आपको पड़ेगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बेसल इंसुलिन को डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने बनाया है।
19: अब ट्रेनों में भी विमान के ब्लैक बॉक्स जैसी हाईटेक निगरानी होगी। मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया है। इंजन में 6 हाई रेजोल्यूशन कैमरे और एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है ताकि हादसे की स्थिति में जरूरी जानकारी मिल सके और जल्दी 26 ट्रेनों में इसका ट्रायल किया जाएगा।
10: तो वहीं बिहार से दो बड़ी खुशखबरी। पहली, राज्य के करीब 98 लाख पेंशन धारकों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर महीने की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते मिलेगी। वहीं दूसरी राहत वाली खबर यह है कि बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों में सफर करने वालों के लिए रेलवे ने 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ा दिया है। इससे दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया समेत कई रूटों पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
19: अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा सोम स्टारर फिल्म इक्का आज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। फिल्म की कहानी एक चर्चित हत्या केस के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कोर्ट में सच और झूठ की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

तो शुभ समाचार में अब बात कूल कूल मौसम की कर लेते हैं। देश भर में मॉनसून अब पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं पहाड़ों पर प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर रही है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम सुहाना बना हुआ है और आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं हिमालय की वादियों में बादलों ने ऐसा डेरा डाला है कि लगता है मानो आसमान खुद धरती पर उतर आया हो। शिमला का मॉल रोड बादलों और कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जहां सैलानी इस दिलकश मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आए। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर के पीछे बादलों ने प्रकृति की ऐसी अद्भुत आकृति बनाई है जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मॉनसून की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश सिर्फ बूंदे ही नहीं लाती बल्कि प्रकृति अपने साथ लेकर आती है सबसे मनमोहक रूप भी लेकर आती है। तो वहीं मॉनसून में कुदरत की खूबसूरती निहारने वालों के लिए शिमला इस वक्त शानदार डेस्टिनेशन बना हुआ है। शिमला में मौसम पूरी तरह से खुशनुमा बना हुआ है। आसमान पर घने बादलों की ज्यादा छाई हुई है और पहाड़ों के बीच तैरते बादल पूरे शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ठंडी हवाएं और बादलों का ये मनमोहक नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया है तो कोई दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों में सुकून के पल बिताने के लिए यहां पहुंचा है।

0: पहाड़ों के बीच से गुजरते बादल, हरियाली से ढकी वादियां और धुंध में लिपटे हुए नजारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पर्यटक इस खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कोई बादलों के बीच सेल्फी ले रहा है तो कोई इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। शिमला का यह सुहावना मौसम न सिर्फ स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है बल्कि पर्यटन कारोबार में भी नई रौनक लेकर आया है।
1: बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। बादल देखो ऊपर हमारे साथ में, कितना अच्छा व्यू है। वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी और निकले थे हम, तो सोचा हम शिमले चलेंगे, तो बहुत अच्छा यहाँ का मौसम, बहुत अच्छा वेदर रहा। हम 2-3 दिन बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया।
2: पूरी फैमिली आई है साथ में और हम हिमाचल शिमले में पूरी फैमिली को फर्स्ट टाइम लेकर आए हूँ। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा मौसम है। वहाँ पे थोड़ी सी चिपचिपी गर्मी है चंडीगढ़ में, तो एकदम से हमारा प्लान बना कि हम शिमला फर्स्ट टाइम। फैमिली बहुत हैप्पी है और मैं इतना खुश हूँ कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि हम इधर आके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत है कि जन्नत में आ गए हो जैसे।
3: हम आए थे वहाँ पे बारिश हो रही थी, पर जो मौसम अभी यहाँ देखने को मिल रहा है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: तो मानसून ने कश्मीर की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा दिए हैं। डल झील पर तैरते शिकारी, पहाड़ों को छूते बादल और ठंडी हवाएं हर सैलानी का दिल जीत रही हैं। कोई शिकारे की सैर का आनंद ले रहा है तो कोई झील के किनारे इस सुहाने मौसम को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। बारिश और बादलों ने वादी को और भी ज्यादा हसीन बना दिया है। यही वजह है कि कश्मीर में इन दिनों सुकून, उमंग और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो देखिए कश्मीर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। वैसे तो जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, लेकिन उस पर जो मौसम है उसने 4 चांद लगा दिए हैं, सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। और ये तस्वीरें आप देखिए डल झील की, जहां शिकारे पर पर्यटक जो हैं वो लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, शिकारा राइड करते हुए नजर आ रहे हैं और सैलानियों को भी ये मौसम बेहद ज्यादा भा रहा है। पहाड़ों पर इस वक्त मौसम जो है वो बेहद सुहाना हो चुका है। बारिश के बाद जो हल्की ठंडक है, खिली खिली सी धूप है, वो पर्यटकों को बेहद पसंद आ रही है। तो लगभग पूरे देश में मॉनसून दस्तक दे चुका है। अगले 1-2 दिन उत्तर भारत में नॉनस्टॉप मॉनसून का असर देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
4: तो कल भी हल्की बारिश का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है।
0: मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राजधानी में बादल छाए रहने का अनुमान है।
4: तो यूपी की बात करें तो यहां के हालात भी जुदा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मानसूनी फुहारों का असर दिख रहा है। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हैं, खासकर मध्य और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश के आसार हैं।
0: तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बेशक हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की वादियां बादल और बारिश के बाद खिल उठी हैं,
4: लेकिन लोगों को लगातार बारिश की वजह से कुछ दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
0: तो वहीं देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी में बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
4: तो 13 जुलाई तक लोगों को मौसम के सख्त रुख को लेकर आगाह किया गया है और सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। वहीं बिहार का ज्यादातर हिस्सा मानसूनी फुहारों से सराबोर है। यहाँ के मौसम की अगर अब बात करें तो यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है।
0: तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। राजधानी पटना में तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है।
4: तो देशभर में मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लंबे इंतजार के बाद लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है। आज के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पश्चिम यूपी के लिए भी आज रेड अलर्ट है।
5: ये तस्वीर बता रही है कि मानसून अब पूरे भारत पर छा चुका है। यही वजह है कि पूरा भारत बारिश से तरबतर है। कहीं बारिश राहत लेकर आई है तो कहीं बादल जिंदगी का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि जुलाई के शुरुआती 9 दिनों में देश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
6: मानसून ऑलमोस्ट जो राजस्थान के हिस्से कुछ बचे हुए थे, कुछ पंजाब के और हरियाणा के हिस्से बचे हुए थे, तो मानसून आज पूरा इंडिया कवर कर चुका है। उसका रीज़न क्या है कि एक पहले लो प्रेशर एरिया पिछले कुछ दिन पहले बना था बे ऑफ बंगाल में, स्लोली जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करता रहा, इंटेंसीफाई हुआ, डिप्रेशन बना, और आज की डेट में जो वो है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है वो साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग एरिया में है। कल नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में था, जिसके प्रभाव से जो सीजनल ट्रफ है जहाँ मानसून ट्रफ है वो भी नियर नॉर्मल था, जिसके कारण NCR इवन पूरा रीजन वेस्ट UP उत्तराखंड वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रहा, NCR में भी वेरी हैवी रेनफॉल रहा।
5: अगर दिल्ली NCR की बात करें तो गुरुवार को बरसे बादलों ने मानसून के देर से आने की सारी कसर पूरी कर दी है। कल सुबह से लेकर शाम तक बादल बरसते रहे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के सफदरजंग में 72.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज भी दिल्ली पर दिन भर बादलों का डेरा रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर भारी बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम कूल बना हुआ है। यूपी में भी मन भर मानसून बरस रहा है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बरेली, पीलीभीत, संभल और बदायूं के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। खराब मौसम की आशंका के चलते गाजियाबाद में आज नर्सरी के अलावा क्लास 1 से क्लास 12 तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में भी प्रशासन ने एहतियातन आज प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आज भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यही वजह है कि हरिद्वार में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एहतियातन बंद रखे गए हैं। देहरादून में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, लिहाजा यहां भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत और चमोली में भी स्कूलों को बंद रखा गया है। मानसून पूरे भारत पर मेहरबान जरूर है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में ये बारिश बड़ी मुसीबत की वजह भी बनी हुई है। ऐसे में किसी भी आपदा से निपटने के लिए NDRF की तैयारी पूरी है। देश भर में 91 NDRF टीमें पहले से ही तैनात हैं। NDRF गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों पर नजर बनाए हुए हैं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। गुजरात में NDRF की 13 टीमें तैनात हैं, तो महाराष्ट्र में 15 और केरल में 9 टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में NDRF की 13 टीमें मौजूद हैं, जिनमें 7 टीमें श्री अमरनाथ यात्रा के बेस और ट्रांजिट कैंपों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो हिमालय की वादियों में मानसून का हर नजारा अलौकिक नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के ऊपर और पीछे बादलों ने डेरा डाला हुआ है और देखने में लगता है मानो देवभूमि को प्रकृति ने अपनी सफेद चादर में लपेट लिया हो। कभी बादल मंदिर के शिखर को छूते हुए नजर आते हैं तो कभी पहाड़ों के बीच अनोखी आकृतियां बनाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। आस्था और प्रकृति का यह अद्भुत संगम है। ये मौसम हर किसी को ठहर कर इन नजारों को निहारने पर मजबूर कर रहा है। इस मौसम में भक्त बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ कम होने से उन्हें आसानी से दर्शन का लाभ भी मिल रहा है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर मौसम सुहावना बना हुआ है, बारिश भी हुई है और इसी बीच लोग यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश भी लोगों के लिए यहां पर कोई बड़ी चुनौती बनती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी रेड अलर्ट जारी हो चुका है।

0: और पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश से प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है, जोश हाई है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद में थोड़ी कमी आई है लेकिन धामों में रौनक बरकरार है। इस बीच मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
1: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं। भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
2: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
0: तीन जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं की रौनक है। यहां आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का आलम यह है कि खराब मौसम के बावजूद एक हफ्ते के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
1: मानसून की चुनौतियों के बीच श्री अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। चाहे बालटाल हो या पहलगाम, दोनों ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की रौनक है। आस्था का आलम यह है कि यात्रा शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़कर करीब 1.5 लाख तक पहुंच गया है। अब तक करीब 1,45,000 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 30% ज्यादा है। ये हाल तब है जब हिमलिंग पिघल चुका है, बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं और पहाड़ों में बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, सब पर भारी है बाबा बर्फानी में श्रद्धालुओं की आस्था, जो हर रोज नए आंकड़े के साथ लोगों को हैरान कर रही है। और श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा न सिर्फ सनातन धर्म में लोगों की आस्था का पता बता रहा है बल्कि देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाली हूँ, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाली हूँ, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाली हूँ, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हूँ, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हूँ या फिर होटल कारोबारी, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद से सबके चेहरे खिले हुए हैं।
3: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
4: जी जी,
3: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग।
5: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
3: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
5: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है, और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
1: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है, तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
6: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग, चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
3: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं, ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
6: बहुत अहम होते हैं, बहुत, हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा हमारा
3: जी। साथ में ये भी है कि इसमें कमाई अपनी जगह, लेकिन हाँ जी, कश्मीर मेहमान नवाजी,
6: कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है, और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
1: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों की आजीविका का साधन रही है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए फिल्मी फ्राइडे पर धमाल।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: मिर्ची पर क्या करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? क्या होगा योगिनी एकादशी का विधान और योगिनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, मॉस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर, पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का भी किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिन से बारिश का दौर अब भी जारी, वर्षा का अनुमान, तो वहीं गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा संख्या। पुणे में गूंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां, सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। मच अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म धमाल 4 सिनेमाघरों में रिलीज, एडवांस बुकिंग में ही 1,06,00,000 रुपए की कमाई की, अजय देवगन नितेश देशमुख निभा रहे हैं मुख्य किरदार। जिनेवा एआई समिट में डिजिटल दुनिया की अनोखी झलक, अब इंसानों की तरह रोबोट भी अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए आएंगे नजर, कई और हाईटेक रोबोट सुविधाएं दिखी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं सिनेमा की दुनिया में, जहां आज मनोरंजन जगत में काफी कुछ है। आज कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए धमाल आई है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के साथ रवि किशन, संजय मिश्रा जैसे दिग्गज हंसी का ओवरडोज लेकर आए हैं। मतलब इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज धमाल 4 है, जो इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। और इसी के साथ अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा स्टारर कोर्टरूम ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वहीं बच्चों के लिए डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मोआना भी आई है। फिल्म में कैथरीना लगाइया मोआना के किरदार में नजर आएंगी, जबकि ड्वेन जॉनसन एक बार फिर से माउई की भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं।
1: और चलिए अब आपको फिल्मी सफर पर लिए चलते हैं। जिक्र रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का करते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही रामायण का ट्रेलर 18 जुलाई को भारत मंडपम में रिलीज किया जाएगा, जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर समेत रणबीर कपूर, साई पल्लवी और फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट भी शामिल होगी।
2: जुलाई इस तारीख को नोट कर लीजिए। क्योंकि इस तारीख को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही रामायण का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। अब तक टीजर में राम का दमदार अंदाज दिखा है, रावण की हल्की सी झलक दिखी है और अब ट्रेलर में रामायण पार्ट 1 के विस्तार में झलक दिखेगी। ट्रेलर लॉन्च के लिए रामायण के मेकर्स ने भव्य इवेंट प्लान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण पार्ट 1 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर शामिल होंगे। हालांकि रावण का किरदार निभा रहे यश और हनुमान बने सनी देओल के शामिल होने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मेकर्स इस फिल्म की मदद से इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इसलिए भी भारत में ट्रेलर रिलीज के 4 दिन पहले इसे अमेरिका में लॉन्च करने की प्लानिंग है। मुमकिन है 14 जुलाई को अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक भव्य इवेंट में रामायण पार्ट 1 का फुल ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही मेकर्स इसका फुल स्केल प्रमोशन कैंपेन शुरू कर देंगे, यानी फिल्म की रिलीज से करीब 3.5 महीने पहले, क्योंकि फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में जहां ट्रेलर को फिल्म के रिलीज से 2 हफ्ते पहले लॉन्च करने का ट्रेंड चल

0: पे बताया जा रहा है। महाकाव्य की तरह ही रामायण का कैनवस काफी विशाल है। रामायण में हाई ऑक्टेन विजुअल्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जो बड़े पर्दे पर इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों, तकनीकों और इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है रामायण के मेकर्स का पूरा जोर इस पौराणिक गाथा को भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराना है और इसके लिए ना तो तकनीक आड़े आई है और ना बजट। उम्मीद है कि रामायण पौराणिक कथाओं को लेकर भारतीय सिनेमा के नजरिए को फिर से प्रभाषित करेगी। फिलहाल तो इंतजार इसके ट्रेलर का है। रिपोर्ट न्यूज टुडे।
1: ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ऑस्ट्रेलिया दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान पीएम मोदी ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों और यहां के लोगों से घुलते मिलते हुए नजर आए। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बिग बैश लीग कराने का ऐलान भी किया। ये पहला मौका है जब भारत बिग बैश लीग को होस्ट करने जा रहा है। बिग बैश लीग का मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में भारत अहम भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2036 में भारत में ओलंपिक गेम्स आयोजित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
2: में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
1: और क्रिकेट के ही मैदान से एक और गुड न्यूज ये है कि भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान पर 142 सालों में पहली बार महिला टेस्ट मैच होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 से शुरू होगा। ये महिला क्रिकेट इतिहास का 193वां टेस्ट मैच होगा। भारतीय टीम 1995 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं हारी है।

कल्पना कीजिए एक ऐसा सफर जहां फिल्म सिर्फ पर्दे पर दिखाई नहीं देती बल्कि हर पल आपके आसपास महसूस होती है, जहां बारिश की बूंदें चेहरे को छूती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जमीन हिलती हुई महसूस होती है और हर नजारे आपको कहानी का हिस्सा बना देते हैं। और ऐसे ही अनोखे अनुभव अब इंदौर के चिड़ियाघर में लोगों को देखने को मिलने जा रहा है। आपको बता दें, इंदौर में देश का दूसरा अत्याधुनिक 14D थिएटर तैयार किया गया है, जो मनोरंजन के साथ प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी देगा। थिएटर का प्रवेश द्वार विशाल गोरिल्ला के चेहरे की थीम पर बनाया गया है, जबकि एग्जिट गेट हाथी की आकृति में तैयार किया गया है। करीब 20 मिनट की फिल्म में डिजिटल जंगल सफारी और आधुनिक तकनीक के जरिए दर्शकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा। चलती सीटें, पानी की फुहार, हवा, कोहरा, कंपन और अन्य इफेक्ट्स इस सफर को बिल्कुल वास्तविक बना देंगे। इंदौर का ये 14D थिएटर शहर के पर्यटन आकर्षण की नई पहचान जोड़ने जा रहा है। जन्मदिन तो आपने इंसानों को मनाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं जिनके जन्मदिन का जश्न देखने के लिए सैकड़ों लोग जुट गए। केक भी खास, गिफ्ट भी खास और अंदाज भी बिल्कुल अनोखा। चाइना के डालियान फॉरेस्ट जू में

0: इंटरनेट सेंसेशन बन चुके जायंट पांडा जिन हू ने अपना 16वां जन्मदिन कैसे मनाया आप भी देखिए।
1: शानदार सजावट, खास तरीके का ड्रम और बेहद लजीज केक, ये जश्न है जायंट पांडा जिन्हू के 16वें जन्मदिन का। चीन के डालियान फॉरेस्ट जू में जैसे ही जिन्हू के बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई, पूरा माहौल जश्न में बदल गया। पांडा को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर बांस और मजबूत लकड़ी से बना एक आकर्षक ड्रम सेट भेंट किया गया। इस ड्रम सेट की सबसे खास बात यह है कि इसके ड्रम हेड पर जिन्हू की तस्वीर उकेरी गई थी। पांडा को ये गिफ्ट इतना पसंद आया कि वो इस अनोखे तोहफे के साथ खेलने लगा। केवल गिफ्ट ही नहीं, जिन्हू के लिए 2 मंजिला खास आइस केक भी तैयार किया गया। फलों, सब्जियों, बांस की कोपलों और स्टीम्ड कॉर्न ब्रेड से सजे इस केक पर बर्फ से उकेरा गया 16 का अंक, जो जायंट पांडा की उम्र की खूबसूरत कहानी बयां कर रहा था। जिन्होंने बड़े चाव से अपने पसंदीदा फलों का स्वाद लिया। इस खास मौके पर चिड़ियाघर पहुंचे पर्यटकों ने भी जन्मदिन की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने केक काटने की खुशी साझा की, एक दूसरे को बधाइयां दी और अपने पसंदीदा पांडा के साथ इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली में नॉर्वे के दूतावास में, जहां नॉर्वे के ऐतिहासिक फीफा वर्ल्ड कप अभियान का जश्न मनाया गया। दरअसल नॉर्वे की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, ऐसे में दूतावास के सभी कर्मचारी अपनी टीम की जर्सी में नजर आए। इस जश्न में भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर भी मौजूद रही। तो ये तस्वीरें देखिए, ये नॉर्वे दूतावास की, जहां सभी जश्न मनाते नजर आए और जर्सी पहने हुए नजर आए। दरअसल नॉर्वे की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है और ऐसे में दूतावास के सभी कर्मचारी अपनी टीम की जर्सी में नजर आए, हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और जश्न में भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर भी उनके साथ मौजूद रही। और भारत में डायबिटीज के इलाज में एक बड़ी क्रांति आई है। डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने देश में दुनिया का पहला, हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन आविकली लॉन्च किया है। इस नई दवा से मरीजों को साल भर में 365 की जगह सिर्फ 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे, जिससे इलाज और आसान होगा। ऐसे समय में जब भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इस लॉन्च को इलाज के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है।
3: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में अवेकली को लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी बेसल इंसुलिन है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा, यानी अब रोजाना इंजेक्शन लगाने के बजाय साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन ही डायबिटीज से लड़ने के लिए काफी होंगे।
4: देखिए, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसको तो टाइप 2 डायबिटीज है और मोस्टली वो लाइफस्टाइल से होती है या आपके जो जीन्स है उसकी वजह से होती है और या जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि वो लोग जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार टीका लगाना हर रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो ये इंसुलिन का जो टीका है सप्ताह में सिर्फ एक बार लगाना है, यानी 365 दिन की जगह आपको सिर्फ 52 वीक्स, दैट मीन्स 52 टाइम्स, 52 बार ये टीका लगाना है। ये बहुत कम जो है पेन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है।
3: कंपनी का दावा है कि भारत में कई मरीज रोज इंजेक्शन लगाने के डर की वजह से इंसुलिन शुरू करने में 7 से 9 साल तक की देरी कर देते हैं, लेकिन ये वीकली इंसुलिन इस डर को कम करने और इलाज को आसान बनाने में मदद करेगी। ये दवा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए लॉन्च की गई है। भारत में अवीकली का 700 यूनिट का पैक 2611 रुपए में मिलेगा, यानी प्रति यूनिट कीमत करीब 3.73 रुपए होगी, जो कंपनी के मुताबिक मौजूदा डेली बेसल इंसुलिन की तुलना में 30-40% तक सस्ती है। अगर किसी मरीज को रोज 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है तो उसे सप्ताह में 70 यूनिट अवीकली लेनी होगी, जिसकी लागत करीब 261 रुपए प्रति सप्ताह होगी।
4: ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया की प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, विच इज फार मोर चीपर इकोनॉमिकल, जो कि आज के मॉडर्न इंसुलिन है। 3.73 रुपीज, यानी 3.73 रुपया पर यूनिट, ये इसकी कॉस्ट रहेगी 2611 रुपए एक पेन का, जिसमें 700 यूनिट होंगे। तो ये बहुत ही उम्दा दवाई है और सस्ती दवाई है, बट डॉक्टर इज द राइट पर्सन टू प्रिस्क्राइब, और डॉक्टर व्हेन दे वांट टू इनिशिएट, दैट इज वेयर यू शुड यूज देयर एडवाइस।
3: ये इंसुलिन मरीज को फ्लेक्स टच पेन के जरिए दी जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल में इसने रोजाना लगने वाले इंसुलिन के बराबर या उससे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करके दिखाया है। कंपनी का कहना है कि अवीकली को इसी साल शुरुआत में अमेरिका से मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूरोपीय संघ और तमाम दूसरे देशों में भी हरी झंडी मिल चुकी है। भारत 7वां देश है जहां इस दवा को लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब खबर फुटबॉल जगत से। फ्रांस ने 2026 फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री हासिल की। फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन मबापे ने पेनल्टी आग के बाईं ओर से 60वें मिनट में गोल दागा और फ्रांस की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी है। आपको बता दें, इस जीत के बाद फ्रांस के फैंस ने बॉस्टन स्टेडियम के बाहर जबरदस्त जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि मोरक्को के फैंस के बीच काफी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी है। मोरक्को टूर्नामेंट से बाहर होने वाली आखिरी अफ्रीकी टीम बनी है।
2: सावन आने वाला है और उसी के साथ देवघर में शुरू होने जा रहा है आस्था का सबसे बड़ा महापर्व। 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज होगा। लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम सज रहा है, मंदिर निखर रहा है और पूरा शहर बोलबम के जय घोष के लिए तैयार हो रहा है।
1: देवघर जो बाबा का धाम है, जहां सावन का हर दिन शिवमय हो जाता है, वही बैद्यनाथ धाम एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर कोना सजाया जा रहा है ताकि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता का एहसास हो।
5: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन की तैयारी 30 जुलाई से है, जो प्रशासनिक तैयारी है। वैसे बाबा बैद्यनाथ की प्राचीन परंपरा 16 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। 17 जुलाई से मंगला सावन, जो यहाँ के मंदिर की परंपरा है, वो 17 जुलाई से उसमें बेलपत्र आदि सस्ता है और मंदिर का पट जो है भीड़ नहीं रहने के बाद भी 8 बजे रात तक बेलपत्र चलने के बाद बंद होता है।
1: 30 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला पूरे एक महीने तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में स्पर्श पूजा और वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। श्रावणी मेले में देश के अलग अलग राज्यों से 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
6: मूलतः 30 जुलाई से एक महीने के लिए राखी पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा से राखी पूर्णिमा तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निषेध है और वहां अर्घा से जलार्पण।
1: श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों के रूट का निरीक्षण किया, साथ ही मेले के दौरान एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की जाएगी।
7: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज्यादा डेपुटेशन होती है, बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है।
1: मंदिर सज चुका है, तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब इंतजार है 30 जुलाई का,
8: जब बोल बम के जय घोष के बीच आस्था की अनवरत धारा एक बार फिर देवघर पहुंचेगी। करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा, सेवा और विश्वास का ये महापर्व एक बार फिर बाबा बैद्यनाथ की नगरी को शिवमय बना देगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब बात करते हैं इंस्टा स्टोरी की, जिसमें आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए कृष्णा अभिषेक की फनी इंस्टा स्टोरी।
9: भाई यार, कब से वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ कि वेट लॉस हो जाए।
10: आपका दिनचर्या कैसा होता है, मतलब करते क्या हो सारा दिन?
9: भाई देखो, सुबह सुबह देखो 9 बजे एक तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, पोहा उपमा कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद 2 बजे लंच करता हूँ, 5 रोटी दाल सब्जी कुछ खा लेता हूँ। शाम को उपमा या पोहा जो बच जाता है वो शाम को खा लेता हूँ, रात को 9 बजे अपना डिनर हो जाता है।
10: बहुत सिंपल है, आपको साइकिल ब्रेक करनी है।
0: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
11: खबरें
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
0: श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और चढ़ावे के सिस्टम में होंगे बदलाव। 22 जुलाई को ट्रस्ट बैठक में नए सदस्यों का किया जाएगा चयन, सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली में भी होंगे सुधार। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, मस्कट के साथ खिंचवाई तस्वीर। पहली बार बिग बैश लीग के बैच में भारत का में होने का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिनों से बारिश का दौर जारी, आज भी भारी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा संख्या। पुणे में गूंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां, सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। मच अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म धमाल 4 सिनेमा घरों में रिलीज, तो वहीं एडवांस बुकिंग में ही की 1,06,00,000 रुपए की कमाई। अजय देवगन नितेश देशमुख निभा रहे हैं मुख्य किरदार। जेनेवा एआई समिट में डिजिटल दुनिया की अनोखी झलक, अब इंसानों की तरह रोबोट भी अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए आएंगे नजर, कई और हाईटेक रोबोट सुविधाएं आई नजर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसको मनाने के, इसका पालन करने के लाभ क्या हैं और किस प्रकार योगिनी एकादशी पर हर पापों का नाश किया जा सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:16 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 1:15 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:44 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। क्या है इसका महत्व? देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए, पाप के नाश के लिए विशेष मानी जाती है। योगिनी एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं, तो इससे पापों का प्रायश्चित होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी पर उपवास रखा जाए और योगिनी एकादशी पर ईमानदारी से साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। पीपल के वृक्ष को काटने पर भी पाप जीवन में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसा भी पाप आपसे हो गया है तो योगिनी एकादशी पर
पूजा उपासना करने से वो पाप भी नष्ट हो जाता है। यानी जीवन में कितने भी तरह के पाप हों, जीवन में कितने भी तरह के दोष हों, अगर आप योगिनी एकादशी पर उपवास रखें और साधना करें तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप योगिनी एकादशी का पालन करना चाहते हैं या योगिनी एकादशी पर अगर उपवास रखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा और इसके बाद भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। अगर आप उपवास रखते हैं तो केवल जल और फल ग्रहण करके अगर उपवास रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक
राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति के लिए एकादशी का उपवास रखिएगा। दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या केवल फल ग्रहण करिएगा। जितना संभव होगा भगवान शिव की उपासना करिएगा और कम से कम बोलिएगा, क्रोध मत करिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एकादशी पर भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको लंबी आयु चाहिए तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा एकादशी पर करके प्रार्थना कर सकते हैं। अब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? एकादशी का उपवास रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर एकादशी पर सुबह और शाम दोनों समय आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या अगर आप चाहें तो श्रीमद् भगवद् गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी पर पीपल का एक पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। योगिनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ या भगवद गीता का पाठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पाप नष्ट होंगे, पापों का प्रायश्चित होगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की योगिनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। एकादशी के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। हर एकादशी पर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना अच्छा होगा। ऐसा करने से मन पवित्र होगा और पापों का नाश होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasion.
1: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
2: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
1: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
2: Remember, around here, we use the F Word.
1: Never The S Word.
0: The S Word, available now on TuneIn,
3: wherever you get your podcasts,
0: and on the S Word YouTube channel.
4: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: हमको एक कथा याद आ गई, वृंदावन की बात है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था रामदास, बड़े सिद्ध महात्मा, झोपड़ी में रहते थे, नाम रामदास। आहा, परम वैष्णव, ठाकुर जी की भक्ति करते, सदैव श्री राधा कृष्ण के गीत गाते, एक छोटे से शालिग्राम जी उन्होंने रख रखे थे, अकिंचन महात्मा, फक्कड़ महात्मा, झोपड़ी में रहते थे। ध्यान से सुनना गुरु कृपा क्या होती है। झोपड़ी में रहते थे भैया, उनका एक चेला था। आहा, चेला बड़ा सरल भोलाई था, सीधा साधा, उसे गुरुजी के अलावा कोई काम नहीं। पर गुरुजी नियम के बहुत पक्के थे, सुबह 4 बजे उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ठाकुर जी को भी स्नान करावें, बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करावें, बढ़िया ठाकुर जी को इत्र फुलेल लगावें, बढ़िया ठाकुर जी को बाल भोग लगावें, बढ़िया ठाकुर जी के कीर्तन गावें, बढ़िया ठाकुर जी को मधुर मधुर मधुराष्टकम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम आदि आदि श्लोकों का गायन सुनावे। शिष्य उनका बड़ा सीधा, शिष्य का काम था भोजन बनाना, गुरुजी की सेवा करना, और गुरुजी जब शाम को लेट जाए तो चरणों की सेवा करना। आहा हा, पर गुरुजी का एक नियम बड़ा कठोर था कि जो रसोई बनेगी वो रसोई कोई बनते हुए ना देख पाए जब तक ठाकुर जी को भोग ना लग जाए। पंडित जी बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, साधु का नियम यदि पक्का हो तो साधु है, लंगोट का पक्का और नियम का पक्का साधु होना चाहिए। साधु को एक ही भय रहता बदनाम ना हो जाए, साधु को एक भय रहता बदनाम ना हो जाए। और साधु को यदि अपनी साधना करनी है तो एक बात याद रखना चाहिए, भोजन और भजन दोनों पर कंट्रोल रखना चाहिए, दोनों पर कमान हो, भोजन पर भी भजन पर भी कमान हो। भोजन पाओ, अभी हम प्रसाद पा रहे थे तो एक दिन हमसे इन्होंने पूछा कि आप खाली थाली क्यों मंगाते हो। हमने कहा भैया पहले हमारी मूर्खता थी, अब हमारी मूर्खता कम हो गई है, भोजन उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। तो उन्होंने कहा वाह आपका तो हम प्रसाद पा लेंगे। हमने कहा अभी हम भी चेला है, गुरु नहीं बने, हम भी सन्यासी बाबा के चेला है, हम जब गुरु बन जाए तब तुम्हें हम जूठा प्रसाद देंगे, अभी क्षमा करो। आहा, धन्य है श्री रामदास जी महात्मा। उनका नियम था कोई प्रसाद बनते ना देखे, झोपड़ी में प्रसाद बनता। आहा, एक दिन की बात है, महात्मा जी साधना में बैठे थे, इनका चेला भोला रोज चौका चूल्हा करके लकड़ी लगाकर भगवान को प्रसाद बना रहा था भैया, और प्रसाद बना करके वो लकड़ी लेने थोड़ा दूर चला गया। उतने में कुछ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, घास फूस की झोपड़ी को ऐसा धुआं देखा, तो झोपड़ी तो घास फूस की थी, बड़े फक्कड़ महात्मा, तो झोपड़ी को ऐसे घास को एक तरफ करके झांक लिया। जैसे ही झांका भैया, झांक करके जैसे ही वो अंग्रेज गए, चेला तो लकड़ी लेने आया, जब तक अंग्रेज चले गए इधर गुरुजी को पता लग गया, गुरु तो सब जानते ना, गुरुजी को पता लग गया, दौड़े दौड़े गुरुजी बाहर आए, भोला जी गुरुजी एक बात बताओ, तुम आजकल बहुत नालायक हो गए हो, बहुत मूर्ख हो गए हो, क्या बात है। गुरुजी क्या हुआ, एक बात बताओ, आजकल सेवा में तुम बहुत सावधान नहीं हो, बहुत सजग नहीं हो, हमारे ठाकुर जी की सेवा बन रही थी, कोई झांक गया तुमने ध्यान तक नहीं दिया। बोले गुरुजी हम लकड़ी लेने गए थे, इतना कह पाते तब तक गुरुजी को बड़ा आवेश आ गया, बहुत गुस्सा आई, वहीं पे एक डंडा पड़ा हुआ था वो उठा करके पीटने लगे, इतना पीटा, इतनी मार लगाई कि गुरुजी का हाथ दर्द करने लगा और बेचारा चेला गिर पड़ा। सत्य घटना बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, चेला जमीन पर गिर गया, शरीर में रक्त हो गया, बेहोश हो गया। गुरुजी मारे क्रोध के डंडा को फेंक करके अंदर चले गए। आहा, भोला को बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू, शरीर में चोट, रोता हुआ शरीर को फटकार कर ऊपर उठा। भैया ऊपर उठकर के तुरंत गया, रसोई को साफ किया, फिर से रसोई जितनी बनाई थी वो गौ माता को खिला दी, फिर से नया चौका चूल्हा किया, बर्तन को साफ किया, फिर से रसोई बनाई। रसोई बना करके उसने तैयार की, तैयार करके थाली लगाकर लेकर गया। तब तक शाम हो गई, 4-5 बज गए। गुरुजी ने थाली ली, ठाकुर जी के सामने रखी, ठाकुर जी को भोग लगाए, और भोग लगाकर गुरुजी आज थोड़ा जल्दी लेट गए। जैसे ही जल्दी लेटे ना भैया, वो चेला गया भोला, चरण दबाने लगा। पुराना जमाना, रात थी, लाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहा था, दीपक की रोशनी में ठीक से चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो चरण दबाते दबाते ना उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। एक आंसू की बूंद गुरुजी के चरणों पे गिर गई। जैसे ही चरणों पे गिरी तो गुरुजी ने पूछा, भोला क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, तू रो रहा है, क्यों रो रहा बेटा, ये देख तेरे आंसू गिर रहे हैं, क्या बात है, मैंने तुझे आज बहुत पीट दिया इसलिए रो रहा। पता है चेला ने क्या कहा, गुरुजी हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आपने हमें पीट दिया, हम इस बात पे रो रहे हैं कि आज हमारे कारण ठाकुर जी को आपको बड़ी देरी से भोग मिला, इसलिए रो रहे हैं। और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने गले से लगा लिया, इधर आओ इधर आओ, गले से लगा लिया, कोई बात नहीं, भूल है, हो जाती, आगे ध्यान रखना, हमारा आशीर्वाद है, खूब तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा रहेगी, जाओ चिंता मत करो, तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। इतना कहकर के गुरुजी सो गए। सुबह हुई, होनी तो होनी थी, घटना तो घटनी थी। ध्यान से सुनना मेरे पागलो, सच्चे गुरु की कृपा होती है तब क्या होता है, याद रखना मेरे प्रिय जनों। सुबह हुई, गुरुजी का रोज का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करने का। वृंदावन की परिक्रमा के लिए गुरुजी उठे, चेला भी उठा, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला, सब जाने लगे। जैसे ही जाने लगे भैया, बीच में ही चेला रामदास को बुखार आ गया, जमीन पे लेट गया। जमीन पे लेटा तो बाकी शिष्यों ने कहा, गुरु भाई क्या हुआ? बोले, भैया गुरुजी आगे निकल गए, जरा उनको बुलाओ, लगता है अब हम आगे जिंदगी भर परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, हमारी जिंदगी का अंतिम दिन है। तो मित्रों ने कहा, ऐसा मत कहो, अभी बुलाते, गुरुजी गुरुजी भोला की तबीयत खराब हो गई, आप वापस लौटो। गुरुजी कीर्तन करते हुए वापस आए, चेला से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों पड़े हुए हो? भोला बोला, गुरुजी लगता है आज अंतिम दिन है, श्वास तेज चलने लगी, जोर से ज्वर आ गया, गुरुजी अब हमें क्षमा करो, आज तक का ही हमारा तुम्हारा साथ था, अब यहां से बिछड़ जाएंगे, लेकिन फिर अगले जन्म में मैं जन्म लूं, हमें आशीर्वाद दो, आपके ही चरण मिले। गुरुजी ने कहा, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसा मत कहो, गुरुजी हम सच कह रहे, और बुरा ना मानो गुरुजी, एक प्रार्थना करें, दो निवेदन हमारे अंतिम स्वीकार कर लो, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी पहली प्रार्थना तो है, आप हमें चरणों का चरणों तक पिला दो, आपके चरणों का चरणों तक पीना है। अच्छा हाँ। तुरंत गुरुजी गए, उसके मुख तक अपना अंगूठा लाए, बाकी शिष्यों ने जल डाला, भैया उसने चरणामृत पिया। जैसे ही चरणामृत पिया तो बोला, गुरुजी अब दूसरी प्रार्थना और सुनो, मैं अपने प्राण आपको देखते हुए निकालना चाहता हूं, बुरा ना मानो तो आप हमारे सामने खड़े हो जाओ। गुरुजी बोले, ठीक है। अब गुरुजी भी सीधे साधे थे, शिष्य के सामने खड़े हो गए। जैसे ही पैरों के पास खड़े हुए भोला के, तुरंत ये उठने की कोशिश करता हुआ हाथ उठा के बोला, गुरुजी गुरुजी हम आपको देखते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं, किसी दूसरे को देखते हुए प्राण नहीं त्यागना चाहते। गुरुजी बोले, यहां तो हम ही है, दूसरा कोई है नहीं। ये बोला, काहे को झूठ बोलते हो, आप बगल में देखो, इस बालक को हटाओ, ये बालक हमें बुला रहा है, इसको हटाओ। गुरुजी ने देखा, इधर तो कोई नहीं। गुरुजी आप दाहिनी तरफ देखो, देखो सामरा सामरा बालक खड़ा है, मोर मुकुट पहने हुए हैं, बंसी लिए हुए हैं, हमको बुला रहा है। आह, इतना सुनते ही गुरुजी की आंखों में भी आंसू आ गए और हाथ दोनों उठाकर बोले, बेटा वो सामरा सामरा कोई और नहीं, साक्षात मेरा बांके बिहारी ही तुझे लेने आया है, मेरा कन्हैया तुझे लेने आया है, मेरा ठाकुर तुझे लेने आया। इतना कह के उसके प्राण पखेरु उड़ गए और शरीर पूरा हो गया। भैया इस कथा का आशय बताऊं, ये सत्य घटना है। इस कथा का आशय ये है मेरे पागलो, मेरे प्रियजनों, किसी को अच्छा और सच्चा गुरु मिल जाता ना, उसे गोविंद भी मिल जाता है। गोविंद को खोजना नहीं पड़ता, गोविंद खुद चले आते हैं। भैया सच्चा गुरु मिल जाए ना, हनुमान जी मिले किसको, सुग्रीव को, सुग्रीव को हनुमान जी मिले, तो सुग्रीव को राम जी के पास जाना पड़ा कि राम जी को लेकर आए। बोलिए हनुमान जी लेकर आए ना, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। ये बात तय है, यदि हम हनुमान जी के शरण को पकड़ लेंगे, हनुमान जी के चरण को पकड़ लेंगे, वो राम जी से भी मिलवा देंगे। भैया जिनके रक्षक हनुमान जी हो गए, भला वो कैसे डर सकता। अच्छा बुरा न मानना, भगवान के पास जाकर ये मत कहा करो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कहा करो मेरे हनुमान जी निकट हैं। आहा, एक बात और, कल कथा के विराम में हमने प्रार्थना करी थी, हम प्रार्थना आज फिर करना चाह रहे, हाथ जोड़कर, मेरे प्रियजनों एक बात याद रखना, पागलो परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। भाई कोई लापता हो तो मिले, कोई गुम गया हो तो मिले, भगवान लापता है नहीं। बोले पे उनका पता कहां, बोले आपको यदि देखना है तो आप ये संसार आंखों से मत देखो, सांसारिक आंखों से। बोले फिर किससे देखें, बोले मन की आंखों से। भगवान तो हर जगह, अभी मंच पर सब संत बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे। भैया एक बात कहें, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, जब परमात्मा नहीं आ पाते ना, वो महात्मा को भेज देते हैं, और जिन्हें महात्मा में परमात्मा नहीं दिखाई देता, मेरे पागलो तुम याद रखना, जो महात्मा में परमात्मा नहीं देख सकता, वो परमात्मा में भी परमात्मा को नहीं देख सकता। जिन्हें नर में नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता, उन्हें नारायण में भी नारायण नहीं दिखाई पड़ सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमसे कोई पूछे महाराज हमारी श्रद्धा महात्माओं में बहुत कम है, तुम अपनी ठटरी भराओ, कोई बात नहीं कम है, ठीक है ना, है ना, फिर भी तुम कहो नहीं हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो हम एक बात कहें, परमात्मा जब नहीं आ पाता वो महात्मा को भेज देता, और तुम्हें महात्मा भी ना मिल पाए ना, तो परमात्मा जब नहीं मिलता तो वो मां को देता है, वो भी तो परमात्मा है, उसमें भी तो मां है। तो किसी ने कहा भगवान दिखेंगे कैसे, गोस्वामी जी को यदि पढ़ोगे तो तुलसीदास जी तो एक लाइन में उत्तर देते हैं, भगवान को देखने का और पाने का एकमात्र उपाय है।

भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है जरा जोर से बोलो ना, भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम। पर प्रेम किससे होगा? जिसके बारे में जानोगे तभी प्रेम होगा। दूर से तो लोग हमको भी कुछ भी समझते हैं, पर जब नजदीक आएंगे तभी पता लगेगा। ना हो दूर से तो हमू लगेंगे जादूगर बाबा। हाँ, बाबा जादूगर है, भूत भगाता है। असली बात यह है कि हम भूत भर नहीं भगाते हैं, भारत के वो भूत भी भगाते हैं जो भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। पर दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? दूर से यही लगेगा, ए बाबा तो ढोंगी है, ऐसा है वैसा है, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, एक उंगली किसी पर, ऐसे उंगली करो जरा हमारी तरफ, ऐसे करो हमारी तरफ करो, ऐसे करो, हम कुछ ना बोलेंगे, भगवान कसम, ऐसे करो जरा। आहा, एक उंगली जो हम पे उठा रहे हैं ना, तीन उंगलियां अपनी देखो तुम्हारी तरफ मुड़ी हैं। और अंगूठा ऊपर।

अब तुम्हें ऐसी भभूति कहां से दे दे कि तुम मरो ना। बोलो भैया तो प्रेम कहां मिलेगा? कचौड़ी की दुकान पे कहां मिलेगा? बांदा में? कालू कुआं पे कहां मिलेगा? छावनी में? अरे बोलिए, प्रेम कहां मिलेगा, भक्ति कहां मिलेगी? जिसके पास होगी, किसके पास है बताइए, हमसे पूछो, गुरुजी तुम बताओ। हमारी नजर में एक है जिनके पास भक्ति है, पूछो कौन?

0: किसके पास भक्ति है? अरे बोलो ना, हनुमान जी के पास। यदि हम हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे पागलो, हम सब हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे, तो हनुमान जी के पास में राम रसायन है, एक बूंद भी यदि उनकी कृपा की मिल गई तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे।
1: Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
2: Good news today.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
5: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
4: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
4: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
4: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
10: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी

0: तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
2: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं और वही फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
2: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
7: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
8: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
9: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it. मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
10: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
0: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है, अंदर से जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
11: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
14: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
15: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
17: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
18: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
12: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
19: Barra Winery and Distillery crafts award-winning American sparkling wine in the heart of New Mexico. Discover our Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
20: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdown, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in. For unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
21: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
22: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
22: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है भारत की साख। पहली बार अमेरिका और इजराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल, भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, तो वहीं मस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर। पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का भी किया ऐलान। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और चढ़ावा के सिस्टम में होंगे बदलाव। 22 जुलाई को ट्रस्ट बैठक में नए सदस्यों का चयन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली में भी सुधार होंगे। पुणे में गूंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां। सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिनों से बारिश का दौर जारी, आज भी भारी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। मच अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म धमाल 4 सिनेमा घरों में रिलीज होगी। एडवांस बुकिंग में ही 1.6 करोड़ रुपए की कमाई। अजय देवगन रितेश देशमुख निभा रहे हैं मुख्य भूमिका।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच। दिसंबर में बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इतिहास में पहली बार होगा मैच। युवा खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, उन्होंने मैदान पर युवाओं का बढ़ाया हौसला और उनकी जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्कट रूबी द रूस से हुई पीएम मोदी की मजेदार मुलाकात, तो वहीं पीएम ने मस्कट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती होगी और भी मजबूत। दोनों देशों ने खेल सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे क्रिकेट और सांस्कृतिक रिश्ते और गहरे होंगे। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा, बादलों से घिरे तीर्थ की बढ़ी सुंदरता। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर रख रहा है नजर। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमें सतर्क। यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही है निगरानी। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निरंतर जारी। तापमान में गिरावट के बाद भी मथा टेकने पहुंचे हैं श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा। श्रीनगर में पंथा चौक में स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप का पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतजामों का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान एलजी ने वॉलंटियर्स और देश दुनिया से आए यात्रियों से भी संवाद किया, यात्रा में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। टेंट, घोड़ा सेवा, लंगर और स्थानीय उत्पाद बेचने वालों को रोजगार के मिले नए अवसर। बालटाल में यात्रा सीजन बना रोजी रोटी का बड़ा जरिया। यात्रियों की सेवा में स्थानीय परिवारों को मिल रहा है आर्थिक बल। बालटाल के दुकानदारों की सालाना कमाई का अहम मौका। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर। मंदिर परिसर में हो रहा है पेंटिंग और मरम्मत का काम। 30 जुलाई से शुरू होने वाला है श्रावणी मेला। लाखों की तादाद में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन के पवित्र महीने में एक महीने तक चलता है भव्य मेला। 50 लाख कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के धाम करते हैं अर्पित। श्रावणी मेले के दौरान स्पर्श पूजा और वीआईपी पूजा पर रहती है रोक। देश विदेश से पूजा और दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर श्रावणी मेले के दौरान 10,000 पुलिस बल और अधिकारियों की होगी तैनाती। तो वहीं एसपी ने कांवड़िया पथ का लिया जायजा। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत। लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 2 दिन तक भवानी पेठ के विठल मंदिर में रुकेगी। संत तुकाराम महाराज की पालकी नाना पेठ के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरी। पालकी यात्रा के दौरान पुणे की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालु विठल नाम का जय घोष करते हुए नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुणे पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए। पानी व्यवस्था, सफाई और ट्रैफिक की भी खास व्यवस्था। पालकी यात्रा से पूरा पुणे भक्तिमय माहौल में डूबा। शहर में हुए हर ओर ज्ञानोबा तुकाराम की जय घोष की गूंज। रोहतास में भी सावन में शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर भक्तों की सुरक्षा और सुविधा पर मंथन किया। मुंगेर में भी सावन के महीने के शुभारंभ से पहले तैयारी हुई तेज। डीएम ने कच्ची कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया, जल्द व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। 5 टन वजनी 31 फीट ऊंचा श्री जगन्नाथ रथ लगभग तैयार। करीब 1 साल की मेहनत से तैयार किया गया भव्य लोहे का रथ 19 जुलाई को एस्कॉन की ओर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी। भव्य समारोह के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। अहमदाबाद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष पोशाक की तैयारी, श्रृंगार और आभूषणों पर दिया जा रहा है ध्यान। अहमदाबाद में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होते हैं श्रद्धालु। जमालपुर में मौजूद 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। कुल 18 किलोमीटर का होता है यात्रा का रूट। भव्य रथ यात्रा में विशाल और अलंकृत रथों के साथ होते हैं सजे धजे हाथी, अखाड़े और भजन मंडली। शोभा यात्रा के दौरान 100 झांकियां भी होती हैं शामिल। कश्मीर की डल झील में पर्यटक पारंपरिक शिकारा नाव की सवारी कर ले रहे हैं लुत्फ। खूबसूरत नजारों और शांत पानी के बीच लोग बता रहे हैं यादगार पल। डल झील की शिकारा सवारी देश विदेश से आने वाले लोगों को कर रही है आकर्षित। सैलानियों को लुभा रही है घाटी की सुंदरता। शिकारा कश्मीर की पुरानी और खास परंपरा का हिस्सा। पर्यटकों को पसंद आ रहा है शिकारा। डल झील में बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय कारोबारियों को हो रहा है फायदा। शिकारा चलाने वाले लोग भी अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे, स्थानीय युवाओं के लिए कमाई के बने अवसर। शिमला में मानसून का जादू देखने को मिला, पहाड़ों के बीच तैरते हुए बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे हैं लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आसमान पर छाए घने बादल और ठंडी फिजा ने हिल स्टेशन की खूबसूरती बढ़ाई, प्रकृति की अनुपम छटा देखने के लिए सैलानियों की बढ़ी भीड़। शिमला की वादियों में छाई ठंडक, मानसून के खुशनुमा मौसम ने पर्यटकों को पहाड़ों की ओर खींचा। बादलों और हरियाली के बीच सैलानी ले रहे हैं यादगार छुट्टियों का आनंद, शिमला इस वक्त बना हुआ है सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटियां में आज लगेगा रिश्तों में डांस का तड़का। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
6: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
7: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
8: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है भारत की साख। पहली बार अमेरिका और इसराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल, भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से पीएम मोदी ने मुलाकात की, मस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर। पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का ऐलान किया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और चढ़ावा के सिस्टम में होंगे बदलाव। 22 जुलाई को ट्रस्ट बैठक में नए सदस्यों का चयन करेगा। सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली में होंगे सुधार। पुणे में गूंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां। सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिन से बारिश का दौर, आज भी भारी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। मच अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म धमाल 4 सिनेमा घरों में रिलीज होगी। एडवांस बुकिंग में ही 1.6 करोड़ रुपए की कमाई। अजय देवगन रितेश देशमुख निभा रहे हैं मुख्य किरदार।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के मेगा शो की। भारत सहित दुनिया भर में लोकप्रिय क्रिकेट का एक मेगा शो आज इंग्लैंड के मशहूर मैदान लॉर्ड्स में होने जा रहा है, तो वहीं क्रिकेट का एक और मेगा शो इस साल दिसंबर में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होने वाला है। आपको बता दें, इन दोनों मेगा क्रिकेट शोज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले बात लॉर्ड्स की करते हैं। लॉर्ड्स से आज भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। आज से इसकी शुरुआत होगी और ये मैच इस मायने में ऐतिहासिक है कि क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर पहली बार महिला टेस्ट खेला जाने वाला है और 21 से 23 जुलाई 1884 को यहां पहला मेंस टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इसके 142 साल बाद अब इस मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ये महिला क्रिकेट इतिहास का 153वां टेस्ट मैच होगा। चेन्नई में इस बार दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच होने जा रहा है। इसका औपचारिक ऐलान आज मेलबर्न में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मेलबर्न के प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा किया है और इस सिलसिले में ऐलान भी किया है। तो क्रिकेट लवर्स को क्रिकेट के दो मेगा शोज की सौगात मिलने जा रही है। आज लॉर्ड्स में एक मैच, तो वहीं दूसरा दिसंबर में चेन्नई में शुरू होने जा रहा है। दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात क्रिकेट के उस मेगा शो की करते हैं जो आज इंग्लैंड के लॉर्ड्स में शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट के मैदान में आज की एक बड़ी गुड न्यूज ये है कि भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच आज ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान पर 142 सालों में पहली बार महिला टेस्ट मैच होने वाला है और ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। ये महिला क्रिकेट इतिहास का 153वां टेस्ट मैच होगा। आपको बता दें, भारतीय टीम 1995 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं हारी है, तो खास तौर से लॉर्ड्स के मशहूर मैदान में भारतीय महिला टीम के लिए इतिहास रचने का मौका भी है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 15 महिला टेस्ट मैचेस खेले गए हैं और इनमें भारत ने 3 और इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है, जबकि 11 मुकाबले अभी तक ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के बीच पिछला टेस्ट दिसंबर 2023 में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। तब भारत ने इंग्लैंड को 347 रनों से हराया था और इंग्लैंड में दोनों टीमें आखिरी बार जून 2021 में ब्रिस्टल में आमने सामने आई थी, भिड़ी थी। वो मुकाबला ड्रॉ हुआ था। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले 4 टेस्ट मैचेस में से 3 जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की धरती पर खेले गए 9 टेस्ट मैचेस में भी भारत को हार नहीं मिली है और एक बार फिर इंग्लैंड की धरती पर ही मेजबान टीम को धूल चटाने का मौका भारत की बेटियों के पास है। तो वहीं अब भारतीय फैंस में जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ये ऐतिहासिक मैच होने जा रहा है क्योंकि ये पहला महिला टेस्ट मैच होने जा रहा है लॉर्ड्स में, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। तो क्रिकेट का मेगा शो आज से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, बिग बैश लीग के जरिए जो दिसंबर में शुरू होने जा रहा है चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, अब उसके जरिए ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट लवर्स के लिए गुड न्यूज सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे के तीसरे दिन ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों और यहां के लोगों से घुलते मिलते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन की कवर ड्राइव प्रतिमा के साथ फोटो भी खिंचवाई और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी को बैट गिफ्ट में दिया। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज के पीछे पूर्व दिग्गज और महान क्रिकेटर्स सर डॉन ब्रैडमैन, रिचर्ड हेडली, सुनील गावस्कर, जैक हॉब्स, गारफील्ड सोबर्स, शॉन पोलॉक की तस्वीरें भी लगी हुई नजर आईं।
मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बिग बैश लीग कराने का ऐलान भी कर दिया है। और आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब भारत बिग बैश लीग का मैच होस्ट करने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में भारत अहम भूमिका निभाना चाहता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। 2036 में भारत में ओलंपिक गेम्स आयोजित करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बिग बैश लीग का आयोजन क्यों खास है ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: खेल के मैदान में खेलों की बात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नए सिरे से परवान चढ़ाने की एक और खास पहल। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और पीएम एल्बनीज एक साथ शानदार एंट्री, वो ऐतिहासिक लम्हा जी रहे हैं जिसके साथ दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध अब क्रिकेट के जरिए नई बुलंदियों की ओर जा रहे हैं, वो भी क्रिकेट के जरिए, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में समान रूप से लोकप्रिय है और इसी के जरिए अब दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को और आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है।
1: एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं, एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है।
0: अपनी 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मुआयना करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम एल्बनीज के साथ मिलकर ये घोषणा की है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में खेला जाएगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते खेल संबंधों का हिस्सा बताया।
1: मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग

0: वह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पीएम मोदी और विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन के साथ सेल्फी भी ली। वहीं पीएम मोदी और अल्बनीज ने एमसीजी के शेन वॉन स्टैंड पर बैठकर भी तस्वीरें खिंचवाई। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात और बातचीत भी की। इस दौरान वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज और पूर्व क्रिकेटर कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के साथ फोटोज क्लिक करवाए। पीएम मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लीसा स्टॉलकर को बल्ले पर ऑटोग्राफ भी देते नजर आए। प्रधानमंत्री मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मैस्कॉट रूबी द रूस से भी मिले। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पीएम अल्बनीज और पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक रोड मैप भी जारी किया, जिसका मकसद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेल संबंधों को मजबूत करना है।
1: आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे।
0: अब आपको बता दें कि आखिर बिग बैश लीग है क्या, तो जान लीजिए कि बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और मशहूर T20 क्रिकेट लीग है। इसका आयोजन हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच होता है। बिग बैश लीग की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसमें 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। इसमें सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे बड़े शहरों की 8 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच मुकाबला होता है। पर्थ स्कॉट्स ने इसमें सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। बिग बैश लीग के ओपनिंग मैच के आयोजन के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 5 अधिकारियों के एक डेलीगेशन ने आईपीएल के दौरान चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम का दौरा किया था और बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ इस सिलसिले में चर्चा भी की थी। इसके बाद चेन्नई में ये मैच कराने का फैसला लिया गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी विदेशी लीग के मैच भारत में हो रहे हैं। भारत में एनबीए, इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लिगा के मैच भी आयोजित किए जा चुके हैं। 2019 में अमेरिका की मशहूर बास्केटबॉल लीग नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए ने पहली बार भारत में अपने ऑफिशियल प्री सीजन मैच आयोजित किए थे। तब मुंबई में सैक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेसर्स के बीच 2 मैच खेले गए थे। 2018 में कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्पैनिश लीग ला लीगा के जिरोना एफसी और ऑस्ट्रेलिया ए लीग के मेलबर्न सिटी एफसी ने भारतीय क्लब केरला ब्लास्टर्स के साथ प्री सीजन टूर्नामेंट खेला था। अब बिग बैश लीग के ओपनिंग मैच का आयोजन भारत में होने वाला है, तो वो दिन दूर नहीं जब इसके जरिए स्पोर्ट्स इकोनॉमी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को शानदार क्रिकेटिंग इवेंट का मजा लेने का भी मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, क्रिकेट का मेगा शो होने जा रहा है। बिग बैश का ऐलान कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। नितिन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट समान रूप से ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है। भारत में आईपीएल का आयोजन होता ही है और अब बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में कराया जाएगा, इसके क्या मायने देख रहे हैं आप?
3: ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और चूंकि आईपीएल के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसके कुछ ऑफिशियल्स ने यहाँ पर दौरा भी किया था, स्टेडियम का जाकर मुआयना किया था, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के साथ बैठक भी थी और कहीं ना कहीं हम इस बात को मानकर चल ही रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है जब बिग बैश इंडिया में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहला मुकाबला जो मेलबर्न रेनेगे और पर्थ स्कॉचेस के बीच का मुकाबला है वो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 12 दिसंबर को कराया जाएगा। कल प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये दोनों लोगों ने मिलकर एक ये अनाउंसमेंट की कि यहाँ पर बिग बैश कराया जाएगा। देखिए, बिग बैश एक ऐसा टूर्नामेंट है जो जस्ट लाइक आईपीएल है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और आज हम देख रहे हैं 2026 में आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग कराई जाती है जिसमें 8 टीमें खेलती हैं और सेम फॉर्मेट होता है T20 का यह मुकाबला है। बहुत सारे जो फैंस हैं वो इंडिया से ट्रेवल करके बिग बैश को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं

0: उन फैंस के लिए यहाँ पर भारत में इस तरीके का टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप बायलैटरल इतिहास उठा के देखेंगी वो काफी पुराना है। तो इस विपक्ष के मुकाबले से मुझे ऐसा लगता है कि वो फील जो बहुत सारे दर्शक भारत में रहकर टीवी पर देखते हैं, तो शायद वो ग्राउंड में जाकर बिग बैश का मजा ले पाएंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि एटलीस्ट तो बिग बैश का लीग जो है वो कैसा है, कितना डिफरेंस है आईपीएल से। तो सब चीजों का एक्सपीरियंस करने का मौका भारत में भारतीय क्रिकेट दर्शकों को जरूर मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक तरफ जहां बिग बैश की शुरुआत होने जा रही है, क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज ये भी है कि आज महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, महिला क्रिकेट टीम का लॉर्ड्स में। 142 साल का जो इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो चुका है। इससे कितना बड़ा प्रोत्साहन महिला क्रिकेट टीम, महिला एथलीट्स और जो स्पोर्ट्स लवर्स है उनको मिलने वाला है।
0: बहुत बड़ा, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि लॉर्ड्स के इतिहास में कभी भी फीमेल टेस्ट जो है वो उस ग्राउंड पर ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया था। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारतीय विमेंस टीम, इंग्लैंड की विमेंस टीम दोनों आमने सामने होंगी। और लॉर्ड्स चूंकि अपने आप में एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ बहुत सारे इतिहास जो है ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, और आज एक और बोर्ड पर नाम लिख दिया जाएगा कि आज के दिन इंडिया और इंग्लैंड की विमेंस टीम ने यहाँ पर टेस्ट मैच खेला था। देखिए 142 साल का इंतजार जरूर हुआ, लेकिन वो मौका आया वो इसलिए आया क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी विमेंस टीम को भी वही एक्सपीरियंस देना चाहती है जो कि हमारे जो मेंस टीम है वो लगातार एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं और बेहतर करते आ रहे हैं। शायद यही वजह थी कि दोनों बोर्ड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच कराना है। आप हरमनप्रीत कौर की बात सुनिए, उनको भी आश्चर्य हुआ जब उनको बताया गया कि इस मैदान पर आप जो टेस्ट मैच खेलने उतर रही हैं ये पहला टेस्ट मैच है। उन्होंने बोला, मैं जरूर शॉक हुई थी लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि देर हुई है। देर हुई कोई बात नहीं, बट ये मौका मिला, ये मौका भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से अगर आप भारतीय विमेंस टीम का टेस्ट इतिहास उठा के देखेंगी, इस टीम ने अब तक कुछ 42 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से आई थिंक 8 में उनको जीत मिली है, 7 में हार, और बाकी करीब 26 मुकाबले या 25 मुकाबले और ड्रॉ हुए हैं। तो इस हालिया अगर आप विमेंस टीम का प्रदर्शन उठा के देखेंगी तो लोग कहेंगे कि अभी तो आप T20 में सेमीफाइनल तक भी नहीं जा पाए, लेकिन अभी आप उससे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत के आए थे और कहीं ना कहीं आप रेड बॉल में भी बेहतर करना चाहते हैं। व्हाइट बॉल में तो आपका चलिए ठीक हिसाब किताब बेहतर चल रहा है, लेकिन जो रेड बॉल की क्रिकेट है, जो आप व्हाइट पहन के उतरते हो, वो ज्यादा प्रेस्टीजियस होती है। और इस टीम के लिए भी आज का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बड़ा
1: जी। बिल्कुल नितिन, एंड जैसे कि कहते हैं कि एवरीथिंग हैज इट्स फर्स्ट, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि इस बार और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, जिस तरह से आपने कहा कि पिछली बार इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया था, लेकिन कहा जाता है एवरीथिंग हैज इट्स फर्स्ट, और हो सकता है आज वो फर्स्ट हो जाए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम हर बार की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन कर सकती है, उम्मीद तो यही की जा रही है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जीएनटी के साथ।
2: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: फ्रांस ने 2026 फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी एंट्री हासिल की है। आपको बता दें फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन मबापे ने पेनल्टी आग के बाईं ओर से 60वें मिनट में गोल दागा और फ्रांस की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी है। इस जीत के बाद फ्रांस के फैंस ने बोस्टन के स्टेडियम में यहां जबरदस्त जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि मोरक्को के फैंस के बीच काफी निराशा है, मोरक्को टूर्नामेंट से बाहर होने वाले आखिरी अफ्रीकी टीम है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: सास बहू और बेटियां में आज लगेगा रिश्तों में डांस का तड़का। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after game one.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: सास बहू और बेटियां में आज लगेगा रिश्तों में डांस का तड़का। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
4: दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही भारत की साख, पहली बार अमेरिका और इजराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल, भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन।
5: मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से पीएम मोदी की मुलाकात, मस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर, पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का किया ऐलान।
4: श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और चढ़ावे के सिस्टम में होंगे बदलाव, 22 जुलाई को ट्रस्ट बैठक में नए सदस्यों का किया जाएगा चयन, सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली में भी होंगे सुधार।
5: पुणे में गुंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जयघोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां, सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम।
4: दिल्ली NCR में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर, आज भी भारी बारिश का अनुमान, गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश।
5: दिग्गज सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जन नायकन को ग्रीन सिग्नल, सेंसर बोर्ड ने जारी किया SA सर्टिफिकेट, 24 जुलाई को होगी रिलीज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच। दिसंबर में बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा, जो इतिहास में पहली बार होगा। युवा खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने मैदान पर युवाओं को बढ़ाया हौसला, उनको जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्केट रूबी द रू से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मजेदार तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने मस्केट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत की। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती होगी और भी मजबूत, दोनों देशों ने खेल सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे क्रिकेट और सांस्कृतिक रिश्ते और गहरे होंगे।
2: अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 1,45,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर, मंदिर परिसर में हो रहे हैं पेंटिंग और मरम्मत के काम। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत। लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 2 दिन तक भवानीपेट के विट्ठल मंदिर में रुकेगी। वहीं पर संत तुकाराम महाराज की पालकी नानापेट के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरेगी। पालकी यात्रा के दौरान पुणे की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालु विट्ठल नाम का जय घोष करते नजर आए।
1: शिमला में मानसून का जादू, पहाड़ों के बीच में तैरते बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का मजा ले रहे। आसमान पर छाए घने बादल और ठंडी फिजा ने हिल स्टेशन की खूबसूरती को बढ़ाया। प्रकृति की अनुपम छटा देखने के लिए सैलानियों की लगी भीड़। शिमला की वादियों में छाई ठंडक, मानसून ने खुशनुमा मौसम ने पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ खींचा। बादलों और हरियाली के बीच में सैलानी ले रहे यादगार छुट्टियों का आनंद, शिमला इस वक्त बना हुआ है सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन।
2: ट्रेनों में भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल किया शुरू। ट्रेन हादसे की रोकथाम के लिए मिल सकेगी जरूरी जानकारी, जल्द ही 26 ट्रेनों में किया जाएगा ट्रायल। पहले चरण में एक ट्रेन के इंजन में इंस्टॉल किया गया वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, कुल 6 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और एक वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स लगाए गए। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में पॉक्सो जागरूकता अभियान की पहल, स्कूलों में बाल सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य प्रोटोकॉल लागू करेगी दिल्ली सरकार। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा बहाल करने के लिए बेंगलुरु में सेफ फुटपाथ कैंपेन शहर

0: के 5 नगर निगमों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 आज हुई रिलीज। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर छाई धमाल 4 एडवांस बुकिंग में कमाए 1.6 करोड़। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 1 का आज से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। चर्चित हत्या केस के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। थिएटर्स में रिलीज होने के ठीक 8 हफ्ते बाद आज फिल्म पति पत्नी और वो 2 का होगा डिजिटल प्रीमियर। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और वामिका गब्बी से सजी हुई ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। के मेनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक सामने आई। एक बदहाल स्कूल में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी नाम के एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर के इर्द गिर्द घूमती है कहानी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: बच्चे सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बिग बैश लीग के ओपनिंग मैच के भारत में खेले जाने का ऐलान किया। बिग बैश लीग का पहला मैच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और चढ़ावे के सिस्टम में होंगे बदलाव। 22 जुलाई को ट्रस्ट बैठक में नए सदस्यों का चयन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली में सुधार होंगे।
0: दिल्ली NCR में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी, आज भी भारी बारिश का अनुमान। गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश।
2: आमिर खान प्रोडक्शंस और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स ने सिल्क्यारा टनल पर आधारित एक फिल्म का ऐलान किया है। इसका निर्देशन कबीर खान करने वाले हैं।
0: जन आयकन साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार थलपति विजय की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म है। लंबे समय तक सेंसर बोर्ड के विवादों में अटके रहने के बाद अब फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
2: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं फिल्मी सफर के साथ, क्योंकि आज है फ्राइडे और सबसे पहले बात सिद्धार्थ मल्होत्रा की मोस्ट अवेटेड फिल्म द वन की। बॉक्स ऑफिस पर द वन का टकराव यश की टॉक्स के साथ होने वाला था, लेकिन श्रद्धा कपूर की ईटा भी टक्कर देने के लिए तैयार थी। इसी बीच अब द वन फिल्म के नए मोशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई एक तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। द वन अब 25 सितंबर को रिलीज होगी।
3: बाघ की धार, नंदी की शक्ति और बीच में वन, इस पूरी तस्वीर में संकेत छिपा है एक ऐसी फिल्म की कहानी का जिसे पर्दे पर देखने का दर्शक शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये मोशन पोस्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का। एक सुपर नेचुरल फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म जिसे नई रिलीज डेट के साथ पोस्ट किया गया है। इस मोशन पोस्टर में एक ताकतवर योद्धा जैसे किरदार को नंदी बैल और एक बाघ के बीच खड़े हुए दर्शाया गया है। जाहिर सी बात है कि बीच में खड़ा यह किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा का होगा। पोस्टर दमदार होने के साथ साथ काफी रहस्यमय भी लग रहा है और लीक से हटकर कुछ अलग कहानी का संकेत भी खुद में छुपाए है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पोस्टर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बाघ उसकी दहाड़ है, नंदी उसकी शक्ति और वन उसकी कहानी। इस पोस्टर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म के मुख्य किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास बाघ और नंदी की शक्तियां होंगी। फिल्म की कहानी भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें फैंटेसी, एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर का शानदार मेल देखने को मिलेगा। फिल्म में एक नई दुनिया, शानदार विजुअल्स और बड़े पर्दे का एक अलग अनुभव देखने को मिलेगा। इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने द वन की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, 25 सितंबर। माना जा रहा है कि मेकर्स ने यह फैसला बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए लिया है। वन को पहले भी पोस्टपोन किया जा चुका है। सबसे पहले मेकर्स इसे साल 2025 में छठ त्योहार के मौके पर रिलीज करने वाले थे। उसके बाद ऐलान हुआ कि ये फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होगी। करीब 4 महीने पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी एक पोस्ट के जरिए बताया कि वन अब 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर आएगी और अब 25 सितंबर इसकी नई रिलीज डेट लॉक कर दी गई है। इस बार वन की रिलीज डेट पोस्टपोन करने की वजह श्रद्धा कपूर की ईठा और यश की टॉक्सिक है। दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त बज बना हुआ है। अगस्त के आखिरी दिनों में ये दोनों फिल्में रिलीज होने वाली हैं। टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होगी जबकि इसके दो दिन बाद ईठा रिलीज होगी। लिहाजा माना जा रहा है कि मेकर्स ने इस बिग क्लैश से बचने के लिए ही द वन की रिलीज डेट अब 25 सितंबर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टू।
0: वहीं पुष्पा 2 का सुपरहिट डांस नंबर जिसने पूरे देश में धूम मचा दी थी और अल्लू अर्जुन श्रीलीला की जिस जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकती है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि श्रीलीला जल्द ही अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन फिल्म राका का हिस्सा बन सकती है।

0: साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अल्लू अर्जुन और श्रीलीला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुष्पा 2 में अपनी धमाकेदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही एक और बड़े प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन की अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म राका में श्रीलीला की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले श्रीलीला राका के सेट पर मौजूद थी, जहां अल्लू अर्जुन लगातार 2 दिनों तक शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। और अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 की आग अब राका में भी देखने को मिलेगी। अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन और श्रीलीला दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। पुष्पा 2 द रूल के उनके सुपरहिट डांस नंबर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर उभरा था। वही राका पहले से ही देश की सबसे चर्चित पैन इंडिया फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का निर्देशन अटली कर रहे हैं और ये पहली बार है जब अल्लू अर्जुन और अटली किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस फिल्म के जरिए अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर के बीच मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की चर्चा है। इतना ही नहीं, पहले आई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि सुपरस्टार शाहरुख खान भी राका में नजर आ सकते हैं। हालांकि उनका किरदार क्या होगा इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल तो फैंस की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या राका में अल्लू अर्जुन और श्रीलीला की जोड़ी सचमुच एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। रिपोर्ट कुलनीस टुडे।
1: देखिए, विजय थलापति आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, सभी जानते हैं, लेकिन सीएम बनने से पहले उनकी फिल्म जननायकन सर्टिफिकेशन को लेकर अब तक अटकी हुई थी, लेकिन अब जननायकन की रिलीज को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। इंतजार अब मेकर्स की तरफ से रिलीज डेट का है।
2: बड़े बड़े क्रिमिनल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन क्रिमिनल्स का किंग कौन है पता है?
3: खत्म हुआ 7 महीने का इंतजार।
2: लोग उसे बुलाते हैं थलापति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
3: आखिरकार जन नायगन को मिला ग्रीन सिग्नल।
4: मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ लोग उसे सुपर ही बोलते हैं।
3: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय के फैंस के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं।
4: कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना।
3: विजय के एक्टिंग करियर के जिस आखिरी फिल्म जन नायगन को देखने का इंतजार उनके फैंस पिछले 7 महीनों से कर रहे हैं, उसकी रिलीज पर लगी रोक अब हट गई है।
2: Come, let's play a game.
3: 7 महीनों से सेंसर बोर्ड में अटकी फिल्म जन नायगन को आखिरकार सर्टिफिकेट मिल गया। सेंसर बोर्ड ने थलापति विजय को फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि फिल्म के रिलीज को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
5: मुझे आर्मी में नहीं जाना,
3: यानी कि ये फिल्म अब जल्द रिलीज होने की कगार पर है।
6: बीजी के इस डर के पीछे बहुत बड़ी वजह है।
3: सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही इसके रन टाइम का भी खुलासा हो गया है। जन नायगन का रन टाइम 183.11 मिनट है, यानी 3 घंटे 3 मिनट और 11 सेकंड। तमिलनाडु के सीएम बनने से पहले विजय ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। जन नायगन उनके एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म है। पहले ये फिल्म इसी साल 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी। विजय अपनी आखिरी फिल्म जनता को एक गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का पेज ऐसा अटका कि फैंस को महीनों तक मायूस होना पड़ा।
2: उसे ऐसे सलीब पे लटकाना है जहाँ से वो जिंदा नहीं आ पाएगा।
3: कहा गया कि इस फिल्म से विजय को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। जन नायगन में कुछ सीन्स पर आपत्ति भी उठी। कहा गया कि इनसे भारतीय सेना और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण माना गया, जिससे सेंसर बोर्ड ने इसके सर्टिफिकेट को कई महीनों तक टाले रखा। इससे पहले 4 जुलाई को जन नायगन को ए सर्टिफिकेट देने की खबर उड़ी थी। कहा गया कि सीबीएफसी ने जन नायगन को ए सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन बाद में ये खबर बस अफवाह ही साबित हुई। लेकिन अब सीबीएफसी की वेबसाइट पर मौजूद फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट से ये साफ हो जाता है कि फिल्म उस समय पास नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन पहले 9 जून को पास हुई। 4 जुलाई को भी रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी खबर आई थी और कहा गया था कि सीबीएफसी ने जन नायगन को ए सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि उस समय सिर्फ चर्चा थी, कुछ भी आधिकारिक नहीं था।
7: तुमने इतने लोग को अकेले मारा, क्या तुम सुपरमैन हो?
4: मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ।
3: पर अब सीबीएफसी की वेबसाइट पर मौजूद फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट से ये साफ हो जाता है कि फिल्म उस समय पास नहीं हुई थी, बल्कि 9 जून को पास हुई है। थलपति विजय के तमाम फैंस को अब जन नायगन की रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है।
5: मुझे आदमी में नहीं जा रहा।
3: कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। फिलहाल मेकर्स की ओर से रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है।
4: आने वाला खतरा भी हम टाल सकते हैं।
3: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: और अब एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से जो सामने आ रही है। मेलबर्न में इन दिनों इंडियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर आमिर खान प्रोडक्शंस ने नई फिल्म सिल्क्यारा 41 का ऐलान किया है। ये फिल्म माइंड ब्लोइंग फिल्म्स और कबीर खान फिल्म्स के सहयोग से बनाई जाएगी। सिल्क्यारा 41 भारत के उत्तराखंड में मौजूद सिल्क्यारा टनल में हुए अद्भुत बचाव अभियान पर आधारित होगी।
1: और देखिए, इस अभियान में दुनिया भर में मशहूर ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने शानदार काम किया है। फिल्म की कहानी ऑस्ट्रेलिया के चर्चित स्क्रीन राइटर ने लिखी है और इसका निर्देशन पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्म मेकर कबीर खान करेंगे। फिल्म भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक खास सहयोग का उदाहरण है, जो दोनों देशों की रचनात्मक ताकत, कहानी कहने की परंपरा और प्रोडक्शन एक्सपर्टीज को एक साथ लेकर आएगी। खास बात यह है कि सिल्क्यारा 41 का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने रिश्तों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
2: I'm really proud as Premier Victoria about the existing strong relationship we have between Victoria and India, and further developing that through the creative industries, through co-production partnerships like this one, not only strengthens that relationship, but it tells our shared story to the world, a story that's founded on family, on hard work, on connection to community, on hope. And a love of the film industry. We've got so much in common, and that's what I'm looking forward to seeing as a result of this production.
1: मेलबर्न में इन दिनों इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए आमिर खान भी गए हुए हैं। इस फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस करेगा। सिनेमा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी की घोषणा करते हुए आमिर खान बेहद खुश नजर आए।
0: आमिर खान ने कहा है कि माइंड ब्लोइंग फिल्म्स और आमिर खान प्रोडक्शंस के बीच इस खास सहयोग की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू की कहानी ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। ये मुश्किल हालात में साहस, जज्बे, सूझबूझ और इंसानियत की कहानी है। हमें खासतौर पर खुशी है कि हम इसकी घोषणा ऐसे ऐतिहासिक दिन कर रहे हैं जब भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने द्विपक्षीय रिश्तों में एक अध्याय की नई शुरुआत कर रहे हैं।
1: और देखिए, ये भी खास बात है कि हमारे दोनों देश मिलकर ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंसानी जज्बे की जीत की कहानी को सामने लाती है।

0: तो आज कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए धमाल आई है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के साथ रवि किशन, संजय मिश्रा जैसे दिग्गज हंसी का ओवरडोज लेकर आ गए हैं।
1: मतलब इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज धमाल 4 है, जो इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। इसी के साथ अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा स्टारर कोर्टरूम ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वहीं बच्चों के लिए डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मुआना भी आई है। फिल्म में कैथरीन लगाइया मुआना के किरदार में आपको नजर आएंगी, जबकि ड्वेन जॉनसन एक बार फिर से माओई के किरदार में आपको नजर आएंगे। चलिए आज रिलीज हुई फिल्मों की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको धमाल 4, मुआना और ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म इक्का भी नजर आएगी। तो एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके पास एक से बढ़कर एक बॉलीवुड और हॉलीवुड के ऑप्शंस हैं। और चलिए अब बात करते हैं मानसून के बदले हुए नजारे की।

0: देश भर में मानसून अब पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं पहाड़ों पर प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत तस्वीरें उकेर रही है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम सुहाना है, आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
1: वहीं हिमालय की वादियों में बादलों ने ऐसा रेरा डाला है कि लगता है मानो आसमान खुद धरती पर उतर आया हो। शिमला का मॉल रोड बादलों और कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है, जहां सैलानी इस दिलकश मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
0: उधर देखिए, बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर के पीछे बादलों ने प्रकृति की ऐसी अद्भुत आकृति बनाई जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मानसून की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश सिर्फ बूंदे ही नहीं लाती बल्कि अपने साथ प्रकृति का सबसे मनमोहक रूप भी लेकर आती है।
1: तो देखिए, मानसून में कुदरत की खूबसूरती निहारने वालों के लिए शिमला इस वक्त शानदार डेस्टिनेशन बना हुआ है, क्योंकि शिमला में मौसम पूरी तरह से खुशनुमा है। आसमान पर घने बादलों की चादर छाई हुई है और पहाड़ों के बीच तैरते बादल पूरे शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ठंडी हवाएं, बादलों का ये मनमोहक नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है।
0: और देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया है तो कोई दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों में सुकून के पल

0: देखिए पहाड़ों के बीच से गुजरते बादल, हरियाली से ढकी हुई वादियां और धुंध में लिपटे नजारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पर्यटक भी इस खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कोई बादलों के बीच सेल्फी लेता हुआ नजर आएगा तो कोई इस यादगार पल को अपने कैमरा में कैद कर रहा है। शिमला का ये सुहाना मौसम न सिर्फ स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है बल्कि पर्यटन कारोबार में भी नई रौनक लेकर आया है।
1: बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। बादल देखो ऊपर हमारे साथ में, कितना अच्छा व्यू है। वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी और निकले थे हम, तो सोचा हम शिमले चलेंगे, तो बहुत अच्छा यहाँ का मौसम, बहुत अच्छा वेदर रहा। हम 2-3 दिन बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया।
2: पूरी फैमिली आई है साथ में और हम हिमाचल शिमले में पूरी फैमिली को फर्स्ट टाइम लेकर आए हूँ। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा मौसम है। वहाँ पे थोड़ी सी चिपचिपी गर्मी है चंडीगढ़ में, तो एकदम से हमारा प्लान बना कि हम शिमला फर्स्ट टाइम। फैमिली बहुत हैप्पी है और मैं इतना खुश हूँ कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि हम इधर आके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत एक ही जन्नत में आ गए हो जैसे।
3: हम आए थे वहाँ पे बारिश

0: हो रही थी, पर जो मौसम अभी यहाँ देखने को मिल रहा है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: वहीं देखिए मानसून ने कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। डल झील पर भी तैरते शिकारे, पहाड़ों को छूते बादल और ठंडी हवाएं हर सैलानी का दिल जीत रही हैं।
2: कोई शिकारी की सैर का आनंद ले रहा है तो कोई झील के किनारे इस सुहावने मौसम को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। बारिश और बादलों ने वादी को और भी हसीन बना दिया है और यही वजह है कश्मीर में इन दिनों सुकून, उमंग और उत्साह का अनोखा संगम मिल रहा है। तो वहीं देश भर में मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लंबे इंतजार के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है।
1: वो देखिए आज के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं पश्चिम यूपी के लिए भी आज रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: ये तस्वीर बता रही है कि मानसून अब पूरे भारत पर छा चुका है। यही वजह है कि पूरा भारत बारिश से तरबतर है। कहीं बारिश राहत लेकर आई है तो कहीं बादल जिंदगी का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि जुलाई के शुरुआती 9 दिनों में देश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वही अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
4: मानसून ऑलमोस्ट जो राजस्थान के हिस्से कुछ बचे हुए थे, कुछ पंजाब के और हरियाणा के हिस्से बचे हुए थे, तो मानसून आज पूरा इंडिया कवर कर चुका है। उसका रीजन क्या है कि एक पहले लो प्रेशर एरिया पिछले कुछ दिन पहले बना था बे ऑफ बंगाल में, स्लोली जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करता रहा, इंटेंसीफाई हुआ, डिप्रेशन बना और आज की डेट में जो वो है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है वो साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग एरिया में है। कल नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में था जिसके प्रभाव से जो सीजनल ट्रफ है या मानसून ट्रफ है वो भी नियर नॉर्मल था, जिसके कारण NCR इवन पूरा रीजन वेस्ट UP उत्तराखंड वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रहा, NCR में भी वेरी हैवी रेनफॉल रहा।
3: अगर दिल्ली NCR की बात करें तो गुरुवार को बरसे बादलों ने मानसून के देर से आने की सारी कसर पूरी कर दी है। कल सुबह से लेकर शाम तक बादल बरसते रहे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के सफदरजंग में 72.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज भी दिल्ली पर दिन भर बादलों का डेरा रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर भारी बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम कूल बना हुआ है। यूपी में भी मन भर मानसून बरस रहा है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बरेली, पीलीभीत, संभल और बदायूं के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। खराब मौसम की आशंका के चलते गाजियाबाद में आज नर्सरी के अलावा क्लास 1 से क्लास 12 तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में भी प्रशासन ने एहतियातन आज प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आज भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यही वजह है कि हरिद्वार में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एहतियातन बंद रखे गए हैं। देहरादून में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, लिहाजा यहां भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत और चमोली में भी स्कूलों को बंद रखा गया है। मानसून पूरे भारत पर मेहरबान जरूर है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में ये बारिश बड़ी मुसीबत की वजह भी बनी हुई है। ऐसे में किसी भी आपदा से निपटने के लिए NDRF की तैयारी पूरी है। देश भर में 91 NDRF टीमें पहले से ही तैनात हैं। NDRF गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों पर नजर बनाए हुए हैं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। गुजरात में NDRF की 13 टीमें तैनात हैं, तो महाराष्ट्र में 15 और केरल में 9 टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में NDRF की 13 टीमें मौजूद हैं, जिनमें 7 टीमें श्री अमरनाथ यात्रा के बेस और ट्रांजिट कैंपों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: भारत में डायबिटीज के इलाज में एक बड़ी क्रांति हुई है। डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने देश में दुनिया का पहला हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन एविक्ली लॉन्च किया है। इस नई दवा से मरीजों को साल भर में 365 की जगह सिर्फ 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे, जिससे इलाज आसान होगा। ऐसे समय में जब भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इस लॉन्च को इलाज के क्षेत्र में एक अहम कदम भी माना जा रहा है।
3: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में अवेक्ली को लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी बेसल इंसुलिन है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा, यानी अब रोजाना इंजेक्शन लगाने के बजाय साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन ही डायबिटीज से लड़ने के लिए काफी होंगे।
5: देखिए, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसको तो टाइप 2 डायबिटीज है, और मोस्टली वो लाइफस्टाइल से होती है या आपके जो जीन्स है उसकी वजह से होती है, और या जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि वो लोग जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार टीका लगाना हर रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो ये इंसुलिन का जो टीका है सप्ताह में सिर्फ एक बार लगाना है, यानी 365 दिन की जगह आपको सिर्फ 52 वीक्स, दैट मीन्स 52 टाइम्स, 52 बार ये टीका लगाना है। ये बहुत कम जो है पेन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है।
3: कंपनी का दावा है कि भारत में कई मरीज रोज इंजेक्शन लगाने के डर की वजह से इंसुलिन शुरू करने में 7 से 9 साल तक की देरी कर देते हैं, लेकिन ये वीकली इंसुलिन इस डर को कम करने और इलाज को आसान बनाने में मदद करेगी। ये दवा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए लॉन्च की गई है। भारत में अवीकली का 700 यूनिट का पैक 2611 रुपए में मिलेगा, यानी प्रति यूनिट कीमत करीब 3.73 रुपए होगी, जो कंपनी के मुताबिक मौजूदा डेली बेसल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40% तक सस्ती है। अगर किसी मरीज को रोज 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है तो उसे सप्ताह में 70 यूनिट अवीकली लेनी होगी, जिसकी लागत करीब 261 रुपए प्रति सप्ताह होगी।
5: ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया की प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, विच इज फार मोर चीपर इकोनॉमिकल, जो कि आज के मॉडर्न इंसुलिन है। 3.73 रुपीस, यानी 3.73 रुपया पर यूनिट ये इसकी कॉस्ट रहेगी, 2611 रुपए एक पेन का, जिसमें 700 यूनिट होंगे। तो ये बहुत ही उम्दा दवाई है और सस्ती दवाई है, बट डॉक्टर इज द राइट पर्सन टू प्रिस्क्राइब, और डॉक्टर व्हेन दे वांट टू इनिशिएट, दैट इज वेयर यू शुड यूज देयर एडवाइस।
3: ये इंसुलिन मरीज को फ्लेक्स टच पेन के जरिए दी जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल में इसने रोजाना लगने वाले इंसुलिन के बराबर या उससे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करके दिखाया है। कंपनी का कहना है कि अवीकली को इसी साल शुरुआत में अमेरिका से मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूरोपीय संघ और तमाम दूसरे देशों में भी हरी झंडी मिल चुकी है। भारत 7वां देश है जहां इस दवा को लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए मॉनसून में आस्था किया था।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही भारत की साख, पहली बार अमेरिका और इसराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल, भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, मस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर, पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का किया ऐलान। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और चढ़ावे के सिस्टम में होंगे बदलाव, 22 जुलाई को ट्रस्ट बैठक में नए सदस्यों का किया जाएगा चयन, सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली में भी होंगे सुधार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: हिमालय की वादियों में मॉनसून का हर नजारा अलौकिक होता है, बद्रीनाथ धाम में मंदिर के ऊपर और पीछे बादलों ने डेरा डाला है, देखने में लगता है मानो देवभूमि को प्रकृति ने अपनी सफेद चादर में समेट लिया हो।
3: कभी बादल मंदिर के शिखर को छूते नजर आते हैं तो कभी पहाड़ों के बीच अनोखी आकृतियां बनाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। आस्था और प्रकृति का ये अद्भुत संगम है, ये मौसम हर किसी को ठहर कर इन नजारों को निहारने पर मजबूर कर रहा है। इस मौसम में भी भक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं
2: और देखिए भीड़ कम होने से उन्हें आसानी से दर्शन करने में भी काफी सहूलियत होने वाली है।
3: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है।
2: बिल्कुल, हालांकि इन सबके बीच में श्रद्धालुओं का उत्साह भी चरम पर है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद में थोड़ी सी कमी आई हो लेकिन धामों की रौनक बरकरार है। इसी बीच मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।
4: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
5: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है, बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी। ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
4: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश

0: है। लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: 3 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं की रौनक है। यहां आस्था भक्ति के अलग अलग रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। आस्था का आलम यह है कि खराब मौसम के बावजूद भक्त यहां पर आ रहे हैं।
2: एक हफ्ते के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन भी यहां पर कर चुके हैं।
0: मानसून की चुनौतियों के बीच श्री अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। चाहे बालटाल हो या पहलगाम, दोनों ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की रौनक है। आस्था का आलम यह है कि यात्रा शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़कर करीब 1.5 लाख तक पहुंच गया है। अब तक करीब 1,45,000 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 30% ज्यादा है। ये हाल तब है जब हिमलिंग पिघल चुका है, बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं और पहाड़ों में बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, सब पर भारी है बाबा बर्फानी में श्रद्धालुओं की आस्था, जो हर रोज नए आंकड़े के साथ लोगों को हैरान कर रही है। और श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा न सिर्फ सनातन धर्म में लोगों की आस्था का पता बता रहा है, बल्कि देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद से सबके चेहरे खिले हुए हैं।
3: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं।
4: जी जी,
3: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग।
5: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
3: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
5: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
0: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है, तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
6: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग, चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
3: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं, ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
6: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा हमारा
3: जी। साथ में ये भी है कि इसमें कमाई अपनी जगह, लेकिन
6: हाँ जी,
3: कश्मीर मेहमान नवाजी,
6: कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पर माना जाता है। और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यहाँ यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
0: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों की आजीविका का साधन रही है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, बस कुछ ही दिनों का इंतजार और फिर पूरी दुनिया उस दिव्य पल की साक्षी बनेगी जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: रथ तैयार है, रंगों की चमक बढ़ रही है, भक्ति और विश्वास की झलक दिखने लगी है। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब शंखनाद गूंजेगा, मंदिर के सिंह द्वार खुलेंगे और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ लगभग तैयार हो चुका है। रथ का शिखर भी अंतिम रूप ले रहा है। अब कलाकार बड़ी बारीकी से इन रथों पर रंग भर रहे हैं। लाल, पीले, हरे और नीले रंगों से सजे ये रथ धीरे धीरे अपनी दिव्य पहचान पा रहे हैं।
1: जय जगन्नाथ। अभी तो हमारा रथ का जो काम है वो प्राय तो शेष पर लास्ट स्टेज पे, अभी हमारा रथ को जो सजाने का काम चल रहा है। अभी जैसे कि रथ के ऊपर जो हंस है, हंस पटा, और जो कन्या सखियों है, सखियों का पटा, और ये जो रथ के पार्श्वदेव देव है, सभी रथ में नौ पार्श्वदेव, ये बलभद्र जी के देवता है नौ पार्श्वदेवता, माँ के देवी है नौ देवी और जगन्नाथ जी के नौ देवता है, तो ऐसे करके सारे रथ में अभी लग रहे हैं।
0: इन दिव्य रथों को देखने वाला हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ठहर जाता है। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो कोई श्रद्धा के रथ की लकड़ी को स्पर्श कर माथे से लगा लेता है। रथ को सजाने वाले कारीगर भी हर काम शुरू करने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि सेवा है।
2: उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखे, सुस्त रखे, कि अगले साल वो भी फिर से आकर आपकी सेवा में नियुक्त हो सके। जरूर, ये तो खुशी, एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम भी है कि हर साल की तरह इस साल भी काम आरंभ हो के खत्म होने के बाद आ रहा है। जो जितने भी कारीगर लोग हैं अपने मन में प्रसन्नता भरे हुए, साथ में ये भी दुख है कि हमारा जो कार्य था 3 महीने से काम में लगे हुए थे, मुलझुल के काम कर रहे थे, वो समय अभी खत्म हो गया।
0: भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, जिसका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। सैकड़ों सेवायत, बढ़ई और कलाकार दिन रात मेहनत करके इन रथों को तैयार करते हैं। परंपरा के अनुसार हर रथ का आकार, रंग, ध्वज और सजावट अलग होती है और हर छोटी बड़ी बात का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। लकड़ी की नक्काशी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पारंपरिक चित्रकारी से इन्हें सजाया जा रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु रथ निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। कोई दूर से दर्शन कर रहा है तो कोई हाथ जोड़कर महाप्रभु से अपनी मनोकामना मांग रहा है। रथ के सामने झुकते इन भक्तों की आंखों में आस्था साफ दिखाई देती है।
2: और कोई सेवक जो सात रथ कर रहे हैं, सभी अपने अपने कार्य में लिप्त हुए हैं। आखिरी पड़ाव में रथ को सब मिलकर सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी काम में 2-3 दिन में हम ये काम खत्म करके प्रशासन को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्तुत है।
0: अब बस एक हफ्ते का इंतजार बाकी है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब बस 16 जुलाई की इस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भक्तों के बीच भगवान आएंगे। इसके बाद लाखों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से इन रथों को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए जीएनटी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
7: देखिए सावन आने वाला है और उसके साथ ही देवघर में शुरू होने जा रहा है आस्था का सबसे बड़ा महापर्व। 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज होगा। लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम सज रहा है,
8: मंदिर निखर रहा है और पूरा शहर बम बम भोले के जय घोष के साथ तैयार हो रहा है।
0: देवघर जो बाबा का धाम है, जहां सावन का हर दिन शिवमय हो जाता है, वही बैद्यनाथ धाम एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर कोना सजाया जा रहा है ताकि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता का एहसास हो।
9: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन की तैयारी 30 जुलाई से है, जो प्रशासनिक तैयारी है। वैसे बाबा बैद्यनाथ की प्राचीन परंपरा 16 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। 17 जुलाई से मंगला सावन, जो यहाँ के मंदिर की परंपरा है, वो 17 जुलाई से उसमें बेलपत्र आदि सस्ता है और मंदिर का पट जो है भीड़ नहीं रहने के बाद भी 8 बजे रात तक बेलपत्र चलने के बाद बंद होता है।
0: 30 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला पूरे एक महीने तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में स्पर्श पूजा और वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। श्रावणी मेले में देश के अलग अलग राज्यों से 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
10: मूलतः 30 जुलाई से एक महीने के लिए राखी पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा से राखी पूर्णिमा तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निषेध है और वहां अर्घा से जलार्पण।
0: श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कावड़ियों के रूट का निरीक्षण किया, साथ ही मेले के दौरान एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की जाएगी।
11: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज्यादा डेपुटेशन होती है बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है।
0: मंदिर सज चुका है, तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अब इंतजार है 30 जुलाई का, जब बोल बम के जय घोष के बीच आस्था की अनवरत धारा एक बार फिर देवघर पहुंचेगी। करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा, सेवा और विश्वास का ये महापर्व एक बार फिर बाबा बैद्यनाथ की नगरी को शिवमय बना देगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
8: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए GNT।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
5: Barra Winery and Distillery crafts award-winning American sparkling wine in the heart of New Mexico. Discover our Brut, Brut Rosé, Zero Dosage and Blanc de Blancs at VaraWines.com. That's VaraWines.com. Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
12: Good news today.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
14: बहू और बेटियां में आज लगेगा रिश्तों में डांस का तड़का। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
7: दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर्स में बढ़ रही भारत की साख, पहली बार अमेरिका और इसराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल। भारत दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही भारत की साख, पहली बार अमेरिका और इसराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल। भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, मैस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर। पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का भी किया ऐलान। पुणे में गूंजा 11वां तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां, सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। दिग्गज सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जन नायगन की ग्रीन को ग्रीन सिग्नल, सेंसर बोर्ड ने जारी किया ये सर्टिफिकेट, 24 जुलाई को होगी रिलीज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच। दिसंबर से बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा, जो इतिहास में पहली बार होगा। युवा खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने मैदान पर युवाओं को बढ़ाया हौसला और उनकी जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्कट रूबी द रू से हुई पीएम मोदी की मजेदार मुलाकात। पीएम ने मस्कट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत की। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती होगी और ज्यादा मजबूत। दोनों देशों ने खेल सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे क्रिकेट और सांस्कृतिक रिश्ते और गहरे होंगे। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा। बादलों से घिरे तीर्थ की सुंदरता और बढ़ रही है। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर रख रहा है नजर। चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमें सतर्क। यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही है निगरानी। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा भी निरंतर जारी। तापमान में गिरावट के बाद भी मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर। मंदिर परिसर में हो रहा है पेंटिंग और मरम्मत का काम। तीस जुलाई से शुरू होने वाला है श्रावणी मेला। लाखों की तादाद में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन के पवित्र महीने में एक महीने तक चलता है भव्य मेला। 50 लाख कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के धाम में करते हैं अर्पित। श्रावणी मेले के दौरान स्पर्श पूजा और वीआईपी पूजा पर रहती है रोक। देश विदेश से पूजा दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर श्रावणी मेला के दौरान 10,000 पुलिस बल और अधिकारियों की होगी तैनाती। एसपी ने कांवड़िया पथ का जायजा लिया। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत। लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम का जयघोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 2 दिन तक भवानीपेट के विट्ठल मंदिर में रुकेगी। वहीं संत तुकाराम महाराज की पालकी नानापेट के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरेगी। पालकी यात्रा के दौरान पुणे की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालु विट्ठल नाम का जयघोष करते नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुणे पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए। पानी, स्वास्थ्य, सफाई और ट्रैफिक की भी खास व्यवस्था की गई। पालकी यात्रा से पूरा पुणे भक्ति में माहौल से डूबा। शहर में और ज्ञानोबा तुकाराम के जयघोष की गूंज सुनाई दी। रोहतास में भी सावन में शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठकर भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर मंथन किया। मुंगेर में भी सावन के महीने के शुभारंभ से पहले तैयारियां तेज। डीएम ने कच्ची कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया, जल व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा श्री जगन्नाथ रथ लगभग तैयार। करीब एक वर्ष की मेहनत से तैयार किया गया भव्य लोहे का रथ। 19 जुलाई को स्कॉन की ओर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी। भव्य समारोह के लिए किए जा रहे इंतजाम। पूरी में रथ यात्रा की तैयारी तेज। बड़ा डांडा की रंग बिरंगी सजावट से बड़ी रौनक। भक्तों का उत्साह देखने लायक। रथ यात्रा से पहले पुरी का श्रृंगार, मुख्य मार्ग पर आकर्षक सजावट, सुरक्षा व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बड़ा डांडा बना आस्था का केंद्र, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए शहर तैयार, उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुरी में उत्सव का माहौल, रथ यात्रा से पहले सड़कों पर सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों की रौनक बढ़ी। जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासन ने तैयारियां तेज की, लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर, अहमदाबाद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष पोशाक तैयार की गई, श्रृंगार और आभूषणों पर भी दिया जा रहा है खासा ध्यान। अहमदाबाद में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होते हैं श्रद्धालु। जमालपुर में मौजूद 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा, कुल 18 किलोमीटर का होता है यात्रा का रूट। भव्य रथ यात्रा में विशाल और अलंकृत रथों के साथ होते हैं सज्जे धजे हाथी, अखाड़े और भजन मंडली, शोभा यात्रा के दौरान 100 झांकियां भी होती हैं शामिल। कश्मीर की डल झील में पर्यटक पारंपरिक शिकारा नावों की सवारी का ले रहे हैं आनंद, खूबसूरत नजारों और शांत पानी के बीच लोग बिता रहे हैं यादगार पल। डल झील की शिकारा सवारी देश विदेश से आने वाले लोगों को कर रही है आकर्षित, सैलानियों को लुभा रहा है घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य। शिकारा कश्मीर की पुरानी और खास परंपरा का हिस्सा है, पर्यटकों को पसंद आ रहा है शिकारा का राइड। डल झील में बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय कारोबारियों को हो रहा है फायदा, शिकारा चलाने वाले लोग भी अच्छी कमाई की कर रहे हैं उम्मीद। पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे, स्थानीय युवाओं के लिए कमाई के बने अवसर। शिमला में छाया मानसून का जादू, पहाड़ों के बीच तैरते बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे हैं लोग परिवार और दोस्तों के साथ, पहाड़ों की वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। आसमान पर छाए घने बादल और ठंडी फिजा ने हिल स्टेशन की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाया, प्रकृति की अनुपम छटा देखने के लिए सैलानियों की भीड़ बढ़ी। शिमला की वादियों में छाई ठंडक, मानसून के खुशनुमा मौसम ने पर्यटकों को पहाड़ों की ओर खींचा। बादलों और हरियाली के बीच सैलानी ले रहे हैं यादगार छुट्टियों का आनंद, शिमला इस वक्त बना हुआ है सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, कहीं तेज तो कहीं हल्की फुहारों ने दी गर्मी और उमस से राहत, लोगों ने भी मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। रुद्रप्रयाग जनपद में दो दिनों से बारिश का दौर जारी है, 8 जुलाई से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में स्कूलों की घोषित की गई छुट्टी, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने बरता एहतियात। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, शहर की सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दो दिन से बारिश का दौर जारी है, आज भी भारी बारिश के अनुमान, गाजियाबाद के स्कूलों में एहतियातन छुट्टी का आदेश। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, राहत और बचाव टीम के साथ प्रशासन अलर्ट मोड पर, टिहरी रुद्रप्रयाग नैनीताल चंपावत चमोली में छुट्टी घोषित। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दो दिन से लगातार हो रही है जोरदार बारिश के चलते डीएम का फैसला, मेरठ हापुड़ बिजनौर मुजफ्फरनगर में आज स्कूल रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ा, 15 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। पूरे देश में मॉनसून की बारिश का दौर जारी, महाराष्ट्र गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है भारत की साख, भारत में पहली बार बनेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स भारत में करेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर का उत्पादन। मेक इन इंडिया के तहत लगेगी नई प्रोडक्शन लाइन। इजरायली रक्षा कंपनी ने भारत से शुरू की बातचीत, भारतीय रक्षा कंपनी के साथ साझेदारी की तैयारी। भारत बनेगा वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र, भारत से मित्र देशों को निर्यात का भी खुलेगा इससे रास्ता। आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगी बड़ी मजबूती, रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। देश में डायबिटीज से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज, अब रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत होगी खत्म। हफ्ते में केवल एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन एविकली भारत में लॉन्च। डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने लॉन्च की नई दवा बेसल इंसुलिन एक्विली, दुनिया की पहली दवा जिसे हफ्ते में केवल एक बार लेने की जरूरत होती है। अब डायबिटीज के मरीजों के साल भर में नहीं लेने होंगे उन्हें 362 दिन इंसुलिन के इंजेक्शन, केवल 52 इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने की होगी जरूरत। 18 साल से ज्यादा उम्र के टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद, दवा लेने के नियम का पालन करना होगा आसान। भारत में किफायती दामों पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी नई दवा, 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज प्रभावित लोगों को इससे होगा फायदा। अब ट्रेन्स में भी विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मध्य रेलवे ने वीडियो सर्वेलांस सिस्टम का ट्रायल का शुभारंभ किया। ट्रेन हादसे की रोकथाम के लिए मिल सकेगी जरूरी जानकारी, जल्द ही 26 ट्रेनों में किया जाएगा ट्रायल। पहले चरण में एक ट्रेन के इंजन में इंस्टॉल किया गया वीडियो सर्वेलांस सिस्टम, कुल 6 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और एक वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स लगाया गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में पॉक्सो जागरूकता अभियान की पहल, स्कूलों में बाल सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य प्रोटोकॉल लागू करेगी दिल्ली सरकार। फुटपाथ पर पैदल चले वालों की सुरक्षा बहाल करने के लिए बेंगलुरु में सेफ फुटपाथ कैंपेन शुरू किया गया, शहर के 5 नगर निगम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। स्विट्जरलैंड के एआई समिट में दिखा अनोखा ह्यूमनॉइड रोबोट, ये रोबोट ट्रंप, सुगर्सबर्ग और ओबामा जैसी नामचीन हस्तियों समेत कई चेहरों की शक्ल बना सकता है। रोबोट सिर्फ बोलता ही नहीं, मुस्कुराता और चेहरे के हाव भाव भी दिखाता है, डेवलपर्स का दावा। इससे इंसान और रोबोट की बातचीत होगी और भी ज्यादा आसान। रोबोट बनाने वाले कंपनी का कहना है कि इसका मकसद किसी इंसान की हूबहू कॉपी बनाना नहीं, चेहरा बदलने के बावजूद साफ दिखता है कि सामने एक रोबोट ही है। एआई समिट में स्मार्ट रोबोटिक फर्नीचर ने भी सबका ध्यान खींचा, टेबल और फर्नीचर खुद चलकर रास्ता खाली कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से जगह बदल लेते हैं। ये खास रोबोटिक फर्नीचर बुजुर्गों और कम चल फिर पाने वाले लोगों के लिए साबित होगा मददगार, आम लोगों की जिंदगी इससे बनाएगा आसान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सास बहु और बेटिया में आज लगेगा रिश्तों में डांस का तड़का। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटिया में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
3: बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल है। बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की कुर्सी से, लेकिन जब कुर्सी हटा ली गई तब भी एक बच्चा गिरा तक नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जाहिर है इस एक्टिविटी के साथ बच्चे साथियों के लिए समर्पण और सहयोग और कर्तव्य की सीख ले रहे हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्ची किसी बात पर पिता से रूठ गई है और शायद जब तक मनाया नहीं जाएगा वो मानेगी नहीं, और पिता जैसे ही मनाने का एक स्टेप लेते हैं बिटिया का गुस्सा उड़न छू हो जाता है। वायरल वीडियो की ये तस्वीरें सबको लुभा रही हैं और लगभग सभी यूजर्स इस बच्ची को देख यही कह रहे हैं कि उम्र का कोई मतलब नहीं। हर औरत की यही कहानी होती है, रूठती है और मनाने पर तुरंत मान जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। बुजुर्ग दादी अमरनाथ यात्रा पर निकली है और उनकी इस दुर्गम रास्ते की चढ़ाई की तस्वीरें चर्चा में है। लोग उनकी आस्था देखकर प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं, आस्था उम्र की मोहताज नहीं होती। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां कठिन से कठिन मार्ग भी आसान लगता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति दिखावे, रीलों और तस्वीरों से नहीं होती, बल्कि समर्पण, विश्वास और साधना से पहचानी जाती है, जो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें हौसला बढ़ाती हैं। खुद ही देखिए, बच्चों संग वो शख्स भी दौड़ में शामिल हुआ है जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसकी दौड़ की तस्वीर उसके जुनून, उसकी हिम्मत और उसकी लगन का परिचय दे रही है। ये तस्वीरें बचपन की उस कहानी की याद पुख्ता करती हैं, जिनमें दुनिया में सबसे तेज वो इंसान दौड़ता है जिसके दोनों पैर नहीं थे। आज इन तस्वीरों ने कहानी को हकीकत का जामा पहना दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस शख्स के जज्बे का मुरीद बन गया है। बारिश के मौसम की ये तस्वीरें कुल्लू की है, जहां नदी अपने रौद्र रूप में है, और यहां रहने वाली ये महिला नदी माता को आटा समर्पित कर प्रार्थना कर रही है कि वो शांत हो जाए और इन सब की रक्षा करे। नदियों के तट पर बसे इलाकों में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है, और इसीलिए बाढ़ बारिश में लोग नदियों की पूजा कर उनसे शांत रहने की गुहार लगाते हैं। इन महिलाओं के इस अटूट विश्वास को लोग नमन कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी, फूलों झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग, 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है भारत की साख, पहली बार अमेरिका और इजराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल, भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और बच्चों में प्रधानमंत्री से की मुलाकात, मॉस्कॉट के साथ खिंचवाई तस्वीर, पहली बार बिग बैश लीग के मैच भारत में होने का भी ऐलान किया। पुणे में गूंजा ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष, लाखों श्रद्धालुओं के साथ पहुंची दोनों पालकियां, सुरक्षा और सुविधा के लिए भी किए गए विशेष इंतजाम। दिग्गज सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जन नायगन को ग्रीन सिग्नल, सेंसर बोर्ड ने जारी किया ये सर्टिफिकेट, 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: हर औरत के वार्डरोब में उसके कपड़ों के साथ साथ और एक चीज बहुत ही खास होती है, उसका फुटवेयर कलेक्शन, चाहे हील्स हो, स्नीकर्स हो, वेजेस हो, फ्लैट्स हो या फिर स्टिलेटोस। अब देखिए, हर फुटवेयर का ना अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक पर्सनैलिटी। उसी तरह है हमारी टीवी की दुनिया, जहां रोजाना है नए नए स्टाइल्स, नए नए इमोशंस और नए नए ट्विस्ट। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आज आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस फैशनेबल सफर पर। शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए, पोदार हाउस में झूम कर आएंगी खुशियां, परिवार वाले झूला झूल कर करेंगे सावन का सेलिब्रेशन।
5: आपका इस घर से जाने का समय आ गया है।
4: आरंभी ने मार ली बाजी, अवंतिका को मिल गया घर निकाला।

चांद की याददाश्त वापस लाने के लिए मन्नत करेंगी डांस धमाल, होगा बीते कल का एहसास। बिंदिया चलेगी चाल, उठेंगे रीत की ममता पर सवाल। नई बहुरानी के आने से क्या बच्चन हाउस में होगी भाइयों के बीच झड़प? दंगल टीवी में होगा नए सीरियल का आगाज, जहां होगी एक दीवानी और दो दीवाने। और साथ ही करेंगे मुलाकात अपराजिता की माँ मालती यानी कि श्रुति घोलप से, और जानेंगे उनकी डियर जिंदगी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: डॉक्टर आदम भी देखिए आज तो फुटवेयर के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे आप तो जरूर पहनती होंगी फ्लैट फुटवेयर। एक तो यहाँ पर हमारी जो डॉक्टर आदम भी है यानी ऐश्वर्या खरे अच्छी खासी लंबी है, और दूसरा कितनी भागदौड़ करती हैं ये अपनी कहानी में। ओ माय गॉड, यहाँ तो होता है सिर्फ और सिर्फ उसका तूफान। तो चलिए फिर पता कर कर आते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में। आज लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के पास।
1: आपका इस घर से जाने का समय आ गया है।
2: अवंतिका को मिला घर निकाला। सौतनों की टशनेबाजी। कामयाब हुई आरंभी।

0: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में राज और नायरा की मेहंदी की रस्म में जो भी तमाशा हुआ था अवंतिका और विश्वास के जरिए, उस तमाशे से परेशान हो गए हैं आरंभी के ससुराल वाले। ऐसे में वो घर लौट तो आए हैं, लेकिन फिर भी मायूसी उनके चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि उनकी बेइज्जती जो हुई है। ऐसे में ध्रुव ने अपनी बात सभी के सामने रखी और कहा कि वो इस घर का मेहमान है और मेहमानों का ज्यादा दिन घर में रहना ठीक नहीं, इसलिए अब वो सभी से विदा लेगा जाने के लिए। लेकिन आरंभी के ससुर जी ने ध्रुव को रोक लिया, लेकिन तभी आरंभी ने अपना पासा फेंक दिया और देखे कैसे सभी के सामने अपने आप को सही साबित कर दिया।
1: मुझे लगता है कि अगर सारी प्लानिंग मेरे हाथ में होती तो शायद ये सब कुछ हो जाए, लेकिन डॉक्टर अवंतिका वो बार बार हर बार मेरी प्लानिंग में इंटरफेयर कर रही है। मैं तो चाहती थी कि सारे शादी के फंक्शंस हमारे घर से हों, जैसे हमेशा से होता है, लेकिन डॉक्टर अवंतिका ने मम्मी जी को मना दिया रिजॉर्ट में जाने के लिए और अपने किसी दोस्त के रिजॉर्ट में गई। हमने तो वो रिजॉर्ट देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में कि क्या तैयारियां हैं वहाँ पे, कैसी वाइब है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमने भी उन पर भरोसा कर लिया और राज की शादी के फंक्शन के लिए वहाँ चली गई। मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, मम्मी जी को ऐसे ही लगता है कि डॉक्टर अवंतिका को इस घर के लोगों की, इस घर की क्या पसंद है, ये सब मुझसे बेटर पता है। एक ऐसी हाई क्लास टंडन फैमिली स्टैंडर्ड की शादी वो ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं, यही लगा था मुझे। इसलिए मैंने भी रिजॉर्ट की तैयारियां चेक नहीं की और यही एक्चुअली मेरे से सबसे बड़ी गलती है। और डे वन से रिजॉर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। पहले वो आग वाला हादसा हो गया, फिर रहमान का पूल में गिरना, फिर कल जो भी तमाशा हुआ, शादी सारे फंक्शंस हमारे घर से होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे सामने होते हैं, घर की बहू मेरी निगरानी में, ना कि बाहर के आए किसी मेहमान के मन मर्जी के, तो बेटर होता शायद ये सब ड्रामा भी नहीं।
0: हमेशा आरंभी के खिलाफ खड़ी रहने वाली आरंभी की सासू माँ डिंपल भी आज आरंभी को सही मान रही है, और तो और आरंभी के ससुर जी भी आरंभी की बात को समझ गए हैं और अब सभी को अवंतिका खटकने लगी है। इसी बीच घर में विश्वास और अवंतिका दोनों फार्म हाउस से लौट आते हैं कि तभी आरंभी के ससुर जी अवंतिका को दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और घर से जाने का आदेश देते हैं।
2: आपका इस घर से जाने का समय आ गया है।
1: पर जो हुआ उसमें मेरी फॉल्ट नहीं थी, मैं तो
2: मुझे कोई दलील नहीं सुनी। अब और कुछ मुझे नहीं दे सकता मैं।
0: अब अवंतिका ने रुकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो हार गई। ऐसे में विश्वास दो कदम आगे बढ़े और अपने पापा को समझाने लगे, लेकिन आज तो उनके पापा भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला ले लिया है।
2: परिवार के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परिवार वाले मिलकर सॉल्व करेंगे। बाहर से आए मेहमान नहीं।
0: भाई आज तो विश्वास भी कुछ कर नहीं पाए, और तो और ससुर जी ने आरंभी को आदेश दे दिया अवंतिका का सूटकेस अवंतिका को देने के लिए। बस फिर क्या, जो सूटकेस अंदर गया था वही सूटकेस लेकर आरंभी ने अवंतिका को दे दिया और दिखा दिया अपना टशन और साथ ही लगा दी अपनी जीत पर मोहर भी। भाई आज तो आरंभी ने अवंतिका को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन अवंतिका इतनी जल्दी से हार मानेगी नहीं, कोई ना कोई कांड जरूर करेगी घर में वापसी के लिए, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कभी जिंदगी के रास्ते पर मिलने वाले अनजाने लोग हम सफर बन जाते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है ना यहाँ पर रीत और राघव के साथ। लेकिन देखिए अब तो कहानी में है कॉम्प्लिकेशंस, ढेर सारा ड्रामा, यानी हमारे लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास, इनके शो जाने अनजाने हम मिले के सेट पर, और दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स।
0: बिंदिया ने चली चाल,
4: wanna get down for the night here, D-man, I just wanna feel, wanna breathe, wanna live it.
0: ममता पर उठे सवाल। प्रियांश और रीत का कनेक्शन। बिंदिया को हुई टेंशन। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में बिंदिया कोई न कोई खेल खेलती रहती है और इस बार तो उसने रियांश को मोहरा बना लिया है। असल में उसने देखा कि रीत सो गई है और रियांश खेल रहा है। बस फिर क्या, वो लेकर आ गई मोती और उसने मोती रियांश के हाथों में थमा दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। इसी बीच कमरे में आ जाता है राघव भी। अचानक उसकी नजर रियांश के हाथों पर पड़ती है और वो उसके हाथों से मोती ले लेता है। ऐसे में रीत की आंख भी खुलती है, दोनों परेशान होते हैं और तो और रियांश रोने लगता है। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठाती है बिंदिया और आ जाती है अपनी ममता दिखाने। वो तो ऐसे दिखाती है कि जैसे रियांश के रोते ही वो बेचैन हो उठी है। इतना ही नहीं, मोती देखकर वो और भी परेशान हो गई।
1: ऐसे कैसे परेशान नहीं हो? अगर आप एक माँ होती हो तो आपको पता चलता जब उसका बच्चा जब उसके बच्चे को कुछ खाने वाला हो तो अंदर से क्या बीतती है। ये सब गलती ना मेरी है। मुझे लगा घर में इतने सारे लोग हैं, सब इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन माँ की नजर तो माँ की नजर ही होती है।
0: भाई बिंदिया को जो काम करना था वो उसने कर दिया और अपने बच्चे को वहाँ से ले गई। ऐसे में रीत बेचारी, उसका दिल टूट गया है और वो अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रही है। भाई रीत को यूं परेशान होता देख राघव उसके पास जाता है, उसका हाथ थामता है और उसका हौसला बंधाता है। इतना ही नहीं, वो तो उस पर प्यार भी जता रहा है। लेकिन रीत और राघव ये सोचकर परेशान है कि आखिर रियांश के हाथों में वो मोती आया कैसे। ऐसे में रीत पहुंच गई है पीहू से सवाल जवाब करने। बस फिर क्या, पीहू से ये सवाल करते ही पूनम को आ गया गुस्सा और तो और पीहू के पापा भी रीत पर नाराज हो रहे हैं।
4: इनफैक्ट हमने उसे कहा था कि वॉशरूम चली जाए, लेकिन वो इसलिए भी नहीं गया, तो फिर वो तुम्हारे कमरे में रियांश के साथ कैसे खेलने जा सकती है? और हम दोनों में से कोई ना कोई हर वक्त पीहू के साथ रहता है, तो हमें बिना पता चले तुम्हारे कमरे में वो कैसे जा सकती है? और अगर तुम्हें रियांश की इतनी फिक्र है तो बोलो ना, इस बिंदिया को अपने पति के घर क्यों नहीं चली जाती है? इतने दिनों से यहाँ क्यों रुकी है? आउट ऑफ से शुरू किया था, घर के अंदर आ गई और उसके बच्चे के चक्कर में अपनी बच्ची से सवाल करेंगे।
5: अभी तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है हमारे शो में एंड जो बेबी है उसकी तबीयत खराब हो गई है और जो मैंने ही की है एंड सबको डाउट है कि वो किसने की है, सब परेशान हैं और फिर बाद में पता तो नहीं चलेगा। खैर मैंने की है, बट यस आई एम द विलेन।
0: पीहू के मम्मी पापा ही नहीं बल्कि शालिनी ने भी बिंदिया के इस घर में रहने पर सवाल कर दिए और ये सारी बातें बिंदिया दूर खड़ी सुन रही है। लेकिन बिंदिया के चेहरे पर खुशी इसलिए आ गई क्योंकि राघव बिंदिया और उसके बच्चे का साथ देने के लिए आगे आ गया, क्योंकि राघव रीत की खुशी देख रहा है, वो भी रियांश के साथ।
4: बिंदिया और रियांश की जिम्मेदारी मैंने उन्हें कहा था कि वो जब तक चाहे, पर जिस घर में किसी औरत के साथ मारपीट हुई और मैं उसे कहूं कि उस घर में वापस चले तो मेरी नजरों में एक जुर्म है। तो जब तक मैं ये राजू और बिंदिया का इशू सॉल्व नहीं करने का, तब तक बिंदिया और रियांश से उसके बाद में खुद दोनों के लिए एक अच्छी स्थिति।
6: मतलब बिंदिया हमेशा इस चीज से बच जाती है कि उसका पति उसे मारता था और वो क्योंकि ऐसे माहौल में रही है तो वो बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाती, बट रीत भी उतना आई थिंक माइंड नहीं करती है क्योंकि वो यही सोचती है कि बिंदिया बहुत मुश्किलों से गुजरी है तो शायद वो उतनी अच्छी यू नो माँ नहीं बन पा रही है. उसको टाइम लेगा, धीरे धीरे वो बन जाएगी, धीरे धीरे वो समझ जाएगी. अभी शी इज गोइंग थ्रू समथिंग तो वो इतना माइंड नहीं करती है क्योंकि अगर बच्चे के बारे में पूछा जाता है तो बिंदिया को कुछ पता ही नहीं है. और मेरे पास सिर्फ थोड़े दिन रहा है बट मुझे सब पता है उसके बारे में, तो वही डॉक्टर भी कहते हैं. बट मैं तो माइंड नहीं करती हूँ, बट मे बी शायद आगे चल के मुझे शक होने लग जाए
7: क्योंकि बिंदिया वैसे ही रहती है घर में, घर वालों के सबके सामने वो अबला नारी ही है. एंड वो तो दूसरा शेड तो आपको आगे देखने मिलेगा कि मेरा दूसरा ग्रे शेड भी है, इसमें नेगेटिव शेड भी है और एक और है लालच, वो भी है.
0: भाई आज नहीं तो कल बिंदिया का ये लालच सामने आ ही जाएगा क्योंकि बिंदिया एक एक कर धीरे धीरे गलतियां करती जा रही है. और आज तो वो रीत के साथ रियाज को लेकर पहुंच गई है अस्पताल में और उसकी मुलाकात हो गई है एक दोस्त से जिनसे बातें करते हुए रीत ने सुन लिया है और उसे डाउट हो गया है. खैर रीत बच्चे के लिए आई है, ऐसे में रीत बिंदिया के साथ डॉक्टर से मिलती है. डॉक्टर बच्चे के वैक्सीनेशन के बारे में पूछती है जिसके चलते बिंदिया हिचकिचाने लगती है, लेकिन रीत उसकी सारी रिपोर्ट देती है.

0: इतना ही नहीं, रियांश को अपनी गोदी में रखकर उसे इंजेक्शन भी लगवाती है। ऐसे में उस डॉक्टर को लगता है कि रीत ही उसकी असली माँ है। ऐसे में रीत का शक गहराता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में रीत को एक लेटर मिला है जिसमें ये बात बताई गई है कि उसका बेटा जिंदा है। बस इसीलिए वो पहुंच गई है डॉक्टर से मिलने और जानने कि डिलीवरी वाले दिन हुआ क्या था, लेकिन डॉक्टर उसे डिप्रेशन का शिकार बताती है। ऐसे में रीत को गुस्सा आ जाता है।
1: नहीं डॉक्टर, मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था, वो जिंदा है लेकिन मुझसे दूर है। और मेरी बात समझने की बजाय, मेरी मदद करने की बजाय आप मुझसे ये कह रही है कि मैं डिप्रेस हूँ इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। नहीं डॉक्टर, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच तक पहुँच रही हूँ। सच का पता मैं लगा के रहूँगी कि उस

0: ऐसी लड़की से मिली है जो कि गलत रास्ते पर है, लेकिन यहाँ पर रीत की बहन स्मिता रीत का कोई जवाब नहीं देती और दौर उसे एक लिफाफा भी छिपा रही है और छिपाते हुए वो वहाँ से निकल भी जाती है और रीत उसे डाउट हो गया है कि दाल में कुछ काला है, यानी अब रीत के पास एक नहीं बल्कि कई सारी मुश्किलें हैं जिसका हल रीत जरूर निकालेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब ऐसा फुटवेयर आप सबकी जिंदगी में तो जरूर होगा जो है आपका एब्सोल्यूट फेवरेट, चाहे हो गया हो वो कितना भी पुराना, इतना कंफर्ट देता है वो आपको कि आप कभी भी उसे डिस्कार्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह संभाल कर रखी है हमने भी आपके लिए स्पेशल स्टोरी। अब ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, क्या सब कुछ मैं ही बता दूंगी आपको, लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।
0: आकाश और सिद्धार्थ का दोस्ताना।
2: दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं। कैसे तेरी दिल लगी।
0: प्यार के त्रिकोण का नया फसाना।
3: अपनी शादी के लिए एक परफेक्ट सी लड़की ढूंढ रहा था, मैंने कहा शादी तेरी है पर पसंद मेरी होगी।
0: कजरी के लिए सिद्धार्थ और आकाश की दिल लगी।
4: जिंदगी में आई क्यों।
0: दंगल टीवी पर आ गया है नया सीरियल लेकर रिश्तों की नई कहानी जिसका नाम है कैसी तेरी दिल लगी। ये दिल लगी भाइयों की है, ये दिल लगी प्यार की है, ये दिल लगी हम सफर की है और ये दिल लगी रिश्तों की है, जिसकी खातिर आकाश कुछ भी कर गुजरने को तैयार है अपने दोस्त सिद्धार्थ के लिए। बीती रात हुआ इस सीरियल का लॉन्च जहां पर सिद्धार्थ और आकाश ने अपना याराना दिखाया।

0: लव ट्रायंगल से पहले ये कहानी है दो भाई जैसे दोस्तों की। सो रोमांस से पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ब्रोमांस, जो कि है आकाश और सिड के बीच में। उसके बाद कहीं जाके बीच में कजरी आती है जो एक और रूप लेगी
1: कहीं से,
0: फिर तब कहीं जाके रोमांस स्टार्ट होगा। तो अभी रोमांस का तो कोई अता पता नहीं है, ब्रोमांस ही चल रहा है। बट आगे जाके कुछ ऐसा होता है कि ब्रोमांस खराब हो जाता है। वो क्या होता है वो देखने के लिए आप देखते रहिए कैसी तेरी दिल लगी, ओनली ऑन दंगल टीवी, मंडे टू सैटरडे एवरी 10 PM।
2: क्योंकि सिद्धार्थ का कैरेक्टर ही वैसा है कि उसको सिल्वर प्लैटर पे सब कुछ मिला हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ को इस चीज के ऊपर घमंड है। इट्स वेरी थिन लाइन कि अगर सिद्धार्थ को सब कुछ मिल गया है बट उसके बाद भी उसको इस चीज का घमंड नहीं है, क्योंकि जो उसका दोस्त होता है आकाश, उसे वो भाई की तरह मानता है। वो वहां पे पैसे नहीं देखता कि उसके पास पैसे है या नहीं है, या जब स्टार्टिंग में मिलता है तो, बट वो ये चीज देखता है कि उसके लिए मैटर वही चीज है कि when it comes to Siddharth, there are three things which will come out, ki love, care, you know, मतलब ये चीजें जो है मतलब continuously दिखेगी आपको। So Siddharth is very balanced character, एक हिसाब से देखा जाए तो। Rich brat है but बिगड़ा हुआ नहीं है, he is not big deal, ऐसा नहीं है। Business भी देखता है, he is समझ रहे हो, मतलब balance बनता है।
3: समझ रहे हो,
2: समझ रहे हो।

0: तो या दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट सिद्धार्थ. या
1: बहाना नहीं चाहिए था.
2: आकाश और सिद्धार्थ तो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन इनके बीच में होगी कजरी की एंट्री, जो किसी का प्यार होगी और किसी की दोस्त, और दोस्ती की खातिर होगा प्यार का त्याग भी.
3: झूठा प्यार जताया क्यों? जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों?

0: कैसी तेरी दिल लगी सिर्फ ये एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं है. जब आप स्टोरी को देखोगे भी ना तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी है. जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक एपिसोड में कजरी हूँ, दिस इज काजल, तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा. और बहुत ही सिंपल लव स्टोरी नहीं है, इसके साथ अगर देखा जाए तो एक पैशनेट है, एक एक ईगो है, एक मतलब आपको दोनों के साथ ना मेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज भी दिखेंगी. इसके साथ वो ईगोइस्टिक होगा, वो पैशन होगा, इसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कामनेस होगी या वो पीस होगा. तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी. ट्रायंगुलर लव स्टोरी सिर्फ नहीं है कि ट्रायंगुलर लव स्टोरी चल रही है, बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी.
1: बट ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ का परिवार है, जहाँ पर चलता गायत्री देवी का राज है. तो आइए करते हैं मुलाकात सिद्धार्थ के परिवार से, जहाँ पर कई रिश्ते हैं और उन रिश्तों के जरिए कई सारी ट्विस्ट की एंट्री होगी.
2: इस परिवार की मुखिया है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी. उनके लिए पैसों से ज्यादा उनके खानदान की इज्जत और वैल्यूज मायने रखती है. लेकिन हर इंसान की एक वीकनेस तो होती है ना, और गायत्री देवी की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों ही हैं उनके बेटे सिद्धार्थ, जिनसे वो बे इंतहा प्यार करती हैं. इशिका सिद्धार्थ की छोटी बहन है, कॉन्फिडेंट, प्रिविलिज्ड और थोड़ी सी जिद्दी. जो चीज इशिका को चाहिए होती है वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. घर के बड़े बेटे हैं, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर और अपने परिवार की बैकबोन. नित्या गौरव की वाइफ और घर की बड़ी बहन है. वो ग्रेसफुल, कंपोज्ड और फैमिली ओरिएंटेड नजर आती हैं. लेकिन उनकी शांत मुस्कान के पीछे छुपी है एक एम्बिशियस और शार्प पर्सनालिटी, जो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाती है. अधीरा आकाश की लाडली छोटी बहन है. वो सॉफ्ट स्पोकन, एलिगेंट और फैमिली फर्स्ट है. ऐसी लड़की जो अपनी सिंपलिसिटी और प्यार से हर रिश्ता निभाती है.
3: इसमें आई हैव वर्कड ऑन माय बॉडी लैंग्वेज, आई हैव वर्कड ऑन द वे आई स्पीक, जैसे मैं बात करती हूँ, एक ठहराव है उनकी बोलने के तरीके में. वो कोई भी चीज़ चीख के चिल्ला के बात नहीं करती है. उनका कमांड ऐसा है कि जस्ट एक नज़र से लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं. उनकी एक नज़र से जो वो चाहती है वो घर में काम हो जाता है. घर के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बट उनका जो वो रिस्पेक्ट है वो कमांड नहीं करती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. ऑरा इज फैबुलस, लोग कह रहे हैं कि बहुत ही रॉयल लुक है, बहुत ही ग्रेसफुल है, और अभी तो तारीफ ही मिल रही है. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी ब्लेस्ड वी आर. आई थिंक पीपल आर लाइकिंग द कैरेक्टर. उनको वो जो कमांड है, वॉकिंग स्टाइल है, पसंद आ रहा है लोगों को. सो गायत्री देवी के लिए आकाश और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तो है ही उनका बेटा, आकाश को भी वो अपने बेटे जैसा ही मानती है, बेटे जैसा ही प्यार करती है. आकाश को काफ़ी सारी बिजनेस की जिम्मेदारियां दी हुई है एंड शी ट्रस्ट हिम अलॉट, इसीलिए इतना भरोसा है, इसीलिए उसे बिजनेस में तो शामिल किया हुआ ही है. बट एक घर परिवार का हिस्सा भी बना लेती है आकाश को. लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे उनको लगता है कि आकाश और उनकी जो बहन है वो फिट नहीं है हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए. तब वो पूरी तरह से टूट जाती है एंड आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी.
1: भाई सिद्धार्थ के परिवार के अलावा कई और रिश्ते होंगे जो इस कहानी में हर एक एपिसोड में जुड़ेंगे और तो और कहानी में ट्विस्ट लाने में काम आएंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे. देखना होगा कि दर्शकों को कैसी तेरी दिल लगी, कितना लुभाएगी.
0: बेटा।
1: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब देखिए, हर इंसान ना अपनी जिंदगी में अलग अलग सफर ट्राई करता है और हर अलग सफर का होता है एक अलग फुटवेयर, और यहां पर शेयर करता है हर कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी के सफर को, तुम हो ना। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहां, क्योंकि यहां तो है एंटरटेनमेंट का परफेक्ट रंग। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
5: जोरदार तालियां नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत के लिए।
6: बाबू अगर समझ आए तो गेस कर लेना, ये मत बनाना बहाना कि घर जाके पेट नहीं है।
5: थोड़ा समय शुरू होता है।
6: हेलो जी, हुण शुरू। अच्छा बाबू, हम क्या खाने जाते हैं गोलगप्पे जैसे, उसको चीजों को क्या बोलते हैं?
0: सेवपुरी।
6: ओ फिटे मुतरे। जब जब रात को तुम सोती हो फिर बहुत ऊंची ऊंची क्या लेती हो? वाह। एक एक चीज होती है जो अपना रंग बदलती है।
0: मैं नहीं, कौन? ओ अच्छा अच्छा, गिरगिट। ये मैं, इससे मैं आपको मारूंगी।
6: मारूंगी चप्पल। भाजी शुक्र है एक मिनट का ही टाइम रखा, नहीं तो इस पर हार्ट अटैक आता था।
5: नेहा मुझे गेस करके बताओ कि कौन इनमें से बड़ा होगा, मुझे भी नहीं पता।
0: इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा बड़ी मैं ही हूँ।
5: आपसे पूछूं, 6 साल हो गए, ये आपकी लाइफ में आपकी सुपरस्टार है?
6: एब्सोल्युटली नो डाउट। बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे तो, बट आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरी लाइफ में है। प्यार में इनसे कोई कमाल नहीं हो सकता, जितना इमोशनल ये अटैच्ड होती हैं, लोगों की फीलिंग समझ जाती हैं, मतलब इंसान वाइज तो ये सुपरस्टार है ही। और मेरी लाइफ में तो मतलब जब से आई हैं तब से 4 चांद लगे हैं, तो मेरी लाइफ की तो यही सुपरस्टार है। मेहू मैं हूँ क्योंकि तुम हो ना। इसके होने से सब कुछ ठीक है।
5: ये ना दो बहनें हैं, अब एक बहन जितनी साइलेंट है दूसरी बहन उतनी लाउड है।
6: हमारे जैसे हम बहनें नहीं है।
5: एक बहन से अगर आप बहस करो तो वो माँ जैसा आपको बताएंगी, दूसरी बहन से बहस करो तो वो आपको नानी याद दिलाएंगी। जोरदार तालियां दिल्ली से आई हमारी सुपरस्टार चंद्रलता और स्वतंत्रता जी के लिए। पहले से बता दें कि आप लोग कितने यंग हैं?
7: सब आप हमारी उम्र नहीं पूछिए, हमें बड़ी शर्म आती है बताने में। हमें लगता है कि उम्र से लोग है ना हमें छोटा कर देते हैं।
5: अच्छा ना, 70 के नीचे 70 के ऊपर हैं?
7: ऊपर।
5: वे देखो 70 के ऊपर। और दोनों बहनों में फर्क कितना है एज का?
7: 5 साल का।
5: अभी आपके परिवार में कौन कौन है?
8: ब्रदर्स हैं, मिसेज हैं, फादर मदर की डेथ हो चुकी है हमारे।
5: आपका अपना अपना परिवार?
8: हम तो खुद बच्चे हैं
5: जी। अच्छा तो आपने आप दोनों ने शादी नहीं की?
8: नहीं।
5: अरे कब, कोई खास कारण था?
8: कोई खास कारण नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, सीखने वाली चीजें है, बहुत कुछ है
5: जी।
8: शादी तो 100 साल में जाके करनी चाहिए, आपके पास कोई बात करने वाला होना चाहिए।
5: बिल्कुल।
8: जो उल्टा करते हैं मैं सोचती हूँ उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है।
5: रोहन की कहना है?
8: अभी नया नया।
9: शादी तभी करनी चाहिए जब आपको इनके जैसा इंसान मिले। सच में अगर नहीं मिलता है ना तो मत करो, तो फिर आपके जैसे रहे, बिंदास मजे करो, एक ही लाइफ है, जितना एंजॉय कर सके करो।
4: हर सितारे ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अलग सफर तय किया है, वो भी स्टाइलिश फुटवेयर पहनकर। तो चलिए अब मुलाकात करवाते हैं आपकी आपके फेवरेट सेलेब से, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू अर्पिता ने ये स्पेशल मुलाकात। यहाँ तो हुई हैं ढेर सारी बातें और हमने जाना है इनके जिंदगी के सफर के बारे में। आप भी जानना चाहते हैं तो गेट सेट गो।

डांस करती हुई माँ बेटी, भाई ये है आज के जमाने की माँ बेटी जो कहती है ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा। मिली अपराजिता की मम्मी मालती से, लेकिन पर्दे का ये किरदार रियल लाइफ में कैसा है, यह है श्रुति गोलाप जो बनती है अपराजिता की मम्मी मालती, यानी सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में ये है मम्मी जी। लेकिन रियल लाइफ में ये मम्मी नहीं बल्कि है मुंबई की बिंदास लड़की जो बारिश में झूमती है, रहती है मुंबई में अकेली, थिएटर की दुनिया से फिल्मों और टीवी सीरियल में आई, सुबह सुबह मेडिटेशन करती है, चाय पीती है, अपना काम खुद करती है, फिर अपना डब्बा पैक करके निकल जाती है सेट पर शूटिंग करने, जहां मेकअप वेकअप लगाकर साड़ी वाड़ी पहनकर वो बन जाती है मालती जो अपनी बेटी अपराजिता का सहारा है, उसकी स्ट्रेंथ है। और रियल लाइफ में भी श्रुति झा और श्रुति गोलाप की एक अच्छी केमिस्ट्री है। तो आज सास बहू और बेटियां निकला है श्रुति गोलाप के साथ एक खास डे आउट पर, जहां मुंबई में हम जानेंगे कि कलाकार कैसे रहते हैं, सिंगल होकर अकेली मुंबई में रहती है, काम करती है, पर्दे के किरदार निभाती है, क्या है उनकी नापसंद, क्या है उनकी खट्टी मीठी जिंदगी। तो सीधा चलते हैं मुंबई में श्रुति गोलाप के घर पर, जहां सुबह सुबह 5 बजे वो उठ चुके हैं सेट पर जाने के लिए, और हमने उनको कहा गुड मॉर्निंग।

0: 5:30 से शुरू हो जाता है सुबह, जब मैं मुझे उठना होता है तो फिर उनको पहले खाना दो, आप लोग वो भी देखोगे कैसे खाना खाते हैं ये लोग। और मैं अकेले रहती हूँ, ये छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट कह सकते हो, वन रूम किचन, घुसते ही ख़त्म हो जाता है। जब तक ये मग्गा भर चाय पेट में नहीं जाती ना, तब तक ऐसे लगता है भाई आज नहीं जाना, जाने दे पापा मैं नहीं आ रही हूँ, ऐसा आई विश मैं सब बोल पाती। पापा का प्रोडक्शन है, पापा का शूट लगाया और मैं वहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ, पापा आज मैं नहीं आ रही हूँ। और सबको बता दूं मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब मेकअप की वजह से ही हुआ है, समझे आप। श्रुति अपने आप रेडी होके चली जाती कभी थम
1: थम के। सुबह सुबह जब हम श्रुति के घर पे पहुंचे तो वो चाय बना रही थी। जी हाँ, वो मुंबई में अकेली रहती है, अपनी चाय खुद बनाती है और मुंबई जैसे शहर में उनका सहारा है उनकी कैट्स। जी हाँ, तो मिलते हैं श्रुति की इस क्यूट सी पेट फैमिली से। बुलाती है,
0: कभी मिलती है। चाय हो चुकी है खत्म मेरी कैट्स।

0: doing, dear?
1: Hello.
0: Hi.
1: Hi.
0: ये नोनी है। बाय रिया चल।

0: श्रुतिका मुंबई में एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जो घर छोटा सा है लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करता है। अपने पेट्स को खाना खिलाने के बाद श्रुति करती है मेडिटेशन। जी हाँ, वो विपासना करती हैं। तो आइए जानते हैं कैसा है उनका ये मॉर्निंग रूटीन।
1: मैं विपासना प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने 2-3 बार किया है इगतपुरी में जाके। तो मेरा ये थोड़ा सा 2016 से रूटीन है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट मैक्स टू मैक्स।

0: मेडिटेशन आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और आपको दिन भर के काम के लिए देता है एनर्जी, और श्रुति ने इस खास मेडिटेशन से वो एनर्जी ग्रैब की।
1: सो मेडिटेशन हो चुका है, अब मुझे रेडी होना पड़ेगा, मेरे लंच के बॉक्सेस, नाश्ता वो सब लेना पड़ेगा, तो जल्दी करते हैं थोड़ा यश को।
0: श्रुति है बड़ौदा की रहने वाली और इनके घर में इनके पेरेंट्स की याद है जो अब इनके साथ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादों को इन्होंने घर में रखा हुआ है। अब वक्त है रेडी होने का और श्रुति ने तैयार किया अपना डब्बा। तो भाई सेट पर जाने के लिए श्रुति क्या कुछ सेट पर लेके जाती है वो देखते हैं, और देखते हैं कि उनके डब्बे में क्या है।
1: सो ये पनीर है मसाले वाला, इसे पनीर टिक्का भी कह सकते हो, ये सिर्फ गर्म करने की जरूरत है। ये दही है और मेरे पास और एक चीज़ है। सो ये है मेरा हेल्दी नाश्ता और बाकी का मंचिंग उसका डब्बा है। खाखरा और मखाना। सो मेरे बैग में आजकल मखाना होता है, खाखरा पहले से होता है बहुत सालों से, लेकिन मुझे थोड़ा वजन कम करना है तो मैंने रोटी राइस बहुत कम कर दिया है, मतलब मैं लेती हूँ इतना सा। सो ये मेरे बैग में ऑलरेडी पड़ा हुआ है मखाना रोस्ट किया हुआ, और मैं लेकर जाऊँगी आज खाखरे का नया पैकेट क्योंकि खाखरा ख़त्म हो चुका है। सो जल्दी से जाते हैं, रेडी होते हैं। ये है श्रुति का पिटारा, इसमें मुझे क्योंकि अभी चश्मा आया है तो मेरे पास एक मिरर है अपना खुद का जो मैग्नीफाइंग होता है, मेकअप का सारा सामान है, कुछ दवाई है क्योंकि मुझे कभी सर्दी हो गई, बुखार आया तो कुछ तो चाहिए जीवन में, तो वो भी मेरे साथ होता है। मैं खाने का डब्बा, ये सारी चीज़ें अंदर रखती हूँ। मेरा पानी का बोतल खुद का होता है। ये बड़ा सा पिटारा है मेरे पास, तो अभी वो निकाला है कम। ये चार्जर, ये पैक हो चुका है। डैडी, ये मम्मा है, दिख रहा है, और ये मेरे घर की चाबी है, ये होने जा रही है बंद क्योंकि हमें भागना है। सो ये गया इसके अंदर। सो काफी लोगों को ऐसे लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट, टेलीविजन आर्टिस्ट बहुत अमीर होते हैं, 2026 में ये रियलिटी नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और जिनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो एकदम ही सिंपल सादा लिविंग, ठीक है चलो चलते हैं।
0: श्रुति निकल पड़ी अपने सेट की ओर, लेकिन घर के बाहर देखा तो बारिश हो रही है। भाई मुंबई की बारिश ऐसी है जो लोगों को काम से जाने पर नहीं रोकती, और श्रुति भी कुछ ऐसी ही मुंबई का है, यूं तो है बड़ौदा की लेकिन अब ये मुंबई की हो गई है, और गंगोर बारिश भी इन्हें काम पे जाने से नहीं रोकती।
1: बैग पैक हो चुकी है और बहुत सारी बारिश हो रही है। ये एक प्यारी सी जगह है जहाँ पे मैं बैठती हूँ रोज, जब भी मैं घर पे होती हूँ, फेवरेट स्पॉट। और जाने का वक्त हुआ है, नोनो मेरा बेटा, मम्मा संध्या का ये इल्हान, ये है मिली, बाय बाय बाबू, बाय कोको, कोको दरवाजे पे है और छाते की जरूरत पड़ेगी, कोको बाहर नहीं जाए थे बेटा, ए ए चला आज, चला बेटा ऐसा नहीं करे आज जाए तो, छाते की जरूरत है, चलो भागते हैं।
0: तो श्रुति निकल पड़ी अपने सेट की और हाथ में छाता उठाए, भाई मुंबई में छाता हमेशा होना चाहिए, और छाता लेकर उन्होंने अपनी पेट को कहा गुड बाय, घर पर ताला लगाया और निकल पड़ी अपने सेट की और जहां वो बन जाएंगे

0: श्रुति की बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, लेकिन जोश से ये देख के कैसे सीढ़ियां चढ़कर नीचे जा रही हैं और बारिश को चीरते हुए सुबह सुबह इनकी एनर्जी फुल ऑन है। छाता खोला, बारिश का मजा उठाया और सवार होली गाड़ी में अपने सेट पर जाने के लिए।
1: कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लच्छे से मरे रे जिया।
2: जब बारिश आती है तो पहले प्यार की याद आती है और उस पर से ये गाना एकदम फिट है। आई लव इट।
3: मालती और लोगों के लिए फिलहाल बाल्टी है गुस्से में, है ना।

0: मॉनसून को चीरते हुए श्रुति आखिर पहुंची अपने सेट पर। कांदिवली से फिल्म सिटी का रास्ता आधे घंटे का है, आधे घंटे में बारिश इनके एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई और ये फाइनली पहुंची ओहम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
1: सेट आ गया, चलो अंदर।
0: मानसून में मुंबई का नजारा बदला बल्ला होता है और ऐसा ही कुछ नजारा है मालती यानी श्रुति गोलब के सेट ओहम नवा तुम देना साथ मेरा का। भाई ये सेट एक हरी भरी जगह पर है जो मानसून में खिल उठा है और अपने सेट की हरियाली देखकर श्रुति का मन मयूर की तरह मचर उठा और उन्होंने बारिश की इस मौसम को कुछ इस अंदाज में डांस करके एंजॉय किया।
1: हम लोग सेट पर आ चुके हैं और बारिश आ रही है एज यूजुअल, तो चलो सेट पे चलते हैं। मेकअप रूम दिखाती हूँ।

0: है और ये मेरे बाल नहीं बनाती और फिर बोलती है कि आप बहुत बुरे हैं, ऐसा मुझे बोलती है। ये कोमल है जो हमें ड्रेस यू नो रेडी करती है, ड्रेस में सारे नॉल। कम कम कम आ गए हैं हम फाइनली रूम नंबर 17। आ जाओ
1: अब चलते हैं श्रुति गोलब के मेकअप रूम में, जहां वो श्रुति से बन जाएंगी मालती। भाई वो अपना मेकअप खुद करती हैं क्योंकि वो थिएटर की दुनिया से आई हैं, और आज श्रुति से हम सीखेंगे कि स्किन को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। श्रुति को इतने सालों में मेकअप का अच्छा एक्सपीरियंस है, और अब देखेंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम श्रुति गोलब टू ओ हमनवा की मालती, यानी अपराजिता की मम्मी के रूप में।
0: सबकी स्किन अलग अलग होती है, सबका स्किन रूटीन अलग अलग होता है, और सबका मेकअप करने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक वक्त था जब मुझे मेकअप करना नहीं आता था और मैं थिएटर वाला मेकअप करती थी। थिएटर वाला मेकअप काफी लाउड होता है क्योंकि उसमें 1500-2000 सीट है, लोग बैठे हैं दूर दूर तक, उन सबको दिखाना है कि भाई आप कैसे दिख रहे हो, तो बहुत लाउड मेकअप होता है। और ये मेकअप मुझे आता नहीं था जो मैंने कर करके सीखा है, और अब ये आदत लग गई है कि मैं अगर खुद से नहीं करती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो आप देखोगे ये मेरे बहुत सारे दाग हैं, हीट, मेकअप, पोल्यूशन, लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट।
1: श्रुति का मेकअप बहुत ही सिंपल होता है जिसे वो खुद करती हैं, तो आइए श्रुति संग देखते हैं सेल्फ मेकअप कैसे किया जाए। तो श्रुति आज एक देसी तरीका बता रही हैं जहां वो दो फाउंडेशन को मिक्स करके अपना बेस बनाती हैं और उसे अच्छे से सेट करती हैं। तो देखते हैं क्या है उनका ये देसी तरीका।
0: इसे कहते हैं देसी तरीका, देसी जाने लगे। काफी देसी मतलब कितना इजी। इसीलिए मैं ना अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कोई ऐसा वीडियो नहीं डालती हूँ कि यू नो आई डू दिस एंड यू डू दैट। लाइफ बहुत सिंपल होती है, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं।

0: अपन का नहीं है भाई, लोग मेरा काम देखेंगे है ना, लोग क्या सोचेंगे। जब मेरे घर में खाना पीना नहीं होता है तो लोग पूछते श्रुति खाना खाया कि नहीं, पूछते हैं फिर बिंदास। तो मैं अगर अपने फेस पे कुछ भी ऐसा लगाती हूँ जो मेकअप से पहले, जैसे लोग कहते हैं ना मैंने टोनर लगाया, मैंने सनस्क्रीन लगाया, प्राइमर लगाया, तो मेरा प्रॉब्लम ये है क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उस पे अगर कुछ भी ऐसा ऑयली अंदर चिपकता है तो वो तुरंत दूसरे दिन पिंपल के तौर पे आ जाता है, देखो मैं आ गया टाइप्स। तो ये मेरा जो मेकअप है वो काफ़ी मैट है, मैट फिनिश है, वो तुरंत सूख जाता है और वो 12 घंटा ऐसा कैसा रहता है। तो मालती फिर बाद में बार बार टचअप नहीं करती है। सो बेस ऑलमोस्ट हो गया है, अब आती है नेक की बारी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप नेक को भी ब्लेंड करो, वरना सर अलग दिखेगा और फेस भी, है ना। सो इसे ब्लेंड करना है जिसे किसी को पता ना चले।
1: तो देखिए श्रुति कैसे मालती में बदल गए और देखिए उनके पिंपल्स कैसे वैनिश हो गए, यानी अपने बेस को वो अच्छे से सेटल करती हैं, उसके बाद पाउडर से इस बेस को लॉक करती हैं, इसके बाद वो करती हैं अपनी कटिंग यानी कॉन्टोरिंग।
0: मैं जिस तरह से हूँ या अभी मुझे आप देख रहे हो उससे एकदम अलग, काफी साड़ी और काफी आंटी नुमा, सो फिर दैट्स ओके। मुझे वैसा कुछ नहीं है कि यू नो ये रोल नहीं वो रोल नहीं, नहीं आप मुझे कोई भी रोल दो, कोई भी। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए मेरे पास कि साड़ी खरीदने के लिए जब हम जाते हैं स्टोर में तो बहुत बड़ा स्टोर होता है और अलग अलग तरह की साड़ी होती है, मतलब शादी वाली साड़ी होती है, पार्टी वाली साड़ी होती है, किटी पार्टी वाली होती है। सो कौन सी साड़ी चाहिए बताओ, तो अपन का ऐसा है। सो आई नो कि ये जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा ये क्या कर रही है, जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या कर रही हूँ।

0: और उसके बाद आई शेडो से अपनी आई मेकअप करती हैं। आई मेकअप के बाद फाइनली वो लगाती हैं हाइलाइटर और उनका मेकअप हो जाता है पूरा।
1: कटिंग डन, अभी ऐसे शाइन अ लिटिल वन।

0: क्योंकि श्रुति का किरदार ढेर सारे इमोशन प्रेजेंट करता है, उनका आई मेकअप बहुत ही जरूरी है। वो मस्कारा लगाती हैं, काजल लगाती हैं और इसके बाद मेकअप दादा उनके लैशेज लगाते हैं ताकि उनकी आंखें एक्टिंग कर पाएं। तो देखिए ये सब तरीकों से आखिर उनका आई मेकअप हुआ।
1: सो अभी भी मैं मालती नहीं बनी हूँ, ठीक है? जब मैं मालती बनूंगी तब बोलोगे अरे ये मालती बन गई।

0: अब जरा बारी है कॉस्ट्यूम की, क्योंकि उन्हें खास साड़ी पहननी है, तो देखते हैं कि उनका कॉस्ट्यूम कैसा है।
1: एक हफ्ते से पहन रही हूँ, एक हफ्ते से। इसमें कीचड़ लगता है,
2: इसमें कीचड़ लगता है। ये साड़ी मैं हफ्ते से पहन रही हूँ, एक हफ्ता। अब मैं बोर हो चुकी हूँ। ये उसका पल्लू है, पर एक्चुअली ये साड़ी ऐसी है।
0: तो अब श्रुति मालती बनने के लिए साड़ी पहनेंगी, और देखिए एक पूरी टीम आती है उन्हें रेडी करते हैं। वो साड़ी पहन के रेडी है। वैसे यहीं पर उनकी रूममेट यानी उनकी सीरियल की बहुरानी भी आ गई। तो देखते हैं सास बहू की नोकझोंक।
2: है निया, और ये मेरी होने वाली बहू है सीरियल में, और ये मुझे इस रूम में बहुत परेशान करती है, मेरा जीना हराम कर देती है, और मेरा खाना भी खा जाती है। और
3: ये सारे एलिगेशंस रॉन्ग है, गलत है। ये सारा काम ये करती है मेरे साथ, ये मुझे परेशान करती है। शी इज द सीनियर, वो मुझे परेशान करती है, मैं प्रताड़ित रहती
2: हूँ। प्रताड़ित
3: जैसे एक टिपिकल सासू माँ अपनी बहू को परेशान करती है, ये मुझे पर्सनली यहाँ पे इट ऑफ कोर्स शी इज जस्ट ट्रेनिंग मी।
2: यू आर लेट बाय द वे।
3: आई नो, इट्स रियली
2: सो व्हाट।
3: इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, शी हैज ग्रेट एक्सपीरियंसेस, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर ऑन अ डेली बेसिस। मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। शी इज अ वंडरफुल पर्सन टू बी विथ, एंड आई एम लकी दैट आई एम शेयरिंग अ रूम विथ हर।
2: आई एम नॉट लकी,
3: शी इज, she's very lucky, she's the luckiest one, she's getting to share a room with me.
2: खुद के मुंह मियां मिट्ठू।
3: अब ये नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी तारीफ तो करूंगी।
2: दे बेटा,
3: ये इनके दिल की बात, इनका वीओ चलता है ऐसे कि नेहा कितनी प्यारी है, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं नेहा के साथ हूँ। देखिए जैसे मैंने एंटर किया, इनके चेहरे पे स्माइल आई कि नहीं आई? आई ना।
2: नहीं नहीं नहीं,
3: मैं इनकी खुशी का कारण हूँ, मैं इनकी खुशी का रीजन हूँ।
0: इसके बाद श्रुति के मेकअप में कुछ टचेस और उनके बाल सेट हुए। जी हाँ, उन बालों में एक्सटेंशन लगाया, और अब वो बन गई हैं मालती यानी अपराजिता की मम्मी जी, जो उस पे गुस्सा भी करती हैं और प्यार भी।
2: अकेली लड़की बॉम्बे में रहना इट्स अ टास्क। इवन अगर लड़के भी अकेले हैं ना, तो वो खाना कैसे खा रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं या नहीं। माइक भी आ चुका है और स्क्रिप्ट भी आ चुकी है, जो मुझे पढ़ने अभी तक नहीं मिली आप लोगों की वजह से। मेरी बात थोड़ा डिस्टर्ब ही राइट नहीं है ना।
0: मेकअप डन, हेयर सेट, साड़ी वाड़ी पहनकर अब श्रुति बन गई है मालती।
2: ये जादू सिर्फ यही हो सकता है।

0: पर देखे साड़ी पहनकर कैसे इटला रही हैं, और ये बन गई सीरियल की आंटी जी। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है जो सेट पर सबका दिल लगा के रखती है और कुछ खास केमिस्ट्री शेयर करती हैं वो अपनी ऑन स्क्रीन बेटी अपराजिता ने श्रुति झा के साथ। और देखिए माँ बेटी डांस भी करती हैं, श्रुति के साथ चलते हैं उनकी ऑन स्क्रीन बेटी अपराजिता ने श्रुति झा के पथ और देखते हैं कि माँ बेटी की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है इस शो तुम देना साथ मेरा में।
1: ये है मेरी बेटी अपराजिता
2: श्रुति दोस्तों पे ठीक है मान भी बोल सकती मैं इनको
1: नहीं नहीं अभी फिलहाल बोल
2: शो में शो में
1: शो में शो में शो में बोल।
3: तो कैसी बॉन्डिंग रहती है दोनों की?
2: मजेदार, हम बहुत, आप बताओ मैं बोलूंगी तो गलत लगे।
1: मुझे इसके साथ काम करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े रोल किए हैं। शी इज सो मच फेमस, ये इतनी डाउन टू अर्थ है, आई लव दैट अबाउट हर। और मैंने पहली बार पहले दिन जब काम किया तो वैसा बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे हम लोगों ने पहली बार,
2: हाँ हाँ, मतलब हम पहले दिन से ही मजे कर रहे थे।
1: हाँ
2: हाँ, मजे मजे में ही काम हुआ, हंसते खेलते ही काम हुआ, मजे मजे में ही काम हुआ। और आज तो आप पूरा दिन बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि मजे में ही होता है काम।
1: सो एक बात सिर्फ है कि मैं ना थोड़ा से जैसे वहाँ पे बबली बबली दिखी ना, मैं सेट पे वैसे नहीं होती हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसी यू नो शांति से काम करो टाइप्स ऐसा। तो
2: और अभी ट्रैक भी ऐसा है कि थोड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा है ना, अभी ऐसा लाइट नहीं है। हाँ
1: तो ऐसे स्थाई भाव ऐसा रखना पड़ता है कि श्रुति थोड़ा बाल्टी बनना पड़ेगा अपने को।
2: ये भी बोलती हैं
3: कितनी ज्यादा मालती या बाल्टी क्या?
2: मुझे तो मालती ही लगती है। ये जो भी इनको जो भी ये बाल्टी बोलते हैं और जो भी ट्रोल करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये पहले वो बातें खुद को बोल लेती हैं।
1: हाँ,
2: वो खुद ही बोल लेती है।
1: मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, हाउ स्टूपिड इज दैट।
2: सोच चुकी है ये सब, जो भी हम ऑनलाइन सुनते हैं ये पहले सोच चुकी होती
1: है। हाँ,
2: श्रुति सोच चुकी,
1: इवन जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसी माँ है ये, कैसी माँ है, ऐसा क्यों करवा रहा है,
2: ये बोल चुकी होती है सेट पे पहले। बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हम एंजॉय करते हैं। हाल फिलहाल में बहुत दिनों से हमारे एक साथ सीन नहीं हुए थे बिकॉज ये किडनैपिंग वाला ट्रैक चल रहा था, लेकिन अब फिर से फैमिली सीन शुरू हो गए, पूरी जमघट होगी, बहुत मजा आएगा, आप देखेंगे। आज तो है आप यहाँ बेटी की बारात में नाच रही, लेकिन बेटी की बारात जो है वो थोड़ी
1: ट्विस्ट के साथ,
2: हाँ थोड़ा ट्विस्ट के साथ है। हाँ ऐसा।

0: तो भैया आज के जमाने की माँ बेटी हैं जो साथ में डांस करती हैं, गले लगती हैं और सीन भी निभाती हैं, लेकिन अब वक्त हो गया है शूटिंग का।
1: डांस हो चुका है
2: हाँ।
1: अभी चलते काम कर रहे हैं
2: हाँ।
1: नहीं तो मार पड़ेगी
2: हाँ।
1: हाँ। चले चले चलते।
0: श्रुति गोला पर रेडी है अपने सीन्स के लिए और आज एक लंबा दिन है, लेकिन अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का।
3: सास बहू और बेटिया, सुबह से आप लोग मेरे साथ हो। मैं कैसे रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे साथ कौन रहता है, मैं कैसे काम करती हूँ, मैं क्या क्या पीती हूँ, मैं ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। अभी मैं शॉर्ट के लिए जा रही हूँ, आप सब लोग सुबह से मेरे साथ हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। ये मैंने लाइफ में पहली बार किया है पर बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। और जितना रियल आपने देखा, जो भी चीज़ें आपने देखी, वो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे जानना है आपको कैसा लगा। क्या वो डिफरेंट वाला लगा या रियल लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, मालती लगा, बाल्टी लगा, श्रुति गोलभ जैसा लगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप मेरे घर पे आए, बाय।
0: तो ये थी सीरियल ओ हम दवा तुम देना साथ मेरा की मालती यानी श्रुति गोलभ, जिनकी जिंदगी का अनदेखा पहलू हमने आपको दिखाया। वे कलाकार जो सीरियल के किरदार निभाते हैं, रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या है उनकी जिंदगी, परेशानियां, खट्टे मीठे किस्से, वही दिखाता है सास बहू और बेटिया। और आज श्रुति गोलभ के साथ हमने वही दिखाने की कोशिश की। मुंबई से रूप मौर्ची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अगर सफर लंबा होना तो साथ चलने वाला हम सफर सबसे बड़ा सहारा होता है, और बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर रक्षित और अपराजिता का साथ। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज। क्या ये दोनों एक परफेक्ट फुटवेयर की तरह मैच कर रहे हैं अपने स्टेप्स, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट।
5: अपराजिता का इनकार, मालती और रक्षित ने मिलाया हाथ, स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में मोहल्ले वाले रक्षित और अपराजिता को लेकर बातें ना बनाए, इसीलिए अपराजिता ने रक्षित को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। रक्षित ने तो रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराजिता ने फैसला ले लिया है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाती है अपराजिता की माँ मालती, जिन्हें समझ आ गया है कि उनकी बेटी की खुशी कहाँ है। इसलिए देखिए कैसे वो आज रक्षित से अपना हाथ मिला रही है। भाई अपराजिता के लिए रक्षित कुछ भी करने को तैयार है, और आज तो अपराजिता की माँ भी रक्षित के साथ है, इसलिए रक्षित ने अपराजिता की माँ से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी जिंदगी में भी खुशियाँ आने वाली हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हर रिश्ता एक सफर है और हर सफर में संभल कर चलना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर संभले हुए हैं इनके रिश्ते, या फिर से आया है कोई ऐसा ट्विस्ट जो इन्हें बिखेर रहा है। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको आपके फेवरेट शो, जी हाँ दी आइकॉनिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के शंख।

0: चहक उठा पोदार हाउस।
1: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
0: झूम कर आया सावन, अरमान अभीरा पर चढ़ा प्यार का रंग। के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज तो पोदार हाउस में खुशियां मनाई जा रही हैं सावन के आने की। ऐसे में देखिए कैसे सभी औरतें साज श्रृंगार कर झूम झूम कर नाच रही हैं, एक दूसरे संग ताल से ताल मिला रही हैं। और अभीरा वो तो बहुत खुश है क्योंकि एक तो उसका पूरा परिवार एक हो गया है, बेटियां साथ में है और तो और प्यार भी संकट से बाहर आ गया है। ऐसे में न सिर्फ ये खुशियां मनाई जा रही हैं बल्कि अरमान संग प्यार भी फरमाया जा रहा है।

0: हमारे सावन के इस सेलिब्रेशन का नाच गाना तो हो गया, अब बारी है झूला झूलने की। सावन के मौसम में झूला ना डाला जाए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे में पोदार हाउस के अंदर ही झूला डाल दिया है और सभी जोड़ियां झूला झूलने का मजा ले रही हैं। सबसे पहले पहुंची है विद्या, जिन्हें माधव बड़े ही प्यार से झूला झूला रहे हैं।
1: क्या कहूं, आंखों ने मेरी सब कह दिया।
0: फिर बारी आई मुक्ति और मायरा की। ऐसे में मायरा ने भी मुक्ति को झूले में बिठाकर झूला झुलाया।

उसके बाद पहुंच गई काजल। लेकिन जैसे ही संजय आगे बढ़े, संजय को आ गया कॉल, जिसके चलते संजय को वहां से जाना पड़ा और काजल के मन में उदासी आ गई। लेकिन काजल की बहुरानी तानिया सामने आई, सास बहू का रिश्ता और भी गहरा गया।

और जैसे ही काजल झूले से उठी, कृष सामने आ गया तानिया को झूला झुलाने के लिए। लेकिन तानिया वो तो कृष से बहुत नाराज है, ऐसे में वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अब कृष पर भरोसा जो नहीं है। इसी बीच हंसते खेलते पहुँच गई वहाँ पर मनीषा, और साथ ही पहुँच गए उनके पतिदेव मनीष। और देखिए कैसे मनीषा और मनीष दोनों ही सावन का मजा ले रहे हैं।

भाई सब जोड़ियों ने तो झूला झुला लिया, अब बारी आई अरमान और अभीरा की। ऐसे में अभीरा ने सबसे पहले अरमान को झूले में बिठाया और उसे झूला झुलाया, लेकिन तभी अभीरा को एहसास हुआ कि अरमान अपनी कमजोरी को लेकर परेशान हो रहा है। बस फिर क्या, अभीरा पहुंच गई अरमान की ढाल बनकर और अरमान को उठाकर खुद बैठ गई। ऐसे में अरमान ने खुशी खुशी अभीरा को झूला झुलाया।

0: यहाँ परिवार खुशियाँ बांट ही रहा था कि तभी आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि घर में हंगामा खड़ा कर दिया कृष और संजय ने।
1: पुलिस साहब की फॉर्म छोड़ के जाना चाहते तो उसमें मेरी क्या गलती है? बाकी फ्रेंड्स तो छोड़ चुके हैं वो, उससे दूसरी बात की वजह से उन्होंने तो जैसे कुछ किया ही नहीं।
2: एग्जैक्टली
1: तो किया आपने किया।
0: संजय को लगा था कि वो बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन अभीरा अरमान की ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई। उसने तो ये तक बता दिया कि उसने संजय की सारी फाइल्स रीचेक की है और सारा सच उनके सामने आ गया है। इस बात को लेकर संजय ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और अभीरा पर चीखने चिल्लाने लगे। ऐसे में अरमान ने उन्हें खामोश कर दिया। इतना ही नहीं, अरमान ने तो उन्हें ये तक बोल दिया कि वो पोद्दार फॉर्म संभालने लायक तक नहीं है। बस फिर क्या, इस बात पर संजय को लग गई मिर्ची।
1: मैं काबिल नहीं हूं, तो फिर कौन है? वो मनोज जो जिंदगी भर अकेले एक भी केस हैंडल नहीं कर पाया, या फिर कृष, या फिर तुम तो चाय भी तब तक अपने हाथों से उठाते हो अरमान, तो फॉर्म की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? बोलो ना। सही कहा आपने, इसलिए पोद्दार फॉर्म मैंने
3: आज तक तुम्हारी रफ्तार
1: तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने में इस बिचारी का पूरा दिल लगा।
3: क्या तुम भूले?
1: ये अकेली नहीं, ये तुम्हारी नर्स बन चुकी, इस पे ऑलरेडी तुम्हारी जिम्मेदारी है,
0: यहाँ संजय ने अभीरा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो वहाँ अरमान ने भी संजय को अपना गुस्सा दिखा दिया। इतना ही नहीं, उसने तो अभीरा को समझाने की कोशिश की और गुजारिश की पोद्दार फॉर्म संभालने की। ऐसे में दादीसा वहाँ से चली गई और संजय को लगा कि दादीसा नहीं चाहती है कि वो अभीरा को ये फॉर्म दे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अभीरा ये फॉर्म नहीं संभाल पाएगी। लेकिन अरमान, उसे पूरा यकीन है, अरमान ही नहीं बल्कि मुक्ति और मायरा भी अपनी माँ से गुजारिश करती है। और तभी संजय को लगता है जोरदार झटका, क्योंकि वहाँ पर पहुँच जाती है दादीसा लेकर वकील का कोट और पहना देती है अभीरा को, और साथ ही अभीरा को जता दिया कि उन्हें भी अभीरा पर यकीन है कि अभीरा पोद्दार फॉर्म को फिर से बुलंदियों पर लेकर जाएगी। बस फिर क्या, दादीसा, अरमान, मायरा और मुक्ति का ये भरोसा देखकर अभीरा ने हाँ बोल दी। ऐसे में सभी खुश हो गए और सभी ने अभीरा को गले लगा लिया। अरमान, अभीरा की इस खुशी में सभी परिवार वालों ने तालियां तो बजा दी, लेकिन संजय को वो तालियां रास नहीं आई और उन्होंने न सिर्फ सभी को रोका बल्कि इनकी खुशियों पर ब्रेक भी लगाने की कोशिश की। लेकिन अब अरमान रुकेगा नहीं, क्योंकि उसने भी अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि बोर्ड मीटिंग में क्या सभी अभीरा को वोट देंगे और क्या अभीरा पोद्दार फॉर्म को आगे बढ़ाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हर दुआ एक नई मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। मन्नत, वैसे देखिए हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। लेकिन कभी कभी वो होता है ना कि आपके लिए कुछ और ही लिखा गया है, तो आप किसी डायरेक्शन में कितनी भी मेहनत कर लें आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है जिंदगी का कोई दूसरा दरवाजा खिले और आपको उससे भी कुछ बड़ा मिले। तो चलिए फिर आप लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।

0: मदद की कोशिशें। गाना बजाओ, याददाश्त वापस लाओ। गाने और डांस से बढ़ेंगी मन्नत और विक्रांत की नजदीकियाँ। कलर्स के सीरियल मन्नत में मान्यता और अभिमन्यु की शादी तय हो गई है और ऐसे में केटरिंग सर्विस मन्नत संभालेगी, जिसके चलते मन्नत ने इस घर में मस्ती का माहौल बना रखा है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वो किसी भी हालत में विक्रांत की याददाश्त वापस लाकर ही रहेगी। तभी तो देखिए कैसे वो गाना बजाकर बच्चों संग झूम रही है, नाच रही है, ताकि गाना सुनकर विक्रांत सामने आ जाए। और होता भी यही है, विक्रांत गाना सुनकर आता है लेकिन सम्राज्ञी और मान्यता दोनों परेशान होते हैं लाउड साउंड से।
1: मान्यता तो खुश है, उसको तो लग रहा है उसकी शादी हो रही है, उसका रोका हो रहा है, मेहंदी हो रही है, तो सारे फंक्शन जो है मन्नत करवा रही है क्योंकि वो वेडिंग प्लानर है। तो किसी ना किसी बहाने से वो घर में आने के बहाने ढूंढ रही है। वो विक्रांत को उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए बहुत सारे जतन कर रही है, बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है।
0: भाई मान्यता तो मन्नत के इस स्टेप से बहुत खुश है, लेकिन वो तो अपनी बहन सम्राज्ञी को भी इस नाच गाने में खींच लेती है।

मान्यता अपने पूरे परिवार के साथ जमकर नाच रही है, खुश है। ऐसे में मन्नत की नजर पड़ती है विक्रांत पर और विक्रांत की याददाश्त वापस लाने के लिए देखिए कैसे वो पहला वाला गाना चलाती है जिसके जरिए उसकी और विक्रांत की मुलाकात हुई थी। और तो और मन्नत को उस गाने पर यूं नाचता देख कहीं न कहीं विक्रांत की धुंधली यादें भी ताज़ा हो रही हैं।

0: मन्नत वापस से मेमोरी जॉग डाउन करना चाह रही है विक्रांत की, तो वो क्रिएट कर रही है वही मोमेंट्स वही गानों के साथ जो विक्रांत और मन्नत के हैं। तो वो अभिमन्यु को रियलाइज़ हो कि कहीं कुछ उनको याद आए कि वो स्पेशली गोविंदा के गाने पे डांस करते थे मन्नत के लिए। एंड तो इट वॉज़ फन, इट वॉज़ फन।
1: एक कोशिश रंग नहीं लाई तो मन्नत ने अगली कोशिश शुरू कर दी। उसने विक्रांत का फेवरेट गाना बजा दिया और पहुंच गई विक्रांत का हाथ थाम कर उसे डांस के फ्लोर पर लाने के लिए। ऐसे में विक्रांत भी अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाना उसकी धुंधली यादों में ताजा हो रहा है। और तो और विक्रांत ने मन्नत के साथ ताल से ताल मिलानी शुरू कर दी और इसी ताल से ताल में दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। कुछ यादें ताजा हो रही हैं और कुछ लम्हे याद आ रहे हैं।

0: बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने तीन गानों पे डांस किया और तीनों की बहुत यूनिक मेमोरीज है। वन सॉन्ग इज़ द वेरी फर्स्ट एपिसोड का गाना, जब वो हेलीकॉप्टर में मन्नत शेयर करती है विक्रांत के साथ, जो मन्नत का फेवरेट है। एंड देन अदर सॉन्ग्स वेर मन्नत एंड विक्रांत हैव हैड देयर मोमेंट्स, तो रिक्रिएट करके, और ये बार को सरप्राइजिंगली सोच के हमें कितना याद है, तो दैट वाज रियली नाइस।
1: हाँ, मन्नत के इंटेंशंस ये है कि उनका कुछ विक्रांत के साथ पुराना कुछ ऐसा बॉन्ड है किसी गाने को लेके, जो उनकी मेमोरीज है, जो उनकी कोर मेमोरी है विक्रांत के साथ, तो वो कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से विक्रांत की याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए वो उनका जो कोई फेवरेट गाना है विक्रांत का वो बजाती हैं कि उनकी याददाश्त वापस आए, इसीलिए वो सारे एफर्ट्स लगा रही हैं पर याददाश्त तो वापस नहीं आती है।
2: भाई, इस गाने ने तो धीरे धीरे विक्रांत के अंदर हाई जोश ला दिया और देखिए कैसे दोनों जमकर नाचे और इनके बीच के नजदीकियां कहीं ना कहीं मान्यता को रास नहीं आ रही।

0: फिलहाल तो आज डांस करके वाकई विक्रांत बहुत खुश हुआ है और बातों ही बातों में उसने मन्नत को इस तरह पुकारा कि मन्नत के कदम रुक गए और वो कहीं ना कहीं खुश हो रही है कि धीरे धीरे उसकी कोशिश रंग ला रही है। अब देखना होगा कि कब तक विक्रांत की याददाश्त वापस लौटेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: हर सफर एक नए कदम से शुरू होता है, बस देर है उस कदम को उठाने की। फिर देखिए मंजिल कितने करीब आ जाएगी धीरे धीरे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत ही जरूरी है। वैसे हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ये नया अपडेट। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। लेट्स चेक इट आउट।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।
3: मुश्किल में फंसी संगम,
4: जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे,
3: कृष्णा की नाकाम कोशिशें,
4: हम वो हैं जो दो और दो पाँच बना दे।
3: भाइयों के बीच शुरू हुई नई लड़ाई,

कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में कृष्णा और संगम की शादी हो चुकी है। हालांकि ये झूठी मूठी शादी है, लेकिन फिर भी संगम अब इस घर में ही रह रही है कृष्णा के साथ, लेकिन उसे पता नहीं कि ये घर और इसके लोग कैसे हैं। तभी तो देखिए उसे एडजस्ट करने में कितनी मुश्किलें हो रही है। भाई संगम को फ्रेश होने जाना है, और ऐसे में देखिए यहाँ तो कॉमेडी ही शुरू हो गई है।

0: ऐसे में बेचारा कृष्णा फंस गया है, और फंस तो संगम भी गई है, नकली शादी ही क्यों ना हो, लेकिन मुश्किलें तो असली है।
1: ये यही है बात।
2: ये क्या है?
1: ये स्पेशल दरवाजा है। ये ऐसे नहीं, ऐसे खुलता है। वो क्या है कि जब वो ऐसे खुलता था ना तो बहुत रुकावट होती थी, तो हमने रुकावट को एकदम जड़ से मिटा दिया। अब ऐसे खुलता है और अंदर बंद भी हो जाता है लॉक। गजब स्टाइल है ना। अब अंदर जा सकते
0: तो जहाँ एक तरफ कृष्णा संगम को संभालने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाइयों को भी संभाल रहा है, जहाँ उसके भाई उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, और इसी बीच इनमें लड़ाई हो जाती है। ऐसे में बातों ही बातों में कृष्णा और सतलुज के बीच देखिए कैसे लड़ाई हो गई है। दोनों हाथापाई पर उतर आए हैं, लेकिन बाकी के दो भाइयों ने इन्हें रोक लिया। भाई अभी घर में कंफ्यूजन बहुत है और सलूशन जीरो है।
3: भाभी को इंप्रेस करने के अभियान में बल्ब ही फॉरगेट कर गए। ये फॉरगेट कर गए भैया, खाने में कोई गड़बड़ नहीं है वाला।
4: फिर गड़बड़ से का मतलब तुम्हारा है? जानबूझ कर किए हैं, लड़की को जानते तक नहीं है, क्योंकि उसके भाइयों से यहाँ मार खा कर बैठे हैं। अभी भी तुम हम पे सवाल उठा रहे हो?
3: बस पूछ रहे थे सर।
4: पूछ रहे हो ये तुम?
0: तो भाई नई नवेली बहुरानी को जब इनकी सच्चाई पता चलेगी तो रिश्ते में कौन से बवाल होंगे और घर में कौन सा तमाशा, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: ये जो हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया है ना, कभी कभी इसमें किसी की एंट्री सबको शॉक कर देती है, लेकिन कभी कभी कुछ नया होता है तो वो हमें सरप्राइज कर देता है, लेकिन इन अ गुड वे। यानी ये भी है बिल्कुल एक नए फुटवेयर की तरह, जो लेकर आती है हमारे लिए प्लेजेंट सरप्राइजेस। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको हमारे ऐसे ही सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको ये तमाम खबरें एक साथ। जी हाँ, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर आ रही है स्टार प्लस से। खबरों की माने तो स्टार प्लस जल्द ही लेकर आने वाला है नया सीरियल, जिसमें मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे पारस कल्लावत, जो इससे पहले सीरियल कुंडली भाग्य में नजर आ चुके हैं। इनके साथ नजर आएंगी एक नहीं बल्कि दो दो हसीनाएं, एक तन्वी डोगरा जिन्हें आप सीरियल परिणीति में नीति के किरदार में देख चुके हैं, और दूसरी श्रुति चौधरी, जो इससे पहले कलर्स के सीरियल मेरा बालम थानेदार में बुलबुल का किरदार निभा चुकी हैं। भाई इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि इस सीरियल में एक दीवाना और दो दीवानी होंगी।

बाथरूम का दरवाजा जो टूटा हुआ है। ऐसे में कृष्णा उसे समझाने की और सिचुएशन को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। भाई बाथरूम का दरवाजा तो टूटा हुआ है ही, साथ ही लाइट भी नहीं है,

0: सर, आपका वो आइकॉनिक डायलॉग धमाल का मुझे बहुत अच्छा।
1: सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में खास मेहमान बनकर पहुंच गई है धमाल 4 की टीम, और देखिए कैसे वहां चल रही है डांस के साथ साथ ढेर सारी मस्ती।
2: ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा आगे कैसे आ जाता हूं?
3: ये आपको इंदु जी से करवाना चाहिए। हाँ। इंदु जी बहुत अच्छा करते हैं। ही इज द बेस्ट।
4: आई एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट बट ये झूठ है।
5: प्लीज वेलकम हीरो नंबर वन, द वन एंड ओनली गोविंदा।
1: देख लीजिए नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप का ये प्रोमो, जिसमें खास मेहमान बनकर आएंगे गोविंदा।
6: मैं बोला सीने पे मारना चाह रही थी, मार ले।
1: इसी के साथ प्रोमो में नजर आ रहा है कि कैसे कई रिश्तों का खुलासा होगा, साथ ही साथ दिखाई देगा शिल्पा और राम कपूर के बीच बवाल भी।
7: को सेव करना है, तब इनको खाना नहीं दिखता।
8: 100% बकवास। 5 मिनट पहले की बात बोलता हूँ, वहाँ लोग कितने स्क्रंच थे, उन्होंने बोला थोड़ी जगह दे दो, मैडम ने बोला मैं हिल नहीं रही हूँ यार। दैट इज शिल्पा शिंदे।
1: इनके अलावा खास मेहमान बनकर पहुंच गए हैं गौरव खन्ना भी मिलने अपनी बीवी आकांक्षा से, जिनके सीक्रेट आने से हाल ही में सभी फैंस चौंक गए थे।
9: तुम खुश हो?
10: नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
9: बैंड बजा दिया तूने, पूरी दुनिया बाहर ना।
10: मजे आ रहे हैं?
9: इतने मजे तू करा रही है ना मेरे को बिन मतलब के।
10: रुमत यार, बहुत रोई हूँ, मत बोला।
9: मैंने देखा एपिसोड, इसीलिए आया हूँ सपोर्ट करने।
10: इसका हस्बैंड है?
9: पता है मुझे,
10: बताया था ना तुझे मैंने।
9: रुकना चाहिए था जब वो चीज हो जाती, बट ठीक है चल। योर गेम, यू आर हियर एंड यू आर प्लेइंग वेल एंड आई एम सपोर्टिंग यू।
1: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री और शिवाय की शादी तो हो गई है, लेकिन अब होगा दोनों के बीच तलाक भी। देख लीजिए ये प्रोमो।
11: पर कुछ भी कहने से पहले इस पे साइन कर दो।
12: हाँ, 6 महीने तुम्हारे पास इस पेशेंट को खत्म करने के, उसके बाद ये शादी भी खत्म और हमेशा के लिए ये रिश्ता भी, ये रिश्ता भी, ये रिश्ता भी।
1: खबरों की माने तो आकांक्षा रंजन कपूर जल्द ही फिल्म मेकर शरण शर्मा के साथ शादी के बंधन में बन सकती हैं। खबरें आ रही हैं कि जुलाई के महीने में दोनों एक हो जाएंगे।

0: देख लीजिए सोनी सबके सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये नया प्रोमो, जहां पर बागा पहुंच गए हैं जेठालाल को सरप्राइज देने।
1: सेठ जी आए, हे खुशियां लाए, हे अरे थैंक यू थैंक यू।
2: चला दुकान है ये, आपके लिए एक सरप्राइज है।
1: अरे मुझे ये सरप्राइज देने वाले थे, कौन मार के गया है ये सी।
0: इसी के साथ हाल ही में बागा का किरदार निभाने वाले तन्मय वकारिया ने अपने डिजिटल पोस्ट में अपने पापा की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें याद किया है।
3: आज के फैशनेबल एंटरटेनमेंट वॉक में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड उतना ही पसंद आया हो जितना एक परफेक्ट पेयर ऑफ फुटवेयर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। जी हाँ, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
5: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
16: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट। पहले दल ने लिपु दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ तीर्थयात्रियों के लिए शानदार खबर। सीमा सड़क संगठन की टीम ने लामगढ़ नाले पर 70 मीटर लंबा मोटर पुल बनाकर किया तैयार। अब आसानी से श्रद्धालु पहुंच सकेंगे धाम। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी। फूलों, झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग। 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है भारत की साख। पहली बार अमेरिका और इसराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल। भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। दिग्गज सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जन नागेयन को ग्रीन सिग्नल सेंसर बोर्ड ने जारी किया ए सर्टिफिकेट। 24 जुलाई को होगी रिलीज।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
16: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच। दिसंबर में बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इतिहास में पहली बार होगा। युवा खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। उन्होंने मैदान पर युवाओं का बढ़ाया हौसला, उनकी जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्कट रूबी द रू से हुई पीएम मोदी की मजेदार मुलाकात। पीएम ने मस्कट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत की। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्त होगी और मजबूत। दोनों देशों ने खेल सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे क्रिकेट और सांस्कृतिक रिश्ते और गहरे होंगे। बद्रीनाथ धाम में मॉनसून के दौरान प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिली। बादलों से घिरे तीर्थ की बढ़ी सुंदरता। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में आस्था और उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन सुरक्षा इंतजामों पर रख रहा है नजर। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमें सतर्क। यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही है निगरानी। सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी निरंतर जारी। तापमान में गिरावट के बाद भी मत्था टेकने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगातार बारिश के चलते बाबा केदारनाथ यात्रा को दिया गया विराम। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं भक्त। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर। मंदिर परिसर में हो रहा है पेंटिंग और मरम्मत का काम। 30 जुलाई से शुरू होने वाला है श्रावणी मेला। लाखों की तादाद में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन के पवित्र महीने में एक महीने तक चलता है भव्य मेला। 50 लाख कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के धाम के करते हैं अर्पित। श्रावणी मेले के दौरान स्पर्श पूजा और वीआईपी पूजा पर रहती है रोक। देश विदेश से पूजा दर्शन के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। देवघर श्रावणी मेले के दौरान 10,000 पुलिस बल और अधिकारियों की होगी तैनाती। एसपी ने कांवड़िया पथ का लिया जायजा। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत, लाखों वारकारी ज्ञानोबा तुकाराम को जय घोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी दो दिन तक भवानी पेठ के विठल मंदिर में रुकेगी। संत तुकाराम महाराज की पालकी नाना पेठ के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरेगी। पालकी यात्रा के दौरान पुरी की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालु विठल नाम को जय घोष करते नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुणे पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए। पानी, स्वास्थ्य, सफाई और ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई। पालकी यात्रा से पूरा पुणे भक्तिमय माहौल में डूबा। शहर में हर ओर ज्ञानोबा तुकाराम की जय घोष की गूंज सुनाई दी। रोहतास में भी सावन में शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर मंथन किया। मुंगेर में भी सावन के महीने के शुभारंभ से पहले तैयारी तेज। डीएम ने कच्ची कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण, जल्द व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया। अकोला में साकार हुआ भक्ति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम। 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंची श्री जगन्नाथ रथ लगभग तैयार। करीब एक साल की मेहनत से तैयार किया गया भव्य लोहे का रथ 19 जुलाई को इस्कॉन की ओर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी, भव्य समारोह के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। पुरी में रथ यात्रा की तैयारी हुई तेज। बड़ा डांडा की रंग बिरंगी सजावट से बढ़ी रौनक, भक्तों का उत्साह देखने लायक। रथ यात्रा से पहले पुरी का श्रृंगार, मुख्य मार्ग पर आकर्षक सजावट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बड़ा डांडा बना आस्था का केंद्र, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए शहर तैयार, उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुरी में उत्सव का माहौल, रथ यात्रा से पहले सड़कों पर सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों की रौनक बढ़ी। जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासन ने तैयारियां तेज की, लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर, अहमदाबाद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। रथ यात्रा उत्सव में भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष पोशाक की तैयारी, श्रृंगार और आभूषणों पर भी दिया जा रहा है खास ध्यान। अहमदाबाद में 16 जुलाई को निकलेगी 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शामिल होते हैं श्रद्धालु। जमालपुर में मौजूद 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। 18 किलोमीटर का होता है यात्रा का रूट। भव्य रथ यात्रा में विशाल और अलंकृत रथों के साथ होते हैं सजे धजे हाथी, अखाड़े और भजन मंडली। शोभा यात्रा के दौरान 100 झांकियां भी होती हैं शामिल। कश्मीर की डल झील में पर्यटक पारंपरिक शिकारा नाव की सवारी का ले रहे हैं आनंद। खूबसूरत नजारों और शांत पानी के बीच लोग बिता रहे हैं यादगार पल। डल झील की शिकारा सवारी देश विदेश से आने वाले लोगों को कर रही है आकर्षित, सैलानियों को लुभा रहे हैं घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य। शिकारा कश्मीर की पुरानी और खास परंपरा का हिस्सा है, पर्यटकों को पसंद आ रही है शिकारा राइड। डल झील में बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय कारोबारियों को हो रहा है फायदा, शिकारा चलाने वाले लोग भी अच्छी कमाई की कर रहे हैं उम्मीद। पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे, स्थानीय युवाओं के लिए कमाई के नए अवसर बने। शिमला में मानसून का जादू, पहाड़ों के बीच तैरते बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद, देश भर से पहुंच रहे हैं लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। आसमान पर छाए घने बादल और ठंडी फिजा ने हिल स्टेशन की खूबसूरती बढ़ाई। प्रकृति की अनुपम छटा देखने के लिए सैलानियों की बढ़ी भीड़। शिमला की वादियों में छाई ठंडक, मॉनसून के खुशनुमा मौसम ने पर्यटकों को पहाड़ों की ओर खींचा। बादलों और हरियाली के बीच सैलानी ले रहे हैं यादगार छुट्टियों का आनंद। शिमला इस वक्त बना हुआ है सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
17: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
18: To right field, and it will leave.
17: From the first pitch of the season to the stretch run,
18: and that's the ball game.
17: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं, तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट, पहले दल ने लिपू दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ तीर्थयात्रियों के लिए शानदार खबर, सीमा सड़क संगठन की टीम ने लामक बगड़ नाले पर 70 मीटर लंबा मोटर पुल बनाकर किया तैयार, अब आसानी से श्रद्धालु पहुंच सकेंगे धाम। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी, फूलों, झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग, 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं प्रार्थना हाउस स्वीकार। शनि की विशेष भक्ति और पूजा पाठ का दिन होता है शनिवार, इसलिए आज हम आपको शनि को अनुकूल बनाने का बेहद नया और खास तरीका बताने वाले हैं। आज हम आपको शनि के प्रिय रंग के अलग अलग प्रयोगों के जरिए जीवन की दशा और दिशा बदलने का उपाय बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि किन महा उपायों से आप पर मेहरबान होंगे शनिदेव। तो चलिए पहले जानते हैं कि नीला रंग क्यों माना जाता है शनि का, इसका रहस्य क्या है।

0: जब जीवन में हो शनि की छाया, जब नीला रंग बदले का आपकी काया, जब कुंडली का राहु करे परेशान, तब नीला रंग बनेगा समाधान। ईश्वर की कृपा दिलाएगी नीला रंग, दौलत शोहरत देखकर आप होंगे दंग। नीलकंठ महादेव का मिलेगा वरदान, नीले रंग के प्रयोग से होगा कल्याण। सनातनी मान्यता कहती है कि वो रंग दिव्य है, क्योंकि श्री हरि और उनके अवतारों के नील वर्ण होने की मान्यता है। वो रंग अनंत अनुभूति से भरा है, क्योंकि आसमान से लेकर समंदर तक नीले रंग की छाया दिखाई देती है। माना जाता है कि जब कुदरत की इंद्रधनुषी छटा छाती है, तब नीला रंग न सिर्फ मानसिक तनाव को दूर करता है, बल्कि शांति और ताजगी का भी एहसास करवाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नीला रंग आध्यात्मिकता को आत्मसात किए है, क्योंकि चक्र विज्ञान में नीला रंग आज्ञा चक्र से संबंधित माना गया है, जो अंतर्मन को निर्मल करता है, साथ ही इससे ध्यान को गति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में नीले रंग को शनि और राहु से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि शनि और राहु की शुभता के लिए नीले रंग से संबंधित ज्योतिषीय महाप्रयोग बहुत ही कारगर है।
1: ग्रहणाम अधीनम जगत है, ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। ऐसे मानने से रंग भी तो ग्रहों के हैं, और नीला रंग सामान्यतया हम राहु से कहते हैं कि ये राहु का असर देने वाला रंग है।
0: आज हम अपनी खास पेशकश में आपको नीले रंग की महिमा बताएंगे, साथ ही जानेंगे नीले रंग से जुड़े ज्योतिषीय महाप्रयोग। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नीले रंग की स्वीकार्यता सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी नीला रंग शुभता का बोध करवाता है। सनातन धर्म में श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव को नीले रंग की आभा के साथ दिखाया गया है। ये रंग उनके असीम और अनंत प्रकृति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के ध्वज में नीले रंग को आकाश, शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इस नीले रंग के ध्वज के नीचे वसुदेव कुटुंबकम का भाव निहित है। बाइबल कहती है कि नीला रंग ईश्वरीय महिमा और स्वर्ग से जुड़ा है। वर्जिन मैरी को अक्सर नीले वस्त्रों में दिखाया गया है। इस्लाम में नीले रंग को सुरक्षात्मक और पवित्र माना जाता है। यह रंग ब्रह्मांड की विशालता और जन्नत की सुंदरता को दर्शाता है। यहूदी परंपरा में नीला रंग समुद्र और आकाश का प्रतीक है, जो सीधे ईश्वर के सिंहासन से जुड़ा है। तो देखा आपने, नीले रंग की स्वीकार्यता पूरे विश्व में है, हर धर्म में है। रहस्य का सबसे बड़ा रंग माना गया है नीला। ज्योतिष में इसका संबंध कुंडली के ग्रह शनि और राहु से माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नीले रंग की शुभता महादेव की आराधना करने से बढ़ जाती है। आप भी सुनिए।
1: किसी व्यक्ति को नीला रंग पहनने के बाद और अधिक लाभ चाहिए तो उसको राहु और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और विशेष तौर पे नील तारा स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति नीले रंग का लाभ ही नहीं, देवी की आकांक्षा भी, देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेता है।
0: आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताने वाले हैं नीले रंग से जुड़ा रहस्य, जिसके जरिए चमक सकती है आपकी किस्मत। साथ ही नीले रंग से जुड़े महाप्रयोग भी आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: नीले रंग की अपनी कुछ खासियत होती है और इसके प्रयोग की कुछ सावधानियां भी होती हैं, क्योंकि ये रंग जुड़ा है कुंडली के सबसे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ। अगर आप अपने जीवन में रंगों के जरिए कुछ बदलाव करने पर विचार करें तो ये तरीका बेहद आसान है। इसीलिए आज हम आपको शनि के प्रिय रंग के जरिए आपके जीवन और भाग्य को चमकाने के उपाय बताएंगे। गौर से देखिए।

0: नीला रंग जो सवार सकता है आपकी तकदीर। नीला रंग जो बदल सकता है कुंडली की तस्वीर। नीला रंग जिसके प्रयोग से प्रसन्न होते हैं शनि। सबसे प्रभावशाली रंग बना सकता है आपको धनी। आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं नीले रंग से आपका सरोकार। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि नीले रंग की शुभता का प्रभाव शनि देव से जुड़ा है। शनि देव के न्याय और दंड के बारे में संसार जानता है और शनि की पीड़ा से बचने के उपाय भी लोग खूब करते हैं। लेकिन आज हम आपको जो प्रयोग बताने वाले हैं उसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। न गुड़, न चना, न सरसों के तेल का दीपक और न ही पीपल का पेड़। आज हम बात करेंगे शनि के प्रिय रंग के बारे में, वो रंग जो शनि के क्रोध को शांत कर सकता है। तो देखिए नीला रंग क्यों है इतना खास। वातावरण में लाल रंग के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रंग नीला है। यह अत्यंत रहस्यमयी और गहरा रंग है। यह धीरे धीरे सम्मोहन और आकर्षण भी पैदा करता है। ज्योतिष में यह शुभ शनि का रंग माना जाता है। कुछ विद्वान इसे राहु का रंग भी मानते हैं। यह रंग पीले रंग का संपूरक रंग माना जाता है। इस रंग का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए।
1: देखिए जैसे राहु एक छाया ग्रह है, किसी को दिखता नहीं, केवल उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसी प्रकार से नीले रंग का प्रभाव भी तुरंत दृष्टिगोचर होता है। यह रहस्य और ऐसे है ना रहस्यपूर्ण भाव उत्पन्न करता है कि जो व्यक्ति नीले रंग को धारण करता है विशेष दिन शनिवार छोड़ के, उस व्यक्ति का प्रभाव सामने वाले के ऊपर अकाट्य पड़ता है।
0: जानकारों की माने तो रहस्य का सबसे बड़ा रंग है नीला। इसके प्रभावों के बारे में बात करें तो आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देते हैं। इंसानी जिंदगी में बड़े बड़े बदलावों का कारण बन सकता है नीला रंग। तो देखिए कितना गहरा हो सकता है नीले रंग का प्रभाव। यह रंग कभी कभी खुद को भी सम्मोहित कर देता है। इस रंग के ज्यादा प्रयोग से बुद्धि अशांत हो सकती है। यह रंग व्यक्ति के आलस्य को बढ़ा देता है। यह रंग कभी कभी भय यानी डर जैसी आदत को भी जन्म देता है। इस रंग से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में अशांति आती है।
1: ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रभावशाली अगर कोई रंग है प्रकृति में वो नीला रंग ही होता है और नीला रंग व्यक्ति के ऊपर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो नीले रंग का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है जो धारण करे इसको और भगवान को विशेष तौर पर राहु की पूजा करके भगवान शिव का पूजन करे उस व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिलने लगता है।
0: कहते हैं कि शनि और राहु से जुड़ी समस्याओं के समाधान का सबसे सरल उपाय है नीले रंग का प्रयोग। लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्रयोग में ना लाया गया तो समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। इसलिए नीले रंग के प्रयोग की सावधानियों के बारे में जानना जरूरी है। लगातार नीले रंग का प्रयोग कभी ना करें। जल प्रधान कुंडलियों में नीला रंग समस्याएं बढ़ा सकता है। अग्नि प्रधान कुंडलियों में यह लाभ देता है। अंक 4 वालों को संतुलित मात्रा में नीले रंग का प्रयोग लाभकारी होता है। कुंडली में चंद्रमा या राहु कमजोर हो तो नीले रंग से बचना चाहिए। अवसाद या निराशा से ग्रस्त लोगों को नीले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। खासतौर पर बेडरूम में नीले रंग का प्रयोग ना करें। नीले रंग के साथ लाल रंग का प्रयोग खतरनाक है।
1: देखिए ये रंग शनिवार को धारण करने वाले व्यक्ति को पिशाच योग या नंदी योग बनने लगता है, तो शनिवार के दिन इसका निषेध रखें और नीला रंग अधिक ना पहने। अगर कोशिश करें पूरा नीला ना पहन के, नीले के साथ व्हाइट येलो रेड लगाता है जो व्यक्ति, तो और कई गुना उसका लाभ मिलने लगता है। परंतु विशेष जहां लोगों के ऊपर प्रभाव आपने डालना हो, लोगों का जीवन बदलना हो, ऐसे बड़े धनाढ्य, ऐसे बड़े आप किसी इंटरव्यू में नीले रंग का वस्त्र धारण करने से आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, आपकी ऑरा बहुत बढ़ जाती है।
0: तो आप भी इन बातों का ध्यान रखते हुए नीले रंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आपके कष्टों का भी समाधान होने लगेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे करें नीले रंग का प्रयोग। बने रहिए हमारे साथ।
2: हम बात कर रहे हैं शनि के प्रिय रंग के बारे में। नीले रंग के संतुलित प्रयोगों से शनि और राहु की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन इस तीव्र प्रभावशाली रंग के प्रयोग से पहले सही तरीके को समझना भी जरूरी है। तो देखिए नीले रंग का कब और कैसे प्रयोग करना होगा मंगलकारी।

ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि की साढ़े साती हो, शनि की महादशा हो या फिर ढैया, इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकता है नीला रंग। ज्योतिषी बताते हैं कि नीला रंग अपने अंदर समेटे हुए है कई समाधान, जिसकी जरूरत हम सबको कभी न कभी पड़ती है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा नीले रंग का सही प्रयोग। तो देखिए कब और कैसे करें नीले रंग का प्रयोग। ध्यान के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, शनि और राहु से लाभ लेने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नीले रंग का रुमाल साथ में

0: उस व्यक्ति को इससे होने वाली पीड़ा या मानसिक पीड़ाएं जिस व्यक्ति को होती है या जिस व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी चीजें होती हैं तुरंत समाप्त होने लगता है।
1: अभी आपने जाना नीले रंग का हम सबके जीवन से सरोकार। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे शनि की कृपा से आपके जीवन में धन की समस्या दूर हो सकती है। गौर से देखिए यह महा उपाय। शनिवार को पहले पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक लगाएं। इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन से धन संबंधी बाधा का समाधान हो सकता है। चलिए अब आपको रोजगार से संबंधित एक महा उपाय बताते हैं जिसे कर लेने से आपके व्यवसाय को तरक्की के पंख लग सकते हैं। शनिवार को सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष में जल डालें। शाम को उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा एक मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाएं। वहीं पर खड़े होकर शनि चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं। इस दिन स्वयं भी सात्विक रहें। तो देखा आपने ज्योतिष में बताए ये छोटे छोटे महा उपाय न सिर्फ आपके जीवन से संकटों का नाश कर सकते हैं बल्कि आपके जीवन में सुखद अनुभूति भी देते हैं। तो आप भी करके देखिए ये महा उपाय जिससे आपके जीवन में होगा खुशियों का प्रवेश।
2: तो इसी के साथ प्रार्थना स्वीकार की आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए GNT।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
4: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
5: Somebody save me
4: to timeless favorites
5: and life is like a song
4: and new discoveries.
5: So much more than a history. Wake up.
4: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा अब पूरे शबाब पर है। यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं की रौनक है। यहाँ आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का आलम यह है कि खराब मौसम के बावजूद एक हफ्ते के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
1: मानसून की चुनौतियों के बीच श्री अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। चाहे बालटाल हो या पहलगाम, दोनों ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की रौनक है। आस्था का आलम यह है कि यात्रा शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़कर करीब 1.5 लाख तक पहुँच गया है। अब तक करीब 1,45,000 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 30% ज्यादा है। ये हाल तब है जब हिमलिंग पिघल चुका है, बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं और पहाड़ों में बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, सब पर भारी है बाबा बर्फानी में श्रद्धालुओं की आस्था, जो हर रोज नए आंकड़े के साथ लोगों को हैरान कर रही है। और श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा न सिर्फ सनातन धर्म में लोगों की आस्था का पता बता रहा है, बल्कि देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद से सबके चेहरे खिले हुए हैं।
2: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर 2-3 महीने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
3: जी जी,
2: तो किस तरह का काम चलता है इन 2-3 महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग?
4: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
2: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
4: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है, और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
1: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है, तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
5: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग, चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
2: तो 2-2.5 महीने जो होते हैं, ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
5: बहुत अहम होते हैं, बहुत, हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये 2-2.5 महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा हमारा।
2: साथ में ये भी है कि इसमें कमाई अपनी जगह, लेकिन हाँ जी, कश्मीर मेहमान नवाजी,
5: कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है। और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यहाँ यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
1: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों की आजीविका का साधन रही है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बस कुछ ही दिनों का इंतजार और फिर पूरी दुनिया उस दिव्य पल की साक्षी बनेगी, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उड़ीसा में आस्था का सबसे बड़ा पर्व अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। पुरी में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, देखिए।
6: रथ तैयार है, रंगों की चमक बढ़ रही है,
3: भक्ति और विश्वास की झलक दिखने लगी है। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब शंखनाद गूंजेगा, मंदिर के सिंह द्वार खुलेंगे और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ लगभग तैयार हो चुका है। रथ का शिखर भी अंतिम रूप ले रहा है। अब कलाकार बड़ी बारीकी से इन रथों पर रंग भर रहे हैं। लाल, पीले, हरे और नीले रंगों से सजे ये रथ धीरे धीरे अपनी दिव्य पहचान पा रहे हैं।
6: जय जगन्नाथ। अभी तो हमारा रथ का जो काम है वो प्राय तो शेष पर जाए, लास्ट स्टेज पे। अभी हमारा रथ को जो सजाने का काम चल रहा है, अभी जैसे कि रथ के ऊपर जो हंस है, हंस पटा, और जो कन्या सखियों है, सखियों का पटा, और ये जो रथ के पार्श्वदेव देव है, सभी रथ में नौ पार्श्वदेव, ये बलभद्र जी के देवता है नौ पार्श्वदेवता, माँ के देवी है नौ देवी और जगन्नाथ जी के नौ देवता है, तो ऐसे करके सारे रथ में अभी लग रहे हैं।
3: इन दिव्य रथों को देखने वाला हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ठहर जाता है। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो कोई श्रद्धा के रथ की लकड़ी को स्पर्श कर माथे से लगा लेता है। रथ को सजाने वाले कारीगर भी हर काम शुरू करने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि सेवा है।
7: उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखे, सुस्त रखे, कि अगले साल वो भी फिर से आकर आपकी सेवा में नियुक्ति हो सके। जरूर, ये तो खुशी, एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम भी है कि हर साल की तरह इस साल भी काम आरंभ हो के खत्म होने के बाद आ रहा है। तो जितने भी कारीगर लोग हैं अपने मन में प्रसन्नता भरे हुए, साथ में ये भी दुख है कि हमारा जो कार्य था 3 महीने से काम में लगे हुए थे, मुलझुल के काम कर रहे थे, वो समय अभी खत्म हो गया।
3: भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, जिसका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। सैकड़ों सेवायत, बढ़ई और कलाकार दिन रात मेहनत करके इन रथों को तैयार करते हैं। परंपरा के अनुसार हर रथ का आकार, रंग, ध्वज और सजावट अलग होती है और हर छोटी बड़ी बात का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। लकड़ी की नक्काशी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पारंपरिक चित्रकारी से इन्हें सजाया जा रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु रथ निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। कोई दूर से दर्शन कर रहा है तो कोई हाथ जोड़कर महाप्रभु से अपनी मनोकामना मांग रहा है। रथ के सामने झुकते इन भक्तों की आंखों में आस्था साफ दिखाई देती है।
7: हर कोई सबक जो सात रथ कर रहे हैं, सभी अपने अपने कार्य में लिप्त हुए। आखिरी पड़ाव में रथ को सब मिलकर सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी काम में 2-3 दिन में हम ये काम खत्म करके प्रशासन को हस्तांतर करने के लिए प्रस्तुत है।
3: अब बस एक हफ्ते का इंतजार बाकी है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब बस 16 जुलाई की इस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भक्तों के बीच भगवान आएंगे। इसके बाद लाखों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से इन रथों को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
8: बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की कुर्सी से, लेकिन जब कुर्सी हटा ली गई तब भी एक बच्चा गिरा तक नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जाहिर है इस एक्टिविटी के साथ बच्चे साथियों के लिए समर्पण और सहयोग और कर्तव्य की सीख ले रहे हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्ची किसी बात पर पिता से रूठ गई है और शायद जब तक मनाया नहीं जाएगा वो मानेगी नहीं, और पिता जैसे ही मनाने का एक स्टेप लेते हैं, बिटिया का गुस्सा उड़न छू हो जाता है। वायरल वीडियो की ये तस्वीरें सबको लुभा रही है और लगभग सभी यूजर्स इस बच्ची को देख यही कह रहे हैं कि उम्र का कोई मतलब नहीं, हर औरत की यही कहानी होती है, रूठती है और मनाने पर तुरंत मान जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। बुजुर्ग दादी अमरनाथ यात्रा पर निकली है और उनकी इस दुर्गम रास्ते की चढ़ाई की तस्वीरें चर्चा में है। लोग उनकी आस्था देखकर प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं, आस्था उम्र की मोहताज नहीं होती। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ कठिन से कठिन मार्ग भी आसान लगता है। और ये भी कि सच्ची भक्ति दिखावे, रीलों और तस्वीरों से नहीं होती, बल्कि समर्पण, विश्वास और साधना से पहचानी जाती है, जो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें हौसला बढ़ाती हैं, खुद ही देखिए। बच्चों संग वो शख्स भी दौड़ में शामिल हुआ है जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसकी दौड़ की तस्वीर उसके जुनून, उसकी हिम्मत और उसकी लगन का परिचय दे रही है। ये तस्वीरें बचपन की उस कहानी की याद पुख्ता करती हैं, जिनमें दुनिया में सबसे तेज वो इंसान दौड़ता है जिसके दोनों पैर नहीं थे। आज इन तस्वीरों ने कहानी को हकीकत का जामा पहना दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस शख्स के जज्बे का मुरीद बन गया है। बारिश के मौसम की ये तस्वीरें कुल्लू की है, जहां नदी अपने रौद्र रूप में है और यहां रहने वाली ये महिला नदी माता को आटा समर्पित कर प्रार्थना कर रही है कि वो शांत हो जाए और इन सब की रक्षा करे। नदियों के तट पर बसे इलाकों में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है और इसीलिए बाढ़ बारिश में लोग नदियों की पूजा कर उनसे शांत रहने की गुहार लगाते हैं। इन महिलाओं के इस अटूट विश्वास को लोग नमन कर रहे हैं।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected. And nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
9: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला-चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
13: 27 घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ यात्रियों के लिए शानदार खबर। बीआरओ की टीम ने लामगढ़ नाले पर 70 मीटर लंबा मोटर पुल तैयार किया। अब आसानी से श्रद्धालु पहुंच सकेंगे धाम। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी। फूलों, झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग। 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही भारत की साख। पहली बार अमेरिका और इसराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल। भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन। दिग्गज सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जनन आइकन को ग्रीन सिग्नल। सेंसर बोर्ड ने जारी किया है सर्टिफिकेट। 24 जुलाई को होगी रिलीज।

0: संपत्ति भी नहीं, यही है हमारा आज का मुद्दा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत चंदावा। और ये बात कही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में। बुजुर्ग माता पिता ने बेटे से अपना फ्लैट वापस मांगा तो बेटा कोर्ट चला गया। इस पर अदालत ने बेटे को फटकार लगाई और साफ कहा कि जब माता पिता इस भरोसे पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कि उनकी देखभाल की जाएगी और अगर उस वायदों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के फैसले को रद्द भी किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी के मामले सामने आते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। जब माता पिता से संपत्ति पाकर बच्चे माता पिता को उनके ही घर से बेदखल कर देते हैं, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला एक बड़ी नजीर साबित होगा? माता पिता को क्यों वापस मिलेगा घर? कारोबारी बेटे के लिए कोर्ट ने क्या कहा है? माता पिता ने फ्लैट की गिफ्ट डीड क्यों की थी? और क्या माता पिता की देखभाल करने का वायदा पूरा नहीं हुआ? माता पिता को क्या मिला था भरोसा? और क्या ये फैसला दूसरे मामलों पर भी एक उदाहरण बनेगा? कोर्ट ने हर बेटे को दी है बड़ी सीख, बुढ़ापे में माता पिता की अनदेखी क्या समाधान, बुजुर्गों में अधिकार पर क्या कहता है हमारा कानून, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के बड़े कानून के जानकार मौजूद होंगे, समाज सेवी भी होंगे, जिनसे हम इसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तो आज जिस मसले पर चर्चा हो रही है वो हर जगह पर नजीर बन सकता है। कारोबारी बेटे को पिता का फ्लैट वापस करना होगा, यही है अब कोर्ट का फैसला। मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कारोबारी बेटे की अर्जी खारिज कर दी है। माता पिता ने बेटे को दिए फ्लैट की गिफ्ट डीड रद्द कर दी है। बेटे पर माता पिता ने देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया है। अनबन होने पर माता पिता को लोअर परेल का फ्लैट छोड़ना पड़ा था। पहले माता पिता ने बेटे को दो फ्लैट गिफ्ट किए थे, फिर माता पिता ने बेटे से फ्लैट वापस ले लिया। माता पिता ने भरोसे के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, लेकिन आरोप है कि बेटे ने देखभाल करने का वायदा नहीं निभाया है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि वायदा पूरा नहीं होने पर फ्लैट की ऑनरशिप ट्रांसफर तक रद्द की जा सकती है, क्योंकि गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त शामिल थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ कहा है कि माता पिता की फाइनेंशियल हालत ये तय नहीं करती कि डीड ट्रांसफर रद्द की जा सकती है या फिर नहीं। कोर्ट के मुताबिक शर्त या फिर वायदा पूरा होना मायने रखता है, और फिर चाहे माता पिता कितने ही धनवान क्यों ना हो। हालांकि कारोबारी बेटे ने फ्लैट वापस लिए जाने से अपनी पत्नी और बच्चों पर असर पड़ने की दलील भी दी थी, क्योंकि वो सभी वहां पर रह रहे थे। साथ ही बेटे ने फ्लैट खरीदने में अपने पैसे भी देने की अपील की दलील दी थी, पर कोर्ट ने आखिर में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेटे की अर्जी को खारिज कर दिया है। और इसके अलावा कहा है कि बेटा लोअर परेल के फ्लैट का कब्जा वापस माता पिता को लौटा दे, क्योंकि माता पिता भी पहले वही रहा करते। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरी सहयोगी विद्या भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा जो खास मेहमान है एक बार उनका परिचय करा देती हूँ। आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा सिंगल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। गार्गी लखनपाल डायरेक्टर हैं वृद्धि केयर फाउंडेशन से, और साथ ही साथ स्वेच्छा लोहिया एक्टिविस्ट हैं वर्किंग विद मानव लोक एनजीओ। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विद्या आप ही के पास आना चाहूंगी, पूरा मामला क्या है जरा बता दीजिए, कोर्ट का आदेश क्या है और कैसे ये दूसरे मामलों के लिए भी एक नजीर साबित हो सकता है?
1: देखिए, इस मामले में दरअसल जो माता पिता थे उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने बेटे के नाम पे गिफ्ट डीड बना के अपने बेटे को सौंप दिया था ये प्रॉपर्टी, जहां पर वो खुद रह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र हुई, रिश्ते उन लोग के बीच में जो बेटे और बच्चे के साथ उन लोगों का जो रिश्ता था वो खराब हो गया, और वो इस तरह से खराब हुआ कि दरअसल उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो है घर से निकल जाना, और इसीलिए वो लोग घर छोड़ के निकल गए। लेकिन जिस तरीके से बेटे ने बताव किया था उसको लेके उन्हें ठीक नहीं लगा और वो लोग ट्राइब्यूनल गए थे, और ट्राइब्यूनल में अदालत ने माना कि क्योंकि जो एक वादा था कि आपको ये गिफ्ट डीड क्यों मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि आप अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं तो एक ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का, और इसकी वजह से अदालत ने कहा कि इसके लिए आपको ये वापस देना पड़ेगा। अब अदालत ने में यहां तक इन्होंने कहा और क्योंकि ट्राइब्यूनल ने जब इनकी बात नहीं मानी तो हाईकोर्ट गए। बेटे ने अदालत में हाईकोर्ट में कहा कि दरअसल इस मामले में अगर आप देखें तो दे आर वेरी वेल टू डू, उनको कोई जरूरत नहीं है इस पूरे प्रॉपर्टी की, तो वो उनके पास अलग से अपने पास रहने के लिए सब कुछ है तो उनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा क्योंकि जिस तरीके से ये आपने ख्याल नहीं रखा था, आपने ब्रीच किया है, तो अब ये प्रॉपर्टी भी आपको लौटानी होगी। वादा तो वादा होता है, अगर आपने तोड़ा है तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि जस्टिस घुगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस घुगे और जस्टिस अंकित की ये बेंच ने ये निर्णय अपने अपने पूरे ऑब्जर्वेशंस के साथ दिया।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अविद्या आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी मामले को लेकर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशुतोष श्रीवास्तव जी आप ही के पास आऊंगी, एक बार समझाइए हमें हमारा कानून इस तरह के मामलों को लेकर क्या कहता है। गिफ्ट डीड में जो शर्त रखी गई, अब इसमें यह भी बात है कि बेटे ने यह भी दलील दी कोर्ट में कि उसके माता पिता वेल टू डू हैं और कोई जरूरत नहीं है वो फ्लैट उनको वापस करने की। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए कानूनी नजरिए से क्या कहता है हमारा कानून?
2: देखिए कंडीशनल, जो कंडीशनल गिफ्ट डीड होते हैं वो तो वैसे भी कैंसिल किया जा सकता है, जो सेक्शन 126 है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 का, उसके हिसाब से अगर कोई भी कंडीशन अगर लगाया गया है किसी भी गिफ्ट को करने के लिए और वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट बनाया गया था 2007 में, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, तो ये जो बनाया गया था वो सीनियर सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इसमें जो बेसिकली अगर हम देखेंगे सेक्शन 5 में तो बोलता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अगर सीनियर सिटीजन को अगर चाहिए अपने बच्चों से तो वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। उस ट्रिब्यूनल को सर्टेन पावर्स दिए गए हैं और पावर्स में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000 तक का वो जो है ऑर्डर कर सकता है ट्रिब्यूनल। उसके अलावा अगर वो कोई उनके बच्चे अगर घर में रह रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जो है उनको बाहर निकाला जाए तो उसके लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। या फिर जैसे इस केस में हमने देखा, जो अगर गिफ्ट किया है पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ये सोच के कि उनका ध्यान रखेंगे और वो नहीं रख रहे हैं, तो वो जो है गिफ्ट को कैंसिल करने का भी पावर ट्रिब्यूनल को दिया गया है, जो कि सेक्शन 23 में है सीनियर सिटीजन जो एक्ट मैंने आपको 2007 बताया उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने जो है ऑर्डर किया, पेरेंट्स जब वहां गए उन्होंने कहा कि उनको ये इशू है और उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है और उन्होंने इसी जो है शर्त की वजह से ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, तो ट्रिब्यूनल ने जो है ये सारी बातों को सुनते हुए उनके फेवर में ऑर्डर किया। और बाद में जो है इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया अपोजिट पार्टी ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये चैलेंज होता है, वहां पर भी जो है इसी तरीके का ऑर्डर आया और तब जो है पिटिशनर जो है अपील लेकर के हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट गए और वहां पे ये जो है मामला चला। और जो है हाईकोर्ट ने भी इन सारे तमाम दलीलों को दोनों तरफ से सुनने के बाद ये फैसला किया कि ये जो ट्रांसफर है ये कैंसिल होना चाहिए, ये गिफ्ट डीड कैंसिल होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जो है जो मैंने आपको 2007 का जो एक्ट बताया उसके सेक्शन 23 के हिसाब से वो गिफ्ट डीड को जो है कैंसिल करने का ऑर्डर किया गया और साथ में जो है पोजीशन जो है इमीडिएटली देने के लिए। और इसमें ऐसा कोई भी अदरवाइज भी कोई ऐसा आर्गुमेंट कि वो अगर वेल टू डू हैं पेरेंट्स है या उनका सेपरेट इनकम है या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स जो हैं वो नॉन मेंटेनेबल हैं। और ये एक्ट को बनाया ही गया था सीनियर सिटीजन और जो ओल्ड जो 60+ जितने भी सिटीजन हैं जिनको छोड़ दिया जाता है या जिनका ध्यान नहीं रखा जाता है, बच्चे उनको छोड़ देते हैं या उनकी प्रॉपर्टी में उनको इंटरेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, तो ऐसे मामलों के लिए ही इस कानून को बनाया गया था और इसी कानून के तहत जो है ये फैसला सुनाया गया है। और मुझे लगता है
0: आशुतोष जी एक सवाल और फिर आगे अपने बाकी पैनलिस्ट के पास चलेंगे, क्या इस मामले में आगे कहीं और अपील की जा सकती है? क्या बेटा आगे किसी और कोर्ट में अपील कर सकता है? हाईकोर्ट का हालांकि फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बेटा?
2: हाँ जी जी हाँ, अपील करने का जो है जो अपीलेंट है उसको अपना राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि कानून जो बनाया गया है, एक्ट जो बनाया गया है 2007 में, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप है अपील का। हालांकि अपील, जैसे मैंने बताया, वो जा सकते हैं अपील का, उनको पूरे पूरे पूरी राइट है उनको जाने के लिए अपील
0: जी,
2: में।
0: जी जी चलिए अब गार्गी लखनपाल आपके पास आऊंगी। देखिए कानून हमारा क्या कहता है इसको लेकर तो आशुतोष जी ने समझा दिया और पॉइंटर्स आगे हम उनसे जानेंगे समझेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो क्या है, क्या नजर आता है समाज में? क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सामने आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी या पैसा कई बार ट्रांसफर कर देते हैं, हालांकि इस केस में शर्त वहां पर लिखवाई गई थी, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स नहीं लिखवाते हैं क्योंकि रिश्ता ऐसा होता है, पेरेंट्स को भरोसा होता है और बच्चे भी उस तरह का भरोसा जगाते हैं माता पिता में।
3: वेलकम करती हूँ कि आप और महाराष्ट्र हाई कोर्ट का बहुत बहुत सम्मान कि उन्होंने इसको लागू किया और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में ये लागू होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। देखिए जिस तरह से भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है वो बढ़ रही है, हमारे अभी 60+ जो हमारे आयु के जो बुजुर्ग हैं अभी 2034 में उनका जो वो है 15 से लेकर 16% उनकी आबादी बढ़ जाएगी। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को ये समझना पड़ेगा, ये जो हमारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे जो हमारा हक है ये हमारा राइट नहीं है, ये हमारा प्रिविलेज है। हमारे पेरेंट्स हमको ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देते। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स को हमें प्रॉपर्टी इसलिए देनी पड़ रही है कि बच्चे उनकी सेवा करेंगे। तो ये हमारे देश का हमारे नैतिक मूल्यों की कहीं ना कहीं कमी है। हमें बचपन से कानून नहीं सिखाया जाता, हमें बचपन से नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ देश के नागरिक, हम सबको इसमें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी पड़ेगी। हम सबको ये जो हम मिसयूज करते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का और ये इन कानून का, ये जो हमारे राइट्स हैं हमें दिए जाते हैं, मुझे लगता है बहुत गलत है। ये हमारा कोई राइट नहीं है हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, ये हमारा प्रिविलेज है जो हमारे पेरेंट्स अपनी खुशी से हमें देते हैं और उसके बदले में हमें उनको सम्मान देना होता है, जिसको हम आज सेवा का नाम देते हैं। हम एज अ बच्चे हम भी सोचते हैं कि हमने अपने माँ बाप को अपने घर रखा हुआ है, हम नहीं अपने माँ बाप को रखने वाले, हमारे पेरेंट्स ने हमें अपने पास रखा हुआ है, ये हमारा लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये एक बेसिक और जहां तक मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, अभी वृद्ध केयर फाउंडेशन 1100 ओल्ड एज होम्स के साथ काम कर रहा है। तो अगर ये कानून पूरे देश भर में लागू होता है तो हम उन 1100 वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के साथ न्याय करेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके अच्छे घर होने के बावजूद भी वो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं।
0: स्वेच्छा आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, ये तो एक बात है। देखिए गार्गी ने बात सही कही है, लेकिन ये एक बात है, लेकिन आप बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप वो सेंसिटिविटी किस तरीके से जगाएंगे, वो अपनापन किस तरीके से जगाएंगे, क्योंकि सही बात है कि आने वाले समय में हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और कितने ओल्ड एज होम है उनकी तादाद भी, गिनती भी इन्होंने बताई है, लेकिन क्या फोर्सफुली आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं? क्या वो रिश्ता वापस हो पाएगा? कहीं वो घर आपको घुटन तो नहीं देगा? जाहिर सी बात है कि उसके बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहेंगे कि हम इससे बेटर है कि हम यहाँ से चले जाएं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है।
4: बिल्कुल सही बात कही है आपने। मेरा ऐसा मानना है कि ये हम जिस समाज में रहते हैं, हम इंडिया जिस हमारे अपब्रिंगिंग और जिन वैल्यूज के साथ आगे चला है, ये वैल्यूज हमारे कल्चर का एक भाग है जिसको दर्शाता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हमारा रहना, उनका जीवन में उनके आगे साथ उनका देना, ये सिर्फ हमारी मॉरल, ये सिर्फ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारी मॉरल वैल्यूज पे भी आता है।
0: लेकिन यही पे यही सवाल है, देखिए जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं स्वेच्छा, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, मॉरल वैल्यूज कहीं नहीं नजर आती है हमारे देश में।
4: बिल्कुल करेक्ट है आपका, एंड आई थिंक हमें वहां पे थोड़ा सा इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि क्या हम पेरेंट्स के साथ एक संवाद फैमिली में जो होना चाहिए, एक कॉन्वर्सेशन जो एक छोटे लेवल से जब हम शुरुआत करते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक जो रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, वो किस तरीके से आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें ऐसे लॉस की जरूरत ना पड़े। मैं ग्राउंड रियलिटी की भी थोड़ी बात करूंगी कि मैं मराठवाड़ा के जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जहां से आती हूँ, यहाँ पे हमने बुजुर्गों के ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे बच्चे पुणे मुंबई या नासिक चले जाते हैं जॉब्स के लिए, और उसके बाद वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने माता पिताओं का, उनके खाने तक का भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ तो क्वेश्चन, एक सवाल आता है ह्यूमैनिटी की तरफ, हम किस डायरेक्शन में एज अ समाज की तरफ हम आगे जा रहे हैं, और हमें आने वाले समय में किस तरीके की समाज की संरचना करनी है। तो मेरा फोकस यहाँ पे
0: स्वेशा,
4: कुछ
0: कोई
4: इस
0: एक
4: तरीके की
0: अगर केस
4: काउंसलिंग।
0: स्टडी आप हमें बता पाए स्थिति
4: बिल्कुल
0: कैसी है,
4: बिल्कुल,
0: बिल्कुल इसी से हमारे दर्शक समझ भी पाएंगे उसे अच्छे से।
4: हम मराठवाड़ा के जिस जिले में, बीड जिले से मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में आता है मराठवाड़ा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि मोस्टली फोकस्ड हमारी पुणे मुंबई नासिक इन एरिया में ज्यादा है, तो जितने भी यहाँ के मजदूर हैं या लो फाइनेंशियल फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, ये सभी लोग अपने घर बार छोड़ के पुणे मुंबई में चले जाते हैं। ऐसे ही एक केस, एक मैं महिला का बताना चाहूंगी कि जो कि बुजुर्ग हैं, अपनी 64 ईयर्स की हैं, उनके बच्चे चले गए और कुछ सालों तक तो उन्होंने अपना संबंध रखा अपनी माँ के साथ, फिर उन्होंने, इन बच्चों ने वहीं पे अपने पुणे ही मुंबई में अपनी ही दुनिया उन्होंने बसा ली, उन्होंने अपनी फैमिली वहां पे शुरू करी, और अपनी माँ को उन्होंने भूल गए, उन्होंने छोड़ दिया अपनी माँ को यहाँ पे लोगों के सहारे, या उन्होंने ऐसा सोचा कि गांव वाले देखेंगे। तो हम जो संस्था से, मैं मानव रूप जिस संस्था से बिलोंग करती हूँ, हमारी संस्था ऐसे कम से कम रोज 500 बुजुर्गों को 2 टाइम का खाना उनको प्रोवाइड करती है, जिनके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे कितने हमें यहाँ पे ऐसे केसेस देखने मिलते हैं कि बच्चे एक बार चले जाने के बाद वो वापस भी एक बार आने का सोचते नहीं है, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं, उनका मेडिकल तो चीजें तो बहुत ही दूर की बात है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उनके खाने के बारे में भी नहीं सोचते, उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो ये जो लॉ एक जो आया है, ये जो ऑर्डर जो एक पास किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, यहाँ पे मैं उस पर फोकस करना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर ये फोकस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का फोकस था कि सीनियर सिटीजन का प्रोटेक्शन, सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट और डिग्निटी कैसे हम मेंटेन करी जाए कि जिस घर में उन्होंने एक
0: हाँ,
4: साथ
0: क्योंकि
4: अपने
0: उन्होंने
4: बच्चों को
0: स्पेसिफिकली उस
4: रखा।
0: लाइन पर जिक्र किया, जब ये जब बेटे की तरफ से दलील दी जाती है कि ये तो वेल ऑफ है, इनको जरूरत नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रॉमिस इज प्रॉमिस, और इसीलिए आपने प्रॉमिस किया था कि उनकी देखभाल करेंगी, वो फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए कोर्ट का ये ऑर्डर है। मनीषा जी, अब यहां पर हम दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों पहलुओं की मानसिक स्थिति को समझाइए। एक तरफ वो बुजुर्ग पेरेंट हैं जिनको जरूरत है बच्चों की, ताकि वो उनकी देखभाल कर सके, एक इमोशनल बॉन्डिंग जाहिर सी बात है कि माता पिता की बच्चों के साथ होती है, इमोशनली माता पिता चाहेंगे कि वो उनका जो बुढ़ापा है अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों नाते नातियों के साथ ही बीते। लेकिन यहाँ पर कुछ मजबूरियां उन युवाओं की भी हैं। अब जैसा अभी बता ही रही थी हमारी पैनलिस्ट की, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी की वजह से शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आके पूछते भी नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ उनके माता पिता हैं। ये दोनों कंडीशन को किस तरीके से आप देखती हैं?
5: देखिए, मुझे मैं ये कहूंगी कि केवल पैसा अर्न नहीं किया जाता है, रिस्पेक्ट भी अर्न की जाती है, और जो एक अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट जो पेरेंट्स का बच्चों से बहुत ज्यादा होता है और बच्चों का भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों का टाइम के साथ। और आज के समय की बात अगर करें, टुडेज एज, जहां पे आजकल कैसे भी केसेस हो रहे हैं, तो जो ये जो लॉ पास हुआ है, तो इसमें बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की वो हार्ड एंड मनी है। अब वो उनके राइट्स हैं, उनकी चॉइस है कि वो किस तरह से उस मनी को यूज करना चाहते हैं। अगर बच्चे उनको आदर सत्कार दे रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी ओल्ड एज में जो भी उनकी जरूरतें हैं, चाहे वो मेडिकल इश्यूज है किसी भी तरह के, या फिर उनकी दिनचर्या रिलेटेड है, उनको किसी भी तरह की सुविधाओं की जरूरत है, तो अगर बच्चे वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब जो भी पेरेंट्स के पास है, नेचुरली पेरेंट्स से वो अर्न कर सकते हैं उस चीज को। अगेन, पेरेंट्स की चॉइस होगी, लेकिन जहां पे ये जो संबंध है बच्चों का और पेरेंट्स का, वो थोड़ा सा उसमें दरारें आने लगती हैं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मनी माइंडेड होना बच्चे का, या फिर बच्चे का इंटेंशन क्या है, उस पैसे को वो आगे कैसे लगाना चाह रहा है, या वो फ्रीडम चाह रहा है, उसको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं चाहिए, उसको केवल अपना घर, एक अपना सुकून से उसको अकेले रहना है, या अपनी फैमिली के साथ, फैमिली जो बच्चे की फैमिली चेंज हो जाती है, कहाँ तो पेरेंट्स उनकी फैमिली होते थे लेकिन जहां वो इंडिपेंडेंट हुए तो उनकी फैमिली में उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, उनके बच्चे हो गए, तो नेचुरली पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा थोड़ा डिसहार्टनिंग होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही डिसहार्टनिंग होता है। बच्चे उस इमोशन को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि उनका भी टाइम ये आएगा और उसके टाइम के हिसाब से शायद उनके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। अपने बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें उनके साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो वो देख रहे हैं वो काफी कुछ वो वैसा करने लगते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की चॉइस होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उनका बच्चा है तो वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास जाएगी, और अगर उन्होंने गिफ्ट कर दिया है सो डेफिनेटली दे कैन टेक दैट बैक ऑल्सो। ये फ्रीडम, ये लिबर्टी उनके पास 100% होनी चाहिए।
0: चलिए अच्छी बात है कि हमारे कानून में भी इस तरह के प्रावधान हैं। आशीष जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार गार्गी दूसरा पक्ष भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप हर दिन इस तरह की चीजों को डील भी कर रही हैं। जो नॉर्मली देखा गया है, जिस वजह से पेरेंट्स और बच्चे दोनों अलग होते हैं, रोजगार एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि रोजगार की वजह से बच्चे जाहिर सी बात है कि घर से दूर चले जाते हैं और ये एक बड़ा कारण बनता है। दूसरे शहरों में रहना उनकी एक मजबूरी भी हो जाती है कई बार, और एक प्रेशर जो रहता है कि एक तरफ तो बच्चों की भी देखभाल करनी है और दूसरी तरफ बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी देखभाल भी करनी है और अपनी नौकरी को भी उस ऐसी सिचुएशन में सस्टेन करना है, जिस वजह से परिवार में टेंशन भी बहुत ज्यादा होती है, इमोशनली कई बार लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, बैलेंस नहीं बैठा सकते हैं, तो ये भी एक रियलिटी है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। ये आपने अगर इस तरह के केसेस देखे हैं तो किस तरीके से इसको डील किया जाता है?
3: देखिए इसमें मैं कहूंगी कि आपकी जो मोरल वैल्यूज दोबारा आ जाती है कि आपकी मंशा होनी चाहिए, आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मुझे अपनी नौकरी की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कोई सॉल्यूशन निकाल के जाऊं, तो मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का जो दौर चल रहा है, हम सब बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग अपनी अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं और अब तो डे केयर सेंटर्स हमने सीनियर सिटीजन के लिए देखे हैं कि अपने जो पेरेंट्स हैं वो डे केयर सेंटर में छोड़कर जाते हैं। बट इसमें मैं बात कहूंगी कि दोनों को ही ये समझना पड़ेगा और दोनों की ही काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में ये है कि दोनों हम बैठे और बैठ के डिस्कशन हो हमारा कि देखिए ये हमारा सीमित दायरा है, ये चीजें हम कर सकते हैं और ये चीजें हम नहीं कर सकते, तो वो जो डिस्कशन है एज अ फैमिली वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको ओल्ड एज होम में आना पड़ता है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसमें मैं आपको एक दो रियलिटीज और बताऊंगी कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब माता पिता वृद्धाश्रम में आ गए बट काउंसलिंग के द्वारा उनको दोबारा से वापस घर भेजा गया। तो इसमें चीजें यही हैं कि हम कैसे दोनों में आपस में बैठें, बात करें, डिस्कशन को, ये इम्पोर्टेंट है। तो ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो वो जो हम अपनी मोरल वैल्यू में हम हमेशा बोलते हैं कि माता पिता और बच्चों को आपस में समय बिताना बहुत जरूरी है, तो वो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड चीज जो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि हमारे माता पिता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर कोई भार नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, नौकरी जो है आय होना बहुत जरूरी है। आज उन्होंने जो धन कमाया है उसकी वजह से वो जो बच्चों को दे पा रहे हैं, सेम उन्होंने भी अपने बच्चों को वही लेगेसी देनी है। तो ये जब तक हम आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी।
0: आशुतोष जी आपको इंक्लूड करूंगी, कानून इसको लेकर क्या कहता है अगर हम बुजुर्गों के अधिकार की बात करें, लेकिन ऐसे बहुत से मामले भी आए क्योंकि हम दोनों पक्षों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। हम यहां मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर वाकई मॉरल वैल्यूज को बिल्कुल ताक पर रख दिया जाता है, और ये शायद वैसा मामला होगा जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन कई ऐसे मामले भी हमने देखे हैं जहां पर तालमेल की कमी की वजह से इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं।
2: हाँ जी, वो तो बिल्कुल है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो कानून बनाया गया था उसका जो मेन पर्पस था, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जो मेन पर्पस यही था कि किसी भी हाल में सीनियर सिटीजन को छोड़ा नहीं जा सकता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस उनका बंद नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि इस केस में तो मान लीजिए कि उसके पेरेंट के पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया और फिर जो है अभी रिवोक किया गया गिफ्ट डीड को। लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और उनके पास कोई भी ऐसे ट्रांसफर करने के लिए कोई भी एसेट नहीं होता, तब क्या होता? तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए ही, ऐसे सर्कमस्टांसिस के लिए ही इस कानून को बनाया गया था कि सेक्शन 5 के तहत जो है अगर कोई भी पेरेंट्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं जो सीनियर सिटीजन के, और वहां वो बोलते हैं कि मुझे मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए और फाइनेंशियली हमारे पास, हम कैपेबल नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो जो उनके बच्चे हैं जो अर्निंग मेंबर हैं वो बाउंड हैं एज पर द लॉ कि वो मेंटेनेंस उनको दें। भले ही वो 10,000 तक का उन्होंने रखा है लिमिट, लेकिन वो है। और बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि इसी एक्ट में सेक्शन 24 में यहां तक कि तीन महीने का इम्प्रिजनमेंट तक का पावर है ट्रिब्यूनल को, और फाइन भी वो लगा सकता है अगर मेंटेन नहीं किया जाता है ऐसे सीनियर सिटीजन को, अगर उनका फाइनेंशियल ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये कानून बनाने का मेन पर्पस तो यही था। अब जहां तक तालमेल का सवाल है तो देखिए तालमेल अलग है। अगर जैसे अभी हम सुन रहे हैं पैनल पे कि भाई कोई नौकरी लग गई और वो भी मजबूर है, बेटा भी कहीं बाहर चला गया, किसी दूसरे सिटी में चला गया अपनी फैमिली को लेके, उसको अपनी फैमिली अपने बच्चे को देखना है, साथ में पेरेंट्स को भी देखना है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देना ही देना है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस जो है, आप भले ही आप फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, आपकी मजबूरियां हैं, आपके अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना है। और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है तो वो ट्रिब्यूनल के पास वो जा सकते हैं अपने राइट्स को लेकर के। तो ये बहुत ही क्लियर इसको जो है बनाया गया था, ये कानून को बनाने का यही मेन पर्पस था। और देखिए जो कंडीशनल जो है, जो गिफ्ट डीड हुए हैं वो कैंसिल, वो तो ऐसे भी ठीक है, वो सेक्शन 126 जो मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो एक अलग मामला है कि गिफ्ट हुआ, गिफ्ट के अंदर जो है गिफ्ट डीड में ये कंडीशंस लिखे गए थे, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, इस वजह से जो है गिफ्ट डीड कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट डीड कैंसिलेशन का पूरा मामला नहीं है हाई कोर्ट का देखा जाए तो, यहाँ पे ये मामला है मेंटेनेंस का कि सीनियर सिटीजन को किस तरह से उनको सपोर्ट मिले ताकि जो है वो अपनी लाइफ जो है कंफर्टेबली वो जी सकते हैं। जो
0: सपोर्ट के साथ सम्मान की भी बात यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ सम्मान की तरफ भी इशारा किया है। तो किस तरीके से ये मामला आगे दूसरे मामलों के लिए नजीर साबित होगा, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: सेवा नहीं तो संपत्ति भी नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने माता पिता की तरफ से बेटे को दी गई प्रॉपर्टी वापस करने के लिए कहा, यानी कि बेटे को कहा है कि वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें एक क्लॉज था कि आप माता पिता की सेवा करेंगे, जो कि नहीं हुई, जिसके बाद माता पिता को घर छोड़ना पड़ा। और अब कोर्ट ने फैसला माता पिता के हक में दिया है। आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार स्वेच्छा आपके पास आऊंगी। कुछ एक केसेस अगर आप हमें बता पाए, समझा पाए किस तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो हम ये मानते हैं कि बच्चे बाहर चले गए और फिर उन्होंने टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया, जहां पर एक मॉरल वैल्यूज की बात आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, कि बच्चे पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कट गए, उन्हें पता ही नहीं कि माँ बाप कहाँ रहते हैं। एक वो केसेस भी होते हैं ऐसे में जहां पर तालमेल की कमी रहती है, माता पिता और बच्चों के बीच में तालमेल की कमी, या तो बच्चे नहीं समझ रहे माता पिता को, या माता पिता बच्चे को नहीं समझ रहे। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, तो किस तरह कि केसेस आपके सामने ज्यादा आते हैं?
2: दोनों के केसेस हैं हमारे पास, और एक ऐसा भी हमारे पास जो आपने सेकंड जो केस की बात करी है कि सेम ही गांव में रहने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो हम एज एन अप्रोच क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम उनके काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनबन कहाँ पर है, कहाँ पे हमें फैमिली को, कहाँ पे बच्चों को माँ बाप की समझने की जरूरत है, और कहाँ पे माँ बाप को बच्चों की समझने की जरूरत है। तो हम दोनों पे फोकस करते हैं। मैं एक इसका एक छोटा सा उदाहरण भी आपको देती हूँ कि जैसे कि हमने बताया कि हम मील्स प्रोवाइड करते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, तो ऐसा एक केस हुआ था कि जहाँ पे सास और बहू की नहीं जम रही थी, और इस चक्कर में ऐसा हुआ कि बहू ने सास को ही घर से निकाल दिया और बेटे ने भी अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी माँ कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, कैसे रोज का अपना आना जाना कैसे करेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जाके उन दोनों को आपस में बैठाया, उन दोनों को एक समझाने की कोशिश करी, और उनको बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमने एहसास दिलाया है कि आपके माता पिता जिन्होंने आपकी एक एज तक आपका एक साथ दिया, और अभी आपकी एक जवाबदारी बनती है कि आप उनका साथ दीजिए।
1: एक बार गार्गी जी आपके पास आऊंगी। ये वो केसेस हैं जो अभी स्वेच्छा बता रही है रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों के, लेकिन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, यहाँ पर बहुत बार केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। ऐसे केसेस अगर आपके पास आते हैं, अगर हैं तो कोई एक आध केस स्टडी हमें बताइए, वहां पर कैसे सॉल्व होते हैं ये डिस्प्यूट्स?
3: प्रॉब्लम है ग्रैटिट्यूड और ईगो। जब हम लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी होगी और हमारे बच्चों में ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स को हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं ओल्ड एज होम में, बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो सिर्फ इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हैं कि बच्चे समय नहीं बिताते, बच्चे बैठ के साथ में खाना नहीं खाते, कोई घर पे बात करने वाला नहीं है, कोई खाना नहीं दे रहा। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, ये एक मेजर और ये इश्यू हमें अभी सुनने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है, बट ये इश्यू कब मेजर बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बच्चे ड्रिंक करके आ रहे हैं और ड्रिंक करके आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माता पिता पे हाथ उठा रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स कब एक मेजर इश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, बेटा अपनी जॉब से परेशान होकर घर आया, उसने ड्रिंक करी, फादर को कुछ बोला, फादर उल्टे झूम निकल गए। अगले दिन सुबह अगर बेटे को अपनी गलती का एहसास भी होता है तो वो फादर दोबारा घर वापस नहीं आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक मेजर ईगो क्रैश और सबसे बड़ी बात है ग्रैटिट्यूड की कमी, ग्रैटिट्यूड ना होना इस तरह की। देखिए, हमारे सीनियर सिटीजन को इस उम्र में दो तीन चीजें कर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिग्निटी और दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये उनका बेसिक रोल है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। कहीं लग्जरीज का मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है, उनकी डिग्निटी इम्पोर्टेंट है। अगर क्योंकि हमारे शहरों में ये ट्रेंड बढ़ गया है, सैटरडे नाइट्स का कल्चर बढ़ गया है और ड्रिंक करना हमारे हमारे समाज में बहुत ही नॉर्मल हो गया
1: जी
3: है, माता पिता के सामने ही करना और नॉर्मल हो गया है। तो मुझे लगता है ना कहीं इन सब चीजों को आपको जब हम बढ़ावा देते हैं तो ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल
3: मुझे
1: बिल्कुल
3: लगता है ओल्ड एज होम खत्म ही हो जाएंगे अगर ये ईगो क्लैशेस और ग्रेटिट्यूड को हमने एक सही राइट एज में संभाल
1: ठीक है
3: लिया। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, मैं बोलना चाहूंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज्यादा मोरल वैल्यूज को ऐड करने की
1: बिल्कुल,
3: जरूरत है, किस
1: मैं लौटती हूँ आपके पास।
3: तरीके से रहेगा।
1: ठीक है, ये इस पर मैं लौटती हूँ, लेकिन एक बार अब मनीषा जी, एक चीज जो बहुत कॉमन देखी गई है, हम लोग भी अपने आसपास देखते हैं, संवाद की कमी। ये बहुत आपने अभी पॉइंट भी उठाया है गार्गी जी ने, कि बड़ा ये बहुत एक कॉमन सी बात है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। बच्चों से पूछेंगे तो उनका तर्क ये होता है कि उनके पास समय नहीं है, ऑफिस में समय बिता रहे हैं, घर आ रहे हैं तो वो सारा काम घर पे लेकर आ रहे हैं, कभी वर्क फ्रॉम हो रहा है, होम होता है, तो उसमें वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उनको अपना मी टाइम नहीं मिलता है। जब उनको मी टाइम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरों को नहीं देते। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और ऐसे में देखा गया कि जो जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसी चीज की सबसे बड़ी कमी है। मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ना कहीं इसको ठीक किया जाए तो आपकी सारी वैल्यूज एकदम लाइन पे आ सकती हैं। कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है?
4: आपने एकदम सही पॉइंट का जिक्र किया है, जो चेंज जरूरत है आज के समय में। और अगर बच्चे साथ में रह रहे हैं या बच्चे साथ में नहीं रह रहे हैं पेरेंट्स के, दोनों ही केसेस में साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि जो एक बॉन्ड बनता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो अफेक्शन, वो अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स का बच्चों के लिए, जितना मिलते हैं उतना ही ज्यादा उनके बीच में नजदीकी आती है, और वो एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। डेफिनेटली जहाँ दो बर्तन होते हैं, कहते हैं ना, वो खटकते हैं आपस में, तो नेगेटिव कम्युनिकेशन या एक दूसरे की बातें बुरी लगना, कुछ हर्ट हो जाना, वो ठीक है। लेकिन उस समय में एक हमारी 4A स्ट्रेटेजी फॉर्मूला होता है, जिसमें हम बोलते हैं अवॉइड करना, अवॉइड एंड एक्सेप्ट। तो उसको एक्सेप्ट किया और अवॉइड कर लिया। अब अगर हम उसी चीज पे अटके रहे, उसी चीज को हम बार बार कुरेद के हम बार बार उसी पे बात करते रहे, या हमें पता है कि किसी एक फैमिली मेंबर की ईगो हर्ट हो रही है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को है या बच्चों की तरफ से पेरेंट्स के लिए है, तो अगर हम वहां से मूव ऑन नहीं करेंगे तो जैसे होता है ना, कहीं पे आपके एक जख्म है तो उसी को अगर आप कुरेदते रहेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा डीप होता जाएगा और ज्यादा पेन देगा। तो उससे बाहर निकल के अगर हम उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, और बाकी चीजें जो अच्छी हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा। और चेंज बहुत जरूरी है। अगर हम चेंज नहीं लाते हैं तो चेंज अपने आप से नहीं होता है। तो किन किन चीजों पे, जो हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं उसमें एक्चुअली फोकस किया जाता है कि क्या क्या इस तरह के मुद्दे हैं जिनपे क्लैश है, जिनपे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और उसमें दोनों ही पार्टीज में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, जिससे हम मिडिल ग्राउंड पे आ जाए। अगर मिडिल ग्राउंड पे नहीं भी आ पाते हैं तो क्या हम उनको उन उसमें से कितनी चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, और क्या पॉजिटिव है बाकी जो आपस में फैमिली मेंबर्स हैं, क्या हम उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सपोज आपस में कुछ भी, किसी भी बात पे उन लोग की आर्गुमेंट होता है किसी भी तरह का, तो उस आर्गुमेंट का ट्रिगर क्या है, कहाँ से वो शुरुआत हुई, अगर हम उस पे थोड़ा सा फोकस करें और उस ट्रिगर को हम रिप्लेस या रिमूव करने की कोशिश करें, तो 100% बेटर लाइफ, पीस और लव के साथ में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है।
1: बिल्कुल
4: और अगर बच्चे शहर आ गए हैं, गांव में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो शहर मूव कर जाते हैं, तो पेरेंट्स के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, नहीं प्रॉपर्टी है तो भी यहाँ पर एक म्यूचुअल एक बॉन्ड होता है जिसमें बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स पेरेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता जब बच्चे छोटे होते हैं भाई, उनको उन्हें उन्हें बड़ा करना ही है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, स्कूल की फीस भी देते हैं वो, उनके टॉयज के लिए, उनके महंगे महंगे ड्रेसेस के लिए, या उन्होंने कुछ बोला कि मुझे साइकिल चाहिए, बड़े होके उन्होंने बोला मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरह से वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हमें याद रहेगा तो हम अपने काम को भी, अपनी दिनचर्या को भी उसी के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। जो
1: संवाद
4: चीज
1: बहुत
4: अपने
1: इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल।
4: हम
1: कम्युनिकेशन
4: करें।
1: गैप की वजह से केसेस ज्यादा बढ़ रहा है। आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला यकीनन दूसरे मामलों के लिए नजीर तो बनेगा, लेकिन ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सुझाव, क्या टिप्स देंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे को जरूरत है, पेरेंट्स हर बार तैयार रहते हैं कि ठीक है आप सारा पीएफ का पैसा ले लीजिए, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम कर लीजिए। जाहिर सी बात है क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही किया है, वो बिना सोचे समझे ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद बच्चा जब अपनी अपने दुनिया में बिजी हो जाता है तो भूल जाता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए क्या कुछ किया है। तो ऐसे में कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखकर पेरेंट्स को आगे चलना चाहिए? कम से कम आज की डेट में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, पैसा ट्रांसफर हो, उसको देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो आप क्या टिप्स देंगे बुजुर्गों को?
5: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि वो अपना जो है पैसे जो उनको चाहिए, जो भी सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो जरूर अपना रख करके ही आगे दें, ताकि देखिए फ्यूचर में भी वो बच्चों को ही जाने वाला है जिस दिन वो नहीं रहे, या तो वो विल बनाएं, विल में वो सारी बातों को लिखें, रेदर देन कि वो अपने जीते जी सारा ट्रांसफर कर दें, फिर वो मजबूर हो जाएं उन पे डिपेंड होने के लिए। और अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ भी जाता है, तो जो मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए जो कानून बनाए गए हैं 2007 में जो बनाया गया, उसमें ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, उस ट्रिब्यूनल में वो जा सकते हैं, वहां से वो बहुत तरीके के फाइनेंशियल रिलीफ वो जो है ले सकते हैं, और कानून में हर तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है ये बनाया गया है, ताकि वो जो है इस उम्र में जहाँ पे उनके पास कोई भी असिस्टेंस नहीं है फाइनेंशियल, और ये जो है उनका राइट माना गया है, जो जो बेसिक जो नीड्स

0: जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, या शेल्टर हो गया, या फूड हो गया, या उसमें उन्होंने हेल्थ केयर को भी ऐड किया हुआ है. तो ये सारी जो चारों चीजें हैं, इनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे. उन ट्रिब्यूनल्स में वो जाकर के और अपने लिए वो रिलीफ मांग सकते हैं. और इसके अलावा जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है. उस हेल्पलाइन नंबर का मेरे ख्याल जो नंबर है 14567 है, जो डायल करके वो हर तरीके का असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं अथॉरिटीज से. और मेरा अपना मानना है कि वो सीधा जो है गिफ्ट डीड करने के बजाय अगर वो विल बनाए आगे अपने फ्यूचर के हिसाब से, और ये देखते हुए कि उनका ध्यान सबसे ज्यादा कौन रखता है और किसको जो है वो क्या प्रपोर्शन में उनको जो है देना चाहिए, वो विल में वो मेंशन कर सकते हैं. और टाइम टू टाइम वो विल को अमेंड भी कर सकते हैं उनके लाइफ टाइम में. तो मुझे लगता है ये सारे प्रिकॉशंस लेने से जो है वो सेफ गार्डेड रहेंगे, और मुझे लगता है उनको ज्यादा वैल्यू भी मिलेगा. क्योंकि अगर वो पूरा प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वैल्यू उनका जो है बच्चों की नजर में कम हो जाता है, और
1: बिल्कुल
0: जिसके वजह से
1: हाँ,
0: उनको बहुत तकलीफों का सामना भी करना
1: ये
0: पड़ता है.
1: एक बड़ा कारण देखा गया। लेकिन आशुतोष जी, खासतौर पर अगर हम इस केस की बात करें, यहां पर जो मैं समझ पा रही हूं ये कि बेटा सिंगल चाइल्ड हो सकता है क्योंकि माँ बाप के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, और इसीलिए शायद वो क्लॉज लिखवाया गया था। लेकिन अगर बच्चे दो हैं या तीन हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारियां कैसे बटेंगी फिर?
0: देखिए, ये इसमें अगर क्लाउज नहीं भी होता मेंटेन करने का और देखभाल करने का, तो भी ये जो हमारा जो कानून जो 2007 का है, उसमें ये सारे प्रावधान लिखे हुए हैं, सारे प्रोविजन हैं. तो वो तो उनको ही ध्यान देना ही है. जहां तक अगर एक से ज्यादा अगर बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि सब इक्वल जो है शेयर भी प्रॉपर्टी का उनका बनता है देखा जाए तो. और जहां पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर का या मदर का, तो मुझे लगता है कि उनको सेफली ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और बेटर है कि वो विल बनाए रेदर देन कि वो
1: ठीक
0: अपने
1: है,
0: जीते जी जो है ट्रांसफर कर दें. तो ये
1: बिल्कुल
0: सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, और अगर कोई उनमें से तीन बच्चे हैं, अगर उसमें से कोई ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो विल में उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो दे सकते हैं.
1: चेंजेस हो
0: अगर उनको
1: सकते हैं।
0: लगता है
1: बिल्कुल
0: कि एक कोई तीनों में से ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो ज्यादा प्रोपोर्शन उसको दे सकते हैं. तो
1: बिल्कुल,
0: ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी वो प्लान कर सकते हैं विल के थ्रू.
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला यकीनन दूसरे मामलों के लिए भी एक नजीर साबित होगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बस कुछ ही दिनों का इंतजार और फिर पूरी दुनिया उस दिव्य पल की साक्षी बनेगी जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ओडिशा में आस्था का सबसे बड़ा पर्व अब अपने चरम पर है, पुरी में तैयारियां अंतिम दौर में है।

0: रथ तैयार है, रंगों की चमक बढ़ रही है, भक्ति और विश्वास की झलक दिखने लगी है। अब बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब शंखनाद गूंजेगा, मंदिर के सिंह द्वार खुलेंगे और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ लगभग तैयार हो चुका है। रथ का शिखर भी अंतिम रूप ले रहा है। अब कलाकार बड़ी बारीकी से इन रथों पर रंग भर रहे हैं। लाल, पीले, हरे और नीले रंगों से सजे ये रथ धीरे धीरे अपनी दिव्य पहचान पा रहे हैं।
1: जय जगन्नाथ। अभी तो हमारा रथ का जो काम है वो प्राय तो शेष पर जाए, लास्ट स्टेज पे। अभी हमारा रथ को जो सजाने का काम चल रहा है, अभी जैसे कि रथ के ऊपर जो हंस है, हंस पटा, और जो कन्या सखियों हैं, सखियों का पटा, और ये जो रथ के पार्श्वदेव अधिक है, सभी रथ में नौ पार्श्वदेव, ये बलभद्र जी के देवता है नौ पार्श्वदेवता, माँ के देवी है नौ देवी और जगन्नाथ जी के नौ देवता है। तो ऐसे करके सारे रथ में अभी लग रहे हैं।
0: इन दिव्य रथों को देखने वाला हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ठहर जाता है। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो कोई श्रद्धा के रथ की लकड़ी को स्पर्श कर माथे से लगा लेता है। रथ को सजाने वाले कारीगर भी हर काम शुरू करने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि सेवा है।
2: उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखें, सुस्त रखें, कि अगले साल वो भी फिर से आकर आपकी सेवा में नियुक्त हो सके। जरूर, ये तो खुशी एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम भी है कि हर साल की तरह इस साल भी काम आरंभ हो के खत्म होने के बाद आ रहा है। जो जितने भी कारीगर लोग हैं अपने मन में प्रसन्नता भरे हुए, साथ में ये भी दुख है कि हमारा जो कार्य था 3 महीने से काम में लगे हुए थे, मुलझुल के काम कर रहे थे, वो समय अभी खत्म हो गया।
0: भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, जिसका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। सैकड़ों सेवायत, बढ़ई और कलाकार दिन रात मेहनत करके इन रथों को तैयार करते हैं। परंपरा के अनुसार हर रथ का आकार, रंग, ध्वज और सजावट अलग होती है और हर छोटी बड़ी बात का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। लकड़ी की नक्काशी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पारंपरिक चित्रकारी से इन्हें सजाया जा रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु रथ निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। कोई दूर से दर्शन कर रहा है तो कोई हाथ जोड़कर महाप्रभु से अपनी मनोकामना मांग रहा है। रथ के सामने झुकते इन भक्तों की आंखों में आस्था साफ दिखाई देती है।
2: हर कोई सबक जो सात रथकार है, सभी अपने अपने कार्य में लिप्त हुए हैं। आखिरी पड़ाव में रथ को सब मिलकर सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी काम में 2-3 दिन में हम ये काम खत्म करके प्रशासन को हस्तांतर करने के लिए प्रस्तुत है।
0: अब बस एक हफ्ते का इंतजार बाकी है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब बस 16 जुलाई की इस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भक्तों के बीच भगवान आएंगे। इसके बाद लाखों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से इन रथों को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी की ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। बच्चों ने एक्टिविटी शुरू की कुर्सी से, लेकिन जब कुर्सी हटा ली गई तब भी एक बच्चा गिरा तक नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जाहिर है इस एक्टिविटी के साथ बच्चे साथियों के लिए समर्पण और सहयोग और कर्तव्य की सीख ले रहे हैं, जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए उनके लिए बेहद जरूरी है। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्ची किसी बात पर पिता से रूठ गई है और शायद जब तक मनाया नहीं जाएगा वो मानेगी नहीं, और पिता जैसे ही मनाने का एक स्टेप लेते हैं बिटिया का गुस्सा उड़न छू हो जाता है। वायरल वीडियो की ये तस्वीरें सबको लुभा रही है और लगभग सभी यूजर्स इस बच्ची को देख यही कह रहे हैं कि उम्र का कोई मतलब नहीं। हर औरत की यही कहानी होती है, रूठती है और मनाने पर तुरंत मान जाती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। बुजुर्ग दादी अमरनाथ यात्रा पर निकली है और उनकी इस दुर्गम रास्ते की चढ़ाई की तस्वीरें चर्चा में है। लोग उनकी आस्था देखकर प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं आस्था उम्र की बोताज नहीं होती। जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां कठिन से कठिन मार्ग भी आसान लगता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति दिखावे, रीलों और तस्वीरों से नहीं होती बल्कि समर्पण, विश्वास और साधना से पहचानी जाती है, जो इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें हौसला बढ़ाती हैं, खुद ही देखिए। बच्चों संग वो शख्स भी दौड़ में शामिल हुआ है जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसकी दौड़ की तस्वीर उसके जुनून, उसकी हिम्मत और उसकी लगन का परिचय दे रही है। ये तस्वीरें बचपन की उस कहानी की याद पुख्ता करती हैं, जिनमें दुनिया में सबसे तेज वो इंसान दौड़ता है जिसके दोनों पैर नहीं थे। आज इन तस्वीरों ने कहानी को हकीकत का जावा पहरा दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस शख्स के जज्बे का मुरीद बन गया है। बारिश के मौसम की ये तस्वीरें कुल्लू की है, जहां नदी अपने रौद्र रूप में है, और यहां रहने वाली ये महिला नदी माता को आटा समर्पित कर प्रार्थना कर रही है कि वो शांत हो जाए और इन सब की रक्षा करे। नदियों के तट पर बसे इलाकों में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है, और इसीलिए बाढ़ बारिश में लोग नदियों की पूजा कर उनसे शांत रहने की गुहार लगाते हैं। इन महिलाओं के इस अटूट विश्वास को लोग नमन कर रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे.
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा. स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में. आज चाय पर चर्चा में बात करेंगे उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे साल 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में अंजाम देते हुए 41 मजदूरों को बचाया गया था. लेकिन भारत के इतिहास में दर्ज सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की ऑस्ट्रेलिया की धरती पर क्यों चर्चा हो रही है और आखिर क्यों इंटरनेशनल लेवल पर सिलक्यारा टनल की बातें हो रही है, इसकी पूरी कहानी तफसील से आगे बताएंगे आपको.
5: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा. देखिए आपको हम सिनेमा की दुनिया की भी खबरें दिखाएंगे. जाहिर सी बात है, देखिए साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित जो ऑन स्क्रीन जोड़ियां हैं उनमें से एक है अल्लू अर्जुन और श्रीलीला. ये दोबारा साथ आने वाले हैं, ऐसी सुर्खियां हैं, ऐसी खबरें हैं. तो कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग जो साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म राका है उसमें श्रीलीला दिखाई दे सकती है. पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको.
2: नमस्कार, महेश गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में. चार धाम और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ताजा जानकारी तो आपको रोजाना हम जीएनटी पर दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही दिखाएंगे इस महीने शुरू हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा और श्रावणी मेले की तैयारियों की खूबसूरत तस्वीरें. लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. Sage University, transforming your passion into profession.
5: सत्ताईस घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग. पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश. यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल. बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल. लामबगढ़ नाला पार करना होगा आसान. उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी. हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मॉनसून सक्रिय. शिमला, सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश. मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट. भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी. फूलों, झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग. 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा. दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही भारत की साख. पहली बार अमेरिका और इजराइल से बाहर बनेगी आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल. भारत में तैयार होगी प्रोडक्शन लाइन.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
1: तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा जिसकी हम करने वाले हैं ये बहुत ही मुझे लगता है लीक से हटकर ये खबर है, क्योंकि ये फिल्मी भी है, फिल्म से भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ रियल इंसिडेंट बेस्ड है। इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ जाता है, स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ जाता है, बहुत तरह की चीजें, सरकारें जुड़ जाती हैं। तो इन सब का एक आपको कह लें कि मिला जुला आपको ये खबर जो है वो असर देगा, और किस तरह से भारत से लेकर विदेश तक यानी कि विदेशी धरती पर इसका असर देखने को मिल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल पहले आपको थोड़ी सी खबर बता दें, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत के इतिहास में दर्ज सबसे मुश्किल जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है उसकी धमक वहां देखने और सुनाई पड़ी है। मेलबर्न में आमिर खान ने सिल्कियारा रेस्क्यू ऑपरेशन से प्रेरित फिल्म सिल्कियारा 41 का ऐलान किया है। सिनेमा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी मील का पत्थर साबित हो सकती है। भारत की ओर से आमिर खान प्रोडक्शंस और कबीर खान फिल्म्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स इस फिल्म का निर्माण करेंगे।
2: बिल्कुल, देखिए दरअसल सिल्कियारा 41 करीब 3 साल पहले उत्तराखंड में हुए सिल्कियारा टनल हादसे, उसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशंस पर एक बेस्ड कहानी होगी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स की अगुवाई में अंजाम दिया गया था। 17 दिनों तक चले इस बचाव अभियान के बाद टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों की जान बचा ली गई थी। इसी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन भारत के इतिहास में सबसे मुश्किल लेकिन सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की लिस्ट में दर्ज हो गया।
1: बिल्कुल, तो इसी से जुड़ी ये पूरी कहानी होने वाली और हम सभी को बीइंग अ जर्नलिस्ट और न्यूज में लगातार इतने लंबे सालों तक रहने के बाद हम सभी को मालूम है एक एक पल एक एक क्षण कितना मुश्किल था। जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, हमारे रिपोर्टर्स हमारे एंकर्स वहां उत्तराखंड में उस जगह मौजूद थे। जो एक टर्म मुझे पहली बार कह लीजिए कि मुझे एकदम स्ट्राइकिंग याद आया था वो था रैट माइनिंग। ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ था कि किस तरह से रैट माइनिंग हो रही थी और किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा था, बहुत मुश्किल था। अभी भी ध्यान है?
3: हाँ हाँ बिल्कुल याद है,
4: मुझे लगता है आप लोग तो कवर ही कर रहे होंगे।
3: नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ न्यूज दे रहे थे, 2023 की बात है, हम लोग गुड न्यूज टुडे पर वो अच्छी खबर दिखा रहे थे कि किस तरीके से कहाँ तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, उपलब्धि कितनी बड़ी है। और जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर्स को स्पेशली बुलाया गया था यहाँ पर, और एक मुश्किल भरा ऑपरेशन था लेकिन सफल ऑपरेशन था, यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म का ऐलान किया गया है। दिखाते आपको रिपोर्ट।

0: आज से करीब 3 साल पहले भारत के इतिहास में घटी एक ऐसी घटना जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे 134 पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में हुए हादसे के बाद महा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। 17 दिनों तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन भारत के इतिहास में किसी सुरंग में चला सबसे लंबा और जटिल बचाव अभियान बना। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू की ये कहानी सिलक्यारा 41 के नाम से अब सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। इस हादसे और उसके बाद चले बचाव अभियान से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से बनने जा रही इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी आमिर खान ने उठाई है। मेलबर्न में आज भारत ऑस्ट्रेलिया लीडर समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सांसद हॉन जैसिंटन एलन ने इसका ऐलान किया। मुझे विक्टोरिया और भारत के बीच मौजूद मजबूत रिश्तों पर सचमुच गर्व है। इस तरह की को प्रोडक्शन पार्टनरशिप के जरिए क्रिएटिव इंडस्ट्री में इन रिश्तों को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। ये न सिर्फ हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है बल्कि हमारी साझा कहानियों को दुनिया के सामने भी लाता है। ये कहानी परिवार, कड़ी मेहनत और समुदायों के बीच जुड़ाव, उम्मीद और फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्यार पर आधारित है। हमारे बीच बहुत सी समानताएं हैं और मैं इस प्रोडक्शन के नतीजों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। सिलक्यारा 41 को सिल्वर स्क्रीन पर लाने का बीड़ा भारत की ओर से आमिर खान प्रोडक्शंस, कबीर खान फिल्म्स और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइंड ब्लोइंग फिल्म्स ने उठाया है। फिल्म की कहानी ऑस्ट्रेलिया के चर्चित स्क्रीन राइटर एंड्रयू एनास्टियोस ने लिखी है और कबीर खान इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस साझेदारी की घोषणा करते हुए आमिर खान ने कहा,
1: माइंड ब्लोइंग फिल्म्स और आमिर खान प्रोडक्शन के बीच इस खास सहयोग की घोषणा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू की कहानी ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। ये मुश्किल हालात में साहस, जज्बे, सूझबूझ और इंसानियत की कहानी है। हमें खास तौर पर खुशी है कि हम इसकी घोषणा ऐसे ऐतिहासिक दिन पर कर रहे हैं जब भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने द्विपक्षीय रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ये भी खास बात है कि हमारे दोनों देश मिलकर ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंसानी जज्बे की जीत की कहानी को सामने लाती है।
0: सिलक्यारा सुरंग 2023 में तब सुर्खियों में आई जब चट्टानों के टूटने और पानी के रिसाव की वजह से सुरंग ढह गई और 41 कर्मचारी पूरे 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे। भारत सरकार के विशेष निमंत्रण पर दुनिया भर में मशहूर ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स 9वें दिन सिलक्यारा पहुंचे और मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। रेस्क्यू के दौरान बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं। मशीनों के नाकाम होने पर रेड होल माइनर्स की 12 सदस्य टीम अभियान में जुटी। टीम ने संकीर्ण पाइप के अंदर रेंग कर हाथों से मैनुअल ड्रिलिंग की और आखिरी 10 से 12 मीटर के मलबे को साफ किया। इसी दौरान आर्नोल्ड डिक्स रेड माइनर्स का लगातार तकनीकी नेतृत्व करते रहे। डिक्स के मार्गदर्शन में ही आखिरकार 17 दिनों का ये महा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और सभी 41 मजदूर पूरी तरह सुरक्षित और जीवित बाहर निकाल लिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और वैसे अगर आपको याद हो तो जितने भी मजदूर वहां से सुरक्षित बाहर निकाले गए थे, गुड न्यूज़ टुडे ने उन सभी के इंटरव्यूज भी दिखाए थे, हम लोगों ने उनसे बातचीत भी की थी। चलिए, फिल्म तो बनेगी लेकिन जो फिल्म बन चुकी है और आ रही है, क्योंकि वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, आज शुक्रवार है, तो नई नई फिल्में वेब सीरीज आपका इंतजार कर रही हैं, तो इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्या कुछ नया खास है, ये देखना बहुत जरूरी होगा।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि कई दर्शकों ने तो आज रिलीज और स्ट्रीम हुई इन फिल्मों को देख भी लिया है। वैसे फिल्म कैसा प्रदर्शन करेगी, दर्शकों के इन फिल्मों को लेकर अपनी पसंद या फिर नापसंद क्या रही है, इसको लेकर तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन फिल्मों का कैसा रहा, चलिए जानते हैं।

0: आज है फिल्मी फ्राइडे और आज से एंटरटेनमेंट का जबरदस्त कॉम्बो थिएटर्स के साथ साथ ओटीटी पर भी नजर आ रहा है। जाहिर है एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए जुलाई का ये दूसरा हफ्ता बेहद खास भी है, क्योंकि आज से सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी, हॉरर, को ड्रामा और रोमांच से भरपूर कंटेंट दर्शकों के लिए उपलब्ध है। इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम धमाल 4 का है। अजय देवगन, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा स्टारर धमाल 4 का काफी इंतजार था। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कॉमेडी के साथ एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम की कहानी दर्शाई गई है, जिसपे कई मजेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तो फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं क्रिटिक्स से भी शुरुआत में इसे ठीक ठाक रिव्यू मिले हैं। बता दें कि धमाल 4 की रिलीज के एक दिन पहले ही 1,08,937 टिकटों की प्री बुकिंग हुई और इसे बिना ब्लॉक सीट से 2,88,00,000 रुपए की कमाई हुई, जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसने 6,11,00,000 का कलेक्शन किया। इसी के साथ आज अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। फिल्म की कहानी एक चर्चित हत्या के केस के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां एक नामी वकील को उसी शख्स का केस लड़ना पड़ता है जिसका करियर उसने कभी बर्बाद कर दिया था। फिलहाल आज रिलीज का पहला दिन है तो दर्शकों ने भी सनी और अक्षय के किरदार, उनकी एक्टिंग को सराहा, तो वहीं कुछ क्रिटिक्स ने इसे एक जबरदस्त कोर्ट रूम थ्रिलर भी बताया है, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और दमदार एक्टिंग का मेल है। यानी ऐसी फिल्में देखने वालों के लिए इक्का एक अच्छा ऑप्शन है। डिज्नी की मोस्ट अवेटेड लाइव एक्शन फिल्म मुआना भी आज सिनेमाघरों में आ गई है। फिल्म में कैथरीन लगाइया मुआना के किरदार में हैं, जबकि ड्वेन जॉनसन एक बार फिर माउई का रोल अदा कर रहे हैं। शानदार विजुअल्स, एडवेंचर और म्यूजिक से भरपूर ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए खास मानी जा रही है। वहीं थिएटर्स में रिलीज के ठीक 8 हफ्ते बाद आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत स्टारर पति पत्नी और वो दो अब ओटीटी पर अपनी किस्मत आजमाने आ गई है। इस कल्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर अपना डिजिटल प्रीमियर किया, तो अगर आपने इसे थिएटर्स में मिस कर दिया था तो अब घर बैठे आप इसे देखें। फिलहाल तो ओटीटी की ऑडियंस को ये फिल्म कितना इम्प्रेस कर पाएगी, इस पर भी नजर बनी हुई है। तो थिएटर हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आज से एंटरटेनमेंट का महामुकाबला शुरू हुआ है। देखना होगा दर्शकों पर किसका जादू से चढ़कर बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की मोस्ट अवेटेड फिल्म द वन पर्दे पर उतरने के लिए तैयार है। दरअसल इसकी रिलीज को लेकर अभी तक काफी डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली फिल्म की रिलीज डेट फिक्स हो गई है। पहले बॉक्स ऑफिस पर द वन की टकराव यश की टॉक्सिक के साथ होने वाला था। श्रद्धा कपूर की ईटा भी टक्कर लेने के लिए तैयार थी, लेकिन अब द वन फिल्म के नए मोशन पोस्टर के साथ ही रिलीज की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। द वन अब 25 सितंबर को रिलीज होगी।
0: बाघ की धार, नंदी की शक्ति और बीच में वन, इस पूरी तस्वीर में संकेत छिपा है एक ऐसी फिल्म की कहानी का, जिसे पर्दे पर देखने का दर्शक शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये मोशन पोस्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का। एक सुपर नेचुरल फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म, जिसे नई रिलीज डेट के साथ पोस्ट किया गया है। इस मोशन पोस्टर में एक ताकतवर योद्धा जैसे किरदार को नंदी बैल और एक बाघ के बीच खड़े हुए दर्शाया गया है। जाहिर सी बात है कि बीच में खड़ा ये किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा का होगा। पोस्टर दमदार होने के साथ साथ काफी रहस्यमय भी लग रहा है और लीक से हटकर कुछ अलग कहानी का संकेत भी खुद में छिपाए है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पोस्टर को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बाघ उसकी दहाड़ है, नंदी उसकी शक्ति और वन उसकी कहानी। इस पोस्टर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म के मुख्य किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास बाघ और नंदी की शक्तियां होंगी। फिल्म की कहानी भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें फैंटेसी, एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर का शानदार मेल देखने को मिलेगा। फिल्म में एक नई दुनिया, शानदार विजुअल्स और बड़े पर्दे का एक अलग अनुभव देखने को मिलेगा। इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने द वन की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है, 25 सितंबर। माना जा रहा है कि मेकर्स ने यह फैसला बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए लिया है। वन को पहले भी पोस्टपोन किया जा चुका है। सबसे पहले मेकर्स इसे साल 2025 में छठ त्योहार के मौके पर रिलीज करने वाले थे। उसके बाद ऐलान हुआ कि ये फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होगी। करीब चार महीने पहले ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी एक पोस्ट के जरिए बताया कि वन अब 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर आएगी और अब 25 सितंबर इसकी नई रिलीज डेट लॉक कर दी गई है। इस बार वन की रिलीज डेट पोस्टपोन करने की वजह श्रद्धा कपूर की ईटा और यश की टॉक्सिक है। दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त बज बना हुआ है। अगस्त के आखिरी दिनों में ये दोनों फिल्में रिलीज होने वाली हैं। टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होगी जबकि इसके दो दिन बाद ईटा रिलीज होगी। लिहाजा माना जा रहा है कि मेकर्स ने इस बिग क्लैश से बचने के लिए ही द वन की रिलीज डेट अब 25 सितंबर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टू।
2: और आपको बता दें कि पुष्पा 2 का सुपरहिट डांस नंबर जिसने पूरे देश में धूम मचा दी थी और अल्लू अर्जुन श्रीलीला की जिस जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साफ नजर आ सकती है।
1: बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री में यही चर्चा है कि श्रीलीला जल्द ही अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन फिल्म राका का हिस्सा बन सकती हैं।

0: साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अल्लू अर्जुन और श्रीलीला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुष्पा 2 में अपनी धमाकेदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही एक और बड़े प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन की अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म राका में श्रीलीला की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले श्रीलीला राका के सेट पर मौजूद थी, जहां अल्लू अर्जुन लगातार 2 दिनों तक शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, और अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 की आग अब राका में भी देखने को मिलेगी। अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन और श्रीलीला दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। पुष्पा 2 द रूल के उनके सुपरहिट डांस नंबर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर उभरा था। वही राका पहले से ही देश की सबसे चर्चित पैन इंडिया फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का निर्देशन अटली कर रहे हैं और ये पहली बार है जब अल्लू अर्जुन और अटली किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस फिल्म के जरिए अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर के बीच मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की चर्चा है। इतना ही नहीं, पहले आई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि सुपरस्टार शाहरुख खान भी राका में नजर आ सकते हैं। हालांकि उनका किरदार क्या होगा इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल तो फैंस की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या राका में अल्लू अर्जुन और श्रीलीला की जोड़ी सचमुच एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। रिपोर्ट कुलनी स्टूडियो।
1: विजय थलापति आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएम बनने से पहले उनकी फिल्म जननायकन सर्टिफिकेशन को लेकर अब तक अटकी हुई थी, लेकिन अब जननायकन की रिलीज को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
2: सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है, तो इंतजार अब मेकर्स की ओर से रिलीज डेट का है।
3: बड़े बड़े क्रिमिनल्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन उन क्रिमिनल्स का किंग कौन है पता है?
4: खत्म हुआ 7 महीने का इंतजार।
3: लोग उसे बुलाते हैं थलापति, उसे टच मत करना, तुझे काट डालेगा।
4: आखिरकार जन नायगन को मिला ग्रीन सिग्नल।
5: मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ लोगों से सुपर ही बोलते हैं।
4: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय के फैंस के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं।
5: कम से कम इस साल तो आर्मी एप्लीकेशन में सही सिग्नेचर करना।
4: विजय के एक्टिंग करियर के जिस आखिरी फिल्म जन नायगन को देखने का इंतजार उनके फैंस पिछले 7 महीनों से कर रहे हैं, उसकी रिलीज पर लगी रोक अब हट गई है।
3: Let's play a game.
4: 7 महीनों से सेंसर बोर्ड में अटकी फिल्म जन नायगन को आखिरकार सर्टिफिकेट मिल गया। सेंसर बोर्ड ने थलापति विजय को फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि फिल्म के रिलीज को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
6: मुझे आर्मी में नहीं जा रहा,
4: यानी कि ये फिल्म अब जल्द रिलीज होने की कगार पर है।
7: विजय के इस डर के पीछे बहुत बड़ी वजह है।
4: सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही इसके रन टाइम का भी खुलासा हो गया है। जन नायगन का रन टाइम 183.11 मिनट है, यानी 3 घंटे 3 मिनट और 11 सेकंड। तमिलनाडु के सीएम बनने से पहले विजय ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। जन नायगन उनके एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म है। पहले ये फिल्म इसी साल 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी। विजय अपनी आखिरी फिल्म जनता को एक गिफ्ट के रूप में सौंपना चाहते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का पेज ऐसा अटका कि फैंस को महीनों तक मायूस होना पड़ा।
3: उसे ऐसे सलीब पे लटकाना है जहां से वो जिंदा नहीं आ पाएगा।
4: कहा गया कि इस फिल्म से विजय को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। जन नायगन में कुछ सीन्स पर आपत्ति भी उठी। कहा गया कि इनसे भारतीय सेना और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण माना गया, जिससे सेंसर बोर्ड ने इसके सर्टिफिकेट को कई महीनों तक टाले रखा। इससे पहले 4 जुलाई को जन नायगन को ए सर्टिफिकेट देने की खबर उड़ी थी। कहा गया कि सीबीएफसी ने जन नायगन को ए सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन बाद में ये खबर बस अफवाह ही साबित हुई। लेकिन अब सीबीएफसी की वेबसाइट पर मौजूद फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट से ये साफ हो जाता है कि फिल्म उस समय पास नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन पहले 9 जून को पास हुई। 4 जुलाई को भी रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी खबर आई थी और कहा गया था कि सीबीएफसी ने जन नायगन को ए सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि उस समय सिर्फ चर्चा थी, कुछ भी आधिकारिक नहीं था।
8: तुमने इतने लोगों को अकेले मारा, क्या तुम सुपरमैन हो?
5: मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ।
4: पर अब सीबीएफसी की वेबसाइट पर मौजूद फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट से ये साफ हो जाता है कि फिल्म उस समय पास नहीं हुई थी, बल्कि 9 जून को पास हुई है। थलपति विजय के तमाम फैंस को अब जन नायगन की रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है।
6: मुझे आदमी में नहीं जा रहा।
4: कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। फिलहाल मेकर्स की ओर से रिलीज डेट के ऐलान का इंतजार है।
5: आने वाला खतरा भी हम टाल सकते हैं।
4: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य तैयारियां।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Tune in is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: 27 साल बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों समेत 52 लोग शामिल थे। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। हिमाचल प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय। शिमला, सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। सोलह जुलाई से शुरू हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में काफी रौनक देखी जा रही है। तीनों रथ अब लगभग तैयार हो चुके हैं। रथ के शिखर की सजावट पूरी होने वाली है। कारीगरों की कोशिश है कि रथों का काम पूरे विधि विधान के साथ किया जाए।
3: ऐसे में बड़ी बारीकी के साथ रथों पर रंग भरे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को भी अब उस पल का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा इन रथों पर बैठकर उनके बीच आएंगे और वो खुशी खुशी उनके रथ को खींचकर धन्य महसूस करेंगे।

0: आस्था की रंगत भक्ति का शो, भगवान जगन्नाथ के जयकारे चारों ओर, जहां कण कण में भगवान जगन्नाथ का वास है, धरती से आकाश तक महाप्रभु की आराधना की गूंज है, वो पूरी सज धज कर तैयार हो रहा है। यहाँ हर तरफ भगवान जगन्नाथ के महापर्व की रौनक बिखरी दिख रही है। भगवान के रथ की साज सज्जा हो रही है, देवी सुभद्रा और बलभद्र का रथ भी तैयार हो रहा है। रथ की सजावट का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। रथों के श्रृंगार के साथ साथ अब रथ यात्रा के मार्ग की सजावट भी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का रथ जिस मार्ग से गुजरता है, उस मुख्य मार्ग को बड़ा डंडा कहते हैं। इस बड़ा डंडा से होकर तीनों रथ प्रमुख मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मार्ग पर इन दिनों खूबसूरत रंगों से कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस सजावट ने पूरे मार्ग को ही एक दिव्य रूप दे दिया है। बड़ा डंडा की साज सज्जा से पूरी में रथ यात्रा का उल्लास और श्रद्धा के रंग और गहराने लगे हैं। पूरी में रथ यात्रा के निर्माण की शुरुआत से ही भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा था। तीनों रथ अब लगभग तैयार हो चुके हैं। रथ के शिखर की सजावट पूरी होने वाली है। रथ निर्माण से लगे कारीगर पूरे विधि विधान के साथ निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। बड़ी बारीकी से रथों पर रंग भरे जा रहे हैं। खूबसूरत रंगों से सजे ये रथ धीरे धीरे अपनी दिव्य पहचान पा रहे हैं। ये रथ सिर्फ भगवान की सवारी ही नहीं है, इन रथों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों की अनंत आस्था भी जुड़ी है। भगवान के भक्त पूरे साल इन रथों के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रथ निर्माण को देखना उन्हें सुखद एहसास दिलाता है। इस रथ के स्पर्श में ही उन्हें ईश और आशीष की अनुभूति होती है। पूरी में रथ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन भी जी जान से जुटा है। रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि पूरी आने वाला हर भक्त पूरी सहूलियत के साथ रथ यात्रा में शामिल हो और भगवान के दर्शन में किसी को कोई दिक्कत न हो।
1: एन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस, फायर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द एनजीओस एंड अदर एजेंसीज, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग इन यूनिजन एंड द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर बीइंग प्लान्ड फॉर बेटर एक्सपीरियंस फॉर ऑल द डिवोटीज आर बीइंग पुट इनटू एक्शन।
0: पूरी में जगन्नाथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने वाली है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, महाप्रभु में भक्तों की आस्था और भगवान जगन्नाथ के दर्शन की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पल का, जब शंखनाद के बाद मंदिर के सिंह द्वार खुलेंगे और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच पधारेंगे और भगवान के रथ को खींचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अहमदाबाद में पारंपरिक रथों को भव्य रूप दिया जा रहा है, जहां पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा विशेष श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला में 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा रथ चर्चा का विषय बना हुआ है।
3: और देखिए, इसी बीच रांची समेत कई शहरों में रथ यात्रा के रंग दिखने लगे हैं। कारीगर पूरे समर्पण के साथ रथ निर्माण में जुट गए हैं। आस्था, परंपरा और शिल्प कला का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
4: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के लिए तीनों दिव्य रथ पूरी तरह तैयार हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा इन्हीं सुसज्जित रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पारंपरिक रंगों और आकर्षक कलाकृतियों से रथों को भव्य स्वरूप दिया गया है। शिल्पकारों ने हाथों से बारीक चित्रकारी कर इन रथों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं।
5: देश में पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलनी है और अहमदाबाद के इस जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा की बात करें तो ये 149वीं रथ यात्रा होगी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग रथ जिसपे कलर काम हर साल रथ यात्रा के पहले किया जाता है, जो कि कामकाज पूरा कर लिया गया है। जो पहला रथ ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का, ये रथ है। उसके बिल्कुल बाईं तरफ सुभद्रा जी जो कि भगवान की बहन है, और उसके बिल्कुल बाईं तरफ यानी कि तीसरा रथ बलदेव जी का रथ है।
4: माना जाता है कि रथ यात्रा के मौके पर भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए उनके बीच जाते हैं। रथ यात्रा लगभग 16 से 18 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु रथों के दर्शन और रस्सी खींचने के लिए उमड़ते हैं।
6: इस सनातन की इस परंपरा में भगवान के हरेक भक्तों को इस यात्रा से जुड़ के आनंद और उत्साह के साथ ही लोकोत्सव मनावे, उस रीत से हरेक प्रकार का सब रीत से जैसे के तैयारी भी हो रही है।
4: रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा नए और आकर्षक श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। अहमदाबाद की भव्य रथ यात्रा के लिए तीनों विग्रहों की विशेष पोशाक तैयार की जा रही है। पारंपरिक परिधानों के साथ रत्न जड़ित मुकुट और मनमोहक आभूषण भी इस दिव्य श्रृंगार का हिस्सा होंगे।
5: भगवान को विशेष श्रृंगार कराया जाता है, भगवान के लिए विशेष वस्त्र तैयार कराए जाते हैं। मेरे आसपास की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सुंदर अलग अलग किस्म के वस्त्र तैयार किए गए हैं। 5 जितने वस्त्र भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा जी और भाई बलदेव जी के लिए तैयार किए जाते हैं, और हर साल जब रथ यात्रा होती है उसके पहले ये तमाम जो वस्त्र हैं वो भगवान तक पहुँचाए भी जाते हैं।
4: महाराष्ट्र का अकोला भी भक्ति के रंग में सराबोर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए भव्य रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचे इस रथ को तैयार करने में लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत लगी है। 19 जुलाई को इस्कॉन की ओर से अकोला में इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन होगा।
7: ये रथ की खासियत ये है कि लगभग में इसकी लंबाई 20 फुट, चौड़ाई 12 फुट के आसपास में है, और इसका घुम्मट जो है ऊपर का वो पूरा एडजस्टेबल है, 11 फुट ऊपर नीचे होने वाला, मतलब कोई बिजली का तार ना टकराए या किसी से कोई झाड़ पेड़ ना टकराए उस हिसाब से। सामने के चक्कों में 6 फुट हाइट के इसके चक्के हैं लगभग में।
4: उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। कुशल कारीगर पारंपरिक शैली में विशाल रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
8: भक्त जन हजारों के संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं, तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है। और अब देखिए यहाँ पे बारीकी से काम हो रही है।
4: रथों की भव्यता, भगवान का दिव्य श्रृंगार और श्रद्धालुओं का अटूट उत्साह, अब हर किसी को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, रांची से सत्यजीत कुमार और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: 3 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा अब पूरे शबाब पर है। यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिल रही है। आस्था भक्ति के अलग अलग रंग भी नजर आ रहे हैं।
2: आपको बता दें कि आस्था का आलम यह है कि खराब मौसम के बावजूद एक हफ्ते के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं।
10: मॉनसून की चुनौतियों के बीच श्री अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है। चाहे बालटाल हो या पहलगाम, दोनों ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की रौनक है। आस्था का आलम यह है कि यात्रा शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़कर करीब 1.5 लाख तक पहुंच गया है। अब तक करीब 1,45,000 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 30% ज्यादा है। ये हाल तब है जब हिमलिंग पिघल चुका है, बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं और पहाड़ों में बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। चुनौतियां चाहे जो भी हो, सब पर भारी है बाबा बर्फानी में श्रद्धालुओं की आस्था, जो हर रोज नए आंकड़े के साथ लोगों को हैरान कर रही है। और श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा न सिर्फ सनातन धर्म में लोगों की आस्था का पता बता रहा है, बल्कि देश भर से आने वाले इन तीर्थयात्रियों की बदौलत घाटी के पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे घोड़े खच्चर और पिट्ठू वाले हों, चाहे गर्म कपड़े बेचने वाले हों, चाहे रेनकोट या छाता बेचने वाले हों, चाहे चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले हों या फिर होटल कारोबारी, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद से सबके चेहरे खिले हुए हैं।
11: यात्रा के लिए आप जैसे लोग यहाँ पर दो तीन महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं।
12: जी जी,
11: तो किस तरह का काम चलता है इन दो तीन महीने में? रोजगार बहुत सारे लोग?
12: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता है सर। अपनी हिम्मत है सर इसमें कमाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है सर। हर सिस्टम से बढ़िया चल रहा है सर।
11: जब यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों का इसमें रोजगार बढ़ता है?
12: इसमें होटल वालों का भी बढ़ता है, घोड़े वालों का भी बढ़ता है, पिट्ठू वालों का भी बढ़ता है, और दुकानदारों का भी बढ़ता है सर, शाल वालों का भी बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया सर, हर एक का रोजगार बढ़ जाता है सर। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर।
10: हर साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, वैसे ही घाटी के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को अमरनाथ यात्रियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ जम्मू शहर या कश्मीर के बालटाल या पहलगाम तक सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, फिर सांबा जिला, उधमपुर, रामबन से होते हुए श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल जिलों से होकर गुजरती है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बल मिलता है। मॉनसून सीजन के दौरान जब पर्यटन ढलान पर आने लगता है, तो ये अमरनाथ यात्रा घाटी के लोगों को एक नई उम्मीद देती है।
13: बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम मतलब यात्रा का बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। सब लोग, चाय वाले हो गए, चाहे शॉल्स बेचने वाले हो गए, चाहे स्टिक्स घोड़े वाले, चाहे पिट्ठू वाले, कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से मतलब इनके यात्रा का इंतजार करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ यात्रा आती है, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छे से चलता है, तो मतलब अच्छा ही है।
11: तो दो ढाई महीने जो होते हैं, ये कितना आपके लिए अहम होते हैं?
13: बहुत अहम होते हैं, बहुत हद से भी ज़्यादा अहम होते हैं ये दो ढाई महीने जो यात्रा के होते हैं। हम इसके लिए साल भर इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा हमारा।
11: साथ में ये भी है कि इसमें कमाई अपनी जगह, लेकिन
13: हाँ जी,
11: कश्मीर मेहमान नवाजी,
13: कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले नंबर पे माना जाता है। और हमारी यही गुजारिश है कि मतलब बाहर से लोग आए यहाँ यात्रा करने के लिए, टूरिस्ट घूमने के लिए, बहुत अच्छे है यहाँ, सेफली है, सब कुछ ठीक है।
10: कुल मिलाकर ये सालाना यात्रा उन हजारों परिवारों की आजीविका का साधन रही है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। इस साल ये यात्रा 57 दिनों की है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्रा पर आएंगे, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्य के पर्यटन कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए, मानसूनी बारिश के बीच जारी है चारधाम यात्रा।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं, तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां आपको बता दें कि बढ़ गई है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है, तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है।
3: हालांकि इन सबके बीच में श्रद्धालुओं का उत्साह जस का तस है। पहले ही तीर्थयात्रियों की तादाद में थोड़ी कमी आई है, लेकिन धामों में रौनक बरकरार है। इसी बीच मौसम की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
4: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है, और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं।

0: उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
1: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिली थी, ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थ यात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
0: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
2: मॉनसून पूरे देश में एक्टिव है। मैदानी इलाकों के अलावा अब खासतौर से हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी मॉनसून की अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है, सैलानियों को भी खूब लुभा रही है।
3: वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जगह जगह भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है।
4: पहाड़ों पर बादलों का डेरा है, मॉनसून के सीजन का ये माहौल मनमोहक है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां आसमान में घुमड़ते रुई के नर्म फाहू जैसे ये बादल इन दिनों बारिश के साथ सुहावने मौसम की सौगात दे रहे हैं। बारिश के बीच आबोहवा अच्छी है तो शिमला और आसपास के क्षेत्रों में सैलानियों की भरमार भी देखने को मिल रही है। लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, शिमला की आइकॉनिक जगहों पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। कुल मिलाकर शिमला में मॉनसून का मैजिक सैलानियों को खूब लुभा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शानदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में, खासतौर से पूर्वी हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके कारण यहां पर तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के कुछ स्थानों पर लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है और पहाड़ी रास्तों पर सफर के दौरान लोगों को सावधानी बरतने के लिए आगाह किया है। वहीं मॉनसून की बारिश का दौर उत्तराखंड में भी जारी है, खासतौर से केदारनाथ धाम में 8 जुलाई से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके कारण केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी यात्रियों को ज्यादा बारिश होने पर सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा है। हालांकि बारिश में भी बाबा केदार के भक्त धाम पर दर्शन के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। धाम में बारिश के बावजूद भक्तों और श्रद्धालुओं की खूब चहल पहल है, लेकिन मौसम के हाल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और लोगों को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।
5: लोगों को सुरक्षा की दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं, नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है क्योंकि जो रेनफॉल है वो हिली एरिया में काफ़ी तेज़ी से हो रही है और वहाँ से धीरे धीरे करके जल कई बार एकत्रित होकर काफ़ी कम समय में नदियों तक पहुँचता है तो जलस्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो खतरे के निशान को है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारी नगर पालिका, जिला पंचायत, NHPWD सभी को निश्चित किया गया है कि वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर, अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पर मुस्तैदी से रहे।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून इस वक्त देश के तमाम इलाकों में एक्टिव है। मौसम विभाग ने पहाड़ों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी खासतौर

0: से दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि गुजरात से केरलम और मध्य प्रदेश तक लो प्रेशर सिस्टम बनने के कारण कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके कारण गर्मी और उमस से राहत जरूर रहेगी, लेकिन सफर में निकलने वालों के लिए जरूरी होगा कि वो मौसम का अपडेट लेकर ही घरों से निकले। शिमला से विकास शर्मा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए डायबिटीज के मरीजों के लिए बड़ी सौगात, अब रोज रोज नहीं लगाना होगा इंसुलिन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और भारत में डायबिटीज के इलाज में एक बड़ी क्रांति हुई है। डेनमार्क के दिग्गज दवा कंपनी ने देश में दुनिया का पहला हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन एविक्ट्रिल लॉन्च किया है।
2: और देखिए, इस नई दवा से मरीजों को साल भर में 365 की जगह सिर्फ 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे, जिससे इलाज आसान होगा। ऐसे वक्त में जब भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इस लॉन्च को इलाज के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है।
3: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में अवेकली को लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी बेसल इंसुलिन है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा, यानी अब रोजाना इंजेक्शन लगाने के बजाय साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन ही डायबिटीज से लड़ने के लिए काफी होंगे।
4: देखिए, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसको तो टाइप 2 डायबिटीज है, और मोस्टली वो लाइफस्टाइल से होती है या आपके जो जीन्स है उसकी वजह से होती है, और या जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि वो लोग जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार टीका लगाना हर रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो ये इंसुलिन का जो टीका है सप्ताह में सिर्फ एक बार लगाना है, यानी 365 दिन की जगह आपको सिर्फ 52 वीक्स, दैट मीन्स 52 टाइम्स, 52 बार ये टीका लगाना है। ये बहुत कम जो है पेन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है।
3: कंपनी का दावा है कि भारत में कई मरीज रोज इंजेक्शन लगाने की डर की वजह से इंसुलिन शुरू करने में 7 से 9 साल तक की देरी कर देते हैं, लेकिन ये वीकली इंसुलिन इस डर को कम करने और इलाज को आसान बनाने में मदद करेगी। ये दवा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए लॉन्च की गई है। भारत में अवीकली का 700 यूनिट का पैक 2611 रुपए में मिलेगा, यानी प्रति यूनिट कीमत करीब 3.73 रुपए होगी, जो कंपनी के मुताबिक मौजूदा डेली बेसल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40% तक सस्ती है। अगर किसी मरीज को रोज 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है तो उसे सप्ताह में 70 यूनिट अवीकली लेनी होगी, जिसकी लागत करीब 261 रुपए प्रति सप्ताह होगी।
4: ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया की प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, विच इज फार मोर चीपर इकोनॉमिकल, जो कि आज के मॉडर्न इंसुलिन है। 3.73 रुपीज, यानी 3.73 रुपया पर यूनिट ये इसकी कॉस्ट रहेगी, 2611 रुपये एक पेन का, जिसमें 700 यूनिट होंगे। तो ये बहुत ही उम्दा दवाई है और सस्ती दवाई है, बट डॉक्टर इज द राइट पर्सन टू प्रिस्क्राइब, और डॉक्टर व्हेन दे वांट टू इनिशिएट, दैट इज वेयर यू शुड यूज देयर एडवाइस।
3: ये इंसुलिन मरीज को फ्लेक्स टच पेन के जरिए दी जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल में इसने रोजाना लगने वाले इंसुलिन के बराबर या उससे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करके दिखाया है। कंपनी का कहना है कि अवीकली को इसी साल शुरुआत में अमेरिका से मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूरोपीय संघ और तमाम दूसरे देशों में भी हरी झंडी मिल चुकी है। भारत 7वां देश है जहाँ इस दवा को लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: वैसे दिल्ली एनसीआर वालों ने कल इतनी बारिश देख ली ना, आज थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। आप जल्दी से गेस कीजिए वीकेंड कैसा रहेगा, बारिश आएगी नहीं आएगी?
6: मैं तो उम्मीद कर रही हूँ बारिश हो।
5: नहीं नहीं, आप बताइए आएगी कि नहीं,
6: आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ी होनी चाहिए, होगी,
5: होनी चाहिए,
6: थोड़ी हो, थोड़ी होगी,
5: हो जाएगी, हो जाएगी। हो या ना हो, मौसम रहे सुहावना और वीकेंड हो एकदम मस्त, आप इंजॉय कीजिए। मंडे में लेंगे शाम 4-5 बजे चाय पर चर्चा में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements। Sage University, transforming your passion into profession।
2: ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, जगमग रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की अगवानी। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। सत्ताईस घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों समेत 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लाम बगर नाला पार करना होगा आसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। हिमाचल प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय, शिमला, सिरमौर, सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी, फूलों, झालरों, आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग। 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
0: कर रहे थे
2: ओम तुम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर की पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है, मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं, नहीं इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो यह भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की, हालांकि उपासना यहां भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, जैन धर्म के अनुयायी हो, उपासना यहां भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहां नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में माँ गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले, जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुए, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर शीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवारुक्मे बंधनामित्तु मुक्ति मामुतम। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम, पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये पांचवें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहाँ पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं।
1: इस समय हम लोग यमद्वार पर हैं और कैलाश यात्रा के लिए, पवित्र कैलाश यात्रा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते ये है कि यहाँ से आप सांकेतिक रूप में भूलोक से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग 3 दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो 3 बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
0: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
4: और जब महादेव को देखा तो आंग में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था, बस यही थी अनुभूति। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समस्या खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर, बहुत सुविधाजनक बनाने की पूरी अपनी कोशिश लगा दी है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और चीन सरकार को।
5: क्या अब इसको आप अपने नृत्य में और उड़ीसी नृत्य में भी आप इसका वर्णन करेंगे कि भावी पीढ़ियां से प्रेरित हो?
4: बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी नृत्य शिव तांडव करती थी, मैं इसीलिए जानी जाती थी रेखा जैना का, जब भी शिव तांडव अनाउंस होता था तो दर्शकगण इंतजार करते थे।
0: आपको बता दें कि महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं, उसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
6: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दिन दयाल मेरे सबू भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कत्कारी, विष्णु को दिए चक सुदर्शन लक्ष्मी सीनारी, इंद्र को दिए काम देनु एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कत्कारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दिन दयाल मेरे सबू भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान के, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों को स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
0: तो वही बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी कार्यक्रम में प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ और पूर्व महिला क्रिकेटर लीजा स्थालेकर भी मौजूद रहे। क्रिकेट के इस ऐतिहासिक मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल संबंधों की सराहना की और क्रिकेट को दोनों देशों के रिश्तों की मजबूत कड़ी भी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ की तारीफ की, जिस पर वो मुस्कुरा उठे। इस दौरान भारत में पहली बार बिग बैश लीग का मैच कराने का ऐतिहासिक ऐलान भी हुआ। एमसीजी ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत की, उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। तो तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीव वॉ को एक तस्वीर भी भेंट की, वो भी आप देख सकते हैं। और 20 साल पुरानी मुलाकात की तस्वीर भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दो स्क्रीन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इस कदम को कहा जा रहा है कि भारत के और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के लिए बहुत मजबूत होगा। ये वो ऐतिहासिक मौका है जब करीब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की यात्रा पर पहुंचा हो। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टावर को प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में विशेष रोशनी से सजाया गया, जो दोनों देशों के बीच में दोस्ती का प्रतीक भी बन गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, गले लगाकर वो उनको मिले। इस मौके पर न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त मुआन पुई सयावी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
3: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं, तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की अगवानी। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। सत्ताईस साल बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। पहले दल ने लिपो दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों समेत 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। हिमाचल प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय। शिमला, सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बरसात। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी, फूलों और झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग, 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ऑकलैंड में हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री लक्सन ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। दो दिनों की यात्रा में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री, भारतीय समुदाय को करेंगे एड्रेस। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ा जन सैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग, प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक, कलाकारों ने पेश किए कई भव्य कार्यक्रम। भारत के तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में हुई जगमग रोशनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और वहां के पूर्व कैप्टन स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच, दिसंबर में बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा, तो इतिहास में पहली बार होगा। युवा खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने मैदान पर युवाओं को बढ़ाया हौसला, उनकी जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कट रूबी द रू से हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजेदार मुलाकात, पीएम ने मैस्कट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत की। पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को लगभग 20 साल पुरानी एक तस्वीर भेंट की, ये तस्वीर तब की है जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे मिले थे क्रिकेटर। पूरी आस्था के साथ आज आठवें दिन भी जारी है अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के बेहतरीन रखरखाव के लिए बीआरओ की तारीफ की। मुश्किल रास्तों और अनिश्चित मौसम के बावजूद साफ सुरक्षित और अच्छे हालत में ट्रैकिंग ट्रैक, बीआरओ कर्मियों के समर्पित काम ने हजारों यात्री संतुष्ट। अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रियों के आराम के लिए बनाए गए टेंट से लेकर बाकी सुविधाओं की एलजी ने की समीक्षा, प्रशासन ने काम की तारीफ की। 27 घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिपो दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों समेत 52 लोग शामिल। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश में भी चारधाम यात्रियों का जोश हाई, लगातार बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लाम बगड़ नाला पार करना होगा आसान। बारिश के बीच में छाता लिए नजर आए श्रद्धालु, दर्शनों के लिए लगी कतारें, चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध। मॉनसून में उफान पर अलकनंदा नदी अलर्ट पर, सभी रेस्क्यू टीमें यात्रा मार्गों की लगातार रखी जा रही निगरानी। बारिश के बीच धुंध की मोटी चादर में लिपटी नजर आई ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बादलों से घिरे तीर्थ की बढ़ी सुंदरता। पूरे में रथ यात्रा की तैयारी तेज, बड़ा डांडा की रंग बिरंगी सजावट से बढ़ी रौनक, भक्तों का उत्साह देखने लायक। रथ यात्रा से पहले पुरी का श्रृंगार, मुख्य मार्ग पर आकर्षक सजावट, सुरक्षा व्यवस्थाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप। बड़ा डांडा बना आस्था का केंद्र, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए शहर तैयार, उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुरी में उत्सव जैसा माहौल, रथ यात्रा से पहले सड़कों पर सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों की रौनक बढ़ी। जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासन ने तैयारियां तेज की, लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत, लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी दो दिन तक भवानी पेठ के विट्ठल मंदिर में रुकेगी, वहीं संत तुकाराम महाराज की पालकी नाना पेठ के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरेगी। पालकी यात्रा के दौरान पुणे की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला, हर तरफ श्रद्धालु विट्ठल नाम का जयघोष करते हुए नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुणे पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए, पानी, स्वास्थ्य, सफाई और ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई। पालकी यात्रा से पूरा पुणे भक्तिमय माहौल में डूबा, शहर में हर तरफ ज्ञानोबा तुकाराम के जयघोष की गूंज सुनाई दी। एक अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी। एक अगस्त से पिंक टिकट केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करने के बाद ही होगा जारी, कार्ड ना होने पर महिलाओं को नियमित टिकट खरीद कर करनी होगी यात्रा। रेलवे जल्द ही IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन करेगा लॉन्च, रेलवे अधिकारियों ने जयपुर के मलाविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को दिखाया नया वर्जन, मांगा फीडबैक। कुछ समय पहले जयपुर के छात्रों ने रेल मंत्री को गिनाई थी IRCTC वेबसाइट में कुछ कमियां, अश्विनी वैष्णव ने वेबसाइट को 15 जुलाई तक बेहतर बनाने का किया था दावा। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। आज ओमान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय समुदाय के लोगों से किया संवाद। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, 432 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साईं बाबा मंदिर के VIP प्रोटोकॉल, दर्शन शुल्क में हुई बढ़ोतरी, 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब VIP दर्शन के लिए हर भक्त को देने होंगे 300 रुपए। पहले 200 रुपए थी सामान्य दर्शन और VIP प्रोटोकॉल की फीस, जिससे दर्शन के दौरान बढ़ती थी भीड़। हर दिन देश और दुनिया से आए हजारों श्रद्धालु करते हैं साईं बाबा के दर्शन, भक्तों को सुलभ दर्शन कराने के लिए किया गया शुल्क सिस्टम में बदलाव। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही भारत की साग, भारत में पहली बार बनेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स भारत में करेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर का उत्पादन, मेक इन इंडिया के तहत लगेगी नई प्रोडक्शन लाइन। इजरायली रक्षा कंपनी ने भारत से शुरू की बातचीत, भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी की तैयारी। भारत बनेगा वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र, भारत से मित्र देशों को निर्यात का खुलेगा रास्ता। आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगी बड़ी मजबूती, रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को करवाए गए VIP दर्शन, प्रशासन की इस खास मुहिम के चलते जिला अस्पताल में खून देने वालों की लगी लंबी कतारें। दर्शन के साथ साथ रक्तदान महाकल्याण का संकल्प भी पूरा कर रहे श्रद्धालु, प्रशासन ने इस पहल की सभी प्रशंसा कर रहे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से आई दुर्लभ तस्वीर, कोसी नदी के पास ग्रेटर पेंटेड स्नाइप अपने दो नन्हे चूजों के साथ नजर आया। पूरे देश में मॉनसून की बारिश का दौर, महाराष्ट्र गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में अचानक से आई बाढ़, जिसके बाद कम से कम 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अमरेली में खेती की जमीन के लिए वरदान बनी गागड़िया नदी। नदी पर बनी 20 झीलें 3 तालुकों के लिए सिंचाई और पीने के पानी को मुहैया करवा रही। पद्मश्री सवजी भाई ढोलकिया के फाउंडेशन और गुजरात सरकार की कोशिशों से साकार हुआ ये प्रोजेक्ट। खेती के साथ पर्यावरण और जंगली जानवरों के लिए अब नहीं होगी पानी की कमी। भूजल स्तर को बढ़ाना इस परियोजना का मकसद है। हर साल मानसून में लबालब होती है नदी और सभी 20 झीलें। जूनागढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जिले के बाढ़ प्रभावित घेड़ क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जूनागढ़ में जिले में घेड़ विस्तार परियोजना के कामों पर मांडविया ने अधिकारियों संग की बैठक। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 1500 करोड़ का पैकेज किया घोषित। शिमला में मानसून का जादू, पहाड़ों के बीच में तैरते बादल और ठंडी हवाओं ने मौसम को बनाया सुहाना। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद। देश भर से पहुंच रहे लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का मजा ले रहे। आसमान पर छाए घने बादल और ठंडी फिजा से हिल स्टेशन की खूबसूरती बढ़ गई है। प्रकृति की अनुपम छटा देखने के लिए सैलानियों की भीड़ लगी। शिमला की वादियों में छाई ठंडक, मानसून के खुशनुमा मौसम ने पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ खींचा। बादलों हरियाली के बीच सैलानी ले रहे यादगार छुट्टियों का आनंद। शिमला इस वक्त बना हुआ है सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन। कश्मीर की डल झील में पर्यटक पारंपरिक शिकारा नाव की सवारी का मजा ले रहे। खूबसूरत नजारों और शांत पानी के बीच में लोग बिता रहे यादगार पल। डल झील की शिकारा सवारी देश विदेश से आने वाले लोगों को आकर्षित कर रही है। सैलानियों को लुभा रहा घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य। शिकारा कश्मीर की पुरानी खास परंपरा का हिस्सा है। पर्यटकों को पसंद आ रही शिकारा राइड। डल झील में बढ़ती पर्यटकों की संख्या से स्थानीय कारोबारियों को हो रहा फायदा। शिकारा चलाने वाले लोग भी अच्छी खासी कमाई की उम्मीद कर रहे। पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे, स्थानीय युवाओं के लिए कमाई के अच्छे मौके। फ्रांस लगातार तीसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा। पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया। मैच में गोल कर एम्बापे के इस टूर्नामेंट में हो गए हैं 8 गोल। गोल्डन बीट की रेस में आगे चल रहे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी की।

दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं। ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ मिलकर आमिर बनाएंगे उत्तराखंड के सिल्कियारा टनल रेस्क्यू मिशन पर आधारित फिल्म। सिल्कियारा 41 होगा इसका नाम। एक बार फिर भूषण कुमार की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर। बेहद इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी होगी ये फिल्म। मिलाप मिलन ज्वेलरी करेंगे डायरेक्ट। विवादों के बीच में फिल्म काला हिरण का दूसरा पोस्टर आउट। 17 जुलाई को रिलीज होगा इसका टीजर। अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 आज हुई रिलीज। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म। अक्षय खन्ना सनी देओल दिया मिर्जा तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 1 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। चर्चित हत्या केस के इर्द गिर्द घूमती है। स्विट्जरलैंड के एआई समिट में दिखा अनोखा ह्यूमनॉइड रोबोट रॉबर्ट। ये रोबोट ट्रंप जकरबर्ग और ओबामा जैसी नामचीन हस्तियों समेत कई चेहरों की शक्ल बना सकता है। रॉबर्ट सिर्फ बोलता ही नहीं मुस्कुराता और चेहरे के हाव भाव भी दिखाता है। डेवलपर्स का दावा है इससे इंसान और रोबोट की बातचीत काफी आसान होगी। रोबोट बनाने वाली कंपनी का यह कहना है कि मकसद किसी इंसान की हूबहू कॉपी बनाना नहीं। चेहरा बदलने के बावजूद साफ दिखता है सामने एक रोबोट ही है। एआई समिट में स्मार्ट रोबोटिक फर्नीचर ने खींचा सबका ध्यान। टेबल और फर्नीचर खुद चलकर रास्ता खाली कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से जगह बदल सकते हैं। ये खास रोबोटिक फर्नीचर बुजुर्गों और कम चल फिर पाने वाले लोगों के लिए साबित होगा मददगार। आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। लंदन में साल की तीसरी हीट वेव। गर्मी से लोग परेशान। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। लंदन की मेट्रो में लोगों को सबसे ज्यादा हो रही परेशानी। भीषण गर्मी में सफर करना मुश्किल हुआ। एसी वाले दफ्तर में लोगों को मिल रही राहत। बाहर की तेज गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनिंग का सहारा ले रहे। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़ा जून का रिकॉर्ड। कुछ दिन पहले ही जून का सबसे गर्म दिन किया गया था दर्ज। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से घरों से ना निकलने की सलाह दी। ब्रिटिश शाही जोड़े ने जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के 200 साल पूरे होने पर जू का दौरा किया। कछुए को खिलाया आहार। किंग चार्ल्स ने पेंगुइन की धड़कन सुनी। साथ ही पेड़ों पर रहने वाले घोंघों पर बैंगनी निशान बनाए। १८२६ में शुरू हुई जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन दुनिया की सबसे पुरानी वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं में शामिल। ZSL ने 1828 में दुनिया का पहला वैज्ञानिक चिड़ियाघर खोला। लंदन जू दौरे में किंग चार्ल्स ने वैज्ञानिकों से मुलाकात कर दुर्लभ प्रजातियों को बचाने की मुहिम की जानकारी ली। कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। किंग चार्ल्स की यात्रा में ZSL के संरक्षण अभियानों और वन्यजीव वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग को उजागर किया गया। वन्यजीव संरक्षण को मिला शाही समर्थन। मैक्सिको के बड़े ड्रग माफिया सरगनाओं को अमेरिका ले जाने वाला विमान अब म्यूजियम में रखा गया। अब लोग इस विमान को करीब से देख सकते हैं। ये वही विमान है जिसमें अल चापो के बेटे ज्वाकिन गुजमान लोपेज और इस्माइल एल मायो को अमेरिका ले जाया गया था। दोनों पर ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। विमान को न्यू मैक्सिको के वॉर ईगल्स एयर म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। ये विमान फिलहाल

0: एफबीआई की तरफ से म्यूजियम को दिया गया। इस विमान के अंदर आज भी स्नैक्स और सबूतों से जुड़ा एक एविडेंस बैग रखा गया है ताकि लोग देख सकें कि यह विमान किस तरह इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका में दोनों पूर्व कार्टेल नेताओं ने ड्रग कार्टेल से जुड़े मामलों में खुद को दोषी माना। अब इस विमान को अपराध के इतिहास से जुड़ी एक अहम निशानी माना जा रहा। चीन के चोंगकिंग में नया जंगल अनुभव। लोकोलॉजी थीम पार्क ने शेर, बाघ और भालू को करीब से देखने के लिए 1.2 किलोमीटर का रोमांचक ट्रेल शुरू किया। पर्यटक अब सुरक्षित जाल के पीछे रहकर शिकारियों को देख और जानवरों को अपने हाथों से खाना खिलाने का अनुभव भी ले सकते हैं। नए ट्रेल में लायन जोन, टाइगर एरिया, भालू वोल्फ सेक्शन शामिल है। यहां उमड़ रही है भारी भीड़। पार्क ने डबल बैरियर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और गाइड सिस्टम से पर्यटकों की सुरक्षा पक्की की। 3 लेयर सुरक्षा के साथ वाइल्ड सफारी भी। ऑस्ट्रेलियन बुश में मिलेगा जंगल का अनुभव। ट्रेल में एमओ समेत कई जानवरों को देखने का मौका। रोमांच पसंद करने वालों के लिए नया एक्सपीरियंस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: पुष्पा 2 का सुपर डुपर हिट डांस नंबर जिसने पूरे देश में धमाल मचा दिया था, अल्लू अर्जुन फ्री लीला की जिस जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ में नजर आ सकती है। इस बार इंडस्ट्री में चर्चा यह है कि श्री लीला जल्द ही अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन फिल्म राका का हिस्सा बन सकती हैं।

0: साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अल्लू अर्जुन और श्रीलीला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुष्पा 2 में अपनी धमाकेदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही एक और बड़े प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन की अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म राका में श्रीलीला की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले श्रीलीला राका के सेट पर मौजूद थी, जहां अल्लू अर्जुन लगातार 2 दिनों तक शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, और अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 की आग अब राका में भी देखने को मिलेगी। अगर ये खबर सच साबित होती है तो पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन और श्रीलीला दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। पुष्पा 2 द रूल के उनके सुपरहिट डांस नंबर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर उभरा था। वही राका पहले से ही देश की सबसे चर्चित पैन इंडिया फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का निर्देशन अटली कर रहे हैं और ये पहली बार है जब अल्लू अर्जुन और अटली किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस फिल्म के जरिए अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर और जानवी कपूर के बीच मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की चर्चा है। इतना ही नहीं, पहले आई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि सुपरस्टार शाहरुख खान भी राका में नजर आ सकते हैं। हालांकि उनका किरदार क्या होगा इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल तो फैंस की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या राका में अल्लू अर्जुन और श्रीलीला की जोड़ी सचमुच एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
2: है। आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की अगवानी। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप्स के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। सत्ताईस घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मॉनसून सक्रिय। शिमला, सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी। फूलों, झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया गया यात्रा मार्ग। 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की।
5: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। उड़ीसा के पुरी में 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में पुरी में रौनक के रंग बिखरे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। पुरी में रथ यात्रा की उमंग, आस्था के ढेरों रंग। रथ यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। रथ सज धज कर लगभग तैयार हो चुका है और अब बड़ी बारीकी के साथ रथों पर रंग भरे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को भी अब उस पल का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा इन रथों पर बैठकर उनके बीच आएंगे और भक्त उनके दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करेंगे।

0: भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में रथ यात्रा उत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। जिधर देखें उधर हर कोई इस उत्सव को खास बनाने में लगा है। धरती से आकाश तक वहां प्रभु की आराधना की गूंज सुनाई दे रही है। पुरी और तीनों रथों को भव्य तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। पुरी में हर तरफ भगवान जगन्नाथ के महापर्व रथ यात्रा की रौनक देखते ही बन रही है। भगवान के रथ की साज सज्जा हो रही है। देवी सुभद्रा और बलभद्र का रथ भी तैयार हो रहा है। रथ की सजावट का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। पूरी तैयारी अब अंतिम चरण में है।
1: अभी हमारे रथ को जो सजाने का काम चल रहा है, अभी जैसे कि रथ के ऊपर जो हंस है, हंस पटा और जो कन्या सखी सखियों का पटा और ये जो रथ के पार्श्वदेव देव है, सभी रथ में नौ पार्श्वदेव, ये बलभद्र जी के देवता है नौ पार्श्वदेव, माँ के देवी है नौ देवी और जगन्नाथ जी के नौ देवता है। तो ऐसे करके सारे रथ में अभी लग रहे हैं और इसके बाद हमारा काम मेनली काम है रथ के ऊपर जो है जो कलश बोलते हैं हम इसको हमारे भाषा में, जहाँ के ऊपर की रथ का जो ध्वजा वो उड़ेगा तो उसका काम बाकी है, उसको हम रथ के ऊपर उठाएंगे। फिर रथ का काम तो अभी प्राय तो शेष पर्याय पे और जो रथ का सिंहासन का कार्य है वो अभी खत्म हो चुका है, तो वैसे बाकी का काम अभी धीरे धीरे चलेगा।
0: रथों के श्रृंगार के साथ साथ अब रथ यात्रा के मार्ग की सजावट भी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का रथ जिस मार्ग से गुजरता है उस मुख्य मार्ग को बड़ा डंडा कहते हैं। इस बड़ा डंडा से होकर तीनों रथ प्रमुख मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मार्ग पर इन दिनों खूबसूरत रंगों से कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस सजावट ने पूरे मार्ग को ही एक दिव्य रूप दे दिया है। बड़ा डंडा की साज सज्जा से पूरी में रथ यात्रा का उल्लास और श्रद्धा के रंग और गहराने लगे हैं। पुरी में रथ यात्रा के निर्माण की शुरुआत से ही भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा था। तीनों रथ अब लगभग तैयार हो चुके हैं। रथ के शिखर की सजावट पूरी होने वाली है। रथ निर्माण में लगे कारीगर पूरे विधि विधान के साथ निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। बड़ी बारीकी से रथों पर रंग भरे जा रहे हैं। खूबसूरत रंगों से सजे ये रथ धीरे धीरे अपनी दिव्य पहचान पा रहे हैं।
2: अभी रथ को डेकोरेटिव काम चल रहा है, जो कलर मिस्त्री लोग है, चित्रकार लोग हैं, उनने वो लोग रथ का पहिया वगैरह और जो होते हैं गुज और रथ का जो डंडा ये सब वगैरह चित्र कर रहे हैं। अभी जो मेन आकर्षण है रथ का प्रभाव वो भी प्रस्तुत होकर कर रहा है, प्रस्तुत अभी खत्म हो गया है, उस लगाना बाकी है। सिर्फ आज कलश ऊपर कलश लगाया जाएगा, चारों तरफ का जो पार्श्व देव देवा देवी है उन्हें भी लगाया जाएगा, शिखर डम्बरू वो भी लगाएंगे। ये सब लगाने के बाद रथ का आखिरी काम होगा, जब रथ तीनों आज्ञा माल पाके नवयौवन दर्शन के दिन सिंह द्वार पे जाके पहुँचेंगे, उसी दिन हमारे जो जितने भी महाराज विश्व कुमार सेवायत लोग हैं वो रथ का जो महापुरुष का आसन है, जो चका आसन जो बोलते हैं, वो वहाँ पे हम लगाएंगे और आखिरी और पहला और आखिरी हरि बोल देंगे। तो इस साल का काम खत्म होने के बाद ही वो काम खत्म होने के बाद ही हरि बोल देंगे और उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखे, सुस्त रखे, कि अगले साल वो भी फिर से आकर आपकी सेवा में नियुक्त हो सके।
0: ये रथ सिर्फ भगवान की सवारी ही नहीं, इन रथों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों की अनंत आस्था भी जुड़ी है। भगवान के भक्त पूरे साल इन रथों के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रथ निर्माण को देखना उन्हें सुखद एहसास दिलाता है। इस रथ के स्पर्श में ही इन्हें ईश आशीष की अनुभूति होती है। यही नहीं, जो कलाकार इस यात्रा की तैयारी में शामिल है वो भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जैसे जैसे रथ यात्रा की तारीख 16 जुलाई करीब आ रही है, भगवान जगन्नाथ में भक्तों की आस्था और दर्शन की लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब शंखनाद के बाद मंदिर के सिंह द्वार खुलेंगे और भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच पधारेंगे और भगवान के रथ को खींचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और पुरी के बाद दूसरे नंबर पर अहमदाबाद की रथ यात्रा को स्थान दिया जाता है। अपार श्रद्धा भाव से परिपूर्ण इस रथ यात्रा का भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी महत्व है। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अकोला में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, अहमदाबाद से अकोला रथ यात्रा का उत्सव। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले आस्था और परंपरा का अनूठा मेला देखने को मिला। तीनों रथ लगभग तैयार हो चुके हैं और आस्था के इस खास पर्व के लिए विशेष वस्त्र भी तैयार किए गए हैं। इस महा उत्सव में लाखों की संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचा रथ चर्चा का विषय, तो रांची समेत कई शहरों में रथ यात्रा के रंग अब दिखने लगे हैं।
4: अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के लिए तीनों दिव्य रथ पूरी तरह तैयार हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा इन्हीं सुसज्जित रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पारंपरिक रंगों और आकर्षक कलाकृतियों से रथों को भव्य स्वरूप दिया गया है। शिल्पकारों ने हाथों से बारीक चित्रकारी कर इन रथों की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं।
5: देश में पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलनी है और अहमदाबाद के इस जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा की बात करें तो ये 149वीं रथ यात्रा होगी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग रथ जिसपे कलर काम हर साल रथ यात्रा के पहले किया जाता है, जो कि कामकाज पूरा कर लिया गया है। जो पहला रथ ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का, ये रथ है। उसके बिल्कुल बाईं तरफ सुभद्रा जी जो कि भगवान की बहन है, और उसके बिल्कुल बाईं तरफ यानी कि तीसरा रथ बलदेव जी का रथ है।
4: माना जाता है कि रथ यात्रा के मौके पर भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए उनके बीच जाते हैं। रथ यात्रा लगभग 16 से 18 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु रथों के दर्शन और रस्सी खींचने के लिए उमड़ते हैं।
6: इस सनातन की इस परंपरा में भगवान के हरेक भक्तों को इस यात्रा से जुड़ के आनंद और उत्साह के साथ ही लोकोत्सव मनावे, उस रीत से हरेक प्रकार का सब रीत से जैसे के तैयारी भी हो रही है।
4: रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नए और आकर्षक श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। अहमदाबाद की भव्य रथ यात्रा के लिए तीनों विग्रहों की विशेष पोशाक तैयार की जा रही है। पारंपरिक परिधानों के साथ रत्न जड़ित मुकुट और मनमोहक आभूषण भी इस दिव्य श्रृंगार का हिस्सा होंगे। महाराष्ट्र का अकोला भी भक्ति के रंग में सराबोर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए भव्य रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 5 टन वजनी और 31 फीट ऊंचे इस रथ को तैयार करने में लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत लगी है। 19 जुलाई को इस्कॉन की ओर से अकोला में इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन होगा। उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। कुशल कारीगर पारंपरिक शैली में विशाल रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
7: भक्त जन हजारों की संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं, तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है। और अब देखिए यहाँ पे बारीकी से काम हो रही है।
4: रथों की भव्यता, भगवान का दिव्य श्रृंगार और श्रद्धालुओं का अटूट उत्साह, अब हर किसी को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, रांची से सत्यजीत कुमार और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो एक तरफ रथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है तो दूसरी तरफ सावन का पावन महीना भी शुरू होने वाला है और उसके साथ ही देवघर में शुरू होने जा रहा है आस्था का सबसे बड़ा महापर्व। 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज होगा। लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम सज रहा है। सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी सावन की रौनक अभी से दिखने लगी है। हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, देवघर से रोहतास श्रावणी मेले का उल्लास। श्रावणी मेले में देवघर की सुंदरता देखने वाली होती है। सावन के पूरे महीने यहाँ श्रद्धालु और कांवड़िए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। श्रावण मेला सफल रहे इसके लिए पुलिस अधिकारी और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटे हैं। सिर्फ देवघर में ही नहीं बल्कि बिहार के रोहतास और मुंगेर में भी सावन से पहले श्रावणी मेले की तैयारी जारी है।
8: देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम जहां पूरी होती है हर मनोकामना, जहां सावन के महीने में लगता है सबसे लंबा मेला और पूरा शहर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान हो जाता है। देवघर यानी देवों का घर, जहां सावन का हर दिन शिवमय हो जाता है, वहीं बैद्यनाथ धाम एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक तैयारियां अंतिम चरण में है, ताकि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता का एहसास हो।
9: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन की तैयारी 30 जुलाई से है, जो प्रशासनिक तैयारी है। वैसे बाबा बैद्यनाथ की प्राचीन परंपरा 16 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। 17 जुलाई से मंगला सावन, जो यहाँ के मंदिर की परंपरा है, वह 17 जुलाई से उसमें बिलपत्र आदि सस्ता है और मंदिर का पट जो है भीड़ नहीं रहने के बाद भी 8 बजे रात तक बिलपत्र चलने के बाद बंद होता है।
8: 30 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला पूरे एक महीने तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में स्पर्श पूजा और वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। श्रावणी मेले में देश के अलग अलग राज्यों से 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की उम्मीद है। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों के रूट का निरीक्षण किया, साथ ही मेले के दौरान ATS, रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की जाएगी। बिहार के रोहतास में भी सावन के इस पावन महीने में रौनक के रंग बिखरते हैं। गुप्तधाम में भोले के भक्तों का मेला लगता है। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गुप्तेश्वर नाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। तमाम तैयारियों को सही तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन अलग अलग मोर्चा पर डटा है। बैठकों का दौर जारी है। मुंगेर में भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। मुंगेर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ की नगरी की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में मुंगेर में लगने वाला श्रावणी मेला बेहद अहम हो जाता है, जिसके लिए मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। मेले में इस बार बेहद हाईटेक रूप देखने को मिलेगा, जहां कांवड़ियों की सुविधा के लिए रास्ते में कई आधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी बड़ी LED स्क्रीन पर दिव्य आरती का लाइव प्रसारण भी शामिल है।
10: नया काफी चीजें, जैसे पूर्व में हम लोग जो हेडकाउंट मशीन वगैरह यूज करते थे, इस बार CCTV कैमरास के माध्यम से AI फेस रिकग्निशन। इस बार एक और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो बाबा धाम में तो आरती होती है या जो वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, उसका लाइव फीड भी हम लोग विभिन्न LEDs के माध्यम से कांवरियों को दे दे, ताकि वो यहीं से भी बाबा का दर्शन कर पाए।
8: तकनीक और आस्था के इस अनूठे संगम ने इस बार मुंगेर के रास्ते देवघर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के सफर को बेहद आसान और यादगार बनाने का भरोसा दिया है। अब इंतजार 30 जुलाई का है, जब बोलबम के जयघोष के बीच आस्था की ये अनवरत धारा एक बार फिर देवघर पहुंचेगी और करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा, सेवा और विश्वास का ये महापर्व पूरे जोश के साथ मनाया जाएगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा, मुंगेर से गोविंद कुमार और रोहतास से रंजन कुमार, गुड न्यूज टुडे।
3: हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मॉनसून की अच्छी बारिश हो रही है। हिमालय की वादियों में मॉनसून का हर नजारा अलौकिक है। बद्रीनाथ धाम हो या फिर हेमकुंड साहिब, हर तरफ बारिश के बाद मौसम शानदार है। लेकिन इस मौसम पर भी आस्था भारी है। हमारी आज की जो अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है, वो इसी से जुड़ी है। हेमकुंड और बद्रीनाथ में रौनक, बारिश के बीच उमड़े भक्त। देखिए, लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम हो या फिर हेमकुंड साहिब, भक्तों का उत्साह चरम पर है। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जोश बरकरार है। हेमकुंड साहिब में अटूट आस्था का मेला लगा है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
11: पहाड़ों में मॉनसून का दौर शुरू हो चुका है और ये मॉनसून चार धाम यात्रियों के लिए किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं केदारनाथ धाम में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। मौसम के खराब मिजाज ने श्रद्धालुओं की चुनौती बढ़ा दी है। बावजूद इसके मौसम पर आस्था भारी है। मंदिरों में रौनक है। लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। यही नहीं, जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, वो बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शन कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद ले रहे हैं।
12: जो भी श्रद्धालु इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं उनके इतने अच्छे दर्शन, इतने सुगम दर्शन कभी नहीं होते हैं। इस समय बहुत ही बेहतर दर्शन बद्रीनाथ धाम में हो रहे हैं।
11: पहाड़ों पर बादलों का डेरा है, अलकनंदा नदी उफान पर है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम में सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा निरंतर जारी है। मॉनसून के कारण बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है। हेमकुंड साहिब में अटूट आस्था का मेला लगा हुआ है, हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 23 मई को कपाट खुलने के बाद से श्री हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन जारी है। इन दिनों प्रतिदिन 3000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब आने वाले अधिकांश श्रद्धालु विश्व परिषद फूलों की घाटी का भी दीदार कर रहे हैं, जबकि फूलों की घाटी पहुंचे पर्यटक भी हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। अब तक समूचे चार धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 43.5 लाख से अधिक निकल गया है। अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो आजकल 3 से 4 हजार श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब तक 14,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में 2,500 के करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक 1,90,000 के करीब श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर मॉनसून का असर दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन यात्रा सुचारू रूप से जारी है। पहाड़ों पर छाए बादल मौसम को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, यानी प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मौसम की आंख मिचौली को देखते हुए प्रशासन पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है और यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित होती रहे। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अपने इलाके को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी हर किसी की होती है। हर कोई अपने आसपास पौधारोपण करे, दूसरों को भी इस काम के लिए प्रेरित करे, यही तो पर्यावरण को बचाने, हरियाली को बनाए रखने की सोच है। और इसी मकसद के साथ राजस्थान सरकार मॉनसून सीजन में राज्य के लोगों को हरियाली का तोहफा देते हुए हरियालो राजस्थान अभियान चला रही है। हमारी आज की अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है जयपुर में मॉनसून का महाऑफर, 5 रुपए में हरा भरा बनाए घर। जी हाँ, जयपुर में सरकारी नर्सरियों में पौधों यानी कि सैपलिंग की शुरुआती कीमत महज 5 से 6 रुपए है, जबकि ज्यादातर पौधों की कीमत 10 रुपए तक रखी गई है। इसके अलावा यहाँ करीब 50 से 60 प्रकार के पौधे मौजूद हैं, जिनमें नीम, गुलाब, मोगरा, चंपा और औषधीय पौधे शामिल हैं। लोग भी काफी संख्या में इन पौधों को खरीदने के लिए आ रहे हैं, जबकि कई लोग ऑनलाइन भी इन पौधों की बुकिंग करा रहे हैं। जाहिर है सरकार की ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आम लोगों को भी प्राइवेट नर्सरी से बेहद कम कीमत पर क्वालिटी वाले पौधे उपलब्ध कराकर हरियालो राजस्थान कैंपेन को मजबूत कर रही है।
13: यहाँ जयपुर की इस नर्सरी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इस मॉनसून में ग्रीनरी को और हरियाली को बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए 5 रुपए से ये जो सैपलिंग्स हैं ये मिलना शुरू हो चुके हैं। 5 रुपए से शुरू होते होते जो टाइप्स हैं प्लांट्स के उसके हिसाब से इनका जो कॉस्ट है वो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, पर फिर भी इनका कॉस्ट उतना ही रहता है जो सभी की पॉकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा सही हो, अफोर्डेबल हो, बजट में सभी के आए।
14: यहाँ लगभग मतलब 50 से 60 वेराइटी पौधों की मिल जाती है।
15: थोड़ा मैंने ऑफिशियल पेड़ लिए हैं, फूल वगैरह के लिए, जैसे लीली हो गई, रात रानी हो गई, तो ये क्या कि बढ़िया फ्लावर पीले, सफ़ेद, गुलाबी, रंग बिरंगे होते हैं, तो ये थोड़े देखने में एट्रैक्टिव करते हैं, अच्छे लगते हैं।
14: गवर्नमेंट ने हरियाला राजस्थान एक स्कीम चला रखी है कि मतलब कम से कम 5 रुपए कांटेदार, 6 रुपए, 10 रुपए तक की दर है, इसलिए कि अधिक से अधिक पौधे लगाए और हमारा देश हरा भरा हो।
13: हरियाली को प्रमोट किया जा रहा है और सस्ते दामों में ऑनलाइन और ऑफलाइन जो पौधे हैं वो दिए जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: मॉनसून में कुदरत की खूबसूरती निहारने वालों के लिए शिमला इस वक्त शानदार डेस्टिनेशन बना हुआ है। शिमला में मौसम पूरी तरह से खुशनुमा बना हुआ है। आसमान पर घने बादलों की चादर छाई हुई है और पहाड़ों के बीच तैरते बादल पूरे शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। हमारे आज की अगली यानी कि छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है शिमला में मौसम का जादू, बारिश के बाद स्वर्ग जैसा नजारा। जी हाँ, पहाड़ों के बीच से गुजरते बादल, हरियाली से ढकी वादियां और धुंध में लिपटे नजारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पर्यटक इस खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ठंडी हवाएं और बारिश का ये मनमोहक नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आया है तो कोई दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों में सुकून के पल बिताने यहाँ पहुंचा है। भारत में डायबिटीज के इलाज में एक बड़ी क्रांति हुई है। डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी ने देश में दुनिया का पहला और हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन एक्वल लॉन्च किया है। हमारी आज की सातवीं और आखिरी जो गुड न्यूज है वो है अब डायबिटीज से जंग आसान। आपको बता दें कि इस नए दवा से डायबिटीज के खिलाफ जंग बेहद आसान हो गई है। अब मरीजों को साल भर में 365 की जगह सिर्फ 52 इंजेक्शन लगवाने होंगे जिससे इलाज आसान हो जाएगा। ऐसे समय में जब भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इस लॉन्च को इलाज के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है।
16: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में अवेकली को लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया की पहली ऐसी बेसल इंसुलिन है जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा, यानी अब रोजाना इंजेक्शन लगाने के बजाय साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन ही डायबिटीज से लड़ने के लिए काफी होंगे।
17: देखिए, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसको तो टाइप 2 डायबिटीज है और मोस्टली वो लाइफस्टाइल से होती है या आपके जो जीन्स है उसकी वजह से होती है और या जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि वो लोग जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार टीका लगाना हर रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो ये इंसुलिन का जो टीका है सप्ताह में सिर्फ एक बार लगाना है, यानी 365 दिन की जगह आपको सिर्फ 52 वीक्स, दैट मीन्स 52 टाइम्स, 52 बार ये टीका लगाना है। ये बहुत कम जो है पेन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है।
16: कंपनी का दावा है कि भारत में कई मरीज रोज इंजेक्शन लगाने के डर की वजह से इंसुलिन शुरू करने में 7 से 9 साल तक की देरी कर देते हैं, लेकिन ये वीकली इंसुलिन इस डर को कम करने और इलाज को आसान बनाने में मदद करेगी। ये दवा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए लॉन्च की गई है। भारत में अवीकली का 700 यूनिट का पैक 2611 रुपए में मिलेगा, यानी प्रति यूनिट कीमत करीब 3.73 रुपए होगी, जो कंपनी के मुताबिक मौजूदा डेली बेसल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40% तक सस्ती है। अगर किसी मरीज को रोज 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है तो उसे सप्ताह में 70 यूनिट अवीकली लेनी होगी, जिसकी लागत करीब 261 रुपए प्रति सप्ताह होगी।
17: ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया की प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, विच इज फार मोर चीपर इकोनॉमिकल, जो कि आज के मॉडर्न इंसुलिन है। 3.73 रुपीस, यानी 3.73 रुपया पर यूनिट ये इसकी कॉस्ट रहेगी, 2611 रुपए एक पेन का, जिसमें 700 यूनिट होंगे। तो ये बहुत ही उम्दा दवाई है और सस्ती दवाई है, बट डॉक्टर इज द राइट पर्सन टू प्रिस्क्राइब और डॉक्टर व्हेन दे वांट टू इनिशिएट, दैट इज वेयर यू शुड यूज देयर एडवाइस।
16: ये इंसुलिन मरीज को फ्लेक्स टच पेन के जरिए दी जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल में इसने रोजाना लगने वाले इंसुलिन के बराबर या उससे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करके दिखाया है। कंपनी का कहना है कि अवीकली को इसी साल शुरुआत में अमेरिका से मंजूरी मिल चुकी है और इसे यूरोपीय संघ और तमाम दूसरे देशों में भी हरी झंडी मिल चुकी है। भारत सातवां देश है जहां इस दवा को लॉन्च किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
19: Tune in is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
20: continue to face political pressure to reach a peace deal,
19: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
22: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया। ऑकलैंड का स्काई टावर एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी की अगवानी। बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। 27 घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में प्रवेश किया। यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो लोहागढ़ किले का है, जहां केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने जा रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड में आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम पहले रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजी जाती थी, फिर वही पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए वापस अपने खातों में मंगवा लिया जाता था, ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस की जांच सीधे चोरी की रकम और जेवर की बरामदगी तक पहुंच गई है। अब इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा भी जा सकता है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: दान और चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी का पर्दाफाश किया है। मंदिर में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मिले 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग रूम के कर्मचारियों के नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपाकर कुल 70 बार चोरी करने की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रतिनिधि डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते बिना लिखित प्राधिकार के रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पकड़े गए मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सबके बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मंदिर में चढ़ाया गया दान भाजपाई अपनी बपौती समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल कर रहा है और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा लेन देन का खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने महिला दोस्त को 2 लाख रुपए नगद और महंगा फोन गिफ्ट किया था, जो जांच के दायरे में है। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने हर जगह से खंगाला, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस को एक आरोपी की कार से भारी मात्रा में नकदी मिली हो। क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और हर जगह पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि कार से भारी मात्रा में नकदी बरामदगी का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये कई न्यूज वेबसाइट्स की सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया हुआ मिला, जिनमें से छत्तीसगढ़ के रायपुर का बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान एक सरकारी अधिकारी की इनोवा कार से 1,66,00,000 की भारी नकदी बरामद की गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें कार के भीतर विशेष रूप से बनाए गए एक गुप्त कैबिन से नोटों की गड्डियां निकालते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कई और रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में भी इस वीडियो को छत्तीसगढ़ की घटना बताया गया है। सर्च के दौरान हमें यह वीडियो एक रीजनल न्यूज चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 26 नवंबर 2025 को साझा किया हुआ मिला। 14 अगस्त 2025 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खैरागढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक एसयूवी से कुल 4,04,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए। वाहन के मालिक से इस कैश से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस जानकारी को वो पुलिस को नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर उसी कार की है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है, और कार में बने गुप्त चैम्बर को भी देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का दावा भ्रामक है। कार से नकदी के बरामद होने का वीडियो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से संबंधित है, जिसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुई नकदी के दावे से जोड़कर अब शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे का केतन हत्याकांड मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक किले के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लोहगढ़ किले का है, जहां पर केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था, उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: लोहागढ़ किले में 18 जून को व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के इशारे पर उनके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को खाई में धकेल दिया था। इस हत्या के बाद कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इन सबके बीच भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि लोग केतन अग्रवाल की हत्या वाली जगह सिया पॉइंट को देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हत्या से जुड़े कथित स्थान को लोग अब सिया पॉइंट के नाम से पहचान रहे हैं और बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंच रहे हैं। वहां पर्यटकों की संख्या में 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि लोहागढ़ किला, जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासत और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग उत्सुकतावश इस जगह पर पहुंच रहे हैं और इस कथित क्राइम स्पॉट को अनौपचारिक रूप से लिया जा रहा है, जिसके कारण यहां भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश ये लोग यहां पर फंस गए हैं। वीडियो लोहागढ़ किले का ही है। इसके बाद हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और पुणे के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर यह हाल फिलहाल का होता तो फिर इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में हाल फिलहाल में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।

इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें जुलाई 2023 का एक सोशल मीडिया पोस्ट मिला। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के मराठी कैप्शन में बताया गया था कि लोहागढ़ में भीड़ के कारण पर्यटक 4 घंटे तक फंसे रहे थे। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 4 जुलाई 2023 को छपी इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही वीकेंड पर लोहागढ़ किले में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची। भारी भीड़ के कारण लोग करीब 4 घंटे तक किले पर फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सर्च के दौरान ही 3 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लोनावला इलाके में लोहागढ़ पर पर्यटकों की भारी भीड़ फंस गई। ये घटना बारिश के दिन हुई जब सैकड़ों लोग किले पर उमड़ पड़े, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। एक वीडियो में ये चिंताजनक नज़ारा कैद हुआ, जिसमें लोगों के चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं दिखी थी। अच्छी बात तो ये रही कि इस घटना के दौरान भगदड़ नहीं मची। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो 3 साल पुराना है और केतन हत्याकांड के बाद की भीड़ से नहीं जुड़ा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है,

0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा बीच सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में है और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। बच्चा आइसक्रीम का स्वाद लेने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतना तेज हॉर्न बजाया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब लुभा रहा है। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। दफ्तर में रोज की तरह सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी वहां मौजूद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई। फिर क्या था, खराबी आते ही रोबोट के भीतर का कराटे किट जाग गया। उसने तेजी से अपने हाथ पैर हवा में लहराने शुरू कर दिए और पास खड़े कर्मचारियों पर झपटने लगा। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि रोबोट की इस अचानक फाइट मोड वाली हरकत में वहां मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने किसी तरह रोबोट को काबू में किया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर बहस भी छिड़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के एडवांस रोबोट को आम लोगों के बीच तैनात करने से पहले उनकी कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसके ट्रेनर भी हैरान रह गए। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ शानदार डांस ही नहीं बल्कि रिश्तों की खूबसूरती भी बयां कर देते हैं। इन दोनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ और बेटी हरियाणवी गाने पर साथ में डांस करती नजर आ रही है। दोनों की शानदार बॉन्डिंग और चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ डांस नहीं कर रही बल्कि इस पल को खुलकर जी भी रही हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: बाबा बैद्यनाथ के दर श्रावणी मेले की तैयारी के रंग, सावन में कैसे पाएं भोलेनाथ की विशेष कृपा, चलो कैलाश जहां है भगवान शिव का वास, डायबिटीज में इंसुलिन के डर से आजादी। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
7: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज बाबा बैद्यनाथ के दर पर श्रावणी मेले की तैयारी कैसी है वो आपको दिखाएंगे, कैलाश यात्रा पर कैसा है भक्तों का उत्साह वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ अब डायबिटीज के मरीजों को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक बार जरूरत होगी इंसुलिन की। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर, एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर रक्सन ने की अगवानी। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। 27 घंटे बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। बद्रीनाथ धाम मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लामबगड़ नाला पर पार करना होगा आसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मॉनसून सक्रिय। शिमला, सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा के लिए भव्य और अनुपम तैयारी। फूलों, झालरों और आकर्षक रंगोली से सजाया यात्रा मार्ग। 16 जुलाई को निकलेगी यात्रा। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात श्रावणी मेले की, जिसकी तैयारियां यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में जोर शोर से चल रही हैं। भगवान भोलेनाथ के तमाम प्राचीन मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर न सिर्फ श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन और जलाभिषेक के लिए तैयारी की जा रही है, बल्कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू हो चुकी है।

0: 20 जुलाई से शुरू हो रहा है भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना सावन, जिसके लिए देश के तमाम प्राचीन शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर तैयारी शुरू कर दी गई है और शुरू कर दी गई है सावन के महीने में लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारी। हरिद्वार से लेकर देवघर तक भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। कहीं कांवड़ियों के ठहरने की तैयारी चल रही है और कहीं शिवलिंग के जलाभिषेक और धार्मिक आयोजनों को लेकर मंथन चल रहा है। ये तस्वीर बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर से आई है, जहां जिले के आला अफसरों ने श्रावणी मेले से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सावन के महीने में बैद्यनाथ धाम में उमड़ने वाली शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही ATS रैपिड एक्शन फोर्स और डॉग स्क्वाड की तैनाती भी की जाएगी।
1: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज्यादा डिप्यूटेशन होती है बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है, साथ ही स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं RAF, RAP, उसके बाद BDDS की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, ATS की टीम आ रही है। तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थाई पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी आज निरीक्षण किया जा रहा है।
0: हर साल देवघर के श्रावणी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनकी संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में देवघर आने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, बिजली, पंखा, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर सके, इसके लिए VIP पूजा बंद रहेगी और सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार से ही दर्शन करना होगा। इसके अलावा देवघर शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई स्थानों पर नो एंट्री और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के सुलभ और सुरक्षित दर्शन कर पाए।
2: हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ जाते हैं, सबके बेड़ा पार करते हैं, प्रशासन के द्वारा भी और हम लोग पुरोहित समाज के द्वारा भी व्यवस्था तो अच्छे से हो रहा है और आगे सब बाबा बैद्यनाथ शुभ करके सावन मास सब चंद्रमादा दूर करके सब जो है सावन मास जो व्यवस्था है वो पूर्ण करेंगे।
3: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में संबंध स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पर आज बहुत ही वृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स वापस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
0: झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के रोहतास जिले में भी प्रशासन ने श्रावणी मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियों पर गुप्तेश्वर महादेव की एक पवित्र प्राकृतिक गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी, जहां हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं, जिनके लिए गुफा के अंदर ऑक्सीजन, मैट और लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: जो वहाँ से बैरिकेडिंग है, पहले बांस और बल्लों से किया जाता था, उसको हटाकर हम लोग पर लोहे की बैरिकेडिंग सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो कीड़ है उसको सही तरीके से गाइड करके पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त गुफा के अंदर लोगों को किसी भी तरह का जल के अलावा किसी भी तरह की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी से वो जो चीजें हैं वो अंदर सफोकेशन क्रिएट करती है। तो लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए सब चीजों का अनुपालन कराया जाएगा। इसलिए साल के अनुभव से और उसके बाद महाशिवरात्रि में जो हम लोगों ने काफी बेहतर तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से लोगों को दर्शन कराया था, उसी अनुभव से सीखते हुए हम लोग इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी लोग पंक्तिबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन करें।
0: इधर देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 30 जुलाई से शुरू हो रहे कावड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। यहाँ श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालविया घाट पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की। साथ ही श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने एक 14 नियमों वाला पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें कावड़ियों को कावड़ उठाने के नियम बताए गए हैं।

0: धार्मिक मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दौरान विधि विधान से की गई शिव उपासना से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि सावन शुरू होते ही देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसको लेकर शहर शहर ये तैयारी चल रही है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, रोहतास से रंजन कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में एक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस समय चल रही है और ये पवित्र यात्रा नाथुला और लिपुलेख मार्ग से होती है। ऐसे में आज सुबह तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने लिपुलेख दर्रे को पार किया, जबकि नाथुला के रास्ते पहला जत्था जून के महीने में रवाना किया गया। इस साल इस यात्रा पर करीब 1000 श्रद्धालुओं को जाना है। जिनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसी चल रही है उसी पर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
0: जो है देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव का निवास स्थान, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। हर हर महादेव के जयकारों का ये उद्घोष इस कठिन यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की खुशी को बयां कर रहा है। हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन का सपना हर शिव भक्त देखता है, मगर कुछ ही हैं जिन्का ये सपना साकार हो पाता है। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में ये श्रद्धालु भी शामिल है जो कैलाश पर्वत के दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं।
2: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है। और मेरे साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रही भारतीय टीम के एक लीडर भी है, एलओबी हैं। शर्मा जी, कैसी रही आपकी यात्रा?
3: मेरा नाम संजीव शर्मा है और हमने 27 जून को शुरू की थी यात्रा दिल्ली से, और आज हम कैलाश मानसरोवर की भी परिक्रमा करके उसमें स्नान करके अपनी यात्रा कम्प्लीट कर रहे हैं। हमने कैलाश उसकी भी परिक्रमा कल पूरी की, 3 दिन की, और काफी कठिन थी, लेकिन हमारी पूरी टीम फिट है और पूरे जोश से भरी हुई है।
2: पहली बार जब कैलाश पर्वत के दर्शन होते, बचपन से पढ़ा था, कभी स्कंद पुराण में, कभी मत्स्य पुराण में, कभी कैलाश खंड की कुछ, लेकिन जब देखा तो क्या था?
4: जब देखा तो लगा कि जो हम पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं है, साक्षात महादेव खड़े थे अपने परिवार के साथ, माँ पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकी के साथ। वो जो पूरा परिवार दिखा, बस उसको देखने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, बस यही अनुभूति आई कि प्रभु मुझे यहीं रख लो अपने परिवार के साथ। ये था मेरा अनुभव।
2: बहुत ही अनुपम ये अनुभव रहता है, लेकिन आपका अनुभव क्या था?
5: सर मेरा अनुभव तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया था देख के, ठीक है, क्योंकि जब हम चढ़ रहे थे, दूसरा दिन खासकर हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो जब आप उस पहुंच जाते उस लक्ष्य तक, और फिर आप जब आपको मिल जाता, तब जो आप की जो खुशी और जो आप वो होते कि ज़्यादा आपने पा लिए सब कुछ, तो मेरे लिए वो था इतनी मेहनत और इतनी मुश्किल के बाद वहाँ तक पहुँचना। सर क्या कहें, आंसू भी आ रहे होते क्योंकि आप वो होते हो कि इतनी मुश्किल से आप पहुंचे और खुश भी होते अंदर से, तो वो दोनों चीज थी मेरे अंदर।
0: कैलाश मानसरोवर की ये कठिन यात्रा सिक्किम के नाथुला मार्ग और देवभूमि उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से होती है। इस साल करीब 1000 तीर्थ यात्री 10-10 के बैच में दोनों मार्गों से यात्रा कर रहे हैं। पिछले महीने नाथुला के रास्ते श्रद्धालुओं का पहला जत्था भेजा गया था, जबकि आज 52 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था लिपुलेख दर्रे को पार कर गया, जो जल्द ही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करेगा।
2: इस समय हम लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर हैं। हम तिब्बत में हैं, पवित्र कैलाश और मानसरोवर की यात्रा पर। हम न केवल अपने दर्शकों को आदि शिव के वास के दर्शन करा रहे हैं, बल्कि हम उन श्रद्धालुओं से बात भी कर रहे हैं जो अनंत कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि भारत और चीन दोनों ही देशों की सरकारों का प्रयास है कि यह रास्ता जितना सुगम हो सके उतना हो जाए। नए रास्ते खोले भी गए हैं और खोले भी जा रहे हैं, विचार भी हो रहा है। कई रास्ते हैं, एक रास्ता आता है लिपु लेक के जरिए तिब्बत में, दूसरा रास्ता आता है नाथुला के जरिए सिक्किम होता हुए, और वो एक पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य का रास्ता भारत और तिब्बत के बीच रहा भी है।
0: दोनों ही मार्गों से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यमद्वार एक अहम पड़ाव होता है, जिसे पार करने के बाद ही कैलाश पर्वत के करीब 50 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू होती है, जो है तो बहुत चुनौतीपूर्ण, लेकिन भोलेनाथ पर अटूट विश्वास की बदौलत श्रद्धालु इस यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ पूरा करते हैं।
2: इस समय हम लोग यमद्वार के सामने खड़े हैं। मान्यता ये है कि जब आप कैलाश की यात्रा पर जाते हैं, पवित्र कैलाश पर्वत की यात्रा पर, तो आप यमद्वार को पार करते हैं, और इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि आप अपने भौतिक सुखों को, इस पृथ्वी पर जो कुछ है, आपके संबंधों को त्याग कर, लोभ मोह काम क्रोध अज्ञान, उस सब को त्याग कर आप उस पार शिव की दुनिया में जाते हैं। और एक अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है यमद्वार और वो है पवित्र कैलाश पर्वत, और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं साक्षात शिव का वो वास, उसका दक्षिणी छोर आप इन तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं।
0: हालांकि जो तीर्थयात्री किसी कारण पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वो घोड़े और खच्चर का भी सहारा लेते हैं। गुड न्यूज़ टुडे की टीम भी जब यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा घोड़े से करते दिखाई दिए।
2: यमद्वार को पार करके अब हम कैलाश यात्रा पर निकल पड़े हैं और उत्साह इतना ज्यादा है, आप देखिए उम्र का कोई रोक नहीं है। हमारे सामने देखिए और श्रद्धालु भी हैं, वो इस यात्रा के लिए जा रहे हैं, और जो लोग पैदल नहीं चल पाते वो खच्चरों पर, घोड़ों पर इस यात्रा पर आगे निकलते हैं। जैसे ये जो यात्रा हो रही है आप देख रहे हैं, हर हर महादेव, आप इस यात्रा में देख रहे हैं लोग घोड़ों पर खच्चरों पर जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ गाड़ियों की आवाजाही के लिए सुचारू रूप से प्रबंध किए गए हैं। गाड़ियाँ पक्की सड़कें काफ़ी हद तक बना दी गई हैं, यानी शहर तक पक्की गाड़ी आती है, और फिर उसके बाद जो एक कच्चा ट्रैक बनाया गया है वो भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए है। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी बनाई गई हैं।
0: यह यात्रा हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस यात्रा पर आते हैं और यहां रहकर कठिन साधना करते हैं।
2: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है, जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये 5वें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था, जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, और हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहाँ पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति, उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है, और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर, ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और मोक्ष की दिशा में एक गहन यात्रा है, जिससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन में एक बार इस यात्रा को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात उस खबर की जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी की तरह है। अब रोज नहीं बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार इंसुलिन लगाने की जरूरत होगी। दरअसल डेनमार्क की एक दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में अविकली नाम की अवीकली नाम की इंसुलिन लॉन्च की है, जिसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि 18 साल से ऊपर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मरीजों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ये दवा लेने की जरूरत है। यानी कि इसके आने से साल में लगने वाले इंसुलिन इंजेक्शन की संख्या घटकर 52 ही रह जाएगी। यानी डायबिटीज की समस्या होने पर इंसुलिन के डर से आजादी मिल जाएगी। दरअसल रोज इंजेक्शन लगाने के डर की वजह से मरीज वर्षों तक इंसुलिन लेने में देरी करते हैं, जिसकी वजह से खून शुगर लेवल असंतुलित रहता है, जिससे शरीर के अहम अंगों को नुकसान पहुंचता है।

0: अब बार बार इंसुलिन शॉट्स यानी इंजेक्शन लेने या देने का झंझट खत्म होने वाला है। खराब लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बीमारी डायबिटीज के देश में करोड़ों मरीज हैं, लेकिन शॉट्स यानी इंजेक्शन के डर से डायबिटीज से पीड़ित मरीज इंसुलिन लेने से परहेज करता है। तला भुना खाना पीना, फिजिकली कम एक्टिव रहना, देर रात सोना और सुबह देर से उठना जैसी लापरवाह जीवन शैली एकदम स्वस्थ या अच्छे भले इंसान को भी डायबिटीज की तरफ धकेल देती है। शरीर में मौजूद अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसका काम भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज यानी शुगर को शरीर की सेल्स तक पहुंचाना होता है। इसी से शरीर को ऊर्जा मिलती है और खून में शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। लेकिन डायबिटीज की वजह से जब ऐसा नहीं हो पाता तो बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन पेन या सिरिंज के जरिए पेट या बांह की त्वचा पर लगाई जाती है, लेकिन कई मरीजों को इससे डर लगता है।
1: मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसको तो टाइप 2 डायबिटीज है, और मोस्टली वो लाइफस्टाइल से होती है या आपके जो जीन्स है उसकी वजह से होती है और या जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि वो लोग जो है इंसुलिन का टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार टीका लगाना हर रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है।
0: डेनमार्क की नोवो नॉर्डिस्क नाम की एक दवा कंपनी डायबिटीज के ऐसे मरीजों के लिए राहत लेकर आई है। विदेशी कंपनी की तरफ से भारत में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए इंसुलिन इंजेक्शन अ वीकली लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाने की जरूरत पड़ती है।
1: इंसुलिन का जो टीका है सप्ताह में सिर्फ एक बार लगाना है, यानी 365 दिन की जगह आपको सिर्फ 52 वीक्स, दैट मींस 52 टाइम्स, 52 बार ये टीका लगाना है। ये बहुत कम जो है पेन ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन रिड्यूस कर देता है, एंड आई थिंक उससे जो है इंसुलिन जल्दी से जल्दी शुरू हो सकता है।
0: अगर खून में लंबे समय तक शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो डायबिटीज की वजह से शरीर के अहम अंग को नुकसान पहुंचता है। मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं ब्लॉक होने या फटने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के असर से मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, इससे याददाश्त कमजोर हो जाती है और नई चीजें सीखने की क्षमता कम हो जाती है। अनियंत्रित डायबिटीज डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग की वजह भी मानी गई है। डायबिटीज के मरीजों में हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा दोगुना हो जाता है। खून में हाई शुगर लेवल आंखों के पीछे मौजूद रेटिना की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर देता है। वहीं सामान्य लोगों की तुलना में डायबिटीज रोगियों में मोतियाबिंद जल्दी विकसित होता है। समय पर इलाज न होने से देखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो सकती है। किडनी फेलियर का खतरा बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से गर्दन, बगल या जोड़ों की त्वचा काली और भूरी होने लगती है। वहीं डायबिटीज के असर की वजह से पाचन भी कमजोर हो जाता है और शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ने और स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण वजन तेजी से बढ़ता है।
1: बात ये नहीं है कि इंसुलिन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। हमें ये भी पता है कि इंसुलिन का जो एडवांटेज है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए ग्लूकोज कंट्रोल के लिए, क्योंकि उस कंट्रोल से जो आपके शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं या दिल की बीमारी है, आपकी किडनी की बीमारी है, आपका गैंग्रीन जो पैर में हो सकता है, आपकी आइज की जो बीमारी है, वो सब जो है डिले हो जाती है और या प्रिवेंट हो जाती है। तो दिस शुड हेल्प अर्ली इंसुलिन इनिशिएशन, जल्द से जल्द इंसुलिन दिया जा सकता है।
0: सही समय पर इंसुलिन लेने से किडनी और आंखों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। जब खून में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है तो थोड़े समय के लिए इंसुलिन दिया जाता है और बाद में शुगर लेवल कंट्रोल होने पर वापस सामान्य दवाइयों पर जाने का विकल्प भी खुला रहता है। हालांकि अभी तक डायबिटीज की दवाओं की तुलना में इंसुलिन लेना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन डेनमार्क की दवा कंपनी की अवीकली इंसुलिन के सस्ते होने का भी दावा किया जा रहा है।
1: ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया की प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, विच इज फार मोर चीपर इकोनॉमिकल, जो कि आज के मॉडर्न इंसुलिन है। 3.73 रुपीस, यानी 3.73 रुपया पर यूनिट, ये इसकी कॉस्ट रहेगी। 2611 रुपए एक पेन का, जिसमें 700 यूनिट होंगे।
0: भारत में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। वहीं 9 लाख से अधिक लोग टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित हैं। उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें हर रोज इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। सभी तरह की डायबिटीज में 90% से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज के मामले शामिल हैं, यानी गलत लाइफस्टाइल की वजह से मरीजों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है या रह रहकर अधिक हो जाता है। इनमें से कुछ लोगों को इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। हालांकि ऐसे लोग सेहतमंद जीवन शैली अपनाकर और आहार और साथ ही वेट मैनेजमेंट का ध्यान रखकर डायबिटीज नाम की बला से छुटकारा पा सकते हैं। तब तक इंसुलिन का सुरक्षा कवच मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत सुंधवा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
5: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है,
धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ी

व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Today, or, you know, the big three of
1: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है
3: के साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने की शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाएं झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाएं साथ। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $726 करोड़ का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर, एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की अगवानी। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान, उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बारिश के बीच श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी है।
1: मानसून के सीजन में भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बना हुआ है। पहाड़ों पर बादलों ने डेरा डाल रखा है, रुक रुक कर बारिश भी होती है। इन सब के बीच पवित्र धामों की यात्रा भी चल रही है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। मानसून को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है। भूस्खलन संभावित और संवेदनशील स्थानों पर बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने पर उन्हें आगे भेजा जा रहा है। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। बारिश के इस मौसम में भी हर दिन 3000 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक रहे हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को वीआईपी दर्शन की प्रशासन ने जो खास सुविधा देने की पेशकश की है उसका साफ असर यहां पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग धाम में प्रशासन की ओर से जो पेशकश दी गई उससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की एक बड़ी कमी का समाधान भी निकल आया। यह प्रशासन की ओर से एक यूनिट रक्तदान के बदले पूरे परिवार को वीआईपी दर्शन की पेशकश की गई। ये व्यवस्था श्रद्धालुओं को खूब पसंद आई और रक्तदान करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। इससे न सिर्फ खंडवा जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में खून की कमी दूर हुई बल्कि अब यहां से आसपास के जिलों में भी खून की पूर्ति हो रही है। 24 फरवरी से शुरू की गई इस व्यवस्था से जहां खून की कमी दूर हो गई, वहीं रक्तदान करने वालों को परिवार समेत लंबी कतारों में लगे बिना वीआईपी दर्शन की सुविधा मिल रही है। रांची की हिंदी लेखिका डॉक्टर मेघा रानी ने अपनी लेखनी से झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने महज 120 मिनट में 120 मौलिक हस्तलिखित पन्ने लिखकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि को 2 जुलाई को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक मान्यता दी। खास बात यह है कि इन 120 पन्नों में उन्होंने झारखंड के इतिहास, संस्कृति और विरासत को शब्दों में उकेरा है। अब यही पांडुलिपि अपन झारखंड नाम की पुस्तक के रूप में जल्द प्रकाशित होगी। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मान्यता मिलने के बाद अब इस रिकॉर्ड को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी भेजा जा रहा है। मेधा रानी की पुस्तक श्री कृष्ण लीला को पहले ही इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिल चुका है। इसके अलावा
0: राष्ट्रीय जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ सज धज कर लगभग तैयार हो चुके हैं और अब डेकोरेशन का काम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को भी अब बस उस पल का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा इन रथों पर बैठकर उनके बीच आएंगे और भक्त उनके दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करेंगे। पुरी में 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा अहमदाबाद, अकोला और रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी की जा रही है।

0: भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में रथ यात्रा को लेकर महा उत्सव का माहौल है। भगवान की नगरी में उनकी आराधना की गूंज सुनाई दे रही है। अनाथस्य जगन्नाथ नाथ सत्वम मेन संशय, यस्य नाथो जगन्नाथ सत्स्य दुखम कथम प्रभो। यानी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, जगन्नाथ भगवान उनके स्वामी हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और जिनके स्वामी जगन्नाथ हैं, भला उनको जीवन में क्या दुख हो सकता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को भव्य तरीके से सजाया सवारा जा रहा है। यानी पुरी में हर तरफ भगवान जगन्नाथ के महापर्व रथ यात्रा की रौनक देखते ही बन रही है। रथ बनाने वाले कारीगर रथ की साज सज्जा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यानी रथ की सजावट का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है।
1: अभी हमारा रथ को जो सजाने का काम चल रहा है, अभी जैसे कि रथ के ऊपर जो हंस है, हंस पटा, और जो कन्या सखियों है, सखियों का पटा, और ये जो रथ के पार्श्वदेव देव है, सभी रथ में नौ पार्श्वदेव, ये बलभद्र जी के देवता है नौ पार्श्वदेवता, माँ के देवी है नौ देवी, और जगन्नाथ जी के नौ देवता है। तो ऐसे करके सारे रथ में अभी लग रहे हैं। और इसके बाद हमारा काम मेनली काम है रथ के ऊपर जो है, जो कलश बोलते हैं हम इसको हमारे भाषा में, जहाँ के ऊपर की रथ का जो ध्वजा वो उड़ेगा, तो उसका काम बाकी है, उसको हम रथ के ऊपर उठाएंगे। फिर ये रथ का काम तो अभी प्राय तो शेष पर्याय पे, और जो रथ का सिंहासन का कार्य है वो अभी खत्म हो चुका है, तो वैसे बाकी का काम अभी धीरे धीरे चलेगा।
0: रथों के श्रृंगार के साथ साथ अब रथ यात्रा के मार्ग की सजावट भी शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ जिस मार्ग से गुजरता है, उस मुख्य मार्ग को बड़ा डंडा कहा जाता है। रास्ते में सभी रथ मौसी माँ मंदिर के सामने रुकते हैं, जहां देवताओं को पोडा पीठा का भोग लगाया जाता है। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो दक्षिण में स्थित सिंह द्वार से उत्तर में स्थित गुंडचा मंदिर तक जाता है। पुरी में रथ यात्रा के निर्माण की शुरुआत से ही भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा था। तीनों रथ लगभग तैयार हो चुके हैं और रथ के शिखर की सजावट पूरी होने वाली है। रथ निर्माण में लगे कारीगर पूरे विधि विधान के साथ निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने में जुटे हुए हैं। बड़ी बारीकी से रथों पर रंग भरे जा रहे हैं।
2: अभी रथ को डेकोरेटिव काम चल रहा है, जो कलर मिस्त्री लोग हैं, चित्रकार लोग हैं, उन्हें वो लोग रथ का पहिया वगैरह और जो होते हैं गुज और रथ का जो दंडा, ये सब वगैरह चित्र कर रहे हैं। अभी जो मेन आकर्षण है रथ का प्रभाव, वो भी प्रस्तुत होकर रहा है, प्रस्तुत वो भी खत्म हो गया है, उस लगाना बाकी है। सिर्फ आज कलश ऊपर कलश लगाया जाएगा, चारों तरफ का जो पार्श्व देव देवा देवी है उन्हें भी लगाया जाएगा, शिखर डम्बरू वो भी लगाएंगे। ये सब लगाने के बाद रथ का आखिरी काम होगा, जब रथ तीनों आज्ञा माल पाके नवयौवन दर्शन के दिन सिंह द्वार पे जाके पहुंचेंगे, उसी दिन हमारे जो जितने भी महाराणा विश्वकर्मा सेवायत लोग हैं, वो रथ का जो महापुरुष जी का आसन है, जो चका आसन जो बोलते हैं, वो वहाँ पे हम लगाएंगे, और आखिरी और पहला और आखिरी हरि बोल देंगे। तो इस साल का काम खत्म होने के बाद ही हरि बोल देंगे, और हम उसे प्रार्थना करेंगे कि हर कारीगर का शरीर ठीक रखें, सुस्त रखें, कि अगले साल वो भी फिर से आकर आपकी सेवा में नियुक्त हो सके।
0: ये रथ सिर्फ भगवान की सवारी ही नहीं, बल्कि इन रथों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों की अनंत आस्था भी जुड़ी है। भगवान के भक्त पूरे साल इन रथों के दर्शन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही नहीं, जो कलाकार इस यात्रा की तैयारी में शामिल है, वो भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं।
3: देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब ये सब बात बोलने के लिए कि भगवान जी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, सौभाग्य हमको मिला है, और भगवान जी यहाँ पर जाएंगे, चल चल के झूल झूल के जाएंगे, वो नजारा देखने के लिए कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर नजारा होगा।
0: पुरी में रथ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन भी जुटा हुआ है। रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि पुरी आने वाला हर भक्त पूरी सहूलियत के साथ रथ यात्रा में शामिल हो सके। पुरी ही नहीं देश के दूसरे बड़े शहरों में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है जहां भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है।
4: देश में पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 16 जुलाई को रथ यात्रा निकलनी है और अहमदाबाद के इस जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा की बात करें तो ये 149वीं रथ यात्रा होगी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग रथ जिसपे कलर काम हर साल रथ यात्रा के पहले किया जाता है जो कि कामकाज पूरा कर लिया गया है। और फिलहाल रथ की बात करें तो रथ तैयार है, इंतजार हो रहा है 16 जुलाई का जब भगवान अपने बहन और भाई के साथ इसी रथों में विराजमान होंगे और अहमदाबाद शहर की सड़कों पर खुद लोगों के बीच आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे।
0: रथ यात्रा शुरू होने से कई दिनों पहले से ही भगवान के पूजन अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है। इस महा आयोजन में सदियों से चली आ रही रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा को आज भी जीवंत रखा गया है।
5: जैसे कि भगवान का जैसे ऐसे माना जाता है कि भगवान मामा के घर गए हैं, ऐसे भावना के साथ अमावस्या के दिन नेत्रोत्सव विधि मनाया जाता है। उस नेत्रोत्सव विधि में भगवान को आंख पर जो पट्टी रहती है और यात्रा के दिन वो सुबह खोला जाता है और बाद में पूरा साल उनको ये प्रसादी में मंदिर के तरफ से दिया जाता है।
0: ऐतिहासिक और प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्र बहुत ही भव्यता और पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाते हैं।
6: जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का जो हम मुहूर्त करते हैं वो 31 के दिन मुहूर्त करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह से हम कपड़ का सैंपल मंगाते हैं तो बनारस है, वृंदावन है, सूरत से कपड़ का सैंपल मंगवाते हैं और महाराज से जो प्रेरणा करते हैं, भगवान जो प्रेरणा करते हैं वैसा हम श्रृंगार करते हैं। तो इस बार क्या है मेन कि बॉर्डर पट्टी है जो मल्टी कलर की बॉर्डर है और मिरर वर्क है। मिरर वर्क में क्या है इस बार नया ट्रेंड है कि ये नया जमाना के हिसाब से वेलवेट के कसब दोरी है और आबला वर्क बोलते हैं गुजराती में तो वो मिरर वर्क भी हमने किया है पहली बार। वो भगवान मामा के घर से आएंगे तो भी मिरर वर्क के वस्त्र का श्रृंगार होगा।
0: महाराष्ट्र का अकोला भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति के रंग में सराबोर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए भव्य रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 5 टन वजन वाले और 31 फीट ऊंचे इस रथ को तैयार करने में लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत लगी है। 19 जुलाई को स्कॉन की ओर से अकोला में इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
7: ये रथ की खासियत ये है कि लगभग में इसकी लंबाई 20 फुट चौड़ाई 12 फुट के आसपास में है और इसका घुम्मट जो है ऊपर का वो पूरा एडजस्टेबल है 11 फुट ऊपर नीचे होने वाला, मतलब कोई बिजली का तार न टकराए या किसी से कोई झाड़ पेड़ न टकराए उस हिसाब से। सामने के चक्कों में 6 फुट हाइट के इसके चक्के हैं लगभग में।
0: उधर झारखंड की राजधानी रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। कुशल कारीगर पारंपरिक शैली में विशाल रथ को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
8: भक्त जन हजारों के संख्या में इस रथ को रस्सी के को खींचते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं तो पूरा ये क्षेत्र जो है मेले में तब्दील हो जाता है और आप देखिए यहाँ पे बारीकी से काम हो रही है।
0: भगवान जगन्नाथ के भक्तों को अब उस पल का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच पधारेंगे और भगवान के रथ को खींचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करेगा। पुरी से अजय नाथ, रांची से सत्यजीत कुमार और अकोला से धनंजय साबले के साथ अहमदाबाद से अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हुआ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: कैलाश मानसरोवर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग 27 घंटे बाद वाहनों के लिए खुल गया है। यात्रा के पहले दल ने लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में प्रवेश कर लिया है। मानसरोवर यात्रा में 48 यात्रियों समेत कुल 52 लोग शामिल हैं। मालपा से लमारी के बीच 9 जुलाई को करीब 9:30 बजे विशाल चट्टान के दरकने से रास्ता बंद हो गया था। बीआरओ के प्रयासों के चलते आज दोपहर मार्ग खोल दिया गया। हालांकि अभी रास्ता केवल छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। पूरी आस्था के साथ आज 8वें दिन भी अमरनाथ यात्रा जारी है। श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के बेहतरीन रखरखाव के लिए बीआरओ की खूब तारीफ की। मुश्किल रास्तों और अनिश्चित मौसम के बावजूद ट्रैकिंग ट्रैक साफ, सुरक्षित और अच्छे हालत में है। बीआरओ के काम से यहां आ रहे हजारों यात्री संतुष्ट दिखे। वहीं अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए भी एलजी मनोज सिन्हा ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की और यात्रा की तमाम तैयारियों की उन्होंने जानकारी भी ली। आम लोगों के लिए एक अहम खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एंड मेडिसिन संबंधित नियम बदले हैं। नए नियम के अनुसार जनवरी 2027 से बगैर डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिलेगी। जिन ओरल दवाओं में 12% से ज्यादा इथाइल अल्कोहल हो और बॉटल का आकार 30 मिलीलीटर से अधिक हो, उन्हें अब ओवर द काउंटर नहीं बेचा जा सकेगा। इन दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। दिल्ली में बस यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसेस में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके तहत 1 अगस्त से मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना जरूरी होगा। यानी 31 जुलाई के बाद बगैर पिंक कार्ड के महिलाएं बस में सफर नहीं कर पाएंगी। अगर ये कार्ड नहीं बना होगा तो उन्हें सामान्य टिकट खरीद कर सफर करना होगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। इसका मकसद महिलाओं के मुफ्त सफर को ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। रेलवे जल्द ही IRCTC पोर्टल का नया वर्जन लाने की तैयारी में है। IRCTC पोर्टल में 4 बड़े सुधार किए गए हैं, साथ ही इसे पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। IRCTC और CRIS के अधिकारियों ने जयपुर में MNIT के छात्रों को वेबसाइट का बीटा वर्जन दिखाया है और उनसे फीडबैक भी मांगा है। कुछ समय पहले जयपुर के छात्रों ने रेल मंत्री को IRCTC वेबसाइट में कुछ कमियां गिनाई थी। तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेबसाइट को 15 जुलाई तक बेहतर बनाने का वादा किया था और अब जल्द ही नया वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा।
10: और अब बात श्रावणी मेले की। एक तरफ रथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है तो दूसरी तरफ सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए प्राचीन शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा। शिव भक्तों के स्वागत के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम सज रहा है। इसके अलावा देश के दूसरे शहरों में भी सावन की रौनक देखने को मिलेगी।

0: भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए वर्ष भर अनेक पर्व और व्रत आते हैं, लेकिन सावन मास का महत्व सबसे अधिक माना गया है। इसी महीने शुरू हो रहे पावन सावन के लिए देश के तमाम शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कर चरण कृतम वाक काय जब कर्मजम वा श्रवण नयन जब वा मान संवापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतश्वमस्व जय जय करुणाबधे श्री महादेव शंभो। देवघर से लेकर हरिद्वार, काशी से लेकर उज्जैन तक भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। कहीं शिवलिंग के जलाभिषेक और धार्मिक आयोजनों को लेकर मंथन चल रहा है, तो कहीं कांवड़ियों के ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है। ये तस्वीर बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर से आई है। बैद्यनाथ धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पूरे इलाके तक तैयारियां अंतिम चरण में है। हर कोना सजाया जा रहा है ताकि बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता का एहसास हो।
1: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन की तैयारी 30 जुलाई से है, जो प्रशासनिक तैयारी है। वैसे बाबा बैद्यनाथ की प्राचीन परंपरा 16 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। 17 जुलाई से मंगला सावन, जो यहाँ के मंदिर की परंपरा है, वो 17 जुलाई से उसमें बेलपत्र आदि सस्ता है और मंदिर का पट जो है भीड़ नहीं रहने के बाद भी 8 बजे रात तक बेलपत्र चलने के बाद बंद होता है।
0: देवघर के आला अफसरों ने श्रावणी मेले से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सावन के महीने में बैद्यनाथ धाम में उमड़ने वाली शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स ATS और डॉग स्क्वाड भी होंगे।
2: हमारी तैयारियाँ जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज़्यादा डिप्यूटेशन होती है, बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही स्पेशल फोर्सेज आ रहे हैं, RAF, RAP, उसके बाद BDDS की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, ATS की टीम आ रही है, तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थाई पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है।
0: वहीं देवघर शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई स्थानों पर नो एंट्री और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के सुलभ और सुरक्षित दर्शन कर पाए।
3: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उस पर समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, तो उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पर आज बहुत ही वृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया सके।
0: 30 जुलाई से शुरू होने वाला श्रावणी मेला पूरे एक महीने तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में स्पर्श पूजा और VIP दर्शन पर रोक रहेगी। श्रावणी मेले में देश के अलग अलग राज्यों से 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
4: मूलतः 3 जुलाई से एक महीने के लिए राखी पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा से राखी पूर्णिमा तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निषेध है और वहां अर्घा से जलार्पण।
0: झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के रोहतास जिले में भी प्रशासन ने श्रावणी मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियों पर गुप्तेश्वर महादेव की एक पवित्र प्राकृतिक गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी, जहां हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए जाते हैं। वहीं मुंगेर में श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कांवड़िया पथ के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। लिहाजा मेला शुरू होने से पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
5: आगामी जो श्रावणी मेला का आयोजन होना है, उसी के परिपक्ष में आज हम लोगों ने कांवड़ पथ का निरीक्षण पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी हम लोग के काम करने हैं, हम लोगों को उसका निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, तो उसका वही हम लोग प्रोग्रेस आज देखने आ रहे हैं। आज हम लोगों का वही उद्देश्य है कि 15 से 20 के बीच में सभी जिस तरह की सुविधा हम लोग यहाँ पर प्रदान करनी होती है, उसका काम हम लोग समय रहते ही पूरा कर लें।
0: अब इंतजार 30 जुलाई का है, जब बोल बम की जय घोष के बीच आस्था की ये अनवरत धारा एक बार फिर शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर पहुंचेगी। करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा, सेवा और विश्वास का ये महापर्व एक बार फिर इन शिवालयों को शिवमय बना देगा। मुंगेर से गोविंद कुमार, रोहतास से रंजन कुमार के साथ देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच कारोबारी हफ्ते के पांचवें दिन भारतीय शेयर बाजार में फिर बढ़त देखने को मिली। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 827 अंकों की बढ़त के साथ 77,569 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 244 अंकों की बढ़त के साथ 24,206 पर बंद हुआ। शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। सराफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 400 रुपए चढ़कर 1,48,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 जुलाई को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंच गई। 10 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर थोड़ी मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 95.31 के स्तर पर बंद हुआ।
6: फिल्म मैक्समैन एंड मियाज़ाकी का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
7: फिल्म मैक्स मिन एंड मियाज़ाकी का टीजर के बाद अब ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म एक परिवार की तीन पीढ़ियों की कहानी है। ये फिल्म प्यार, दिल टूटने और बदलते पारिवारिक संबंधों के साथ साथ एक बिल्ली मियाज़ाकी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम जापानी एनिमेटर हयायो मियाज़ाकी के नाम पर रखा गया है। पद्म कुमार नरसिम्हा मूर्ति की लिखी और डायरेक्ट की गई इस फिल्म में मेधा शंकर, सिद्धार्थ मेनन, आदिल हुसैन, मंदिरा बेदी, नासिर, नफीसा अली और विधात्री बांदी अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी।
8: What's his name?
9: मियाज़ाकी.
8: मिया व्हाट?
9: हायाओ मियाज़ाकी, एनिमेशन जीनियस, ऑस्कर विनर, सुना नहीं है?
8: नहीं।
9: जब लाइफ की वाट लगी हो, वॉच अ मियाज़ाकी फिल्म।
7: आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। वो मिलाप जावेदी निर्देशित फिल्म में नजर आएंगे। निर्माता भूषण कुमार और आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इससे पहले दोनों आशिकी 2 और मलंग जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब दोनों साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। मिलाप जावेदी के डायरेक्शन में बनने वाली उस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में शुरू होगी और 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर अनुपम खेर फिल्म श्री राम भूमि में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े अशोक सिंघल जी की भूमिका में नजर आएंगे। अनुपम खेर ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के अपनी पोस्ट में दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनके किरदार की कुछ तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं, जिसके चलते उन्हें लगा कि वो खुद लोगों को बता दें कि वो श्री राम भूमि में किसकी भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट में अशोक सिंघल की तारीफ करते हुए लोगों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना की है।
6: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने की शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कावड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाई, कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। लगातार बारिश के चलते उफान पर अलकनंदा नदी। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मॉनसून सक्रिय, शिमला, सिरमौर और सोलन के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर, एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की अगवानी।

0: और चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: जब कोई खिलाड़ी खेल से बढ़कर एक प्रेरणा बन जाए तो उसे सम्मान देना जिम्मेदारी होता है, और ऐसा ही सम्मान दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हजारों ड्रोन्स ने मिलकर रोनाल्डो की ऐसी शानदार तस्वीर बनाई कि पूरा नजारा यादगार बन गया। लगा मानो आसमान भी एक लेजेंड के नाम हो गया। सच भी तो है, एक खिलाड़ी जब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन जाए तब उसे ऐसे ही सम्मान मिलते हैं, और ये सम्मान उसकी विरासत को और खास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर ड्रोन के बने रोनाल्डो की ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं। मोबाइल का चस्का कैसा होता है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। आजकल हो भी ऐसा गया है कि काम चाहे कोई करो, मोबाइल देखने का काम हर काम के साथ जारी रहना चाहिए। अब इन महाशय को देखिए जरा, पानी से भरे खेत में काम करते हुए मोबाइल देखना नहीं छूटा। जुगाड़ लगा के मोबाइल को देखते हुए किसी को काम करते देखा है कभी? अब सोशल मीडिया पर लोग जनाब को कह रहे हैं, शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये लड़के जीतने के लिए मिलकर पूरा दम लगा रहे हैं और आखिरकार उनका टीम वर्क काम आता है और वो टास्क पूरा करके जीत कर ही दम लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस एक्ट को टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं और तस्वीरें देखकर खुश हो रहे हैं। इंडोनेशिया में आई तेज बाढ़ के दौरान यूं तो एक दूसरे की जान बचाने की और रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इन दिनों चर्चा में है जो संवेदनशीलता को प्रकृति के एक स्थायी भाव के रूप में सुनिश्चित करती है। यहां तेज बाढ़ में एक हाथी ने बाघ को सहारा दिया। बीच पानी में फंसे बाघ को हाथी ने सूंड की मदद से अपने ऊपर बैठाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाथी की संवेदना सबका मन मोह रही है, भावुक कर रही है और इंसान को भी सीख दे रही है कि प्रकृति का सबसे बड़ा पाठ, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को हराना नहीं बल्कि किसी को बचाना है। अब तक का सबसे बड़ा मानव पिरामिड सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाहवाही लूट रहा है। एक बेहद लंबा ऊंचा संकरे मानव जैसा पिरामिड जैसा आकार बनाया गया। तेज हवा में जब ये डगमगाने लगा तब भी किसी तरह ये स्थिर रहता है। एक शख्स भी इस पिरामिड से नीचे नहीं गिरता। एक बार को तो देखने वालों को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा संतुलन बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग इस वीडियो को संतुलन, विश्वास और शानदार टीम वर्क बताकर तारीफ कर रहे हैं।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली और एनसीआर में मॉनसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी है, साथ ही सबसे शुद्ध हवा भी दी है। जी हाँ, प्रदूषण के मामले में अक्सर चर्चा में रहने वाली दिल्ली के लिए इस बार मॉनसून में अच्छी खबर आई है। दो दिनों से जारी बारिश, हवा के तेज झोंकों की वजह से गुरुवार 9 जुलाई को दिल्ली वालों को 3 साल में सबसे साफ हवा मिली। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 48 रहा, जो कि पिछले लगभग 3 वर्षों में पहली बार रहा। वहीं एनसीआर में गुरुवार को फरीदाबाद का AQI 108, गाजियाबाद का 50, ग्रेटर नोएडा का 30, गुरुग्राम का 110 और नोएडा का AQI 45 रहा। इसके अलावा दुनिया भर के सबसे प्रदूषित टॉप 50 शहरों में भी दिल्ली का नाम नहीं था और राजधानी की हवा देश के तमाम बड़े शहरों से साफ रही। गुरुवार को चेन्नई का AQI 76, कोलकाता का 63, बेंगलुरु का 59 और मुंबई का AQI 73 रहा। हवा का सबसे साफ स्तर तब होता है जब AQI 50 या फिर इससे कम रहे। गुरुवार को यही चमत्कार हुआ, राजधानी का AQI 48 रहने से लोगों को अरसे बाद शुद्ध हवा मिली। इससे पहले साल 2023 में दिल्ली में 10 सितंबर को AQI 50 के नीचे रहा था। आमतौर पर राजधानी दिल्ली दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल रहती है, लेकिन 9 जुलाई को राजधानी इतनी साफ हो गई कि दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर रही। मानसूनी बारिश की वजह से दिल्ली की शुद्ध हवा को लेकर लोगों ने क्या महसूस किया, इस पर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी है।
2: दिल्ली में लंबे समय के बाद AQI लेवल काफी संतोषजनक हुआ है, 48 पर AQI लेवल आ गया है। अब इसको लेकर के अभी हम कुछ दिल्ली के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इसको लेकर के लोग क्या कहेंगे और क्या अनुभव कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए।
3: नरसिंह नारायण तिवारी
2: जी। AQI एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, अभी बारिश हुई है, कुछ कम हुआ है, AQI 48 आ गया, क्या महसूस कर पा रहे हैं?
3: नहीं, महसूस तो हो रहा है और अभी भी संतोषजनक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि जैसे मौसम बदलेगा तो फिर ये जो है उसके लिए सरकार क्या प्रयास करती है देखने वाली बात है।
4: ये सिर्फ कुदरत का ही करिश्मा है, बाकी तो दिल्ली का तो भगवान मालिक है।
5: पॉल्यूशन जो मिश्रा जी ने बोला, मैं भी उनके साथ एग्री हूँ, ये बाय नेचर हुआ है, गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है।
2: तो ये कुदरत का करिश्मा ही मानते हैं?
5: कुदरत का करिश्मा ही है। पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा, अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से तो ज़्यादा ठीक चल रहा अभी पॉल्यूशन, उससे पहले तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पे था, सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो देखा हमने कि मौजूदा सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं अपना, जगह जगह हमने देखा ट्रक्स चल रहे हैं, पॉल्यूशन पे काम चल रहा है, स्मोक टावर्स भी लगाए जा रहे हैं। तो बाकी मेरी यही है प्रशासन से कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं, मानसून आ रहा है तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना था न्यूज़ में कि कुछ वृक्षा उस पर पेड़ लगाने की एक मुहिम चालू की है सरकार ने, कि हर एक पेड़ माँ के नाम कुछ ऐसा था, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए जितना हो सके घरों में। और पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, जिसका मुझे ये भी लगता है कि मॉनसूनस की वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, तो अब अच्छा है, दिल्ली का मौसम बेहतर महसूस हो रहा है।
4: बेहतर है, अच्छी बात है। जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सांस लेना भी एक बहुत ज़रूरी है, तो इंसान सांस लेने के लिए ही इतनी चीज़ें करता है, तो अगर ठीक है तो सेहत हमारा अच्छा रहेगा, इसलिए ठीक है, बढ़िया है।
6: बहुत अच्छी फीलिंग कर रहे हैं और ये मौसम की वजह से हुआ है। सरकारें तो बहुत काम करती है इस पे, पर पब्लिक भी नहीं मानती है कुछ। पब्लिकों की भी गलतियाँ हैं, जैसे टू व्हीलर बाइक वाले का कहते हैं अपने पॉल्यूशन नहीं कराते हैं, वो जरूरी है, वो कराना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का, जिससे सबका लाभ होगा और ये पब्लिक को भी इसके बारे में बहुत अच्छा करना।
0: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। IIT दिल्ली में CSR कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित इस कॉन्क्लेव में कई समस्याओं का क्या आसान सॉल्यूशन हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ नया किया जा सकता है, इन सब पर रिसर्च और इनोवेशन को शोकेस किया गया।
1: ये तस्वीरें IIT दिल्ली में आयोजित CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव की हैं। इस कॉन्क्लेव का अहम मकसद CSR फंड के जरिए पर्यावरण और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रभावशाली CSR पहलुओं को एक मंच पर लाना रहा। इस कॉन्क्लेव में एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को लेकर रिसर्च और इनोवेशन को शोकेस किया गया। इसमें यहाँ ऐसे इनोवेशन देखने को मिले जिसमें देश की कई समस्याओं का आसान हल है। मसलन डाइंग यूनिट यानी कपड़ों को कलर करने वाली यूनिट का फॉर्मूला भी यहाँ दिखा, जिसमें रंग वाले पानी को ट्रीट करने का तरीका है।
7: दिल्ली NCR में हम समझते हैं कि किस तरह से यमुना को गंदा करने में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेस्ट है, यानी कि जो कलर से मिला हुआ पानी है, वो कितना बड़ा उसमें रोल प्ले करता है यमुना को गंदा करने में। लेकिन इस गंदे पानी का हो क्या, इसका एक सोल्यूशन आलोक ने निकाला है। तो आलोक, ये क्या प्रोसेस है पूरा?
8: ये बेसिकली टेक्सटाइल इफ्लुएंट है जो कि हम लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा CO2।
7: ये वो पानी है जो टेक्सटाइल किसी फैक्ट्री से निकलता
8: है।
7: क्या होता है
8: इसमें? बहुत नाइट्रेट का बहुत हाई अमाउंट होता है, फॉस्फेट का बहुत हाई अमाउंट होता है। उसके साथ ही साथ इसमें जो इसके कलर है, ये इसको हम पानी में रिलीज नहीं कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें इसको छोड़ने से पहले ट्रीट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके 2-3 प्रोसेस है। हमारा जो पहला प्रोसेस है, जो उसमें हम क्या करते हैं, जो एनारोबिकली हमारा बायोफिल्म रिएक्टर, जो हमारा रिएक्टर है, हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन, इसमें हम बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम ट्रीट करते हैं। इसका जो एचआरटी टाइम है जो 24 से 48 घंटे लेती है इसको साफ करने में, तो 24 से 48 घंटे में इसका जो सीओडी 8000 से 9000 के करीब रहता है वो घट करके 3000-4000 के करीब आ जाता है।
7: अभी भी यमुना में जो गंदगी जाती है उसमें टेक्सटाइल डाइंग, जो पानी में जो रंग होता है पानी में, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये ना सिर्फ उसका विकल्प देता है बल्कि उसके वेस्ट से भी पैसे कैसे कमाए जाएं उसका भी एक तरीका ये बताता है।
9: रंग वाले पानी सीधे पानी में जाकर नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो उसको कई बार के प्रोसेस से ट्रीट करके पानी को इस लायक बनाया जाना संभव है। ट्रीट करने से टीडीएस का स्तर 100 से 200 पीपीएम तक आ जाता है, जिसके बाद उसे नदी में रिलीज किया जा सकता है। पीएडी स्कॉलर आलोक ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके जरिए टेक्सटाइल वेस्ट को इस्तेमाल करके बैंडेज और दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। वहीं आदित्य और साहिल ने पराली, नारियल, फलों के छिलके से लेकर यूज्ड चाय पत्ती जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट का बेहतर इस्तेमाल करने पर काम किया है।
7: हम एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करते हैं तो पराली हर साल जिस तरह जलती है और पूरे दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की एक चादर दिखाई पड़ती है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी यहाँ आईआईटी दिल्ली में जो यहाँ के रिसर्चर हैं उनके इनोवेशन में दिखाई पड़ता है।
10: अपने लैब में हम दो तरीके के वेस्ट से डील करते हैं, एक होता है टेक्सटाइल वेस्ट, दूसरा होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। दोनों वेस्ट ही इंडिया में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जमा होते हैं, तो जो सोल्यूशन हम लोगों ने लाए हैं कि टेक्सटाइल वेस्ट को हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं, मेनली जिसमें पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों टाइप के वेस्ट होते हैं उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर उसको केमिकली ट्रीट करके पॉलिएस्टर और कॉटन को सेपरेट करते हैं। वो पोस्टर में आप देख सकते हो ये दो तरीके का डाई हम लोग निकाले हैं, ये है मिथिलीन ब्लू एंड रिएक्टिव ऑरेंज, दोनों को हम लोग सेपरेट करके ऐसे क्लियर पानी फिर से हम लोगों को मिल सकता है।
11: हमने अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर टेक्सटाइल वेस्ट यूज करते हैं एंड उसमें हम डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं, कार्बनाइजेशन पायरोलिसिस प्रोसेस टू कन्वर्ट देम इन एक्टिवेटेड पोरस कार्बन विच डायरेक्टली वी आर यूटिलाइजिंग इन एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन।
7: अच्छा, तो ये जितने भी वेस्ट हैं इन सब के वेस्ट को आप इस तरह के ये क्या है,
11: ये एक्टिवेटेड कार्बन,
7: एक्टिवेटेड कार्बन है इसमें आप कन्वर्ट कर दे रहे हो। ये किस काम में आता है?
11: ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है इसका कॉस्ट लो है और ये सस्टेनेबल है, तो ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। और जो भी इंडिया हम जानते हैं एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब तो जो भी मतलब पराली या जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हम उसी वेस्ट को कलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं।
7: देख रहे हैं कि जितना भी ये एग्रीकल्चर का वेस्ट है, चाहे वो नारियल के छिलके हों, चाहे वो यूज चाय पत्ती हो, गन्ने का छिलका हो या फिर आपका पराली हो, उन सबको वो इस तरह के एक्टिवेटेड कार्बन में यूज कन्वर्ट करते हैं, जिसका इस्तेमाल बैटरीज में आप कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने में कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक और उपाय हो सकता है कि कैसे हम पराली से, जो पराली जलाते हैं किसान, उससे कैसे मुक्ति पाएं और किसानों की भी इससे आय में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो सकती है।
9: किसानों का फायदा इस तरह से होगा कि वो एग्रीकल्चर वेस्ट इन्हें देते हैं तो ये उसके बदले किसानों को पैसे भी दे सकते हैं। सोलर पैनल की सुरक्षा और उससे बिजली भी पैदा हो सके, सीएसआर कॉन्क्लेव में उसका सॉल्यूशन भी दिखा।
7: इसमें चारों तरफ अब सोलर का जाल धीरे धीरे फैलने लगा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर के जरिए बिजली पैदा की जाए, लेकिन सोलर को भी कई बार कई तरीकों से सिक्योर करना होता है, उसे सुरक्षित करना होता है। यहाँ पर हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं, आप देखिए कि बीच में सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ सर्कल में एक तरह की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर छोटे छोटे पंखे लगा दिए हैं। दरअसल कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, आंधी बहुत ज़्यादा आती है, तूफान बहुत आता है, उन इलाकों में सोलर अगर खुले में सीधे उस डस्ट के, उस मिट्टी के संपर्क में आएगा तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो दीवार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी सोलर को उसी धूल, उसी मिट्टी, उसी आंधी, उसी गंदगी से बचाने की एक कोशिश करती है और साथ ही साथ ये बिजली भी पैदा करती है, बिजली भी स्टोर करती है।
12: तो आप देख सकते हैं जैसे ब्लोआउट से जब ये जा रहा है तो देखिए आपका सोलर विंड, जो विंड भी आपका विंड टर्बाइन भी घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, विंड आया तो विंड इस वाला रीजियन पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचे थे जो हम लोग अगर यहाँ पे विंड टर्बाइन को भी प्लेस कर पाए तो जो हवा आपको ऊपर में कंडेंस्ड हुआ उससे हम लोग बिजली भी पैदा कर सकते हैं. तो दिस वे दैट फुल सिस्टम वी हैव थॉट एंड वी नेम इट एज लाइक अ सूर्या वायु हाइब्रिड सिस्टम.
7: तो सोलर की यात्रा रुकने ना पाए, देश का कोई हिस्सा सोलर एनर्जी से अछूता ना रहे, उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन कम से कम इस इनोवेशन में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है.
9: क्या आपको पता है कि आपके घर के गैस चूल्हे में मौजूद जो बर्नर है उससे एलपीजी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, साथ ही ये सेहत के लिए सही नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन भी इस सीएसआर कॉन्क्लेव में पेश किया गया.
7: ये एक गैस चूल्हा है, वही गैस चूल्हा जो हम और आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस गैस चूल्हे में आप दो तरह के बर्नर देख रहे हैं, एक वो रेगुलर बर्नर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं और एक ये बर्नर है जो कि IIT के PhD स्कॉलर्स ने इसको इनोवेट किया है, खोज निकाला है, लैब में इसका टेस्ट किया है. दोनों में फ़र्क क्या है? अभी जो बर्नर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 65% तक की एफिशिएंसी ही यूज़ करवाता है, मतलब कि जितनी भी गैस इस्तेमाल हो रही है उसका सिर्फ 65% आप कुकिंग में इस्तेमाल करवाते हैं, बाकी जो 35% है वो पोल्यूशन में या फिर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है जो किसी काम का नहीं रहता है. लेकिन ये बर्नर आपकी गैस को 80% तक यूज करने का ये दावा कर रहे हैं.
11: जो स्पोरस रेडिएंट बर्नर की हम बात कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो कन्वेंशनल बर्नर होता है उसमें आपको थर्मल एफिशिएंसी भी कम मिलेगी. थर्मल एफिशिएंसी कम मिलने का मतलब है आपको फ्यूल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. फ्यूल कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं हम? LPG. तो हमें ज़्यादा LPG यूज़ करनी पड़ेगी. दूसरा, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये दोनों के दोनों हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है. ठीक है, तो इसमें कन्वेंशनल बर्नर में आपको ज़्यादा इमिशन

0: 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लंदन की मेट्रो में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में एसी वाले दफ्तर में ही सिर्फ लोगों को राहत मिल रही है। बाहर की तेज गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनिंग का सहारा ले रहे हैं। ब्रिटेन में गर्मी ने जून का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही लंदन में जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था। भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह दी है। ब्रिटिश शाही जोड़े ने जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के 200 साल पूरे होने पर जू का दौरा किया और अपने हाथों से कछुए को आहार खिलाया। किंग चार्ल्स ने जू में पेंगुइन की धड़कन सुनी, साथ ही पेड़ों पर रहने वाले घोंघों पर बैगनी निशान भी लगाए। 1826 में शुरू हुई जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन दुनिया की सबसे पुरानी वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं में शामिल है, जिसने 1828 में दुनिया का पहला वैज्ञानिक चिड़ियाघर खोला है। अपने जू दौरे में किंग चार्ल्स ने वैज्ञानिकों से मुलाकात कर दुर्लभ प्रजातियों को बचाने की मुहिम की भी जानकारी ली। यहाँ के कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। मेक्सिको के बड़े ड्रग माफिया सरगनाओं को अमेरिका ले जाने वाला विमान अब म्यूजियम में रख दिया गया है। अब लोग इस विमान को करीब से देख सकते हैं। ये वही विमान है जिसमें एल चापो के बेटे जो आकिन, गुजमान लोपेज और इस्माइल एल मायो जाम्बादा को अमेरिका ले जाया गया था। दोनों पर ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। विमान को न्यू मेक्सिको के वॉर ईगल्स एयर म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। ये विमान फिलहाल FBI की तरफ से म्यूजियम को दिया गया है। विमान के अंदर आज भी स्नैक्स और सबूतों से जुड़ा एक एविडेंस बैग रखा गया है, ताकि लोग देख सकें कि ये विमान किस तरह इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका में दोनों पूर्व कार्टेल नेताओं ने ड्रग कार्टेल से जुड़े मामलों में खुद को दोषी माना है। अब इस विमान को अपराध के इतिहास से जुड़ी एक अहम निशानी माना जा रहा है। स्विट्जरलैंड के AI समिट में अनोखा ह्यूमनाइड रोबोट रॉबर्ट प्रदर्शित किया गया। ये रोबोट ट्रंप, ज़करबर्ग और ओबामा जैसी नामचीन हस्तियों समेत कई चेहरों की शक्ल बना सकता है। रॉबर्ट सिर्फ बोलता ही नहीं, मुस्कुराता और चेहरे के हाव भाव भी दिखाता है। डेवलपर्स का दावा है कि इससे इंसान और रोबोट की बातचीत आसान होगी। रोबोट बनाने वाली कंपनी का ये भी कहना है कि इसका मकसद किसी की हूबहू कॉपी बनाना नहीं है। चेहरा बदलने के बावजूद साफ दिखता है कि सामने एक रोबोट ही है। वहीं AI समिट में स्मार्ट रोबोटिक फर्नीचर ने भी सबका ध्यान खींचा। रोबोटिक टेबल और फर्नीचर खुद चलकर रास्ता खाली कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से जगह बदल लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये खास रोबोटिक फर्नीचर बुजुर्गों और कम चल फिर पाने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा और आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को दी 20 साल पुरानी तस्वीर। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
2: एशियन गेम्स 2026 के लिए हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यों की भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी। FIH नेशंस कप जिताने वाली सरीमा टेटे को कप्तान बनाया गया है, जबकि हांगजो 2023 में कांस्य पदक दिलाने वाली सवित्रा पुनिया, बीचू देवी खरीबाम, नवनीत कौर और लालरेम सियामी हमार ज्योते भी टीम में शामिल हैं। एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जापान के आईटी नागोया में होगा। ये टूर्नामेंट LA 2028 ओलंपिक के लिए एशियाई क्वालिफायर भी होगा। प्रतियोगिता की विजेता टीम को अमेरिका में होने वाले अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का सीधा टिकट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने वहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को लगभग 20 साल पुरानी एक तस्वीर भी भेंट की। तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और स्टीव वॉ उनसे मिले थे। भारत में पहली बार किसी विदेशी T20 लीग का मुकाबला खेला जाएगा। बिग बैश लीग के 16वें सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में होगा, जिसे क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास में पहला मौका होगा जब बिग बैश लीग का कोई मुकाबला विदेश में खेला जाएगा। मेलबर्न ग्राउंड पर पीएम मोदी युवा खिलाड़ियों से भी मिले और उनकी हौसला अफजाई की, उनकी जर्सी पर ऑटोग्राफ भी दिए। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्कट रूबी द रूर से भी पीएम मोदी की मजेदार मुलाकात हुई। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हरा दिया और इस तरह फ्रांस लगातार तीसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा। किलियन एम्बापे ने पहले हाफ में पेनल्टी चूकने के बाद भी एक गोल और एक असिस्ट दिया। एम्बापे के गोल के बाद टूर्नामेंट में उनके 8 गोल हो गए हैं। एम्बापे ने इस तरह गोल्डन बीट की रेस में आगे चल रहे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है, जबकि क्वार्टर फाइनल मैच में उस्मान डेम्बले ने दूसरा गोल दागा। इस जीत के साथ ही फ्रांस अब सेमीफाइनल में डलास में स्पेन या बेल्जियम से भिड़ेगा। ये मुकाबला मंगलवार को होगा।
1: इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: कल भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाई, कफ सिरप की दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने की शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात आज कर रहे हैं सावन की, जिसके आने में अब ज्यादा वक्त नहीं, और इसीलिए हरिद्वार से लेकर बैद्यनाथ धाम तक कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। आज आपको हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले की गई पूजा दिखाएंगे, साथ ही संतों से समझेंगे कि कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम क्या हैं। झारखंड के बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी की झलक दिखाएंगे, और इसके बाद बात होगी काशी विश्वनाथ की, जहां भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए मंदिर में 7 एंट्री गेट बनाने की योजना है। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा प्लान समझेंगे, और आखिर में बात होगी ओंकारेश्वर की, जहां इन दिनों प्रशासन की एक अनोखी पहल चर्चा में है। रक्तदान करके मंदिर में VIP दर्शन की योजना क्या है और इसका असर क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं सावन और उसके साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों से। 30 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय महीना शुरू होगा, और साथ ही हरिद्वार तक भव्य कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। उधर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले का आगाज होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की तादाद में आने वाले शिव भक्तों को कोई मुश्किल ना हो और आसानी से जलाभिषेक हो, इसके लिए प्रशासन अभी से तैयारी में जुटा है। देखिए हरिद्वार और देवघर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

गूंजा जयकारा जब बाबा केदार ने पुकारा और हिमालय के ऊंचे शिखर पर चल पड़ी भोले की फौज। आषाढ़ में आया अमरनाथ का बुलावा, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगी होड़। बिना थके बिना रुके कश्मीर में चलता ही जा रहा है कारवां शिव भक्तों का। गूंज रही है घाटी बम बम भोले के जय घोष से। और इसके साथ ही कदम चल पड़े हैं कैलाश मानसरोवर की ओर, वो धाम जहां शिव का वास है। उसका रास्ता आसान नहीं, लेकिन ऊंचे पहाड़ और बर्फीले रास्ते को पार करते हुए यात्री बढ़ते जा रहे हैं अपने आराध्य को देखने पूजने। वैशाख यानी अप्रैल के आखिर से शुरू हुई और महादेव से जुड़ी ये तीनों यात्राएं जुलाई तक जारी है, लेकिन अब इंतजार है उस दिन का जब ऊंचे शिखरों पर नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में गंगा के तट पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ने वाला है, क्योंकि सावन आने वाला है। ज्यादा दिन नहीं बचे जब सावन की एंट्री होने वाली है, और इसलिए हरिद्वार से लेकर बाबा धाम यानी देवघर तक कावड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। रास्ते घाट हर तरफ सावन की आहट है।

श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालवीय घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई। लेकिन सबसे खास है ये पोस्टर जिसमें कांवड़ यात्रा के लिए अखाड़े ने 14 नियमों का जिक्र किया है। वैसे तो शिव पूजा का कोई विधान नहीं, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है उसे शिव भक्तों को समझना जरूरी है।

0: हरिद्वार में गंगा के तट पर पूजा अर्चना के साथ संतों ने कावड़ यात्रा का संदेश दे दिया। अपील की गई कि सादगी और भक्ति भावना के साथ भक्त इस यात्रा में शामिल हों और दिखावे के लिए यात्रा ना करें। मान्यता है कि सावन शिव को प्रिय है और इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान विधि विधान से की गई शिव उपासना से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि जैसे ही सावन आएगा देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, जिसे संभालने के लिए प्रशासन और मंदिर से जुड़े लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यह तस्वीर बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर की है, जहां श्रावणी मेले की तैयारियां तेज है और पुलिस प्रशासन के आला अफसर खुद देखरेख में लगे हैं। भीड़ बेहिसाब होती है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी व्यापक करने पड़ते हैं। इस साल 10,000 पुलिस कर्मियों के साथ ETS रैपिड एक्शन फोर्स और डॉग स्क्वाड को तैनात करने की योजना है।
1: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज्यादा डेपुटेशन होती है बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं, RAF, RAP, उसके बाद BDDS की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, ATS की टीम आ रही है, तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थाई पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी आज निरीक्षण किया जा रहा है।
0: हर साल देवघर के श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए पीने के पानी, बिजली, पंखा से लेकर मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। सावन में बाबा धाम में भक्ति का उत्सव होता है, इसलिए VIP पूजा बंद कर दी जाती है। मंदिर प्रशासन भी अपनी तरफ से हर सुविधा देने की हर संभव कोशिश में जुटा है।
2: हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ आते हैं, सबके डेरा पार करते हैं, प्रशासन के द्वारा भी और हम लोग पुरोहित समाज के द्वारा भी व्यवस्था तो अच्छे से हो रहा है और आगे सब बाबा बैद्यनाथ शुभ करके सावन मास सब निर्माता दूर करके सब जो है सावन मास जो व्यवस्था है वो पूर्ण करेंगे।
0: मंदिर में तो भीड़ होगी ही, मंदिर के बाहर शहर में भी ट्रैफिक कंट्रोल करना बड़ी चुनौती होती है, इसलिए प्रशासन अभी से रणनीति बना रहा है।
3: जहां भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में संबंध स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही बृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टैब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़े।
0: श्रावणी मेले की तैयारी बिहार के रोहतास जिले में भी चल रही है। कैमूर की पहाड़ियों में गुप्तेश्वर महादेव की एक पवित्र प्राकृतिक गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी, जहां हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। यहां की कावड़ यात्रा भी बाबा वैद्यनाथ के धाम की तरह महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें हजारों हजार लोग आते हैं, इसलिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। गुफा के अंदर ऑक्सीजन, मैट और लाइट की व्यवस्था की जा रही है।
4: तो वहाँ से बैरिकेडिंग है, पहले बांस और बल्लों से किया जाता था, उसको हटाकर हम लोग लोहे की बैरिकेडिंग सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो कीड़ है उसको सही तरीके से गाइड करके पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त गुफा के अंदर लोगों को किसी भी तरह का जल के अलावा किसी भी तरह की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी से वो जो चीजें हैं वो अंदर सफोकेशन क्रिएट करती है, तो लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए इन सब चीजों का पालन कराया जाएगा। इसलिए साल के अनुभव से और उसके बाद महाशिवरात्रि में जो हम लोगों ने काफी बेहतर तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से लोगों को दर्शन कराया था, उसी अनुभव से सीखते हुए हम लोग इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी लोग पंक्तिबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन करें।
0: 30 जुलाई से शुरू हो रहा है भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना सावन, जब कांधे पर कांवड़ लिए शिव भक्तों का हुजूम चलेगा। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल गूंजेगा। कांवड़ उठाने के लिए भक्तों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और प्रशासन ने भी।

0: इंतजार है तो बस सावन का। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, रोहतास से रंजन कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन के महीने में काशी की छटा कुछ और ही होती है। गंगा की पावन धारा के पास विराजमान बाबा विश्वनाथ धाम में सावन की विशेष तैयारियां चल रही हैं। अगर सोमवार को छोड़ दें तो भी सावन के महीने में कम से कम 6 से 7 लाख शिव भक्त जल चढ़ाने यहां आते हैं। लिहाजा जिला प्रशासन के साथ मंदिर प्रबंधन ने भी कमर कस ली है ताकि इस सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन हो सके और इसके लिए प्रवेश द्वार की संख्या बढ़ाने की योजना है। देखिए काशी से हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: आस्था, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष हर तरफ गूंजने वाला है। भोलेनाथ को प्रिय और समर्पित सबसे पवित्र महीना श्रावण मास शुरू होने वाला है। उपवास के साथ कांवड़ यात्रा निकालने वाले नीलकंठ के भक्त पवित्र शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की कृपा की कामना करेंगे। इस साल 30 जुलाई से सावन के पवित्र महीने का आरंभ होगा। समापन की तिथि 28 अगस्त को है। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त देवों के देव महादेव पर जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ धाम का भी रुख करते हैं। सावन के हर सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का अलग श्रृंगार और स्वरूप देखने को मिलता है। गर्भगृह में फूलों से दिव्य, भव्य, अलौकिक, अद्भुत श्रृंगार का दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य हासिल होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि पहले की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से अब कांवड़िए गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं। सकरी गलियों से गुजरने के बजाय अब चार प्रमुख द्वारों और बड़े परिसर की वजह से दर्शन करने में आसान हो गया है। फिर भी सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था कम ही साबित होती है, लिहाजा प्रशासन ने इस बार भी पहले से कमर कस ली है ताकि सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन हो सके। इसी को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस के तहत आने वाले सभी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठक का दौर शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले 7 प्रवेश द्वार के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो।
1: सावन के पावन माह के मद्देनजर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत बैठक के बाद तमाम निर्णय भी लिए गए। सावन माह में कुल 7 प्रवेश द्वार बनेंगे, जिससे श्रद्धालु विश्वनाथ धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं गर्मी, उमस और धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर, फैन, कूलर, वाटर कूलर, पेयजल और खास तौर से अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी।
0: मंदिर प्रशासन की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था की खास वजह है, सावन के महीने में गर्मी और उमस रहती है। घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने वाले शिव भक्तों और कांवड़ियों को डिहाइड्रेशन से बचाने और उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए जलपान की व्यवस्था की जाएगी। इससे शिव भक्तों को व्रत उपवास के नियमों का पालन करने में भी मदद मिलेगी।
1: मंदिर प्रशासन की तरफ से ये निवेदन किया गया है भूखे प्यासे रहते हुए दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से, कि क्योंकि कई बार उनके साथ हेल्थ इशू आ जाता है और ऐसे वक्त में उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मेडिकल टीम भी लगातार सक्रिय रहेगी और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन खास तौर से जो श्रद्धालु व्रत रहते हुए दर्शन करते हैं उनसे ऐसा न करने की अपील मंदिर प्रशासन ने की है, क्योंकि काफ़ी वक्त सावन के माह में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लग जाता है।
0: नियमित अंतराल पर संपूर्ण धाम क्षेत्र में पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा गर्मी या भीड़ भाड़ की वजह से किसी की तबीयत ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए काशी विश्वनाथ परिसर में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। साथ में ORS की भी व्यवस्था होगी।
2: जो अपील हम हर बार जारी करते हैं कि श्रावण मास में कई बार लोग सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए घर से चलने का प्रयास करते हैं, तो आपसे बहुत अनुरोध है, बहुत श्रद्धा के साथ अनुरोध है, महादेव का स्मरण करके घर से खाली पेट ना निकलें, फलाहार का कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण कर लें। खाली पेट रहने से कई बार व्यक्ति फेंट हो जाता है, यहाँ बेहोश होने की समस्याएं होती हैं, स्ट्रेचर पर उनको ले जाना पड़ता है, तो अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करें। भगवान शिव आनंद के देवता हैं, आप आनंद में रहें, आनंद पूर्वक यहाँ पर आएं। धाम की तरफ से यहाँ पर ग्लूकोज की, ORS की, पानी की, पेयजल की, सूक्ष्म जलपान की सारी व्यवस्था की जाएगी, मेडिकल की सारी व्यवस्था की जाएगी।
0: इस बार पूरे सावन के महीने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के गर्भगृह से स्पर्श दर्शन की अनुमति सुबह 4 से 5 बजे और शाम 4 से 5 बजे के बीच होती है। हालांकि सावन में भारी भीड़ के कारण वीआईपी दर्शन के अलावा स्पर्श दर्शन जैसी विशेष सुविधाएं रद्द कर दी गई हैं। सभी भक्तों को सामान्य कतार से ही दर्शन करने होंगे।
2: साथ ही जो पूर्व के वर्षों की स्थिति रही है वही स्थिति इस बार भी है। हम लोगों ने सभी प्रकार के जो विशेष अनुरोध आते हैं, प्रोटोकॉल दर्शन के अनुरोध होते हैं, वो सभी निरस्त रहेंगे। सभी विशेष जनों से अनुरोध है, काशीवासियों से भी अनुरोध है, बाहर के मान्यवर लोगों से भी अनुरोध है, ऐसा कोई अनुरोध ना भेजें, उसका सम्मान किया जा पाना, उसे स्वीकार किया जा पाना संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही जो दूसरी एक इसमें समस्या रहती है, श्रावण मास के भीतर स्पर्श दर्शन को लेकर लोग बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, तो स्पर्श दर्शन उसमें पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे, किसी का भी नहीं होगा। अगर किसी समय भीड़ कम होती है, उस समय अगर कोई स्थिति बन पाती है, तो निश्चित रूप से मंदिर न्यास भक्तों का श्रद्धालुओं का उस समय मन रखने का प्रयास करेगा, लेकिन भीड़ के समय किसी का भी इस प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा पाएगा।
0: सावन के दौरान काशीवासियों को दर्शन के लिए अलग से प्रवेश द्वार की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से काशीवासियों से अपील की गई है कि वो कांवड़िए और श्रद्धालुओं का स्वागत करें। काशी भोलेनाथ की प्रिय नगरी मानी जाती है। विवाह के बाद भगवान शिव देवी पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। काशी में भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं, यही वजह है कि इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि देवभूमि मानी जाने वाली काशी गंगा किनारे भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, प्रलय आने पर भी जिसका विनाश नहीं हो सकता। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भगवान शिव के बड़े धामों में ओंकारेश्वर का नाम भी शामिल है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन में यहां भी लाखों की तादाद में शिव भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। जाहिर है यहां भी बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है, लेकिन इन दिनों ओंकारेश्वर में जिला प्रशासन की एक नई पहल की बड़ी चर्चा है। प्रशासन ने रक्तदान के बदले मंदिर में वीआईपी दर्शन की पेशकश की है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए खून की कमी देखते हुए ये पहल शुरू की गई है और इस योजना को शिव भक्तों ने हाथों हाथ लिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में अब पर्याप्त मात्रा में रक्तदान हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
0: नर्मदा के तट पर शिव का दिव्य धाम ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में जो चौथा है, और मान्यता है कि जहां भगवान शिव माँ पार्वती के साथ रोज रात के वक्त विश्राम करते हैं और चौसर भी खेलते हैं। ये 5 मंजिला मंदिर नदी के बीच मंदाता और शिवपुरी द्वीप पर मौजूद है और द्वीप का आकार ओम शब्द की तरह नजर आता है, इसलिए धाम का नाम ओमकारेश्वर है। खास बात यह भी है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग प्राकृतिक है, यानी किसी ने गढ़ा नहीं। जब सावन आएगा शिव के इस धाम पर भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। यहाँ भी मंदिर प्रशासन अभी से सावन की तैयारी में जुटा है, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने मंदिर में दर्शन और रक्तदान को लेकर जो एक नई पहल की है उसकी बड़ी चर्चा है। ओमकारेश्वर मंदिर के प्रति भक्तों की जो श्रद्धा है उसे मानव सेवा से जोड़कर एक नया आयाम दिया गया है। ओमकारेश्वर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जा रही है। इससे रक्तदान करने वाले भक्तों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता और फायदा ये है कि खंडवा के जिला अस्पताल को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिल रहा है। पहल इसी साल फरवरी में शुरू की गई।
4: श्रद्धा के साथ सेवा यदि जुड़ जाती है तो पुण्य और बढ़ जाता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो किस तरह के चमत्कार होते हैं ये देखना है तो आप ओंकारेश्वर आइए। यहाँ पर एक जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया, किस तरह से एक यूनिट खून देने पर वीआईपी दर्शन का जो एक प्रपोजल जो एक स्कीम दी उसका बड़ा जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। और अब यह स्थिति है कि जहां जिला अस्पताल में पहले खून की कमी हुआ करती थी, वहां अब जिला अस्पताल में इतना ब्लड बैंक में ब्लड आ चुका है कि आसपास के जिलों की आपूर्ति हो रही है और एक बड़ा मानव सेवा का काम हो रहा है।
0: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर में हाल के बरसों में श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। रोजाना हजारों की तादाद में शिव भक्त आते हैं और लंबी लाइनों में घंटों इंतजार के बाद दर्शन करते हैं। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन का भी दबाव रहता है, जिसके लिए प्रशासन ने 300 रुपए का शुल्क तय किया है। लेकिन मंदिर में बेहिसाब भीड़ के साथ जिलाधिकारी ऋषभ गुप्ता की नज़र ब्लड बैंक में रक्त की कमी पर गई और उन्होंने भक्तों की श्रद्धा को जनसेवा से जोड़ने का फैसला किया, यानी एक यूनिट रक्तदान के बदले परिवार को वीआईपी दर्शन।
5: हम ब्लड डोनेशन की बात करें, जो कैंप्स लगते हैं हमारे, अमूमन हमारी जो पूर्ति नहीं हो पाती है, तो जब सभी ब्लड डोनर से बात की गई, इसके अलावा जो हमारा ओंकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग है, यदि उसकी बात करें तो स्पेशली पोस्ट कोविड हम ये पाते हैं कि श्रद्धा का मानो सैलाब सा आ गया है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और हम ये देख रहे हैं कि अमूमन अभी लोग 5 से 6 घंटे वेट करके भी दर्शन पा रहे हैं। तो बेसिकली जब ब्लड डोनर्स से लगातार डिस्कशन किया गया कि किस प्रकार से हम ब्लड की आपूर्ति को इंक्रीज कर सकते हैं, तब सभी के साथ चर्चा करके यह आइडिया आया कि क्यों ना हम ओंकारेश्वर में जो हमारे श्रद्धालुगण आते हैं उनसे ये अपील करें कि यदि आप श्रद्धा के साथ में आए हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो साथ में रक्तदान महादान भी करें। उससे आपको न केवल पुण्य प्राप्त होगा अपितु जो हमारे जिले की खून की कमी है उसकी पूर्ति भी हो पाएगी। तो उसी से यह आइडिया आया।
0: रक्तदान के बदले मंदिर में वीआईपी दर्शन की पेशकश, ये योजना श्रद्धालुओं को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते रक्तदान करने वालों की कतार लंबी होने लगी। हर दिन करीब 30 से 35 यूनिट रक्तदान हो रहा है। हालत यह है कि खून जरूरत से ज्यादा है और उसे इलाज के लिए पास के जिलों में भेजा जा रहा है।
6: जिले के अंदर चालू किया गया था जिसकी अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो रही है और इस कारण से हमको जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, वो खून हमारे पास भरपूर मात्रा में आ रहा है।
0: ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन की ये पहल भा गई है। बिना समय गवाए जल्दी दर्शन हो जाता है और साथ ही मानवता की सेवा का पुण्य भी मिल जाता है।
7: अच्छी लगी मुझे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और भी श्रद्धालु यहाँ पे आकर के रक्तदान करें, ये आपका एक सेवा ही है आपकी यहाँ पे।
8: आप आने वाली पीढ़ी को भी इस ब्लड डोनेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे?
7: मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आए और अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करें।
0: महादेव के इस धाम से भक्तों की आस्था गहरी जुड़ी है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और सिर झुकाते हैं। अगर आसानी से शिवलिंग के दर्शन के लिए एक यूनिट रक्तदान करना पड़े तो भक्त इसके लिए खुशी से तैयार है, खासकर तब जब रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन के लिए मंदिर आई थी और उन्होंने भी प्रशासन की इस पहल की तारीफ की।
5: 2500 से अधिक यूनिट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं। यदि हम साप्ताहिक रूप से बात करें तो औसत हमारे पास अभी 200 से 250 यूनिट्स आ जा रहे हैं। डेफिनेटली इसे ना केवल हमारे जिले खंडवा की पूर्ति हो रही है अपितु आसपास के जिलों से भी जो मांग आती है उसकी पूर्ति भी जो हमारे ओंकारेश्वर ब्लड डोनेशन सेंटर है वहां से की जा रही है।
0: सावन आने वाला है, हर साल की तरह मंदिर में भक्तों की तादाद कई गुना ज्यादा होगी क्योंकि सावन में ओंकारेश्वर के दर्शन का धार्मिक महत्व बड़ा है। पर इस सावन नई बात ये होगी कि भक्तों को दर्शन पूजन के साथ रक्तदान करके मानव सेवा करने का भी अवसर मिलेगा।
3: इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कल भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा, 7 दिनों में 1,70,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर, एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ऑकलैंड में हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री लक्सन ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, 2 दिनों की यात्रा में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम, भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग, प्रधानमंत्री ने भी हाथ मिलाकर अभिवादन किया स्वीकार। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश की कई भव्य कार्यक्रम। भारत के तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में हुई जगमग रोशनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने उनका गर्मजोशी से किया स्वागत। भारत में पहली बार होगा विदेशी क्रिकेट लीग का मैच, दिसंबर में बिग बैश लीग का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा जो कि इतिहास में पहली बार होगा। युवा खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने मैदान पर युवाओं का बढ़ाया हौसला और उनकी जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मस्कट रूबी द रू से हुई पीएम मोदी की मजेदार मुलाकात, पीएम ने मस्कट रूबी द रू के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत की। पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को लगभग 20 साल पुरानी एक तस्वीर भेंट की, यह तस्वीर तब की है जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उनसे मिले थे क्रिकेटर। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, कल INS महेंद्रगिरी को अपनी बेड़ी में शामिल करेगी नेवी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 6ठी स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है INS महेंद्रगिरी, विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में औपचारिक रूप से नौसेना को समर्पित किया जाएगा ये युद्धपोत। ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों और आधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों से सुसज्जित है ये फ्रिगेट, दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल। समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन के साथ कई तरह के सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए उपयुक्त, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे लंबे समय तक तैनात रहने में भी सक्षम। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है INS महेंद्रगिरी, इस युद्धपोत में लगे उपकरणों का 75% से अधिक हिस्सा स्वदेशी। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से बातचीत की, कल INS महेंद्रगिरी के कमिश्निंग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में हुए शामिल, नौसेना कर्मियों के साथ बैठकर खाया खाना। दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही है भारत की साख, भारत में पहली बार बनेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम भारत में करेगा आयरन डोम इंटरसेप्टर का उत्पादन, मेक इन इंडिया के तहत लगेगी नई प्रोडक्शन लाइन। इजरायली रक्षा कंपनी ने भारत से शुरू की बातचीत, भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी की तैयारी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। नागपुर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने के लिए की चर्चा। डिजिटल बिहार की दिशा में सम्राट सरकार का अहम कदम, अब घर बैठे होगा जमीन और अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री, जीआईएस तकनीक से होगा स्थल निरीक्षण। श्रीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कश्मीर मैराथन 2026 का मर्चेंडाइज किया लॉन्च। राजस्थान की संस्कृति को एक बार फिर मिली वैश्विक पहचान, जोधपुर की पारंपरिक मोजरी को मिला जीआई टैग। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए जीआई टैग मिलना बड़ी उपलब्धि, इससे निर्यात को मिलेगी बढ़ावा, बढ़ेंगे रोजगार के मौके। करीब 200 वर्ष पुराना है जोधपुरी मोजरी उद्योग, वर्तमान में घरेलू बाजार की कीमत लगभग 100 करोड़, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए का निर्यात। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में रक्तदान करने पर पूरे परिवार को कराए गए वीआईपी दर्शन, प्रशासन की इस खास मुहिम के चलते जिला अस्पताल में खून देने वालों की लगी लंबी कतार। दर्शन के साथ साथ रक्तदान महासंकल्प का संकल्प भी पूरा कर रहे हैं श्रद्धालु, प्रशासन के इस पहल की सभी कर रहे प्रशंसा। हरिद्वार में सावन के कांवड़ मेले के लिए जोरों पर तैयारियां, विधिवत 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है पवित्र मेला। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस तैयारी ने कसी कमर, कांवड़ मेले के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की होगी तैनाती। 6 फीट से ऊंची कांवड़ और 10 फीट से ऊंची झांकी नाल लाने की प्रशासन ने की अपील, सुरक्षा कारणों से कांवड़ियों से पुलिस का आग्रह। हरिद्वार पुलिस के शिव भक्त कांवड़ियों से त्रिशूल डंडे आदि ना लाने और मोटरसाइकिल में रेट्रो साइलेंसर का उपयोग ना करने की अपील, मेले में पूरी तरह से प्रतिबंधित है ये चीजें। शिवभक्त कांवड़िये की सकुशल और सुगम कांवड़ यात्रा की कामना के साथ स्वागत के लिए तैयार प्रशासन, सुगम तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खास प्रबंध। पूरी आस्था के साथ आज 8वें दिन भी जारी है अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के बेहतरीन रखरखाव के लिए बीआरओ की तारीफ की। मुश्किल आसों अनिश्चित मौसम के बावजूद साफ सुरक्षित और अच्छे हालात में है ट्रकिंग ट्रैक, बीआरओ कर्मियों के समर्पित काम ने हजारों यात्री संतुष्ट। अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से की मुलाकात, यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रियों के आराम के लिए बनाए गए टेंट से लेकर बाकी सुविधाओं की भी एलजी ने की समीक्षा, प्रशासन के काम की तारीफ की। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, पहले दिन के लिए लिपुदर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश, यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। पुरी में रथ यात्रा की तेज तैयारी, बड़ा डांडा की रंग बिरंगी सजावट से बड़ी रौनक, भक्तों का उत्साह देखने लायक। रथ यात्रा से पहले पुरी का श्रृंगार, मुख्य मार्ग पर आकर्षक सजावट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप। बड़ा डांडा बना आस्था का केंद्र, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए शहर तैयार, उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुरी में उत्सव का माहौल, रथ यात्रा से पहले सड़कों पर सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों की रौनक बढ़ी। जगन्नाथ रथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासन ने तैयारियां तेज की, लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी। पुरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत, लाखों वारकरी ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष करते हुए शहर में पहुंचे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी 2 दिन तक भवानीपेट के विट्ठल मंदिर में रहेगी, वहीं संत तुकाराम महाराज की पालकी नानापेट के निवडुंगा विठोबा मंदिर में ठहरेगी। भोपाल की यात्रा के दौरान पुणे की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालु विठल नाम का जयघोष करते नजर आए। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुणे पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए। पानी, स्वास्थ्य, सफाई और ट्रैफिक की भी खास व्यवस्था की गई। पालकी यात्रा से पूरा पुणे भक्तिमय माहौल में डूबा। शहर में हर ओर ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष की गूंज सुनाई दी। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश में भी चार धाम यात्रियों का जोश हाई। लगातार बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लामबगड़ नाला पार करना होगा आसान। बारिश के बीच छाता लिए नजर आए श्रद्धालु। दर्शनों के लिए लंबी कतार। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध। मानसून में उफान पर अलकनंदा नदी अलर्ट पर सभी रेस्क्यू टीमें। यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही निगरानी। बारिश के बीच धुंध की मोटी चादर में लिपटी नजर आई ऊंची पहाड़ियां। बादलों से घिरे तीर्थ की बड़ी सुंदरता। भारी बारिश से उफान पर बह रही यमुना नदी समेत बरसाती नदियां। बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। मूसलाधार बरसात के चलते अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के आसपास बसे रिहायशी इलाके खाली कराने के निर्देश। उत्तराखंड में उफान पर सरस्वती नदी रेस्क्यू टीम अलर्ट। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। मानसून में शिमला बना पर्यटकों की पहली पसंद। देश भर से पहुंच रहे लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों की वादियों का उठा रहे लुत्फ। कश्मीर के डल झील में पर्यटक पारंपरिक शिकारा नाव की सवारी का ले रहे आनंद। खूबसूरत नजारों और शांत पानी के बीच लोग बिता रहे यादगार पल। अमरेली में खेती की जमीन के लिए वरदान बनी गागरिया नदी। नदी पर बनी 20 झीलें 3 तालुकों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का करा रही उपलब्ध। पद्मश्री सब्जी भाई ढोलकिया के फाउंडेशन और गुजरात सरकार की कोशिशों से साकार हुआ प्रोजेक्ट। खेती के साथ पर्यावरण और जंगली जानवरों के लिए अब नहीं रही पानी की कमी। भूजल स्तर को बढ़ाना है इस परियोजना का उद्देश्य। हर साल मानसून में लबालब होती है नदी और सभी 20 झीलें। जूनागढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। जिले के बाढ़ प्रभावित घेड़ क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। जूनागढ़ में जिले में घेड़ विस्तार परियोजना के कामों पर भी मांडविया ने अधिकारियों संघ की बैठक। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 1500 करोड़ रूपये का पैकेज किया घोषित। ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ मिलकर आमिर बनाएंगे उत्तराखंड के सिल्कियारा टनल रेस्क्यू मिशन पर आधारित फिल्म। सिल्कियारा 41 होगा नाम। कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। एक बार फिर भूषण कुमार की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर। बेहद इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी होगी फिल्म। मिलाप मिलन जवेरी करेंगे डायरेक्ट। विवादों के बीच फिल्म काला हिरन का दूसरा पोस्टर आउट। 17 जुलाई को रिलीज होगा टीजर। अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 आज हुई रिलीज। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म। अक्षय खन्ना, सनी देओल, दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्टरूम ड्रामा इक्का आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। चर्चित हत्या केस के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। फ्रांस लगातार तीसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा। पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया। मैच में एक गोल कर एम्बापे के इस टूर्नामेंट में हो गए हैं 8 गोल। गोल्डन बूट की रेस में आगे चल रहे हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी के। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान। विश्व नेशंस कप जिताने वाली सलीमा टेटे होंगी टीम की कप्तान। गोलकीपर के रूप में चुनी गई पद्मश्री से सम्मानित सविता और बीजू देवी खरीबा। हैमस्ट्रिंग चोट के कारण भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें टी20 से बाहर। फिलहाल दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं। स्विट्जरलैंड के एआई समिट में दिखा अनोखा ह्यूमनॉइड रोबोट रॉबर्ट। ये रोबोट ट्रंप, ज़करबर्ग और ओबामा जैसी नामचीन हस्तियों समेत कई चेहरों की शक्ल बना सकता है। रॉबर्ट सिर्फ बोलता ही नहीं, मुस्कुराता है और चेहरे के हाव भाव भी दिखाता है। डेवलपर्स का दावा, इससे इंसान और रोबोट की बातचीत होगी और भी आसान। रोबोट बनाने वाली कंपनी का कहना है, मकसद किसी इंसान की हूबहू कॉपी बनाना नहीं, चेहरा बदलने के बावजूद साफ दिखता है कि सामने एक रोबोट है। एयर समिट में स्मार्ट रोबोटिक फर्नीचर ने भी सबका ध्यान खींचा, टेबल और फर्नीचर खुद चलकर रास्ता खाली कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से जगह बदल लेते हैं। एक खास रोबोटिक फर्नीचर बुजुर्गों और कम चल फिर पाने वाले लोगों के लिए साबित होगा मददगार, आम लोगों की जिंदगी बनाएगा आसान। लंदन में साल की तीसरी हीट वेव, गर्मी से लोग परेशान, तापमान 30 डिग्री

0: लंदन में साल की तीसरी हीट वेव, गर्मी से लोग परेशान, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। लंदन के मेट्रो में लोगों को सबसे ज्यादा हो रही है परेशानी, भीषण गर्मी में सफर करना हुआ मुश्किल। एसी वाले दफ्तर में लोगों को मिल रही है राहत, बाहर की तेज गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनिंग का ले रहे सहारा। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़ा जून का रिकॉर्ड, कुछ दिन पहले ही जून का सबसे गर्म दिन किया गया था दर्ज। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह दी। ब्रिटिश शाही जोड़े ने जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के 200 साल पूरे होने पर जू का किया दौरा, कछुए को खिलाया आहार। किंचास ने पेंगुइन की धड़कन सुनी, साथ ही पेड़ों पर रहने वाले घोंघों पर बैंगनी निशान लगाए। 1826 में शुरू हुई जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन दुनिया की सबसे पुरानी वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं में शामिल। ZSL ने 1828 में दुनिया का पहला वैज्ञानिक चिड़ियाघर खोला। लंदन जू दौरे में किंग चार्ल्स ने वैज्ञानिकों से मुलाकात कर दुर्लभ प्रजातियों को बचाने की मुहिम की जानकारी ली, कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। किंग चार्ल्स की यात्रा में ZSL के संरक्षण अभियानों और वन्यजीव वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग को भी उजागर किया गया, वन्यजीव संरक्षण को मिला शाही समर्थन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Schwarber to right field, and it will lead.
6: From the first pitch of the season to the stretch run,
7: and that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
9: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है।

0: भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
1: 3000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिली थी, ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
0: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
8: कल भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत। भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा। 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कप सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। 7 दिनों में 1,70,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, यूं तो देखिए संसार में कई प्रकार के रंग हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं इन्हीं रंगों की कि कैसे इन रंगों के प्रयोग से, इसके इस्तेमाल से आपकी किस्मत सवर सकती है, चमक सकती है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, अगर बात बात में आप चिंता करते हैं, हर बात पर तनाव पालने की आदत है आपकी, तो अपने जीवन में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। अगर आप ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो ये आपके मन को चिंता मुक्त करेगा और मन के तनाव को दूर करेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, क्योंकि रंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, यूं तो अनेकों प्रकार के रंग हैं, लेकिन रंग हमारे जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस तरह से इन रंगों का प्रयोग करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, उसके बारे में हम बताएं।
1: जी देखिए, रंग एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है मानव जीवन के लिए भी, भोग विलास के लिए भी और आध्यात्म के लिए भी। ईश्वर विभिन्न रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं और ईश्वर विभिन्न रंगों के माध्यम से आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से ही सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति, वस्तु, यहां तक कि जो आप शब्द बोलते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, इनका भी रंग होता है। जब हमारे मन का रंग किसी और के रंग से मिलता है तो रंगों से हमारा मिलन होता है, और जब हमारे मन का रंग किसी से हटता है तो रंग हमें दूर भी ले जाते हैं। रंग के आधार पर ग्रह नक्षत्र काम करते हैं और ज्योतिष के तमाम उपाय रंगों के आधार पर काम करते हैं। अगर आपको पता हो तो सही और सटीक रंग आपकी किस्मत को मजबूत करते हैं, और अगर आप गलत रंगों का प्रयोग करें तो इससे आपका भाग्य कमजोर होगा। इसीलिए ज्योतिष में आप देखिए कि लोग पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा रंग शुभ है, कौन सा रंग मैं पहनूं, कौन सा रंग मैं ना पहनूं, इस विषय पर भी लोग बात करते हैं, क्योंकि विशेष तरीके के रंग आपके मन पर, आपके सोचने समझने पर असर डाल देते हैं।
0: तो चलिए सबसे पहले बात लाल रंग के बारे में करते हैं। लाल रंग की क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस रंग के बारे में, और किस तरीके से अपने भाग्य को चमकाने के लिए इसका प्रयोग करें, इसके बारे में जानते हैं।
1: देखिए, वायु में, हवा में सबसे ज्यादा जो तीव्र शक्तिमान रंग दिखता है वो लाल है। इसीलिए खतरे का और इमरजेंसी का रंग लाल रखा गया है। दूर से दिखाई देगा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है हवा के अंदर भी। अत्यंत ऊर्जा और शक्ति का रंग है। ज्योतिष में इसको मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। अगर आपके लिए लाल रंग शुभ है, आपको सूट करे, आप इसको पहनते रहें, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको लाल रंग नुकसान करे, सूट ना करे, तो लाल रंग पहनने से दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी। जो लोग बहुत जल्दी अशांत हो जाते हैं, जिनका मन बहुत जल्दी चिंता करता है, ऐसे लोगों को लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्यतः मिथुन और कन्या, खासतौर से इनका लग्न मिथुन लग्न और कन्या लग्न में, और ज्यादातर मिथुन और कन्या राशि में भी ये रंग आम तौर पर लाभ नहीं पहुंचाता, क्योंकि अगर ये लाल रंग का इस्तेमाल करें तो इनका मन अशांत होता है, चोट चपेट की और दुर्घटना की संभावना बन जाती है।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए, लाल रंग के बाद अब पीले रंग के बारे में बात करते हैं। क्या विशेषता है पीले रंग की और किस तरीके से इसका प्रयोग करें ताकि जीवन में सार्थक बदलाव आए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, पीला रंग कम से कम हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसीलिए पीला रंग शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। ज्योतिष में पीले रंग को बृहस्पति देव का रंग माना जाता है। अगर पीला रंग आप धारण करते हैं और ये आपको सूट करे तो शिक्षा, संतान, सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर पीला रंग आपको नुकसान करे, सूट ना करे, तो पेट खराब कर देगा, लीवर में दिक्कत आ जाएगी, दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा होगी। जो लोग स्वभाव से सात्विक ना हो, मांस मदिरा का ज्यादा प्रयोग करते हो, ऐसे लोगों को इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीला रंग वृषभ, तुला और मकर लग्न के लिए बहुत ही निगेटिव होता है। वृष, तुला और मकर राशि पर भी निगेटिव असर डालेगा, लेकिन वृषभ, तुला और मकर लग्न के लोगों के लिए ये रंग निगेटिव होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें तो ये बीमार पड़ सकते हैं।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न संजय वर्मा जी ने हमें लिखा है, और संजय वर्मा जी कानपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अप्रैल 1978, शाम को 6:55, जन्म स्थान है कानपुर। संजय जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं अभी, और मेरे व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, और कर्जे भी मेरे हमेशा कुछ ना कुछ बने रहते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले और मुझे कर्ज से मुक्ति मिले। संजय जी, सबसे पहली जो गड़बड़ी है कुंडली में वो ये है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, धीरे धीरे चलिए, थोड़ा धैर्य रख के पैसा कमाने की कोशिश करिए। जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि चंद्रमा कंट्रोल में नहीं है। अगर आप आराम से चलें, बुद्धिमानी से चलें, तो भविष्य आपका बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, आप काफी तरक्की कर पाएंगे, लेकिन पेशेंस चाहिए। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और फिर कहूंगा धैर्य से चलिए। वैसे आपका समय मई 2027 के बाद से काफी बेहतर दिखाई दे रहा है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हरे रंग की कर लेते हैं। हरे रंग की आखिरकार क्या विशेषता है और किस तरीके से इस रंग का प्रयोग कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: हरा रंग जो है ना, बड़ा चमत्कारी है और हरे रंग का इतना ज्यादा जीवन में प्रयोग है कि आप देखिए, प्रकृति ने अपने आप को प्रेजेंट किया है हरे रंग में। वृक्षों की पत्तियां, पौधे, हरा रंग है उसका, इसकी खासियत है भाई, ये विशेष रंग है। ये रंग अच्छा स्वास्थ्य देता है और आपके मन पर, आपके मूड पर असर डाल देता है। प्रकृति ने हरा रंग चारों तरफ इसीलिए बिखेर रखा है कि आप जब भी उस रंग के संपर्क में आए, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। ज्योतिष में हरा रंग बुध का रंग माना जाता है। अगर आपको हरा रंग सूट करे, हरा रंग लाभ पहुंचाए, तो ये आपके मन को और आपके दिमाग को अच्छा बना देगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम कर देगा। लेकिन अगर हरा रंग आपको सूट ना करे तो ये आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा देगा और त्वचा की समस्या, नर्व की समस्या दे सकता है। जिन लोगों को दिमाग का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो या वाणी का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, ऐसे लोगों को हरे रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप बहुत दिन से बीमार थे, दवाई खाए हैं, अब ठीक हो रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, तो रिकवरी आपकी तेजी से हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की बेडशीट का प्रयोग करना शुरू कर दें। हरा रंग जो है ये कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होता और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मुख्यतः कर्क और वृश्चिक में ग्रीन कलर आने से ये बिल्कुल एकदम से डिप्रेशन की तरफ कभी कभी जाने लगते हैं। तो कर्क और वृश्चिक वालों को मैं कहूंगा कि आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल थोड़े लिमिटेशन में करें, थोड़े नियंत्रण में करें, तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात नीले रंग की कर लेते हैं। नीला रंग आखिरकार इतना खास क्यों है, इसकी क्या विशेषता है और किस तरीके से नीले रंग का प्रयोग कर हम अपनी जिंदगी को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: देखिए, नीला रंग रहस्यमयी रंग है, सामान्य रंग नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम नीले रंग के दिखाए जाते हैं ना हिंदू परंपरा में। उसका कारण यही है कि ये विराट रंग है। आकाश का रंग भी नीला है क्योंकि ये विराट रंग है, रहस्य का रंग है। ये रंग तीव्र आध्यात्म और भाग्य से संबंध रखता है। ज्योतिष में इसको शुभ शनि का रंग माना जाता है। कुछ लोग नीले रंग को राहु का रंग भी कहते हैं। अगर आप नीला रंग प्रयोग करते हैं और ये रंग आपको लाभ देता है तो व्यक्ति की बुद्धि को तेज कर देता है, काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है और इंट्यूशन की क्षमता, अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ा देता है। अगर नीला रंग आपको सूट ना करे और आप ज्यादा नीला रंग पहनने लगें तो ये वाणी खराब करेगा और आपके करियर की उन्नति को, आपके करियर को आगे बढ़ने से रोक देगा। जिन लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करनी हो, उनको लाइट ब्लू कलर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नीला रंग मिथुन, तुला और कुंभ लग्न के लिए बहुत ही शुभ है। इसी तरह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए भी टेक्निकली नीला रंग अच्छे परिणाम देता है। आप गहरा ध्यान करना चाहते, मेडिटेशन वालों को खास तौर से मैं कहूंगा कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, तो नीले रंग के चित्रों पर, नीले रंग के कैरिकेचर्स पर ध्यान दें, उसको अपने मन में उतारने का प्रयास करें, आप बहुत गहरा ध्यान कर पाएंगे।
0: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर हो जाएगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सफेद रंग की। सफेद रंग की क्या विशेषता है और किस तरीके से इसके प्रयोग करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, उसे चमका सकते हैं, ये जानते हैं।
1: देखिए, सफेद रंग के बारे में आप एक बात जानिए कि सफेद कोई रंग होता ही नहीं है, अलग से कोई इंडिविजुअल रंग नहीं है। वास्तव में 7 रंग जो हैं, विबग्योर, जो इंद्र धनुष के 7 बेसिक रंग हैं जिनको विबग्योर कहते हैं, उन 7 रंगों को बराबर मात्रा में मिलाइए, सफेद रंग प्रकट हो जाएगा। ये रंग वास्तव में 7 रंगों का सटीक मिश्रण है। ज्योतिष में ये चंद्रमा और शुक्र का रंग माना जाता है। चंद्रमा इस रंग से ज्यादा संबंधित है। ईश्वर, आध्यात्म और सफलता की सबसे ऊंची स्थिति का संबंध सफेद रंग से माना गया है। आपको जब अपने आप सफेद रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगे, अनुकूल लगने लगे, तो ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। जिन लोगों को सफेद रंग का ज्यादा अनुभव होता है, निद्रा में, जीवन में, काम में सफेद चीजें बार बार आपके सामने आती हैं, उनको जीवन में अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर सफेद रंग बराबर आ रहा है तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में आप अपने खान पान, स्वभाव, व्यवहार को बेहतर कर लें तो अच्छा होगा।
0: तो चलिए रंगों के इसी क्रम में अब बात करते हैं काले रंग की। काले रंग की क्या विशेषता है, काला रंग क्यों इतना खास है, इतना अलग है, और इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं जीवन को बदलने के लिए, आइए जानते हैं।
1: जैसे सफेद रंग कोई रंग नहीं है, वैसे ही काला रंग कोई रंग नहीं है। ये रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है। जहां कोई रंग नहीं होता वहां काला रंग होता है। लैक ऑफ कलर इज ब्लैक, यानी जहां कोई रंग नहीं है वो काला रंग है। काला रंग शनि के अशुभ प्रभाव को, जीवन के संघर्ष को, जीवन की कठिनाई को दर्शाता है। हालांकि काले रंग को सामान्य जीवन में नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रंग तभी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जब आपका जीवन सामान्य गति से चल रहा हो। अगर आप जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हो, कठिन समय से गुजर रहे हो, तो काले रंग का ज्यादा प्रयोग मत करिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, हर काम में ज्यादा बाधा आती है, हर काम में ज्यादा रुकावट आती है, उन्हें भूल कर भी काले रंग का ज्यादा प्रयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती दिख रही है। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल वो किसका ले रही है।
1: जी अगला प्रश्न सुनील कुमार ने हमें लिखा है और सुनील कुमार जी हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1969। जन्म का समय सुबह के 6:30। जन्म का स्थान है सहारनपुर। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी अभी अभी बेच दी है और मैं देहरादून शिफ्ट कर गया हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एक व्यापार शुरू किया है और अब मैं यहाँ मकान बनवाना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी समय से प्रयास करने के बाद भी संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी का फायदा मुझे कब तक होगा? सुनील जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी बनवाने में जल्दबाजी मत करिए, अभी थोड़ा इंतज़ार करिए। बुद्धिमानी ये कहती है कि 1 साल रुकिए, जून 2027 के बाद कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदिएगा। अभी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, अभी अगले 1 साल तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे, सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। आपका व्यापार अच्छा हो, आपको संपत्ति का लाभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहने, सुबह और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: जिनका जन्मदिन है आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। अविवाहितों के विवाह में अभी इस साल में विलंब दिख रहा है, क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या रात को सोते समय जो आप रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं वो निकाल देनी चाहिए? देखिए, रत्न की अंगूठी अगर आप पहनते हैं एक बार, पुखराज पहना, नीलम पहना, माणिक पहना, ओपल पहना, तो बार बार इसको निकालना नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने निकाला और 24 घंटे तक नहीं पहना, 24 घंटे का गैप हो गया, तो उसे फिर सही समय पर सही दिन पहनना चाहिए। लेकिन जैसे आपने घंटे भर के लिए निकाला, कोई चेकअप कराना है, कोई जांच करानी है, तो 1 घंटे बाद फिर आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने आज सुबह निकाला, कल सुबह तक भूले रहे, 24 घंटा बीत गया, तो 24 घंटा अगर बीत गया तब आपको उस दिन का इंतजार करना होगा, सही दिन पर सही समय में दोबारा धारण करेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि शुभ पहर कौन सा है।
1: शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर होगी।
0: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी कि आज का गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अलग अलग राशि के लोग क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है मीन। जीवन की बेहतरी के लिए सूर्य देव की नियमित उपासना करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं कम से कम और नियमित रूप से गरीबों को, निर्धनों को अन्न का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
1: अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उस चक्कर में चीजें बिगड़ जाती हो, तो क्या करेंगे, सोमवार को थोड़े से चावल ले लें, दाना उसका एक एक देख लें, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, बिना टूटे हुए थोड़े से चावल के दाने ले लें, इन्हीं चावल की दानों की खीर बनाइए और भगवान शिव को अर्पित करके सोमवार की शाम को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए।
0: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और अब बात है श्रावणी मेले की कर लेते हैं, जिसकी तैयारी यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में जोर शोर से शुरू हो गई है। भगवान भोलेनाथ के तमाम प्राचीन मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर न सिर्फ श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन और जलाभिषेक के लिए तैयारी की जा रही है, बल्कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

0: 23 जुलाई से शुरू हो रहा है भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना सावन, जिसके लिए देश के तमाम प्राचीन शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर तैयारी शुरू कर दी गई है और शुरू कर दी गई है सावन के महीने में लगने वाले श्रावणी मेले की तैयारी। हरिद्वार से लेकर देवघर तक भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। कहीं कावड़ियों के ठहरने की तैयारी चल रही है और कहीं शिवलिंग के जलाभिषेक और धार्मिक आयोजनों को लेकर मंथन चल रहा है। ये तस्वीर बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर से आई है, जहां जिले के आला अफसरों ने श्रावणी मेले से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान देवघर के SP प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सावन के महीने में बैद्यनाथ धाम में उमड़ने वाली शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही ATS रैपिड एक्शन फोर्स और डॉग स्क्वाड की तैनाती भी की जाएगी।
1: अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज्यादा डिप्यूटेशन होती है बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है, साथ ही स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं, RAF, RAP, उसके बाद BDDS की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, ADS की टीम आ रही है, तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थाई पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी आज निरीक्षण किया जा रहा है।
0: हर साल देवघर के श्रावणी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनकी संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में देवघर आने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, बिजली, पंखा, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर सके, इसके लिए VIP पूजा बंद रहेगी और सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार से ही दर्शन करना होगा। इसके अलावा देवघर शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई स्थानों पर नो एंट्री और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के सुलभ और सुरक्षित दर्शन कर पाए।
2: हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ जाते हैं, सबके बेड़ा पार करते हैं, प्रशासन के द्वारा भी और हम लोग पुरोहित समाज के द्वारा भी व्यवस्था तो अच्छे से हो रहा है और आगे सब बाबा बैद्यनाथ सुख करके सावन मास सब विघ्नबाधा दूर करके सब जो है सावन मास जो व्यवस्था है वो पूर्ण करेंगे।
3: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में संबंध स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पर आज बहुत ही बृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वापस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
0: झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के रोहतास जिले में भी प्रशासन ने श्रावणी मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियों पर गुप्तेश्वर महादेव की एक पवित्र प्राकृतिक गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी, जहां हर साल सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं, जिनके लिए गुफा के अंदर ऑक्सीजन, मैट और लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: जो वहाँ से बैरिकेडिंग है, पहले बांस और बल्लों से किया जाता था, उसको हटाकर हम लोग इस बार लोहे की बैरिकेडिंग सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो कीड़ है उसको सही तरीके से गाइड करके पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त गुफा के अंदर लोगों को किसी भी तरह का जल के अलावा किसी भी तरह की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी से वो जो चीजें हैं वो अंदर सफोकेशन क्रिएट करती है, तो लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए इन सब चीजों का अनुपालन कराया जाएगा। इसलिए साल के अनुभव से और उसके बाद महाशिवरात्रि में जो हम लोगों ने काफी बेहतर तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से लोगों को दर्शन कराया था, उसी अनुभव से सीखते हुए हम लोग इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी लोग पंक्तिबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन करें।
0: इधर देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 30 जुलाई से शुरू हो रहे कावड़ मेले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। यहाँ श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने मालविया घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की। साथ ही श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने एक 14 नियमों वाला पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें कावड़ियों को कावड़ उठाने के नियम बताए गए हैं।

0: धार्मिक मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दौरान विधि विधान से की गई शिव उपासना से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि सावन शुरू होते ही देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसको लेकर शहर शहर ये तैयारी चल रही है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, रोहतास से रंजन कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे।
1: बात कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था के सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में कैलाश मानसरोवर यात्रा इस समय चल रही है। ये पवित्र यात्रा नाथुला और लिपुलेख मार्ग से होती है। ऐसे में आज सुबह तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने लिपुलेख दर्रे को पार कर लिया, जबकि नाथुला के रास्ते पहला जत्था जून के महीने में रवाना किया गया था। इस साल इस यात्रा पर करीब 1000 श्रद्धालुओं को जाना है। जिनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसी चल रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
0: जो है देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव का निवास स्थान, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव,
0: हर हर महादेव के जयकारों का ये उद्घोष इस कठिन यात्रा पर गए इन श्रद्धालुओं की खुशी को बयां कर रहा है। हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन का सपना हर शिव भक्त देखता है, मगर कुछ ही है जिनका ये सपना साकार हो पाता है। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में ये श्रद्धालु भी शामिल है, जो कैलाश पर्वत के दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं।
3: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है। और मेरे साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रही भारतीय टीम के एक लीडर भी है, एलओबी हैं। शर्मा जी, कैसी रही आपकी यात्रा?
4: मेरा नाम संजीव शर्मा है और हमने 27 जून को शुरू की थी यात्रा दिल्ली से, और आज हम कैलाश मानसरोवर की भी परिक्रमा करके उसमें स्नान करके अपनी यात्रा कम्प्लीट कर रहे हैं। हमने कैलाश उसकी भी प्रक्रिया कल पूरी की, 3 दिन की, और काफी कठिन थी, लेकिन हमारी पूरी टीम फिट है और पूरे जोश से भरी हुई है।
3: पहली बार जब कैलाश पर्वत के दर्शन होते, बचपन से पढ़ा था, कभी स्कंद पुराण में, कभी मत्स्य पुराण में, कभी कैलाश खंड की कुछ, लेकिन जब देखा तो क्या था?
5: जब देखा तो लगा कि जो हम पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं है, साक्षात महादेव खड़े थे अपने परिवार के साथ, माँ पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकी के साथ। वो जो पूरा परिवार दिखा, बस उसको देखने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, बस यही अनुभूति आई कि प्रभु मुझे यहीं रख लो अपने परिवार के साथ, ये था मेरा अनुभव।
3: बहुत ही अनुपम ये अनुभव रहता है, लेकिन आपका अनुभव क्या था?
6: सर मेरा अनुभव तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया था देख के, ठीक है, क्योंकि जब हम चढ़ रहे थे, दूसरा दिन खासकर हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो जब आप उस पहुंच जाते उस लक्ष्य तक, और फिर आप जब आपको मिल जाता, तब जो आप की जो खुशी और जो आप वो होता है कि जब आपने पा लिए सब कुछ, तो मेरे लिए वो था कि इतनी मेहनत और इतनी मुश्किल के बाद वहाँ तक पहुँचना, सर क्या कहें, यानी आंसू भी आ रहे होते हैं क्योंकि आप वो होते हो कि इतनी मुश्किल से आप पहुंचे और आप खुश भी होते हैं अंदर से, तो वो दोनों चीज थी मेरे अंदर।
0: कैलाश मानसरोवर की ये कठिन यात्रा सिक्किम के नाथुला मार्ग और देवभूमि उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से होती है। इस साल करीब 1000 तीर्थ यात्री 10-10 के बैच में दोनों मार्गों से यात्रा कर रहे हैं। पिछले महीने नाथुला के रास्ते श्रद्धालुओं का पहला जत्था भेजा गया था, जबकि आज 52 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था लिपुलेख दर्रे को पार कर गया, जो जल्द ही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करेगा।
3: इस समय हम लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर हैं, हम तिब्बत में हैं, पवित्र कैलाश और मानसरोवर की यात्रा पर। हम न केवल अपने दर्शकों को आदि शिव के वास के दर्शन करा रहे हैं, बल्कि हम उन श्रद्धालुओं से बात भी कर रहे हैं जो अनंत कठिनाइयों को झेलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि भारत और चीन दोनों ही देशों की सरकारों का प्रयास है कि यह रास्ता जितना सुगम हो सके उतना हो जाए। नए रास्ते खोले भी गए हैं और खोले भी जा रहे हैं, विचार भी हो रहा है। कई रास्ते हैं, एक रास्ता आता है लिपुलेख के जरिए।

0: जरिए तिब्बत में, दूसरा रास्ता आता है नाथुला के जरिए सिक्किम होता हुए, और वो एक पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य का रास्ता भारत और तिब्बत के बीच रहा भी है।
1: दोनों ही मार्गों से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यमद्वार एक अहम पड़ाव होता है, जिसे पार करने के बाद ही कैलाश पर्वत के करीब 50 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू होती है, जो है तो बहुत चुनौतीपूर्ण, लेकिन भोलेनाथ पर अटूट विश्वास की बदौलत श्रद्धालु इस यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ पूरा करते हैं।
0: इस समय हम लोग यमद्वार के सामने खड़े हैं। मान्यता ये है कि जब आप कैलाश की यात्रा पर जाते हैं, पवित्र कैलाश पर्वत की यात्रा पर, तो आप यमद्वार को पार करते हैं, और इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि आप अपने भौतिक सुखों को, इस पृथ्वी पर जो कुछ है, आपके संबंधों को त्याग कर, लोभ मोह काम क्रोध अज्ञान, उस सब को त्याग कर आप उस पार शिव की दुनिया में जाते हैं। और एक अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है यमद्वार और वो है पवित्र कैलाश पर्वत, और यहां पर आपको नजर आ रहे हैं साक्षात शिव का वो वास, उसका दक्षिणी छोर आप इन तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं।
1: हालांकि जो तीर्थयात्री किसी कारण पैदल परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, वो घोड़े और खच्चर का भी सहारा लेते हैं। गुड न्यूज़ टुडे की टीम भी जब यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ी, तो कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा घोड़े से करते दिखाई दिए।
0: यमद्वार को पार करके अब हम कैलाश यात्रा पर निकल पड़े हैं, और उत्साह इतना ज्यादा है, आप देखिए उम्र का कोई रोक नहीं है। हमारे सामने देखिए और श्रद्धालु भी हैं, वो इस यात्रा के लिए जा रहे हैं, और जो लोग पैदल नहीं चल पाते वो खच्चरों पर, घोड़ों पर इस यात्रा पर आगे निकलते हैं। जैसे ये जो यात्रा हो रही है आप देख रहे हैं, हर हर महादेव, आप इस यात्रा में देख रहे हैं लोग घोड़ों पर खच्चरों पर जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ गाड़ियों की आवाजाही के लिए सुचारू रूप से प्रबंध किए गए हैं। गाड़ियाँ पक्की सड़कें काफ़ी हद तक बना दी गई हैं, यानी शहर तक पक्की गाड़ी आती है, और फिर उसके बाद जो एक कच्चा ट्रैक बनाया गया है वो भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए है। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी बनाई गई हैं।
1: यह यात्रा हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इस यात्रा पर आते हैं और यहां रहकर कठिन साधना करते हैं।
0: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है, जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये 5वें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था, जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, और हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है, और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहाँ पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति, उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है, और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर, ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और मोक्ष की दिशा में एक गहन यात्रा है, जिससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन में एक बार इस यात्रा को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है, तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
3: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है, और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है।

0: साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
0: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say, open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालचाल बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। 7 दिनों में 170,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज। प्रशासन ने किसी भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: भगवान शिव का परम धाम कैलाश।
1: शिवाय
0: जिसके कण कण में है महादेव का वास।
1: नमः शिवाय।
0: जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
0: कर रहे थे
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया सब कुछ, मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर के पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है, मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं, इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो यह भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की। हालांकि उपासना यहाँ भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म के अनुयायी हों, उपासना यहाँ भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहाँ नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में माँ गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुए, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसको जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रूवारुक्मे बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम, पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये 5वें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहां जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहां बकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहां पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति, उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर यह बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं।
1: इस समय हम लोग यमद्वार पर हैं और कैलाश यात्रा के लिए, पवित्र कैलाश यात्रा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते ये हैं कि यहाँ से आप सांकेतिक रूप में भूलोक से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग 3 दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो 3 बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
0: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
4: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था, बस यही थी अनुभूति। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समस्या खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर, बहुत सुविधाजनक बनाने की पूरी अपनी कोशिश लगा दी है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और चीन सरकार को।
5: क्या अब इसको आप अपने नृत्य में और उड़ीसी नृत्य में भी आप इसका वर्णन करेंगे कि भावी पीढ़ियां से प्रेरित हो?
4: बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी नृत्य शिव तांडव करती थी, मैं इसीलिए जानी जाती थी रेखा जैना का, जब भी शिव तांडव अनाउंस होता था तो दर्शकगण इंतजार करते थे।
0: आपको बता दें कि महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं, इसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
6: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कत्कारी, विष्णु को दिए चक्ष सुदर्शन लक्ष्मी सिनारी, इंद्र को दिए काम देनु एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कत्कारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दीन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान किए, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों के स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
0: तो वही बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
10: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है, और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं। भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मानसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
11: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिली थी, ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
10: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
12: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
9: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा। INS महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत। भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा। 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। 7 दिनों में 170,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज। प्रशासन ने किशोर भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां। त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश के रंग में रंग कर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो लोहागढ़ किले का है, जहां केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने जा रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड में आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम पहले रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजी जाती थी, फिर वही पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए वापस अपने खातों में मंगवा लिया जाता था, ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस की जांच सीधे चोरी की रकम और जेवर की बरामदगी तक पहुंच गई है। अब इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा भी जा सकता है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: दान और चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी का पर्दाफाश किया है। मंदिर में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मिले 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग रूम के कर्मचारियों के नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपाकर कुल 70 बार चोरी करने की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रतिनिधि डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते बिना लिखित प्राधिकार के रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पकड़े गए मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सबके बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मंदिर में चढ़ाया गया दान भाजपाई अपनी बबौती समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
13: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल कर रहा है, और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा लेन देन का खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने महिला दोस्त को 2 लाख रुपए नगद और महंगा फोन गिफ्ट किया था, जो जांच के दायरे में है। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने हर जगह से खंगाला, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस को एक आरोपी की कार से भारी मात्रा में नकदी मिली हो। क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और हर जगह पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि कार से भारी मात्रा में नकदी बरामदगी का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें एक कई न्यूज वेबसाइट्स की सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया हुआ मिला, जिनमें से छत्तीसगढ़ के रायपुर का बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान एक सरकारी अधिकारी की इनोवा कार से 1,66,00,000 की भारी नकदी बरामद की गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें कार के भीतर विशेष रूप से बनाए गए एक गुप्त कैबिन से नोटों की गड्डियां निकालते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कई और रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में भी इस वीडियो को छत्तीसगढ़ की घटना बताया गया है। सर्च के दौरान हमें यह वीडियो एक रीजनल न्यूज चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 26 नवंबर 2025 को साझा किया हुआ मिला। 14 अगस्त 2025 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खैरागढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक एसयूवी से कुल 4,04,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए। वाहन के मालिक से इस कैश से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस जानकारी को वो पुलिस को नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर उसी कार की है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है, और कार में बने गुप्त चैम्बर को भी देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का दावा भ्रामक है। कार से नकदी के बरामद होने का वीडियो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से संबंधित है, जिसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुई नकदी के दावे से जोड़कर अब शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे का केतन हत्याकांड मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक किले के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो लोहगढ़ किले का है, जहां पर केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था, उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: लोहागढ़ किले में 18 जून को व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के इशारे पर उनके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को खाई में धकेल दिया था। इस हत्या के बाद कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इन सब के बीच भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि लोग केतन अग्रवाल की हत्या वाली जगह सिया पॉइंट को देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हत्या से जुड़े कथित स्थान को लोग अब सिया पॉइंट के नाम से पहचान रहे हैं और बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंच रहे हैं। वहां पर्यटकों की संख्या में 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि लोहागढ़ किला, जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासत और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग उत्सुकतावश इस जगह पर पहुंच रहे हैं और इस कथित क्राइम स्पॉट को अनौपचारिक रूप से लिया जा रहा है, जिसके कारण यहां भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश ये लोग यहां पर फंस गए हैं। वीडियो लोहागढ़ किले का ही है। इसके बाद हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और पुणे के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर यह हाल फिलहाल का होता तो फिर इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में हाल फिलहाल में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें जुलाई 2023 का एक सोशल मीडिया पोस्ट मिला। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के मराठी कैप्शन में बताया गया था कि लोहागढ़ में भीड़ के कारण पर्यटक 4 घंटे तक फंसे रहे थे। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 4 जुलाई 2023 को छपी इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही वीकेंड पर लोहागढ़ किले में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची। भारी भीड़ के कारण लोग करीब 4 घंटे तक किले पर फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सर्च के दौरान ही 3 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लोनावला इलाके में लोहागढ़ पर पर्यटकों की भारी भीड़ फंस गई। ये घटना बारिश के दिन हुई जब सैकड़ों लोग किले पर उमड़ पड़े, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। एक वीडियो में ये चिंताजनक नज़ारा कैद हुआ, जिसमें लोगों के चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं दिखी थी। अच्छी बात तो ये रही कि इस घटना के दौरान भगदड़ नहीं मची। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो 3 साल पुराना है और केतन हत्याकांड के बाद की भीड़ से नहीं जुड़ा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: Come see.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा बीच सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है, बहन नींद में है और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। बच्चा आइसक्रीम का स्वाद लेने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतना तेज हॉर्न बजाया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब लुभा रहा है। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। दफ्तर में रोज की तरह सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी वहाँ मौजूद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई। फिर क्या था, खराबी आते ही रोबोट के भीतर का कराटे किट जाग गया। उसने तेजी से अपने हाथ पैर हवा में लहराने शुरू कर दिए और पास खड़े कर्मचारियों पर झपटने लगा। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि रोबोट की इस अचानक फाइट मोड वाली हरकत में वहाँ मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने किसी तरह रोबोट को काबू में किया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर बहस भी छिड़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के एडवांस रोबोट को आम लोगों के बीच तैनात करने से पहले उनकी कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ शानदार डांस ही नहीं बल्कि रिश्तों की खूबसूरती भी बयां कर देते हैं। इन दोनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ और बेटी हरियाणवी गाने पर साथ में डांस करती नजर आ रही है। दोनों की शानदार बॉन्डिंग और चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ डांस नहीं कर रही बल्कि इस पल को खुलकर जी भी रही हैं। बुढ़ापा सच में सिर्फ कमजोर पड़ते शरीर का नाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सवाल का जवाब पूरी ताकत के साथ देता नजर आता है। आमतौर पर 70 साल की उम्र सुनते ही लोगों के मन में आराम, दवाइयों और बढ़ती उम्र की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस दादी ने उन सभी धारणाओं को चुनौती दे दी। वीडियो में दादी ने जिस तरह से भारी वजन उठाया है उसे देखकर जिम में पसीना बहाने वाले युवा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दादी ने पूरी तैयारी के साथ डेडलिफ्ट करने की पोजीशन ली। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर या झिझक दिख रहा था, बड़ी आसानी से उन्होंने 103 किलो का वजन उठाया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था। कई सरप्राइज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी लोगों का दिल जीत रही है। एक केयर होस्टेस ने अपने माता पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो वे हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई देने लगा। दरअसल सुष्मिता नाथ नाम की एक केयर होस्टेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे ऑन ड्यूटी अपने माता पिता का वेलकम करते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एयर होस्टेस के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ अपनी बेटी मिल जाए। इसलिए इस वीडियो में माता पिता का रिएक्शन देखने लायक है। सुष्मिता ने अपने माता पिता से कहा था कि उस दिन उनकी ड्यूटी किसी दूसरी फ्लाइट में है, इसलिए उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान से वे सफर करने वाले हैं उसी फ्लाइट में उनकी बेटी यात्रियों का स्वागत करेगी। गेहूं काटने और उन्हें साफ करने के लिए बाजार में हजारों लाखों रुपए की मशीनें उपलब्ध हैं। कई किसान किराया देकर अपने गेहूं मशीनों में साफ करवाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक देसी लड़के ने गेहूं साफ करने का एक ऐसा जुगाड़ निकाला कि लोग हैरान हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का गेहूं साफ करने के लिए घरेलू जुगाड़ लगाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो एक कूलर के ऊपर गत्ते का खोखा रखता है, इसके बाद वो कूलर को तेज रफ्तार में चलाता है। कूलर चालू होने के बाद ये लड़का खोखे में गेहूं डालता है, जिसके बाद खोखे में किए गए एक छेद से गेहूं बाहर निकलने लगते हैं और कूलर की जाली के सामने से गुजरते हैं। जैसे ही गेहूं ऊपर से गिरकर कूलर की हवा से गुजरते हैं, वैसे ही उन पर लगी धूल और गेहूं में मिक्स कचरा हवा के बहाव से अलग हो जाता है और साफ गेहूं अलग हो जाते हैं। इस छोटे से गोलू मोलू पांडे ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विक पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर

0: और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया, उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सेंटोस और उनकी केनाइन पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
4: सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है, कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है, कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है, अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चार धाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
6: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
7: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थ यात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।

0: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो, लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, कप सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालचाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा, 7 दिनों में 1,70,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने किसी भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची न बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे न लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर, एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: भगवान शिव का परम धाम कैलाश। शिवाय जिसके कण कण में है महादेव का वास।
1: नमः शिवाय।
0: जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
2: कर रहे थे
3: ओम तुम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर के पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है। मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं, नहीं इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो यह भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की। हालांकि उपासना यहाँ भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म के अनुयायी हों, उपासना यहाँ भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहाँ नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में माँ गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले, जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुए, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसको जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् रुवारुक्मे बन्धनामित्तु मुक्ति मामृतम्। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम, पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये पांचवें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहाँ पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति, उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं।
1: इस समय हम लोग यमद्वार पर हैं और कैलाश यात्रा के लिए, पवित्र कैलाश यात्रा के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते ये है कि यहाँ से आप सांकेतिक रूप में भूलोक से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग 3 दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो 3 बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
0: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
4: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था, बस यही थी अनुभूति। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समस्या खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर, बहुत सुविधाजनक बनाने की पूरी अपनी कोशिश लगा दी है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और चीन सरकार को।
5: क्या अब इसको आप अपने नृत्य में और उड़ीसी नृत्य में भी आप इसका वर्णन करेंगे कि भावी पीढ़ियां से प्रेरित हो?
4: बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी नृत्य शिव तांडव करती थी, मैं उसी लिए जानी जाती थी रेखा जैना का। जब भी शिव तांडव अनाउंस होता था तो दर्शकगण इंतजार करते थे।
0: आपको बता दें कि महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं, उसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
6: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कत्कारी, विष्णु को दिए चक्ष सुदर्शन लक्ष्मी सिनारी, इंद्र को दिए काम देनु एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कत्कारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दीन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान के, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों के स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
0: तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
9: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
8: Big 12 Radio.
10: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
8: and
10: down.
8: Talk sports.
11: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
8: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
12: जी खबर।
13: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
16: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
17: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
16: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
18: गुड न्यूज टुडे।
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा। INS महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालचाल बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। 7 दिनों में 170,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज। प्रशासन ने शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां। त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
18: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश के रंग में रंग कर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो लोहागढ़ किले का है जहां केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने जा रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
18: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड में आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम पहले रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजी जाती थी, फिर वही पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए वापस अपने खातों में मंगवा लिया जाता था ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस की जांच सीधे चोरी की रकम और जेवर की बरामदगी तक पहुंच गई है। अब इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा भी जा सकता है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: दान और चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी का पर्दाफाश किया है। मंदिर में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मिले 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग रूम के कर्मचारियों के नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपाकर कुल 70 बार चोरी करने की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रतिनिधि डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते बिना लिखित प्राधिकार के रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पकड़े गए मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सबके बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मंदिर में चढ़ाया गया दान भाजपाई अपनी बबौती समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
18: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल कर रहा है और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा लेनदेन का खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने महिला दोस्त को 2 लाख रुपए नकद और महंगा फोन गिफ्ट किया था, जो जांच के दायरे में है। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने हर जगह से खंगाला, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस को एक आरोपी की कार से भारी मात्रा में नकदी मिली हो। क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और हर जगह पर यह खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि कार से भारी मात्रा में नकदी बरामदगी का यह वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये कई न्यूज वेबसाइट्स की सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया हुआ मिला, जिनमें से छत्तीसगढ़ के रायपुर का बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान एक सरकारी अधिकारी की इनोवा कार से 1,66,00,000 की भारी नकदी बरामद की गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें कार के भीतर विशेष रूप से बनाए गए एक गुप्त कैबिन से नोटों की गड्डियां निकालते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कई और रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में भी इस वीडियो को छत्तीसगढ़ की घटना बताया गया है। सर्च के दौरान हमें यह वीडियो एक रीजनल न्यूज चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 26 नवंबर 2025 को साझा किया हुआ मिला। 14 अगस्त 2025 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खैरागढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान इतवारी बाजार MCP पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक SUV से कुल 4,04,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए। वाहन के मालिक से इस कैश से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस जानकारी को वो पुलिस को नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर उसी कार की है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है, और कार में बने गुप्त चैम्बर को भी देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का दावा भ्रामक है। कार से नकदी के बरामद होने का वीडियो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से संबंधित है, जिसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुई नकदी के दावे से जोड़कर अब शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे का केतन हत्याकांड मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक किले के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लोहगढ़ किले का है, जहां पर केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था, उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: के लोहागढ़ किले में 18 जून को व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के इशारे पर उनके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को खाई में धकेल दिया था। इस हत्या के बाद कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इन सबके बीच भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि लोग केतन अग्रवाल की हत्या वाली जगह सिया पॉइंट को देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हत्या से जुड़े कथित स्थान को लोग अब सिया पॉइंट के नाम से पहचान रहे हैं और बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंच रहे हैं। वहां पर्यटकों की संख्या में 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि लोहागढ़ किला, जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासत और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग उत्सुकतावश इस जगह पर पहुंच रहे हैं और इस कथित क्राइम स्पॉट को अनौपचारिक रूप से लिया जा रहा है, जिसके कारण यहां भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश ये लोग यहां पर फंस गए हैं। वीडियो लोहागढ़ किले का ही है। इसके बाद हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और पुणे के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर यह हाल फिलहाल का होता तो फिर इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में हाल फिलहाल में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें जुलाई 2023 का एक सोशल मीडिया पोस्ट मिला। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के मराठी कैप्शन में बताया गया था कि लोहागढ़ में भीड़ के कारण पर्यटक 4 घंटे तक फंसे रहे थे। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 4 जुलाई 2023 को छपी इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही वीकेंड पर लोहागढ़ किले में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची। भारी भीड़ के कारण लोग करीब 4 घंटे तक किले पर फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सर्च के दौरान ही 3 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लोनावला इलाके में लोहागढ़ पर पर्यटकों की भारी भीड़ फंस गई। ये घटना बारिश के दिन हुई जब सैकड़ों लोग किले पर उमड़ पड़े, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। एक वीडियो में ये चिंताजनक नज़ारा कैद हुआ, जिसमें लोगों के चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं दिखी थी। अच्छी बात तो ये रही कि इस घटना के दौरान भगदड़ नहीं मची। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो 3 साल पुराना है और केतन हत्याकांड के बाद की भीड़ से नहीं जुड़ा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
5: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा बीच सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में है और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। बच्चा आइसक्रीम का स्वाद लेने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतना तेज हॉर्न बजाया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब लुभा रहा है। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। दफ्तर में रोज की तरह सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी वहां मौजूद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई। फिर क्या था, खराबी आते ही रोबोट के भीतर का कराटे किट जाग गया। उसने तेजी से अपने हाथ पैर हवा में लहराने शुरू कर दिए और पास खड़े कर्मचारियों पर झपटने लगा। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि रोबोट की इस अचानक फाइट मोड वाली हरकत में वहां मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने किसी तरह रोबोट को काबू में किया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर बहस भी छिड़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के एडवांस रोबोट को आम लोगों के बीच तैनात करने से पहले उनकी कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्चे का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसके ट्रेनर भी हैरान रह गए। लोग बच्चे की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ शानदार डांस ही नहीं बल्कि रिश्तों की खूबसूरती भी बयां कर देते हैं। इन दोनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ और बेटी हरियाणवी गाने पर साथ में डांस करती नजर आ रही है। दोनों की शानदार बॉन्डिंग और चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ डांस नहीं कर रही बल्कि इस पल को खुलकर जी भी रही हैं। बुढ़ापा सचमुच सिर्फ कमजोर पड़ते शरीर का नाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सवाल का जवाब पूरी ताकत के साथ देता नजर आता है। आमतौर पर 70 साल की उम्र सुनते ही लोगों के मन में आराम, दवाइयों और बढ़ती उम्र की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस दादी ने उन सभी धारणाओं को चुनौती दे दी। वीडियो में दादी ने जिस तरह से भारी वजन उठाया है उसे देखकर जिम में पसीना बहाने वाले युवा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दादी ने पूरी तैयारी के साथ डेडलिफ्ट करने की पोजीशन ली। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर या झिझक दिख रहा था, बड़ी आसानी से उन्होंने 103 किलो का वजन उठाया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था। कई सरप्राइज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी लोगों का दिल जीत रही है। एक केयर होस्टेस ने अपने माता पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो वे हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई देने लगा। दरअसल सुष्मिता नाथ नाम की एक केयर होस्टेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ऑन ड्यूटी अपने माता पिता का वेलकम करते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एयर होस्टेस के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ अपनी बेटी मिल जाए। इसलिए इस वीडियो में माता पिता का रिएक्शन देखने लायक है। सुष्मिता ने अपने माता पिता से कहा था कि उस दिन उनकी ड्यूटी किसी दूसरी फ्लाइट में है, इसलिए उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान से वे सफर करने वाले हैं उसी फ्लाइट में उनकी बेटी यात्रियों का स्वागत करेगी। गेहूं काटने और उन्हें साफ करने के लिए बाजार में हजारों लाखों रुपए की मशीनें उपलब्ध हैं। कई किसान किराया देकर अपने गेहूं मशीनों में साफ करवाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक देसी लड़के ने गेहूं साफ करने का एक ऐसा जुगाड़ निकाला कि लोग हैरान हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का गेहूं साफ करने के लिए घरेलू जुगाड़ लगाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो एक कूलर के ऊपर गत्ते का खोखा रखता है। इसके बाद वो कूलर को तेज रफ्तार में चलाता है। कूलर चालू होने के बाद ये लड़का खोखे में गेहूं डालता है, जिसके बाद खोखे में किए गए एक छेद से गेहूं बाहर निकलने लगते हैं और कूलर की जाली के सामने से गुजरते हैं। जैसे ही गेहूं ऊपर से गिरकर कूलर की हवा से गुजरते हैं, वैसे ही उन पर लगी धूल और गेहूं में मिक्स कचरा हवा के बहाव से अलग हो जाता है और साफ गेहूं अलग हो जाते हैं। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विक पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विक को हवा में उछाल दिया और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया उसने इंटरनेट

0: दौड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र। समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज रेडियो पर।
2: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
4: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
5: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
4: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों

0: चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत,
4: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा अस्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर, चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालचाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने, अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा, 7 दिनों में 1,70,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ, के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: भगवान शिव का परम धाम कैलाश।
1: शिवाय
0: जिसके कण कण में है महादेव का वास।
1: नमः शिवाय।
0: जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
2: कर रहे थे
3: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।
4: ओम नमः शिवाय।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की, और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर की पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है। मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो यह भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की। हालांकि उपासना यहां भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, जैन धर्म के अनुयायी हो, उपासना यहां भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहां नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में मां गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहे सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले, जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुए, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसको जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवारुक्मे बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये पांचवें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहाँ पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति, उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान, उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं।
1: इस समय हम लोग यमद्वार पर हैं और कैलाश यात्रा के लिए, पवित्र कैलाश यात्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते ये हैं कि यहाँ से आप सांकेतिक रूप में भूलोक से सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग 3 दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो 3 बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
0: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
4: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था, बस यही थी अनुभूति। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समस्या खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर, बहुत सुविधाजनक बनाने की पूरी अपनी कोशिश लगा दी है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और चीन सरकार को।
5: क्या अब इसको आप अपने नृत्य में और उड़ीसी नृत्य में भी आप इसका वर्णन करेंगे कि भावी पीढ़ियां से प्रेरित हो?
4: बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी नृत्य शिव तांडव करती थी, मैं इसीलिए जानी जाती थी रेखा जैना का, जब भी शिव तांडव अनाउंस होता था तो दर्शकगण इंतजार करते थे।
0: आपको बता दें कि महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं, इसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
6: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दिन दयाल मेरे सबू भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कत्कारी, विष्णु को दिए चक्षु दर्शन लक्ष्मी सिनारी, इंद्र को दिए काम देनु एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कत्कारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दिन दयाल मेरे सबू भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान किए, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों के स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
0: तो वही बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
9: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
12: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
13: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थ यात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
12: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत, भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा, 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश, मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा, 7 दिनों में 170,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां, त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर, एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
15: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश के रंग में रंग कर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो लोहागढ़ किले का है जहां केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने जा रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
15: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड में आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम पहले रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजी जाती थी, फिर वही पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए वापस अपने खातों में मंगवा लिया जाता था ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस की जांच सीधे चोरी की रकम और जेवर की बरामदगी तक पहुंच गई है। अब इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा भी जा सकता है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: दान और चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी का पर्दाफाश किया है। मंदिर में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मिले 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग रूम के कर्मचारियों के नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपाकर कुल 70 बार चोरी करने की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रतिनिधि डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते बिना लिखित प्राधिकार के रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पकड़े गए मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सबके बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मंदिर में चढ़ाया गया दान भाजपाई अपनी बबौती समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
15: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल कर रहा है और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा लेन देन का खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने महिला दोस्त को 2 लाख रुपए नगद और महंगा फोन गिफ्ट किया था जो जांच के दायरे में है। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने हर जगह से खंगाला लेकिन इस दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस को एक आरोपी की कार से भारी मात्रा में नकदी मिली हो, क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और हर जगह पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि कार से भारी मात्रा में नकदी बरामदगी का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये कई न्यूज वेबसाइट्स की सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया हुआ मिला, जिनमें से छत्तीसगढ़ के रायपुर का बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान एक सरकारी अधिकारी की इनोवा कार से 1,66,00,000 की भारी नकदी बरामद की गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें कार के भीतर विशेष रूप से बनाए गए एक गुप्त कैबिन से नोटों की गड्डियां निकालते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कई और रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में भी इस वीडियो को छत्तीसगढ़ की घटना बताया गया है। सर्च के दौरान हमें यह वीडियो एक रीजनल न्यूज चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 26 नवंबर 2025 को साझा किया हुआ मिला। 14 अगस्त 2025 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खैरागढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक एसयूवी से कुल 4,04,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए। वाहन के मालिक से इस कैश से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस जानकारी को वो पुलिस को नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर उसी कार की है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है, और कार में बने गुप्त चैम्बर को भी देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का दावा भ्रामक है। कार से नकदी के बरामद होने का वीडियो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से संबंधित है, जिसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुई नकदी के दावे से जोड़कर अब शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे का केतन हत्याकांड मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक किले के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो लोहगढ़ किले का है, जहां पर केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था, उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: लोहागढ़ किले में 18 जून को व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के इशारे पर उनके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को खाई में धकेल दिया था। इस हत्या के बाद कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इन सबके बीच भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि लोग केतन अग्रवाल की हत्या वाली जगह सिया पॉइंट को देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हत्या से जुड़े कथित स्थान को लोग अब सिया पॉइंट के नाम से पहचान रहे हैं और बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंच रहे हैं। वहां पर्यटकों की संख्या में 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ली से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि लोहागढ़ किला, जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासत और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग उत्सुकतावश इस जगह पर पहुंच रहे हैं और इस कथित क्राइम स्पॉट को अनौपचारिक रूप से लिया जा रहा है, जिसके कारण यहां भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश ये लोग यहां पर फंस गए हैं। वीडियो लोहागढ़ किले का ही है। इसके बाद हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और पुणे के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर यह हाल फिलहाल का होता तो फिर इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में हाल फिलहाल में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें जुलाई 2023 का एक सोशल मीडिया पोस्ट मिला। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के मराठी कैप्शन में बताया गया था कि लोहागढ़ में भीड़ के कारण पर्यटक 4 घंटे तक फंसे रहे थे। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 4 जुलाई 2023 को छपी इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही वीकेंड पर लोहागढ़ किले में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची। भारी भीड़ के कारण लोग करीब 4 घंटे तक किले पर फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सर्च के दौरान ही 3 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लोनावला इलाके में लोहागढ़ पर पर्यटकों की भारी भीड़ फंस गई। ये घटना बारिश के दिन हुई जब सैकड़ों लोग किले पर उमड़ पड़े, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। एक वीडियो में ये चिंताजनक नजारा कैद हुआ, जिसमें लोगों के चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं दिखी थी। अच्छी बात तो ये रही कि इस घटना के दौरान भगदड़ नहीं मची। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो 3 साल पुराना है और केतन हत्याकांड के बाद की भीड़ से नहीं जुड़ा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
4: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा बीच सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में है और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। बच्चा आइसक्रीम का स्वाद लेने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतना तेज हॉर्न बजाया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब निभा रहा है। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। दफ्तर में रोज की तरह सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी वहाँ मौजूद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई। फिर क्या था, खराबी आते ही रोबोट के भीतर का कराटे किट जाग गया। उसने तेजी से अपने हाथ पैर हवा में लहराने शुरू कर दिए और पास खड़े कर्मचारियों पर झपटने लगा। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि रोबोट की इस अचानक फाइट मोड वाली हरकत में वहाँ मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने किसी तरह रोबोट को काबू में किया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर बहस भी छिड़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के एडवांस रोबोट को आम लोगों के बीच तैनात करने से पहले उनकी कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्चे की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ शानदार डांस ही नहीं बल्कि रिश्तों की खूबसूरती भी बयां कर देते हैं। इन दोनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ और बेटी हरियाणवी गाने पर साथ में डांस करती नजर आ रही हैं। दोनों की शानदार बॉन्डिंग और चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ डांस नहीं कर रही बल्कि इस पल को खुलकर जी भी रही हैं। बुढ़ापा सचमुच सिर्फ कमजोर पड़ते शरीर का नाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सवाल का जवाब पूरी ताकत के साथ देता नजर आता है। आमतौर पर 70 साल की उम्र सुनते ही लोगों के मन में आराम, दवाइयों और बढ़ती उम्र की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस दादी ने उन सभी धारणाओं को चुनौती दे दी। वीडियो में दादी ने जिस तरह से भारी वजन उठाया है उसे देखकर जिम में पसीना बहाने वाले युवा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दादी ने पूरी तैयारी के साथ डेडलिफ्ट करने की पोजीशन ली। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर या झिझक दिख रहा था, बड़ी आसानी से उन्होंने 103 किलो का वजन उठाया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था। कई सरप्राइज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी लोगों का दिल जीत रही है। एक केयर होस्टेस ने अपने माता पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो वे हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई देने लगा। दरअसल सुष्मिता नाथ नाम की एक केयर होस्टेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ऑन ड्यूटी अपने माता पिता का वेलकम करते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एयर होस्टेस के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ अपनी बेटी मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो में माता पिता का रिएक्शन देखने लायक है। सुष्मिता ने अपने माता पिता से कहा था कि उस दिन उनकी ड्यूटी किसी दूसरी फ्लाइट में है, इसलिए उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान से वे सफर करने वाले हैं उसी फ्लाइट में उनकी बेटी यात्रियों का स्वागत करेगी। गेहूं काटने और उन्हें साफ करने के लिए बाजार में हजारों लाखों रुपए की मशीनें उपलब्ध हैं। कई किसान किराया देकर अपने गेहूं मशीनों में साफ करवाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक देसी लड़के ने गेहूं साफ करने का एक ऐसा जुगाड़ निकाला कि लोग हैरान हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का गेहूं साफ करने के लिए घरेलू जुगाड़ लगाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो एक कूलर के ऊपर गत्ते का खोखा रखता है, इसके बाद वो कूलर को तेज रफ्तार में चलाता है। कूलर चालू होने के बाद ये लड़का खोखे में गेहूं डालता है, जिसके बाद खोखे में किए गए एक छेद से गेहूं बाहर निकलने लगते हैं और कूलर की जाली के सामने से गुजरते हैं। जैसे ही गेहूं ऊपर से गिरकर कूलर की हवा से गुजरते हैं, वैसे ही उन पर लगी धूल और गेहूं में मिक्स कचरा हवा के बहाव से अलग हो जाता है और साफ गेहूं अलग हो जाते हैं। इस छोटे से गोलू मोलू पांडे ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विक पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विक को हवा में उछाल दिया और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सेंटोस और उनकी केनाइन पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites.

0: हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
3: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
4: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
5: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा। INS महेंद्रगिरी विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत। भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा। 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालचाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। 7 दिनों में 1,70,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज। प्रशासन ने शिव भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां। त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।

0: यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
1: अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय।
0: कर रहे थे
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम रुवा रूप में बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम।
1: और जब महादेव को देखा तो आंग में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था।
0: ठीक हमारे पीछे वो मानसरोवर झील, बहुत ही अनुपम ये दृश्य भी है और अनुभूति भी है।

0: सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर रहे हैं, पवित्र पर्वत कैलाश और पवित्र झील मानसरोवर ठीक मेरे पीछे। ये विशेष पेशकश 15,100 फीट की ऊंचाई से इस समय आ रही है और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के सैलाब की, उनमें उत्साह की और भारत और चीन की सरकारें जो प्रयास कर रही हैं कि इस यात्रा को और आसान कैसे बनाया जा सके और क्या नए रास्ते और तलाशे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इस रास्ते में, इस यात्रा में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे।
0: कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन आज आप अपने घर बैठे ही दिव्य कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन करेंगे। कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा की शुरुआत हो जाती है तिब्बत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आरी पुलान एयरपोर्ट से।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस समय हम आरी पुलान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और क्योंकि ये एक सैन्य एयरपोर्ट और सिविल एयरपोर्ट दोनों है, इसीलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हमारी यात्रा पहले पवित्र मानसरोवर के लिए और फिर कैलाश के लिए शुरू होगी।
0: कैलाश मानसरोवर की यात्रा में मानसरोवर झील से कुछ किलोमीटर पहले दर्शन होते हैं राक्षस ताल के। मान्यता है कि मानसरोवर के पश्चिम में मौजूद यही वो झील है जहां कभी लंका के राजा रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि जहां मानसरोवर का जल अमृत के समान मीठा है, वहीं इसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद राक्षस ताल का जल बिल्कुल खारा है, मानो रावण के अहंकार का कसैलापन इस झील के पानी में समा गया हो। जहां मानसरोवर जीवन का स्रोत है, वहीं राक्षस ताल शांत और निर्जीव दिखता है। राक्षस ताल में मछलियां तक नहीं, नहीं इस ताल की परिक्रमा और पूजा करने का विधान है।
1: ठीक मेरे पीछे इस समय ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल यानी कैलाश मानसरोवर के बेहद निकट खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक, लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर यह राक्षस ताल है। मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण ने यहां भगवान शिव की स्तुति की थी और अहंकार रावण में इतना था कि राक्षस ताल का पानी खारा हो गया। मान्यता तो यह भी है कि जो मानसरोवर झील है उससे जमीन के नीचे ही एक पानी का स्रोत राक्षस ताल भी आता है, क्योंकि अगर आप देखें इतनी ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी झील, और ये वो इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, तो इस झील के लिए बार बार पानी आना ये आसान नहीं है। हालांकि आसपास यहाँ ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स से पानी बहुत आता है, लेकिन राक्षस ताल के बारे में कहा जाता है कि ये पानी जो धरती के नीचे से ही एक स्रोत है, लेक मानसरोवर जब ओवरफ्लो करती है पवित्र झील मानसरोवर, तो उसी का पानी इस दिशा में भी आता है, लेकिन जमीन के नीचे ही वो खारा होता रहता है। इसकी कोई परिक्रमा नहीं करता इस झील की, हालांकि उपासना यहां भी होती है, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म के अनुयायी हों, उपासना यहां भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा यहां नहीं करते। खारे पानी की इस झील में मछली नहीं है, जीवन दायिनी नहीं है, मोक्ष दायिनी, प्राण दायिनी, जैसे भारत में माँ गंगा को कहा जाता है, वैसे ही मानसरोवर झील को माना जाता है, राक्षस ताल को नहीं।
0: राक्षस ताल से आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था धरती का अमृत कुंड मानसरोवर। मानस और सरोवर के मेल से बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। समुद्र ताल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये वो पवित्र झील है जिसे सनातन धर्म में सदा से पूजनीय माना गया है। मानसरोवर झील का जल बेहद मीठा है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट बताई जाती है।
1: इस समय हम लोग लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है और वैसे तो यहाँ सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जब आप प्राणदायिनी मानसरोवर झील के निकट आ जाते हैं तो आपकी वो थकान एकाएक गायब हो जाती है। जिस तरह से भारत में हम माँ गंगा को प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी मानते हैं, वैसे ही यहाँ तिब्बत में यहाँ के बौद्ध या फिर यूं कहें सनातन धर्म को मानने वाले, भारत में हो, तिब्बत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, यहाँ के पौन धर्म को मानने वाले जिसको कई लोग बौन धर्म भी कहते हैं, उन सभी के लिए ये नदी प्राणदायिनी है, मोक्षदायिनी है। कुछ कदम चलते ही सांस यहाँ फूलने लगती है, इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन मन करता है कि आप इस पवित्र जल को छुए, आचमन करें और उस मोक्ष की कामना करें जिसको जिसकी कामना करके सदियों से श्रद्धालु भारत से और दुनिया भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हर धर्म में मानसरोवर का बहुत महत्व है। कई कहानियाँ हैं मानसरोवर झील के चारों ओर, कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के मुताबिक ये जो झील है ये ब्रह्मा जी के मानस से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा जी के मानस से इस झील को उत्पन्न किया ताकि शुभ कार्य, धर्म के कार्य किए जा सके।
0: कई धार्मिक ग्रंथों में मानसरोवर की उत्पत्ति से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्रह्मा के मानस से उत्पत्ति की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भूलोक पर स्वर्ग के समान स्थान कैलाश खंड को खोजा और इन्हीं आंसुओं से इस स्थल पर मानसरोवर का निर्माण किया। जबकि एक मान्यता के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। इसी झील को पुराणों में कई स्थानों पर क्षीर सागर भी कहा गया है। माना जाता है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस जल में स्नान करने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। हालांकि साल 2018 से चीनी सरकार ने झील की पवित्रता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम कारणों का हवाला देकर मानसरोवर में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके सालों से शिव भक्त मन में अगाध आस्था का दीप जलाए मानसरोवर झील के दर्शन मात्र को पहुंचते हैं।
2: ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रूवारुक्मे बंधना मृत्यु मुक्ति मामृतम। हम भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं जिनके तीन नेत्र है, तीनों नेत्र से ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार एक कंकड़ी बेल में पक जाने के बाद जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुख के पास समर्पित हो जाए।
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: मानसरोवर के दर्शन हो चुके थे और अब हमारा अगला पड़ाव था महादेव का धाम, पवित्र कैलाश पर्वत। हमारे साथ इस पथ पर महादेव के कई मतवाले भक्त आगे बढ़ रहे थे, आस्था और उत्साह के भाव से भरे। उत्साह की वजह भी है लंबी प्रतीक्षा और असंख्य प्रार्थनाओं के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा था। आप भी गुड न्यूज टुडे के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश तक की इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और संकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वत है यत्र वैश्रवणो राजन गुहकेह सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त याति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता बरकरार रही है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहाँ सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान सिर्फ सनातन नहीं बल्कि हर उस धर्म के निशान दिखते हैं जिनके लिए कैलाश पर्वत पूजनीय है।
1: लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप यमद्वार की ओर बढ़ते हैं पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए, तो बीच में ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का एक बेहद पवित्र स्थल आता है जिसे वो एक विजय स्तंभ के रूप में देखते हैं। ये जो विजय स्तंभ ठीक मेरे पीछे है, इसे अगर आप देखें तो ये पांचवें दलाई लामा ने उन वीरों की स्मृति में बनवाया था जिन वीरों ने पूरे तिब्बत को एक छत्र में जोड़ने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ जितने भी ध्वज हैं उन्हें बदला जाता है। यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा अर्चना इस समय भी यहाँ पर चल रही है। ऊपर एक उनकी स्मृति उनका स्मृति चिन्ह भी है। तो कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और हम यमद्वार जाने वाले हैं उसके मार्ग पर ये बौद्धों का एक बेहद पवित्र स्थान उनका विजय स्तंभ आता है।
0: कैलाश पर्वत यात्रा मार्ग पर अब हम यमद्वार के नजदीक थे। मान्यता है कि यमद्वार में प्रवेश करते ही आप जीते जी संसार को पीछे छोड़ शिवलोक में प्रवेश कर जाते।
1: सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ते हुए अब इस द्वार को पार करके शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो भी आपने किया हो सांसारिक सुख दुख भुलाकर अब शिव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उपासना करते हुए फिर आप आगे बढ़ते हैं। तीन बार इसकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अब ये पूरा परिक्रमा का मार्ग शुरू हो जाता है। लगभग 3 दिन लगते हैं, 50 किलोमीटर से लंबी ये परिक्रमा रहती है। तो 3 बार इस यमद्वार के की आप परिक्रमा करते हुए फिर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
0: यमद्वार के पीछे कैलाश पर्वत जगमगा रहा था अपनी पूरी भव्यता के साथ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। गुड न्यूज टुडे आपको आज उसी कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर लेकर आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके, और जो दर्शन कर पाता है वो खुद को धन्य समझता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ऐसे कई भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ ही प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना रेखा जैना भी महादेव के धाम के दर्शन करने पहुंची थी।
4: और जब महादेव को देखा तो आंख में ऐसे आंसू गिरते चले गए, बस लगा कि बस अब कुछ नहीं, हो गया, सब कुछ मिल गया जो पाना था, बस यही थी अनुभूति। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, समस्या खत्म हो जाती थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, भारत और चीन दोनों देशों ने मिलकर बहुत सुविधाजनक बनाने की पूरी अपनी कोशिश लगा दी है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को और चीन सरकार को।
5: क्या अब इसको आप अपने नृत्य में और उड़ीसी नृत्य में भी आप इसका वर्णन करेंगे कि भावी पीढ़ियां से प्रेरित हो?
4: बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी नृत्य शिव तांडव करती थी, मैं उसी लिए जानी जाती थी रेखा जैना का। जब भी शिव तांडव अनाउंस होता था तो दर्शकगण इंतजार करते थे।
0: आपको बता दें कि महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजते हैं, उसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है।
6: भोलेनाथ बांट दियो तीनों पल भर में, ऐसे दिन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिए वेद कत्कारी, विष्णु को दिए चक्ष सुदर्शन लक्ष्मी सिनारी, इंद्र को दिए काम देनु, एरावत को बलसारी, कुबेर को दिए संपत्ति कत्कारी, अपने पास रखे ना बघम्बर, ऐसे दिन दयाल मेरे सबु भरो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दी हल हल पान किए, ब्रह्मा को ज्ञान दी सूत्र ध्यान किए, भागीरथ को दे दी गंगा लोगों को स्नान किए, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में कल्याण किए।
0: तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी और ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में भी इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में सदा से पूजा जाता रहा है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
9: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र। समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: पहाड़ों में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
12: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं, भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है, भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
13: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं, उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी, ठंड यहां पे देखने को मिलती है, अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा, तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुँच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
12: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत ये है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: आज भारतीय नौसेना में कमीशन होगा INS महेंद्रगिरी। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में की शिरकत। भोजन के बीच नौसेना कर्मियों से संवाद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देशवासियों के लिए गुड न्यूज। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 726 करोड़ डॉलर का हुआ इजाफा। 67,419 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा फॉरेन रिजर्व। बिना पर्चे के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं। कफ सिरप के दुरुपयोग रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। मेडिकल स्टोर को रखना होगा 3 साल का रिकॉर्ड। बालटाल बेस कैंप पहुंचे LG मनोज सिन्हा ने। अमरनाथ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का लिया जायजा। 7 दिनों में 170,000 भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र सावन महीने से पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज। प्रशासन ने किसी भक्तों से अपील, 6 फीट की कांवड़ और 10 फीट से ऊंची ना बनाए झांकियां। त्रिशूल और डंडे ना लाए साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। तिरंगे की रोशनी से नहाया ऑकलैंड का स्काई टावर। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने की अगवानी।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और।
15: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश के रंग में रंग कर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो लोहागढ़ किले का है जहां केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने जा रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और।
15: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड में आरोपियों ने बताया कि चोरी की रकम पहले रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजी जाती थी, फिर वही पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए वापस अपने खातों में मंगवा लिया जाता था ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस की जांच सीधे चोरी की रकम और जेवर की बरामदगी तक पहुंच गई है। अब इसी मामले से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा भी जा सकता है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: दान और चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी का पर्दाफाश किया है। मंदिर में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मिले 40 दिनों के CCTV फुटेज में काउंटिंग रूम के कर्मचारियों के नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपाकर कुल 70 बार चोरी करने की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रतिनिधि डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते बिना लिखित प्राधिकार के रमाशंकर यादव और तिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पकड़े गए मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सबके बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मंदिर में चढ़ाया गया दान भाजपाई अपनी बपौती समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
15: दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गबन के मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल कर रहा है और इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा लेन देन का खुलासा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने महिला दोस्त को 2 लाख रुपए नगद और महंगा फोन गिफ्ट किया था जो जांच के दायरे में है। इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक आरोपी की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। वायरल वीडियो में एक कार से पुलिस को भारी मात्रा में नकदी बरामद करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने हर जगह से खंगाला, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस को एक आरोपी की कार से भारी मात्रा में नकदी मिली हो। क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती और हर जगह पर ये खबर सुर्खियों में होती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि कार से भारी मात्रा में नकदी बरामदगी का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल ये कि कहीं जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये कई न्यूज वेबसाइट्स की सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया हुआ मिला, जिनमें से छत्तीसगढ़ के रायपुर का बताया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान एक सरकारी अधिकारी की इनोवा कार से 1,66,00,000 की भारी नकदी बरामद की गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें कार के भीतर विशेष रूप से बनाए गए एक गुप्त कैबिन से नोटों की गड्डियां निकालते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कई और रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स में भी इस वीडियो को छत्तीसगढ़ की घटना बताया गया है। सर्च के दौरान हमें यह वीडियो एक रीजनल न्यूज चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 26 नवंबर 2025 को साझा किया हुआ मिला। 14 अगस्त 2025 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खैरागढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान इतवारी बाजार एमसीपी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक एसयूवी से कुल 4,04,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए। वाहन के मालिक से इस कैश से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस जानकारी को वो पुलिस को नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने सारा कैश जब्त कर लिया। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर उसी कार की है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है, और कार में बने गुप्त चैम्बर को भी देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का दावा भ्रामक है। कार से नकदी के बरामद होने का वीडियो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से संबंधित है, जिसे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुई नकदी के दावे से जोड़कर अब शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: पुणे का केतन हत्याकांड मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक किले के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लोहगढ़ किले का है, जहां पर केतन हत्याकांड के बाद लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था, उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।

0: लोहागढ़ किले में 18 जून को व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के इशारे पर उनके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन को खाई में धकेल दिया था। इस हत्या के बाद कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि केतन अग्रवाल को कथित तौर पर जिस जगह से धक्का दिया गया था उसके बारे में पर्यटकों की पूछताछ बढ़ने के बाद वह आकर्षण का केंद्र बन गया है। इन सबके बीच भीड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि लोग केतन अग्रवाल की हत्या वाली जगह सिया पॉइंट को देखने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हत्या से जुड़े कथित स्थान को लोग अब सिया पॉइंट के नाम से पहचान रहे हैं और बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंच रहे हैं। वहां पर्यटकों की संख्या में 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि लोहागढ़ किला, जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासत और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है, केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग उत्सुकतावश इस जगह पर पहुंच रहे हैं और इस कथित क्राइम स्पॉट को अनौपचारिक रूप से लिया जा रहा है, जिसके कारण यहां भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश ये लोग यहां पर फंस गए हैं। वीडियो लोहागढ़ किले का ही है। इसके बाद हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और पुणे के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर यह हाल फिलहाल का होता तो फिर इसके बारे में खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर इसके बारे में हाल फिलहाल में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानेंगे।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें जुलाई 2023 का एक सोशल मीडिया पोस्ट मिला। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के मराठी कैप्शन में बताया गया था कि लोहागढ़ में भीड़ के कारण पर्यटक 4 घंटे तक फंसे रहे थे। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। 4 जुलाई 2023 को छपी इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए बताया गया था कि मॉनसून की शुरुआत के साथ ही वीकेंड पर लोहागढ़ किले में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची। भारी भीड़ के कारण लोग करीब 4 घंटे तक किले पर फंसे रहे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सर्च के दौरान ही 3 जुलाई 2023 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि लोनावला इलाके में लोहागढ़ पर पर्यटकों की भारी भीड़ फंस गई। ये घटना बारिश के दिन हुई जब सैकड़ों लोग किले पर उमड़ पड़े, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। एक वीडियो में ये चिंताजनक नजारा कैद हुआ, जिसमें लोगों के चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं दिखी थी। अच्छी बात तो ये रही कि इस घटना के दौरान भगदड़ नहीं मची। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो 3 साल पुराना है और केतन हत्याकांड के बाद की भीड़ से नहीं जुड़ा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
3: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच, फ्रॉम टुडेस हिट्स टू टाइमलेस फेवरेट्स एंड न्यू डिस्कवरीज, all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
4: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा बीच सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में है और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। बच्चा आइसक्रीम का स्वाद लेने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतना तेज हॉर्न बजाया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब लुभा रहा है। टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। दफ्तर में रोज की तरह सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी वहां मौजूद एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई। फिर क्या था, खराबी आते ही रोबोट के भीतर का कराटे किट जाग गया। उसने तेजी से अपने हाथ पैर हवा में लहराने शुरू कर दिए और पास खड़े कर्मचारियों पर झपटने लगा। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि रोबोट की इस अचानक फाइट मोड वाली हरकत में वहां मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए। कर्मचारियों ने किसी तरह रोबोट को काबू में किया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर बहस भी छिड़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के एडवांस रोबोट को आम लोगों के बीच तैनात करने से पहले उनकी कड़ी टेस्टिंग होनी चाहिए, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसके ट्रेनर भी हैरान रह गए। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ शानदार डांस ही नहीं बल्कि रिश्तों की खूबसूरती भी बयां कर देते हैं। इन दोनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ और बेटी हरियाणवी गाने पर साथ में डांस करती नजर आ रही हैं। दोनों की शानदार बॉन्डिंग और चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन लोगों का दिल जीत रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सिर्फ डांस नहीं कर रही बल्कि इस पल को खुलकर जी भी रही हैं। बुढ़ापा सचमुच सिर्फ कमजोर पड़ते शरीर का नाम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सवाल का जवाब पूरी ताकत के साथ देता नजर आता है। आमतौर पर 70 साल की उम्र सुनते ही लोगों के मन में आराम, दवाइयों और बढ़ती उम्र की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस दादी ने उन सभी धारणाओं को चुनौती दे दी। वीडियो में दादी ने जिस तरह से भारी वजन उठाया है उसे देखकर जिम में पसीना बहाने वाले युवा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दादी ने पूरी तैयारी के साथ डेडलिफ्ट करने की पोजीशन ली। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर या झिझक दिख रहा था, बड़ी आसानी से उन्होंने 103 किलो का वजन उठाया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था। कई सरप्राइज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी लोगों का दिल जीत रही है। एक केयर होस्टेस ने अपने माता पिता को ऐसा सरप्राइज दिया कि पहले तो वे हैरान रह गए और फिर उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई देने लगा। दरअसल सुष्मिता नाथ नाम की एक केयर होस्टेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ऑन ड्यूटी अपने माता पिता का वेलकम करते दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एयर होस्टेस के माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ अपनी बेटी मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो में माता पिता का रिएक्शन देखने लायक है। सुष्मिता ने अपने माता पिता से कहा था कि उस दिन उनकी ड्यूटी किसी दूसरी फ्लाइट में है, इसलिए उनके मम्मी पापा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान से वे सफर करने वाले हैं उसी फ्लाइट में उनकी बेटी यात्रियों का स्वागत करेगी। गेहूं काटने और उन्हें साफ करने के लिए बाजार में हजारों लाखों रुपए की मशीनें उपलब्ध हैं। कई किसान किराया देकर अपने गेहूं मशीनों में साफ करवाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक देसी लड़के ने गेहूं साफ करने का एक ऐसा जुगाड़ निकाला कि लोग हैरान हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का गेहूं साफ करने के लिए घरेलू जुगाड़ लगाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो एक कूलर के ऊपर गत्ते का खोखा रखता है, इसके बाद वो कूलर को तेज रफ्तार में चलाता है। कूलर चालू होने के बाद ये लड़का खोखे में गेहूं डालता है, जिसके बाद खोखे में किए गए एक छेद से गेहूं बाहर निकलने लगते हैं और कूलर की जाली के सामने से गुजरते हैं। जैसे ही गेहूं ऊपर से गिरकर कूलर की हवा से गुजरते हैं, वैसे ही उन पर लगी धूल और गेहूं में मिक्स कचरा हवा के बहाव से अलग हो जाता है और साफ गेहूं अलग हो जाते हैं। इस छोटे से गोलू मोलू पांडे ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी है कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने पांडा के साथ थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने एक विक पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि आखिर केयरटेकर क्या करने वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है, तभी अचानक अपने सिर से विक को हवा में उछाल दिया और अचानक उनका चमकता हुआ गंजा सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देखकर मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वे पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू कैसे हुआ। वह इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो यह प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सेंटोस और उनकी केनाइन पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनकी इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र, समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज शोडे पर।
6: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
7: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है? कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है? कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है? अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत?

0: जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर।
2: में मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल

0: मॉनसून की एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमानों में बादल का पहरा है तो केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबके बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है।
1: भोलेनाथ और बद्री विशाल के दर्शन की चाह हर साल लाखों श्रद्धालुओं को हिमालय की ऊंचाइयों तक खींच लाती है और इस खूबसूरत वादी का कोना कोना जय बद्री विशाल और जय केदार के जय घोष से गूंज उठता है। चारधाम में आस्था के इस राह में वो दौर भी आता है जब ना चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को अपने कदम रोकने पड़ते हैं। भगवान के दर्शन का इंतजार लंबा हो जाता है। इस बार की चारधाम यात्रा में भी वो पड़ाव करीब आ चुका है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में मौसम की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चारधाम में अभी भी रौनक है। भले ही तीर्थयात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई है लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां पहाड़ों पर बादलों का डेरा है और अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक मॉनसून ने पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ी है लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम हो या हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उत्साह बरकरार है।
2: 3,000 श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। उत्साह बना हुआ है। बारिश हो या फिर बर्फबारी भी यहां पे देखने को मिली थी। ठंड यहां पे देखने को मिलती है। अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी हेमकुंड साहिब में देखने को मिलती है। ऐसे में हेमकुंड साहिब इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार दिखाई दे रहा है। तो वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर ही जब फूलों की घाटी पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो पर्यटक हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं, तो हेमकुंड का जो तीर्थयात्री है वो फूलों की घाटी भी जा रहा है। ऐसे में फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में इस समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: श्रद्धालुओं के लिए भले ही चुनौतियों पर आस्था भारी हो लेकिन तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए हर संभव इंतजाम में जुटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और मौसम सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। बस राहत यह है कि दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, लगातार मौसम और नदियों के जलस्तर की निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं। स्थिति सामान्य होने की वजह से फिलहाल केदारधाम की यात्रा भी जारी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा हिंदुस्तान का मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन के पड़ोसियों के पास भारत का ब्रह्मास्त्र। समंदर में हिंदुस्तान का रणनीतिक लंगर। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
6: कौन सा रंग अगर आपको नुकसान करे तो दुर्घटनाएं करवा सकता है, कौन सा रंग बीमारी से लड़ने और निकलने में सहायता करता है, कौन सा रंग जीवन में शुभ कार्य करवा देता है, अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे चमकाएं किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।